0: अगर हम देखते हैं दूसरा ये कि साल भर चाहे मौसम उसका है या नहीं है, बेमौसम में भी उसी हरे चारे को हम किसी भी मौसम में उसका उत्पादन करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार राज्य में डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह तकनीकी बहुत ही अत्यंत लाभकारी है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन एक तरीके से अगर हमारे बिहार में भी अपनाया जाए, खासतौर पर जब बाढ़ आ जाते हैं, जब सुखाड़ रहता है, तो उस समय इस तकनीक को अपनाकर बहुत फायदा पा सकते हैं हमारे पशुपालक भाई और अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि इसके हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन जो तरीका यहाँ पर बताया गया उसके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: अब कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जब हम फिल्मों की बात करते हैं, रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं, और ऐसी रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं जिसका अंत बेहद दुखद रहा हो, तो उन फिल्मों में एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो नाम है देवदास। देवदास का अंत हर किसी के दिल को छू गया था, हर किसी को रुला गया था, और हर किसी को ये सोचने पर उस अंत ने मजबूर कर दिया था कि क्या कोई ऐसा प्रेमी हो सकता है। देवदास, इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा, और शायद आपको ये भी पता होगा कि फिल्म की कहानी एक नॉवेल से इंस्पायर्ड थी, और इस नॉवेल को लिखा था सरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत ही कमाल के लेखक, और ऐसे लेखक जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती है। और आप सोच रहे होंगे कि अंग उमंग कार्यक्रम में हम सरद चंद्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाता अंग प्रदेश से रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि देवदास का नाता अंग प्रदेश से रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों का ये मानना है, और जो कुछ प्रचलित कहानियां हैं कि देवदास नहीं, भागलपुर के कुछ जीवित किरदारों के ऊपर लिखा गया था। देवदास, पारो, चुन्नीलाल सभी मौजूद थे, अलग अलग नामों के साथ और थोड़े अलग किरदारों के साथ, थोड़ी अलग कहानी के साथ। दोस्तों, अगर हम सरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, छोटी कहानियां लिखा करते थे, और ये ज्यादातर बंगाली परिवारों के बारे में लिखा करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे, और गांवों के बारे में लिखा करते थे। इनकी जब आप कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये चीजों को कितनी गहरी तरीके से ऑब्जर्व किया करते थे। जो इनके आसपास लोग होते थे उनके लिए इनके मन में सिंपैथी थी और बहुत ही गहरी समझ ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से औरतें सोचती हैं, बच्चे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं, उनके सोचने में क्या अंतर है, उनके रवैये में क्या अंतर होता है, ये चीजें उनके लिखने के स्टाइल को बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक बना देती थी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो भी लिखा वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियां भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएं लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास, ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर कोई प्रेम में डूब गया है, प्रेमी नजर आता है, तो हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं, अरे क्यों देवदास बने फिरते हो। सोचिए कि इन्होंने कितनी गहराई के साथ एक ऐसा उपन्यास लिखा जिस पर न जाने कितनी सारी फिल्में बन गई है, पर आज भी देवदास ये कहानी लोगों को उतनी ही जानदार लगती है। 15 सितंबर 1876 में एक बंगाली ब्राह्मण के घर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म देवानंदपुर में हुआ था, एक छोटा सा गांव हुगली में। उनके पिता का नाम था मातीलाल और माता का नाम था भुवन मोहिनी। शरद चंद्र उनकी दूसरी औलाद थे और पहले बेटे। देवानंदपुर में आज भी उनका वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो बचपन के दिन है वो हमारे अंग प्रदेश में बीता था। जी हाँ, इनका बचपन हमारे अंग प्रदेश में बीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखना बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था क्योंकि उनके पिता के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे घर बहुत आसानी से चल सके, जिसकी वजह से शरद चंद्र की पढ़ाई वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर हम शरद चंद्र जी के बचपन के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को तभी भागलपुर ले आया गया था जब वो बस 2 या 3 साल के थे। यहीं पर इन्होंने पढ़ाई की 5th या 6th क्लास तक और उसके बाद वो देवानंदपुर वापस चले गए। वहाँ पर उन्होंने पाठशाला में 2 साल पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने फिशिंग सीखा, राफ्टिंग सीखा और अलग अलग जगह पर वो घूमे। और 1886 में वापस उनके पिताजी के द्वारा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नामांकन यही भागलपुर के स्कूल में करा दिया गया। स्कूल का नाम था दुर्गा चरण मिडिल इंग्लिश स्कूल। यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया और इसके बाद यहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने 1889 तक पढ़ाई की और 5वीं कक्षा में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और 1889 में हुआ ये कि मातीलाल की नौकरी भी चली गई, चट्टोपाध्याय और उनकी फैमिली फिर से देवानंदपुर चले गए। वहां पर उनका दाखिला हुआ हुगली डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। उनके पापा ने किसी तरीके से शरद चंद्र के लिए एक रूम अरेंज किया। हालांकि यहाँ पर भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए पढ़ना बहुत आसान नहीं था क्योंकि उनके पिताजी सक्षम नहीं थे शरद चंद्र के पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए। तो वापस वो 1893 में भागलपुर आ गए, जहाँ पर चट्टोपाध्याय जी का एडमिशन तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट स्कूल में हो गया। और जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। जब वो कॉलेज में थे तब चट्टोपाध्याय ने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। और इनके जो पहले इंस्पिरेशन थे, इनके पहले प्रेरणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास बनी। 1895 में चट्टोपाध्याय जी की माता का भी निधन हो गया। मातीलाल ने अपना जो भी पैतृक घर था 9 नवंबर 1896 में कहते हैं कि बेच दिया और उसके बाद 1896 में मातीलाल ने एक घर किराए का लिया जो कि चंद्रशेखर सरकार का था। ये भागलपुर की एक बस्ती में था जिसे कि खंजरपाली नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद शरद चंद्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इतने पैसे नहीं थे कि वो नई किताबें लेते और पढ़ाई करते, लेकिन जो किताबें सेकेंड हैंड होती थी, किसी से मांग लेते थे, उन्हीं किताबों में से वो पढ़ाई करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फाइनल एग्जाम के लिए कॉलेज के फी जमा कर पाए, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि शरद चंद्र के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, बचपन की, जवानी की जो उम्र थी वो भागलपुर में बीती। 1894 में जब शरद चंद्र ने तेज नारायण जुबली कॉलेज में एडमिशन लिया था तब उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लग गया था। जब उन्होंने पढ़ी अ टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई ये किताबें थी, और इन किताबों को पढ़कर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अंग्रेजी साहित्य में भी रुचि आने लगी। इसके बाद उन्होंने कई सारे पश्चिमी लेखकों को पढ़ा। जब इन्हें साहित्य में मजा आने लग गया था तो इन्होंने भागलपुर में एक चिल्ड्रंस लिटरेरी सोसाइटी बनाया। और ये सोसाइटी क्या करती थी कि जो भी हाथों से लिखे हुए मैगजीन होते थे उसे पब्लिश कराया जाता था। लेकिन 2 सालों के बाद ही सरत चंद्र की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ये 20 रुपए नहीं पे कर पाए थे जो कि इनका एग्जामिनेशन फी था, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई खत्म कर दी, बंद कर दी। और जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और इनकी माता का भी निधन हो गया था 1895 में ही, तो इसके बाद सरत चंद्र अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गए थे, प्लेज में एक्ट करने लग गए थे, गेम खेलने लग गए थे, स्पोर्ट्स खेलने लग गए थे और बहुत ही गंभीरता के साथ साहित्य को अपना समय देने लग गए थे। कहते हैं कि उसी वक्त इनके अंदर बहुत सारी किताबों की बीज पड़ चुकी थी, बोर दीदी, चंद्रनाथ और देवदास। और फिर अचानक इन्होंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें ये आदत यूजलेस लगी, बेकार की लगी। और इसके बाद इन्होंने जो बोर दीदी लिखा था वो सन 1900 में पहली बार नोवेला के रूप में पब्लिश होकर आई। नोवेला आपको बता दूं कि उपन्यास से ये छोटी होती है पर कहानियों से बड़ी होती है, तो इसे नोवेला कहते हैं। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब सरत

0: वकील के लिए।
1: जनवरी 1903 में शरद चंद्र वर्मा चले गए,
0: जिसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं।
1: लेकिन वर्मा जाने से पहले अपने अंकल के जिद करने पर इन्होंने अपनी लिखी एक कहानी मंदिर एक कहानी प्रतियोगिता में भेज दी, और हुआ ये कि इनकी कहानी मंदिर पहला इनाम जीत गई। 150 कहानियों में से पहला स्थान प्राप्त करना बहुत छोटी बात नहीं थी। हालांकि मंदिर इनके अंकल के नाम पर पब्लिश हुई, तो इस तरीके से एक 27 साल के लड़के शरद चंद्र की पहली छपी हुई कोई कहानी बाहर आई। हालांकि बाद में इनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियां आई, जो कि इन्होंने बौर दीदी भी इन्होंने पब्लिश कराया था। सन 1900 में इन्होंने बौर दीदी पब्लिश कराया था, लेकिन उससे पहले ही मंदिर पब्लिश होकर आ गई थी। हालांकि ये इनके अंकल के नाम पर आई थी। शरद चंद्र ने बर्मा में 13 साल व्यतीत किए, वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के काम किया, लेकिन वहां पर भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की किताबें वो उधार लाते और पढ़ते, कभी साइकोलॉजी, कभी सोशियोलॉजी, कभी फिलोसफी, इतिहास, न जाने कितनी सारी किताबें, कितनी तरह की किताबें इन्होंने पढ़ डाली थी। और इन्होंने तो थोड़ा बहुत पेंट करना भी शुरू कर दिया था। 1912 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई, जिस घर में ये रह रहे थे वहां आग लग गई। इनकी जो भी पेंटिंग्स थी और इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी चरित्रहीन, वो भी जल गई। हालांकि बाद में इन्होंने चरित्रहीन दोबारा लिखी, और इन्होंने लिखना तो छोड़ दिया था, लेकिन 18 साल के बाद इन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया, जब इनके एक जान पहचान वाले ने एक छोटा सा मैगजीन शुरू किया। लेकिन कोई भी उस छोटे स्तर पर शुरू किए गए मैगजीन में लिखने के लिए तैयार नहीं था, तो उनके जान पहचान वाले ने शरद चंद्र को ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता था कि शरद चंद्र भी लिखा करते हैं या लिखा करते थे। तो शरद चंद्र के पास आए और थोड़ा मनाने के बाद शरद चंद्र मान गए, और उनकी मैगजीन के लिए बर्मा से ही शरद चंद्र ने अपनी एक छोटी कहानी भेजी, जमुना, और ये कहानी बहुत पॉपुलर हो गई। और एक ही दिन में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी कहानी जमुना से फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार लिखना शुरू कर दिया, और शरद चंद्र अपने बारे में मानते थे कि बंगाल में वो शायद इकलौते ऐसे लेखक थे जिन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1916 में उन्होंने अपने काम से रिजाइन किया और वापस कलकत्ता आ गए वर्मा से। 1916 में 40 साल के हो चुके थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, हावड़ा आए और एक फुल टाइम राइटर बन गए। उनकी कहानियां पब्लिश हो रही थी, उनके उपन्यास के अंश सीरियल वाइज में पब्लिश होते थे मैगजीन में। कुछ कहानियों की बात करें तो जमुना के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, बाद में नारायण, भारतवर्ष, और उसके बाद में उनकी कुछ उपन्यास भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे मैगजीन में। और जब इन्होंने अपने पहले उपन्यास को पब्लिश कराया था, तो उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, या कहें कि पब्लिशर ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया था। और उन्होंने अपने दूसरे नॉवेल के लिए, यानी कि विराज बाहु के लिए, 200 रुपए लिए थे, और जो भी राइट्स थे पब्लिशर को बेच दिया था। और इनके जो भी लेखनी लोगों तक पहुंच रही थी वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे, और इसके बाद उनकी किताबों से, उनकी कहानियों से, उनके नॉवेला से जो भी रॉयल्टीज मिल रहे थे वो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को गरीबी से निकाल पाने का काम कर रहे थे। 1918 में नॉवेल ब्रिज बाओ को स्टेज पर परफॉर्म किया गया था स्टार थिएटर में। उसी साल जेम्स एंडरसन ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, अ न्यू बंगाली राइटर। यही से शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अलग पहचान मिल गई थी। इस आर्टिकल ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को वेस्टर्न रीडरशिप तक पहुंचाया। इसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत सारी किताबों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हालांकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देवदास कहते हैं कि भागलपुर के कुछ किरदारों से प्रेरित था, कुछ अलग अलग किरदारों से बुनकर बनाई गई एक कहानी। भागलपुर बिहार के मंसूरगंज इलाके में नर्तकी का कोठी था, और ये नर्तकी थी कालीदासी। इनका एक बड़ा कोठा था जिसे लगभग 45 साल पहले गिरा दिया गया, लेकिन आज भी इस कोठे से जुड़े, इस इलाके से जुड़े किस्से आपको स्थानीय लोगों से सुनने मिल जाएंगे। देवदास उपन्यास, जो कि 1901 में लिखा गया था और 1917 में प्रकाशित हुआ था, भागलपुर के पुराने लोग आज भी मानते हैं कि देवदास, पारो, चंद्रमुखी जैसे पात्र असल जिंदगी के असल इंसानों पर आधारित थे। मंसूरगंज की कालीदासी जो कि थी चंद्रमुखी, लोगों का कहना है कि वो बहुत सुंदर थी, और शायद

0: शरद उनसे प्रेम भी करते थे। कालिदासी के कोठे पे शरद और उनके दोस्त महादेव, जो कि शायद चुन्नी लाल हो गए उनकी कहानी में, अक्सर आते थे। और एक कहानी छिड़ती है कि महादेव का एक पर्स था, एक वॉलेट था, जो कि कालिदासी के पास रह गया था, और कालिदासी ने उसे शरद को वापस दे दिया और कहा कि महादेव से कह दीजिएगा कि वो यहाँ इतने पैसे लेकर ना आया करे। और पारो की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि पारो धीरू नाम की एक लड़की थी जो शरद चंद्र की बचपन की दोस्त थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बंगाली टोला में राजबाला नाम की उनकी एक दोस्त थी, बाद में जिसकी शादी मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी, और राजबाला से ही इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी पारो की जिंदगी, पारो का किरदार। राजबाला शरद चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त थी, और एक मान्यता तो ये भी है कि पारो असल में निरुपमा थी। ये एक सब जज की बेटी थी और शरद चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त। कहा जाता है कि शरद चंद्र सारी शाम फतेह जंग के मकबरे में बिताते थे, जहां शरद बांसुरी बजाते थे अपनी दोस्त के साथ बैठकर। यानी कि शरद सच में अपनी असल जिंदगी में बहुत रोमांटिक थे, तभी शायद देवदास को इतनी गहराई से लिखा था उन्होंने। तो अगली बार आप देवदास फिल्म देखें या कहानी पढ़ें तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये कहानी जो लिखी गई थी किसी असल किरदार से प्रेरित थी, और शायद उनमें से किरदार खुद शरद चंद्र थे। 1901 में देवदास लिखा जा चुका था, 1917 में पब्लिश कर दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त जो बहुत नामी घराने के लोग हुआ करते थे वो देवदास पढ़ने से और अपने घर के बच्चों को पढ़ने देने से बचते थे, क्योंकि उसमें देवदास का किरदार ही कुछ ऐसा था, शराबी, नशे में मग्न रहने वाला हीरो और खुद की जिंदगी को खत्म कर लेने वाला हीरो। ऐसी कहानी को नहीं चाहते थे कुछ लोग कि बच्चे पढ़े, लेकिन बाद में ये कहानी घर घर तक पहुंची, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है। कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत में देवदास पर करीब 18 फिल्म बन चुकी है, और राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव को यानी कि NFAI को 1935 की पहली टॉकी देवदास फिल्म बांग्लादेश से मिली थी। पाकिस्तान में बनी ये फिल्म, बंगाली में बनी, हिंदी में बनी, आसामी में बनी, उर्दू में, मलयालम में, तेलुगु में, न जाने कितनी ही भाषाओं में देवदास के ऊपर फिल्म बनाई गई, और सारी फिल्में सुपरहिट रही, लोगों को पसंद आई। वो कहानी जिसे कि एक वक्त पे अपने लाइब्रेरी में रखने से लोग परहेज करते थे, आज लोगों के दिलों में है। वो कहानी जिसने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो कहानी जो कि बताती है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाता कितना गहरा है अंग प्रदेश के साथ। कहते हैं कि कहानी लिखने की जो बात है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में शायद उनकी नानी से भी आई थी। कुछ बंगला साहित्य प्रेमी मानते हैं कि जब शरद चंद्र छोटे थे, एक छात्र थे, तभी से वो अपने अध्ययन कक्ष को बहुत सजा कर रखते थे। अलमारी पर जिल्द लगी उनकी किताबें करीने से सजी रहती थी। इनके सबसे छोटे परदादा अघोर नाथ गांगुली के बेटे मनिंद्र नाथ भी शरद चंद्र के सहपाठी थे, और उनकी माँ कुसुम कामिनी बहुत ही पढ़ी लिखी और साहित्य प्रेमी महिला थी, और वो हर सप्ताह महिला मंडली में बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन जैसे बंगला लेखकों के उपन्यास पढ़ती, काव्य पढ़कर सुनाती थी। छोटे से शरद चंद्र भी उन्हें सुनते थे। एक बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनकर शरद चंद्र रो पड़े थे। आंसू पोंछते पोंछते वो गोष्ठी से बाहर निकल गए थे। साहित्य प्रेमियों का मानना है कि शरद चंद्र को साहित्य के प्रति रुचि जगाने में कुसुम कामिनी की इस गोष्ठी का अहम योगदान था, इसलिए नानी कुसुम कामिनी ही उनकी शायद पहली साहित्यिक गुरु थी, और उन्हीं के गोष्ठी में उन्होंने पहली बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनी, जिसे सुनकर वो रो पड़े, और बाद में उन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी और कहते हैं कि उनसे उन्होंने प्रेरणा भी ली। हमारे अंग प्रदेश की धरती पर केवल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही नहीं बल्कि कई साहित्यकार आए और उन्होंने अपनी रचनाओं की प्रेरणा ली यहाँ से, और वो रचनाएं अमर हो गई, और इस तरह से हमारा अंग प्रदेश उनकी रचनाओं के हर शब्द में, हर अक्षर में अमर हो गया, और अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, आज अंग प्रदेश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कहीं कोई चूक हो गई, कुछ छूट गया, इसके लिए माफी चाहूंगी। अभी के लिए मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।
1: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था। पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना है तेजी से

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोहान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार साथियों, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ इसी फ्रिक्वेंसी, जी हां 90.8 मेगाहर्ट्ज़, जहां पर बातें होती हैं हरियाली से खुशहाली तक की। और ये है आपका अपना FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी समस्याओं का हल लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई। तो आज फिर एक जो सब्जेक्ट है, एक विषय है, हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। और किसान भाइयों, आज देखे जाते हैं कि तरह तरह के खाद उर्वरक आप इस्तेमाल करते हैं, और आज जिसकी बात हम करेंगे ये बहुत ही अच्छा है आपकी मिट्टी के लिए, आपकी मिट्टी को स्वस्थ बनाकर रखता है। यानी कि ढैचा को हरी खाद के रूप में हम कैसे अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे इस वार्ता को सुनकर। जी हाँ, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभु प्रसाद, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, अभी तो बात हम कर रहे थे कि ढैचा को हरी खाद के रूप में हम कैसे अपनाएं, क्या फायदे हैं इसके, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हरी खाद ये क्या होती है। हमारे किसान भाई तो बहुत जानते होंगे, लेकिन हमारे जो श्रोतागण हैं जो किसानी नहीं करते हैं वो भी इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे, तो हरी खाद के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
2: जी हाँ मैडम, हरी खाद एक तरह का सहायक फसल है, और खास करके हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य रूप से भूमि में केवल पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही नहीं की जाती है, बल्कि उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है
0: जी।
2: और इसके प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होती है और भूमि की रक्षा भी होती है। प्रायः इस तरह की फसल को हरी अवस्था में ही हल या ट्रैक्टर के माध्यम से खेत में मिला दिया जाता है, और ये खेत के लिए, मिट्टी के लिए काफी फायदेमंद होता है।
0: अच्छा, मतलब जो चीज जिससे खाद बनाया जाता है वो हरी ही रहती है, वो उसे सुखाई नहीं जाती है।
2: जी हाँ, जी हाँ
0: जी। तो हरी खाद के प्रयोग के फायदे हमें क्या क्या मिलेंगे डॉक्टर साहब?
2: मैडम, हरी खाद के उपयोग से अनेक तरह के फायदे होते हैं। ना सिर्फ यह नेत्रजन की मात्रा को भूमि में उपलब्ध कराता है, बल्कि मिट्टी या खेत की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार करता है
0: जी।
2: इसके माध्यम से वायुमंडल तथा भूमि के प्रदूषण की जो समस्या आज हमारे सामने है वो भी या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। और इसके साथ ही साथ इसके प्रयोग से भूमि में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसको सूक्ष्म तत्व भी बोलते हैं,
0: सूक्ष्म पोषक
2: की भी आपूर्ति होती है, साथ ही साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा तो भुरभुरी हो ही जाती है, और उसमें वायु का संचार भी ठीक से होने लगता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मृदा की अगर उसमें एसिडिटी है, अम्लीयता है या क्षारीयता है, तो उसमें भी सुधार होता है, और सॉइल इरोजन की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हरी खाद के प्रयोग के अनेक फायदे हैं, जिसे निश्चित रूप से अपनाने की जरूरत है
0: जी। सौ बात की बात कहें तो ये मिट्टी के लिए बहुत ही गुणकारी है, ये मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखता है, इसी के लिए हरी खाद बहुत जरूरी है हमारे फसलों के लिए। अगर फसलों की बात यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हरी खाद के लिए हमें किस प्रकार के फसलों का चयन करना चाहिए?
2: देखिए मैडम, हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलों जिनमें वायुमंडल से नेत्रजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है
0: जी।
2: उसका प्रयोग किया जाता है, और इन फसलों में सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार, ग्वार प्रमुख हैं। इनका प्रयोग हरी खाद के लिए किया जाता है, और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो विशेष परिस्थिति में कभी कभी सरसों का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हरी खाद के द्वारा मैक्सिमम बायोमास या कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिलाया जाता है। तो दूसरे फसल जैसे मैंने बताया कि सरसों के फसल को भी हरी खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपवाद है। प्रयास ये होना चाहिए कि जो दलहनी फसल है जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधे के जड़ों में उस ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बैक्टीरिया के माध्यम से जो होती है, तो जिन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की शक्ति है उन्हीं फसलों को हम चयनित करते हैं, और ये खास करके दलहनी फसलों में होता है, इसलिए दलहनी फसल को हरी खाद के रूप में
0: हम चयन कर सकते हैं। और ढैचा की बात हम करें तो अभी आप डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमें ढैचा फसल को हरी खाद के रूप में अपनाना चाहिए, तो इस बात पर डॉक्टर साहब आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये भी समझाइए हमारे किसान भाइयों को।
2: देखिए मैडम, इसके पीछे भी कई राज हैं, कई कारण हैं, और इसके पीछे भी हम लोगों का भी वैज्ञानिक के रूप में बहुत सारे अनुभव हैं
0: जी,
2: जो मैं अपने किसानों के साथ शेयर करना चाहता हूं, और उसके आधार पर मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध और निवेदन भी करना चाहता हूं कि ढैंचा को हरी खाद के रूप में अपनाने के कई एक फायदे हैं, और उसको अगर मैं गिनाना चाहूँगा तो पहला ये फायदा है कि ये जो ढैंचा है इसमें सुखार की समस्या अगर आती है खेत में तो सुखार को ही बर्दाश्त करने की क्षमता है, अगर अतिवृष्टि हो गई तो उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी ये मरता नहीं है, इसके पौधे जिंदा रहते हैं, और फिर जब सब परिस्थिति समान होती है तो फिर उसकी बढ़वार अपने आप बहुत तीव्र गति से होती है
0: जी।
2: समस्या ग्रसित भूमि अगर है जैसे क्षारीय है तो उसमें इसकी खेती या इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करना काफी श्रेयस्कर होता है, और इसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो है इसमें बहुत तीव्र गति से ग्रोथ होता है, और हरी खाद का जो मूल मकसद है, उद्देश्य है, वो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बायोमास मिट्टी को दिया जाए। तो ढैंचा से हरी खाद जो है काफी मात्रा में मिट्टी को मिल जाती है, क्योंकि इसकी बढ़वार क्षमता ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज लीव्स और इसकी जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। इतना ही नहीं, इसके प्रयोग से खरपतवार की भी समस्या कम हो जाती है, क्योंकि खरपतवार की तुलना में इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, तो खरपतवार भी ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाता है खेतों में, तो खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा और किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि अगर ढैंचा को हरी खाद के रूप में आप प्रयोग करते हैं तो एक एकड़ में लगभग 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो नेत्रजन अर्थात लगभग 65 किलो ग्राम डीएपी के आसपास, उससे जो नेत्रजन हमको मिलेगा उतना नेत्रजन प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों के लिए जो नेत्रजन की डिमांड है, मांग है, उसमें हम कमी ला सकते हैं ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करके
0: जी। तो अगर हम इसे बोना चाहते हैं, यानी ढैंचा को बोना चाहते हैं हरी खाद के लिए, तो समय क्या होना चाहिए, कब बो सकते हैं, और उसके लिए बीज और खाद की कितनी आवश्यकता होगी, और क्या सिंचाई की भी आवश्यकता होगी डॉक्टर साहब?
2: देखिए मैडम, ये ढैंचा एक बहुत ही सामान्य फसल है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा प्रक्रिया और ज़्यादा उर्वरक की मात्रा या सिंचाई के प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एक खरीफ फसल है जो लगभग 45 से 60 दिनों में हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसकी बुआई सामान्य रूप से जो करने की अनुशंसा है वो है प्री मानसून डेन, मतलब मानसून के पहले एक बारिश होती है और उस बारिश के माध्यम से जो खेत में नमी मिल जाती है उस नमी का प्रयोग करके ढैंचा की बुआई की जा सकती है, और अगर अपने पास सिंचाई की व्यवस्था है तो सिंचाई के बाद भी खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं। और खास करके जो गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाद अक्सर किसान खेत की जुताई करते हैं, तो यहाँ मैं किसान भाइयों से सुझाव देना चाहूँगा कि ढांचा के लिए आपको अतिरिक्त रूप से खेत की जुताई करने की भी जरूरत नहीं है, सिंचाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर गेहूं की कटाई के उपरांत आप खेत की जुताई करते हैं तो उसी समय आप ढांचा को एक जुताई एक बार 9-10 कल्टीवेटर से नौफारा से जोत करके बीज ढांचा के बीज को आप खेतों में छीट दें, फिर दूसरी बार उसकी जुताई करके पाटा दे दें, खेत में नमी रहे या नहीं रहे। जैसे ही प्री मानसून रेन होगा, जैसे ही खेत में नमी आएगी, अपने आप इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, आपको मात्र 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और ये स्थानीय तौर पर जो ढांचा का बीज उपलब्ध है उसको आप खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में। इसमें किसी भी तरह के पोषक तत्व की भी अलग से डालने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतर ग्रोथ हो तो उसके लिए आप दलहनी फसलों की तरह 40 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से आप ढांचा की बुआई के समय खेत में समान रूप से छींट करके मिला सकते हैं और ढांचा की बुआई कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो मैंने पहले ही कहा आपको कि इसके लिए सिंचाई प्रबंधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खाद हरी खाद जो है बहुत सस्ती हरी खाद है और किसानों का कम से कम खर्च हो ये व्यवस्था को भी शामिल करने की जरूरत पड़ती है आज के समय में, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। तो ढांचा को सिंचाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप प्रकृति के द्वारा जो नमी उपलब्ध होता है उसका प्रयोग करते हुए आप ढांचा की बुआई करें। अगर आपको सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, उस पर लागत खर्च कम हो रही है
0: जी,
2: तो आप 2-3 सिंचाई कर सकते हैं 10-15 दिनों के अंतराल पर। उस कंडीशन में जब सुखार की समस्या आ जाती है, मतलब बारिश बिल्कुल नहीं होती है, तो अन्यथा आपको सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम और समान खर्च में आप ढांचा की बुआई हरी खाद के रूप में कर सकते हैं।
0: तो ये तो बात हो कि इस समय की कब बुआई कर सकते हैं आप हरी खाद के रूप में ढांचा की। और डॉक्टर साहब, अगर हम इसे खेतों में डाल रहे हैं तो किस प्रकार, क्या कुछ यहाँ पर विधि है इसे खेतों में डालने के हरी खाद के रूप में?
2: जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसान भाइयों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि ढांचा को हम कब अपने खेतों में हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि नियमता जो हम लोग सैद्धांतिक रूप से जानते हैं कि हरी खाद को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं
0: जी।
2: एक को बोलते हैं इन सीटू, मतलब जिस खेत में आप उसको व्यवहार करेंगे उसी खेत में उसकी बुआई करना। दूसरा एक्सीटू, मतलब दूसरे खेत में ढांचा लगा हुआ है, वहाँ से आप वहाँ से काट करके उसको टुकड़े में टुकड़े टुकड़े में काट करके अपने खेतों में जिसमें आप हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें दूसरे खेत में लगे हुए ढांचे को काट करके आप ला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी सुझाव देना चाहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जिस खेत में हरी खाद के रूप में ढांचा को प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसी खेत में उसकी बुआई करें, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन या ढोने या काट कर लाने की समस्या और मजदूरी जो उस पर होगा उसमें भी बचत हो जाएगी। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप जिस खेत में ढांचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं उसी खेत में ढांचा की बुआई करें। और ये जब 50-55 दिनों का हो जाए, अर्थात जब उसकी जो बढ़वार की अवस्था है वो कंप्लीट हो जाए और वो पुष्पन की अवस्था में आ जाए, और लगभग उस अवस्था में इसकी हाइट ऊंचाई लगभग 5.5-6 फीट की हो जाती है, और जितना बायोमास डेवलप होना होता है तब तक हो जाता है, तो उसी अवस्था में, मतलब जब पुष्पन प्रारंभ हो जाए, फूल आना प्रारंभ हो जाए, तो ठीक उसी समय आप इसको अपने खेतों में पलट दें। और पलटने के लिए भी कुछ प्रक्रिया करनी होती है, उसके लिए पाटा चलाकर मिट्टी पलटने वाले हल से फसल को मिट्टी में मिला दें, अथवा ट्रैक्टर में कैच व्हील लगाकर दो फारा से फसल को पलटकर खेत में मिला दें। और ख़ास करके धान गेहूं फसल पद्धति में अगर धान की जल्दी रोपाई करनी है तो ढेंचा को हरी खाद के रूप में 50 से 55 दिनों के जगह पर आप 30 से 35 दिनों में भी आवश्यकता अनुसार खेतों में पलट सकते हैं। और पलटने के लिए आप रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करता है कि ये फसल को सीधा छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है और एक बार में ही मिट्टी को मिला देता है। तो इस प्रकार से आप ढेंचा को जब वो 50 से 55 दिनों का हो जाए तब उसको ट्रैक्टर के माध्यम से, हल के माध्यम से या रोटावेटर के माध्यम से आप उसको खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें
0: जी। और अंत में डॉक्टर साहब, आप जाते जाते कुछ सुझाव इससे जुड़े हमारे किसान भाइयों को जरूर दें।
2: जी हाँ, किसान भाइयों से मैं खास करके विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी, हम सभी जानते हैं, किसान भाई भी अब जान गए हैं कि हमारी खेती में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है और उसका प्रयोग काफ़ी असंतुलित मात्रा में हो रहा है, इससे हमारी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमें अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने की जरूरत है और इसके लिए हमें अपने खेतों में गोबर की खाद अथवा उसके सबसे उत्तम विकल्प के रूप में हरी खाद का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मवेशी की संख्या कम हो गई है, गोबर की खाद सब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सारे किसान गोबर की खाद को खरीद के डाल भी नहीं सकते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में हरी खाद का इस्तेमाल करना ही श्रेयस्कर है और उसके लिए ढांचा का प्रयोग ही उत्तम विकल्प हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों से ये निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप अपनी फसल पद्धति में ढांचा हरी खाद को निश्चित रूप से समावेशित कर अपनी खेत की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखें और खेत से स्वस्थ और अच्छा उत्पाद प्राप्त करके आप अपने आप को भी स्वस्थ रखें और पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी सुनने वालों को भी जरूर इससे लाभ मिलेगा। अगर आप ढेंचा को हरी खाद के रूप में अपनाते हैं तो आपकी मिट्टी जरूर स्वस्थ बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी एक अलग विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू राजू पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त
6: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका अपना पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। तो दोस्तों, हर रोज की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं और आज का भी ये खास विषय है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में। सिंचाई क्यों जरूरी है और साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से आज हमारे जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सनोज कुमार, कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। तो सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना ना भूलें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: धन्यवाद।
7: सिंचाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंचाई का इस्तेमाल जो प्रमुखतः है वो किन किन कामों में किया जाता है।
9: किसान भाइयों, सिंचाई जल चक्रीय चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है और सिंचाई का इस्तेमाल, जैसे कि आप लोग समझते हैं कि खेतों में जरूरी पानी को डालने के लिए किया जाता है, वो तो है ही। इसको और भी अच्छे तरीके से कहें तो छोटी अवधि के अगर सूखा पड़ा या ऐसे ही दूसरे समय में जरूरी जल को प्रदान करने में होता है, या मिट्टी में अगर लवण आ गया है, नमक आ गया है, तो उसको घोलने के लिए भी हमको सिंचाई का पानी को डालना पड़ता है। अगर हम कृषि रसायन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे केस में भी हमको सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करना है, पौधों को बढ़त के लिए तो करना ही है। साथ ही साथ पौधों को बढ़त के लिए, जो सिर्फ पौधे नहीं, उनके अगल बगल के जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए भी सिंचाई जल का प्रयोग होता है। और कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं, उनको भी एक्टिवेट करने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है, आप मुख्यतः आप कह सकते हैं कि सिंचाई के कार्य हैं।
7: तो सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं और भी अन्य काम किए जाते हैं सिंचाई से, आपने जाना जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। सर, ड्रिप सिंचाई के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस प्रणाली के बारे में, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
9: ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत के ढलान, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों में अपनाई जा सकती है। ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80-90% होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की जो होती है गुणवत्ता बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। रसायन और उर्वरकों का हम दक्ष इस्तेमाल कर पाते हैं। जल के विचालन एवं अप्रवाह में कमी आती है, खरपतवारों में कमी आती है और साथ ही साथ चूंकि हमारी दक्षता बहुत ज़्यादा है 80-90% है, तो जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में इमीटरों और ड्रिपरों की सहायता से पानी जो है पौधे के जड़ों के पास डाला जाता है। यह मिट्टी के सतह अथवा उसके नीचे ये पानी पहुंच जाता है और इसकी दर है जो कि 2 से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे, अर्थात बहुत ही कम होती है। और जल्दी जल्दी सिंचाई करके मिट्टी में नमी का स्तर हम अनुकूल रख सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल अनुप्रयोग की दक्षता चूंकि बहुत उच्च है। विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। जैसे कि अंत में ये कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई आज की जरूरत है क्योंकि प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपहार के रूप में मिली जल जो है असीमित और मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जल का उचित उपयोग करें। विश्व जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है, सभी लोग जानते हैं।
7: जी बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से ये जल की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन में, उस समय में हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली ही अपनाना चाहिए। इससे बहुत जल्दी सिंचाई होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। डॉक्टर साहब, और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो थोड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।
9: ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय में और मजदूरी में जो खर्च होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। लंबे समय में आप देखेंगे तो जड़ क्षेत्र यानी कि जहाँ पर मिट्टी का पौधे का जड़ है वे पानी सदैव जितना जरूरी है पौधे को उतना बना रहता है। जमीन में हवा या जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि बहुत ही तेजी से और एक समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पौधा बहुत आगे बढ़ गया, ऊंचा चला गया और एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी पौधे आपको देख के ही लग जाएगा एक समान है और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं और इसका सबसे बड़ा रूल है कि पानी को बहुत ही कम गति से दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
7: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की, और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
9: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20-50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा, पानी। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की वो 80-90% है और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30-60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरिगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं। अच्छा। तो आज के डेट में ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है,
7: बिल्कुल,
9: और कितना जरूरी है। फिर जमीन आपका अगर उबड़ खाबड़ जमीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर जमीन है, शुष्क जमीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा है आपकी जमीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय जमीन हो, कैसा भी जमीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर है रासायनिक खाद। हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कि पौधे तेजी से बढ़े, लेकिन ड्रिप इरिगेशन में हम पानी के साथ ही रासायनिक खाद भी डाल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिंचाई के साथ साथ हम फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर भी एक ही साथ दोनों डाल रहे हैं, तो हमको ज्यादा समय का भी बचत होता है और साथ ही साथ हमारे पौधे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है।
10: बिल्कुल।
9: अगला है खरपतवार। अब किसान बंधु सभी जानते हैं कि जैसे ही हम सरफेस इरिगेशन या सतह सिंचाई करते हैं तो हमारे खेत में हर एक जगह पानी पहुंचता है। अब जहां जहां पानी पहुंचेगा खरपतवार भी उगेगा ही उगेगा, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं किया जा सकता। लेकिन ड्रिप सिंचाई में क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में, तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट और रोग का प्रभाव है, तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सब हैं जो मुख्य लाभ हैं।
10: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
9: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं जैसे कि नंबर वन है हेडर असेंबली, फिर फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी जरूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है, वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है, यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़ते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है, ठीक है। सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमिटर्स होते हैं, और इमिटर्स में बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, इनलाइन है, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली। हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है, तो ये सभी चीज जो है वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूंकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो खराब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जिससे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम साफ पानी को यूज करें। साफ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही हम अपनी मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर है हमारा। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोले तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर न निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं है कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है, सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन जो कि फर्टिगेशन बेसिकली कहा जाता है, तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है, तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास, और इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं, और डालेंगे कहाँ, हमारे पास एक टैंक होना चाहिए, जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को और पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं, यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में, मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लैटरल में, और लैटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझो किसान, ठीक है, तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन, तो मेन लाइन है यह पंप से सबमेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सबमेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुंचाने के लिए उपयोगी है। अब सबमेन क्या है, तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है, लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सबमेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा, और सबमेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है, और वो जाएगा लैटरल के पास। फाइनली लैटरल क्या होता है, लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, इनको पॉलीट्यूब भी कहते हैं। सबमेन का पानी पॉलीट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुंचा सकते हैं पौधों के पास, हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉलीट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे, और लैटरल जो होते हैं ना वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीथिलीन से बने होते हैं। अब जब लैटरल आ गया तो लैटरल के ऊपर हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो इनलाइन ड्रिपर्स का प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसा ही कुछ भी लगा लिया, उसको आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल्व्स का यूज करते हैं, तो पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है, और ये

0: से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा। ना आप इरिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमिटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत जरूरी है, तो कैसे कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हरेक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी के गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा। तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है, या कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें। पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें, ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर, कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ है तो उसको आपको रिपेयर करना है। फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका जमीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं, कहीं पे हो सकता है पानी गया हो, कहीं पे नहीं, यानी जहाँ पे नहीं गया है वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो खराब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स है वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना उसको खोल कर पानी को 1-2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोल रहे हैं, जितनी भी गंदगियां हो सारी के सारे निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन, जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है। जब दोनों काम एक साथ होता है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुंचाना यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है, यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं, ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर, वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइजर अगर हम पूरे खेत

0: में फेंक दें तो पौधे को तो जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है, इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य में पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में लगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की, साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक के पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और जमीन में नीचे नहीं जाता है, जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया। कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है, जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है। और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं, जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी तरीके से जल के उपयोग की दक्षता है, तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में, जबकि सतही सिंचाई में सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है। ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है। बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की जरूरत पड़ सकती है, अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य जरूरत है, जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूंकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता है, इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, जिससे कि हम उसको यूजेबल बना के, मतलब उपयोगी बना करके हम खेतों में भेज सकते हैं। लेकिन सतही सिंचाई जब हम करेंगे और खारे जल के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा खेत ही लवण, मतलब साल्टी, ये सब हो गया और खेत बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कि बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की समस्या। देखिए, पौधों के आसपास वायुमंडल में नमी और सांद्रता जो होती है ना, वो कम होती है ड्रिप इरिगेशन में, इसलिए पौधों में बीमारियों और कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम रहती है, जबकि सतही सिंचाई में बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला फायदा यह है कि अगर मेरे पास कोई सी भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हम सिंचाई वहाँ पर कर सकते हैं, पौधा मतलब वहाँ पर उगा सकते हैं, लेकिन सतही विधि में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ पर पानी जाएगा नहीं, जो बहुत ज़्यादा नीचे होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पौधा हमारा ना नीचे जगह पर उगेगा ना ऊपर जगह। लेकिन ड्रिप में ऐसा नहीं है, चूँकि पाइपों से पानी जाते हैं और पौधे के पास ही जाके गिरना है उनको, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का इरिगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है, वो बहुत ही महंगे होते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दें, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने, ठीक है। हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी जो कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए, और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बाकी दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी, जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्न, वो नहीं रहता है, और पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से और अच्छे से होती है, ठीक है। और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरिगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में बरखा बढ़ाने की वजह से, ठीक है। तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल में हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज्यादा होता है, और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी जरूरत होती है, इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है।
1: जी, तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनना ना भूलें FM ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना। पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है, डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं, अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर ले और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर ले, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोआन देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़ कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी। उसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है। लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया।
1: हमारे देश पर हमला कर दिया?
0: हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए, छक्के।
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कल कल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।
4: चल बा!

0: अंतिम युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्को घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो ऊंचाई पर
3: साथियों, आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे और धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल,
3: अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई, यही ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें?
3: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहे पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो या ना हो।
2: आजा मुकेश, आजा।
1: तो साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
0: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मन पर। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
1: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
4: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
5: बिल्कुल ठीक।
4: आंख में आंख डाल के फायर करो। फायर!
0: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
3: कार्बाइन खाली हो गई
6: है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
3: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
0: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
1: सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।

0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
1: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।
0: राइफलमैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
2: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
3: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
2: आपको वहां ले चलते हैं।
3: वहां चलते
2: हैं। जरा पट्टी करवा लीजिए।
3: हाँ, कम से कम
2: उनका बहना रुक जाएगा।
3: आओ भाई जी,
4: नहीं मान से, नहीं मान से।
3: आओ तो सही।
4: चिंता मत करो, यही ठीक हो। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
2: लेकिन जी, लेकिन
4: मैं मशीन गन साधे यही डटा हूँ।
2: अरे
4: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
3: आप सुनो,
4: चुप हुआ ना,
3: आप
4: कोई बचने ना पाए, जाओ
3: आप
4: चेक करो।
3: लेकिन
4: करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
3: अरे
4: जाओ
3: आप।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफलमैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्को घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
2: संजय भाई, इधर क्या जगह था? संजय भाई तो बोले,
1: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
5: राइफलमैन संजय कुमार, अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, कीमती आनंद और सुनील लोहिया, ध्वनियांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
6: खांसी, खांसी, खांसी, खांसी। खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
10: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
9: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त?
9: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
9: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं और बीजों के बारे में हम जानकारी पिछले भाग में लिए थे। धान के बीजों का चयन आप किस आधार पर करें, चाहे अवधि हो, लंबी अवधि, मध्यम अवधि या कम अवधि, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार डॉक्टर सतेंद्र तोमर जी से, जो कि प्लांट ब्रीडिंग से हैं ये और एक कहते हैं कि एक ब्रीडर हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछले बार बात किया था कि 110 दिन की अवधि में या फिर एक आइडियल कंडीशन में किस तरह के बीजों का वो चयन करें, किस्मों का चयन करें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम कॉमर्शियल वैल्यू की बात करें, क्योंकि किसान जो है वो उनके साथ चैलेंज होता है कि उनके धान में यील्ड अच्छा हो और परेशानी कम हो, तो ऐसे में मार्केट पे वो सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि वो मार्केट से ही उनको बीजों को उपलब्धता करनी है। जो उनको किसी ब्रांड ने बता दिया कि इसकी इतनी ज़्यादा यील्ड है, वो उसी को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में हम ये भी चीज़ आप बाद में आप ज़रूर उसमें इंक्लूड करें कि अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप कैसे लें। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्रोताओं को बता दें, चूँकि ये कार्यक्रम हमें FM ग्रीन से भी हम प्रसारित कर रहे हैं, तो जो FM ग्रीन सुनना चाह रहे हैं किसान भाई और उनके पास ये नहीं है उपलब्ध, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन। उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो रक्षा, बीजों की उपलब्धता पे आ जाते हैं कि ये बीज कैसे उपलब्ध होगा। आपने कई सारे बीजों को बारे में बताया और आगे भी आप आज बताएंगे, तो ये बीज उन तक कैसे पहुंच पाएगा किसान भाइयों तक?
9: किसान भाइयों, जहाँ तक बीज की उपलब्धता का सवाल है, तो इसमें जितनी भी किस्में बिहार के लिए संस्तुत हैं, उसमें से ज़्यादातर किस्मों का बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया जाता है और यहाँ बीज विक्रय केंद्र पे वो उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र हैं, उन पे भी ये बीज उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी जो किस्में हैं संकर किस्मों को छोड़ के किसान भाई अपना खुद का बीज भी बना सकते हैं। तो किसान और खुद का बीज भी वो अगर अच्छी तरह से भंडारण करते हैं, उचित नमी उसमें करके रखते हैं, तो अगले साल के लिए वो बीज अपना खुद का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर बीज किसान भाइयों को लेना है, ज़रूरत है, तो उसके लिए 25 मई के बाद से बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जो मेन सेंटर है, हेडक्वार्टर है सबौर में, वहाँ उपलब्ध रहेगा। और जितने भी केवी के हैं, हर जिले में एक केवी के है, जितने केवी के हैं सारे केवी के पर भी ये बीज उपलब्ध रहेंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो किसी भी केंद्र पे संपर्क करके उस बीज की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं।
8: किसान भाइयों, ये बीज उपलब्ध हो जाएगा 25 मई से, और हमेशा ये 25 मई के आसपास ये बीज सालाना उपलब्ध शुरू हो जाता है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो विक्रय पटल है, बीज विक्रय केंद्र, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही सभी जिले, यानी कि जो हमारे जो 20 जिले हैं बिहार में, उन सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों से ये बीज आप खरीद सकते हैं। अधिकांश बीज उपलब्ध हैं। और हम कुछ और बीजों के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, जो कि सबसे पॉपुलर है, जो अधिक संख्या किसान जो है उसको लगाते हैं, जिसमें श्वेता है, जिसमें मंसूरी है, कुछ सुगंधित धान है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि श्वेता के बारे में, कि बिहार में लगभग आधे से ज़्यादा किसान एक समय में श्वेता लगा रहे थे, और एक बार श्वेता में थोड़ी सी समस्या देखी गई एक वर्ष, तो उसके बाद वो वैकल्पिक तौर पर दूसरे किस्मों का भी चयन किए, जिसमें कि उन्होंने सबौर श्री को लिया था हाथ में हाथ। तो ऐसे में वो बताएं किसान भाइयों को कि जो श्वेता है उसके पैरेलल और कौन कौन से वैरायटीज़ हैं, और ये श्वेता में आखिर ये समस्या आई थी, तो क्या ये बार बार आने की संभावना है?
9: इसमें देखिए ऐसा है, जो जो श्वेता, राजेंद्र श्वेता किस्म है उसकी आपने बात की, तो ये मध्यम अवधि की किस्म है, 135 से 140 दिन में ये पककर तैयार होती है, और इसकी उपज 40 से 45 कुंटल आराम से मिल जाती है। दाना जैसे कि मैंने बताया, सबसे जो सबसे अपेक्षित या सबसे जो पॉपुलर चावल है वो मध्यम पतला चावल होता है, और मध्यम पतला चावल ही राजेंद्र श्वेता का है। इसके अलावा जैसे किसान भाई सोनम एक वैरायटी लगाते हैं, तो सोनम के बिल्कुल सोनम के जैसा ही चावल राजेंद्र श्वेता का है। तो इस ये तो वजह रही इसके पॉपुलर होने की, क्योंकि इसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलता है, दाम ज़्यादा मिलता है, और किसानों के खेत पर से ही ये बिक जाती है, तो इसलिए ये किसानों में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। जहाँ तक इसकी समस्या की बात है, तो एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बीमारी होती है, वो इसमें एक वर्ष देखी गई थी, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर बार उसमें ये चीज़ देखा नहीं गया है, पहली बात। और दूसरी बात, उसका क्योर कर सकते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है, किसान भाई दवाई उपलब्ध है उसके लिए। तो फूल आने के से 10-20 दिन पहले किसान भाई अगर एक सुरक्षात्मक एक स्प्रे दवाई का कर देंगे, उसमें फफूंदी जनक और जीवाणु नाशक, फफूंदी नाशक और जीवाणु नाशक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसको किसान भाई इस्तेमाल करते हैं, तो ये बीमारी को उसमें आने से रोका जा सकता है, और किसान भाई इसको आराम से इस्तेमाल करें, इसमें कोई और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है
8: जी। तो इसके बाद हम श्वेता जो है सबसे पॉपुलर वैरायटी है बिहार के कंडीशन में, सबौर श्री के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें कि सबौर श्री अगर वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वक्त है सही, और ये इसकी क्या खासियत है?
9: सबौर श्री की जहाँ तक बात है, सबौर श्री का मैं बताऊँ, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई किस्म है, मध्यम अवधि की किस्म है, और इसकी बिजाई भी मध्यम अवधि के हिसाब से ही हम लोग 10 जून से लगा के 25 जून के बीच में इसकी बिजाई करते हैं और इसका दाना जो है वो मध्यम पतला ही होता है। इसकी उपज राजेंद्र श्वेता से भी ज़्यादा है। उपज के मामले में ये 55 कुंटल तक आसानी से ये प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है, तो इसीलिए ये अभी पॉपुलर हो रही है, किसानों के बीच में ज़्यादा फैल रही है। तो किसान भाई इसको आराम से लगा सकते हैं सबोर श्री को, और निश्चित रूप से अधिक उपज मिलेगी
8: जी। तो ये सबोर श्री भी जो है अधिक उपज देने वाली है। तो अगले जो हम इसमें बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, की बीज की जो दर है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ जो भी मानक किसान भाई को आप सजेस्ट करें कि उसमें उनको कितना रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीज दर है ये बहुत ज़्यादा किसान भाइयों में ये इच्छा रहती है कि हम कितना बीज हम डालें। अगर हमें 2 एकड़ में खेती करनी है, बीघा भी बोलते हैं, तो उसको हम कितने बीज की ज़रूरत होती है, और उसमें जो बीज डालने जाएँ तो उसके पहले बीजोपचार ज़रूर करें, इसके बारे में भी ज़रूर बताएँ।
9: बीज दर की जहाँ तक बात है, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि बीज दर का जो है ये आप किस विधि से धान को लगा रहे हैं ये उस पर ज़्यादा निर्भर करता है। तो जैसे जो परंपरागत हमारी विधि है धान लगाने की, रोपाई विधि, उसमें हम कादो करते हैं, उसके बाद पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर खेत में कादो करते हैं, उसके बाद वो नर्सरी को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं 21 से 25 दिन के बीच की जो जब नर्सरी हो जाती है। तो इस विधि से अगर हम जाएंगे तो जब हम अगेती जो अगात किस्में हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बीज हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो लगभग 20 से 25 किलो के बीच में हम लोग बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पे हम इस अगात किस्मों के लिए हम लोग किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी कम रखनी है, 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएं, और पौधा एक से दो से तीन पौधा एक ही एक हिल में दो से तीन पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद जो मध्यम अवधि की किस्में हैं उनका भी लगभग 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की नर्सरी का तैयार करने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो सीधी बुवाई है, अगर किसान भाई सीधी बुवाई कर रहे हैं जो कि आजकल प्रचलन में है, उसमें लेबर की बचत होती है, इसके अलावा पानी की भी बचत होती है, तो उसमें अगर हम जाएंगे तो 25 से 30 किलो के बीच में बीज हमारा उसमें लगता है। और इसके अलावा अगर श्री विधि से जाते हैं, श्री विधि में 10-12 दिन का की जो नर्सरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो श्री विधि में जो दूरी है वो 25x25 सेंटीमीटर की किसान भाई रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें
8: जी। तो ये बीज दर की बात हुई कि आप बीजों का जो चयन करते हैं तो उसमें कितना बीज आप इसमें डालें। चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो सुगंधित प्रजाति है, जो किसान भाई शौकीन हैं, जो थोड़ा शौकीय तौर पे अपने लिए अच्छे वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी किस्में हैं जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से भी निकली हैं, जिसमें कि सबौर सुरभित है। तो ऐसे में आप उनको बताना चाहेंगे जो कतरनी लगाने की इच्छुक हैं, एक किसान भाई और भी ये उनके रहती है इच्छा कि जो कतरनी है वो भागलपुर के बाहर के क्षेत्र में भी ये पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें उनको क्या चुनौतियाँ आती हैं, तो उनको सुगंधित धान के बारे में ज़रूर बताएं कि सुगंधित धान का अगर वो चयन कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी उनके लिए उपयुक्त हो सकती है।
9: सुगंधित धान की जहाँ तक बात है तो सुगंधित प्रजातियों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है सबोर सुरभित। सबोर सुरभित एक अत्यंत पतला महीन इसका चावल होता है और पुलाव के लिए बहुत ही अच्छा ये सुगंधित चावल है, इसको किसान भाई यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्यम अवधि की किस्म 120-125 दिन में ये पक जाती है। इसके अलावा जैसे कतरनी की जो बात की, तो बिहार में मैं बता दूं कि जो हमारे परंपरागत धान है उसमें एक कतरनी उसमें से एक है। इसके अलावा और भी परंपरागत धान है, जैसे हम अगर उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो सोनाचूर एक प्रजाति है, वो वहाँ पे चलती है। इसी तरह से चंपारण बासमती है। तो भागलपुर रीजन की अगर हम बात करें तो कतरनी यहाँ का एक परंपरागत धान है और ये सुगंधित है। सुगंधित होने के साथ साथ में ये

0: रासायनिक खाद इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी बढ़वार ज़्यादा होती है और इसके गिरने का खतरा रहता है।
1: तो किसान भाइयों, ये थी मुख्य जानकारी जो कि धान का बिजाई का समय चूँकि आ गया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सबौर का ये प्रयास रहता है कि आपको हर हाल में जानकारी आप तक पहुंचे। तो ऐसे में जब पैंडेमिक का दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर है, तो आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, आपको जानकारी आपके घर बैठे मिले और आप अपने नज़दीकी बाज़ार या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विभिन्न केंद्रों से आप बीज की खरीदारी करें, क्योंकि बीज विक्रय जो है वो सरकार द्वारा खोली रखी गई है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि धान के बिजाई से लेकर धान की पूरी खरीफ सीजन शुरू हो रही है, तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो उसके जो नियम जो बनाए गए हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि कोविड के अनुरूप आप व्यवहार उसमें ज़रूर अपनाएं, क्योंकि गांव में भी कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, तो ऐसे में आप इन बातों का ज़रूर पालन करें। जो भी मजदूर भाई हैं, जो भी किसान भाई हैं, उनमें एक दूसरे से दूरी, साथ ही जो कृषि यंत्र है या फिर किसी तरह का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें सैनिटाइज़र का भी साथ में आप रखें अपने पास में, नए हैं तो आप पानी भी आसपास रखें और उसके ज़रिए उन बातों का पालन करके ही खेती में अपने आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले भाग में कुछ और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। नमस्कार।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से। और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी।

0: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। और असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में व्यय यानी कि खर्च अधिक आता है
1: जी।
0: इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को, तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए
1: जी। तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों जरूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
0: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें। यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भर के भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए, बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
1: तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है?
0: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, चार से छः तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है। जैसे चार चक्का का, चार ड्रम का अगर होगा तो ये आठ लाइन में बुआई करेगा, और छः ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है बारह, छः ड्रम का में बारह लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए, चार ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता, एक घंटे में एक एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीडर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
0: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि एक लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो दो यानी कि आधा किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है, जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग छः दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, और मीथेन उत्सर्जन, जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम डीएपी बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम एमओपी और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2 से 3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
1: जी।
0: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़ कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको जरूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सभी के बीच सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
2: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़ कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट और पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं और अब बात करें अपने बिहार की तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद मैम और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब लोग किसान नाम सुनते हैं ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान अगर बिहार की बात करें तो परंपरागत खेती पर आश्रित है। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूं मुख्यतः जो खरीफ की बात करें तो ज्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित है। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु तो आप धान गेहूं अगर उतने एरिया में जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन भाइयों आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है। अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नजदीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र, आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी जमीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। तो उतनी भी जमीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज्यादा जमीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पे हम लोगों ने इस पे अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पे काम करके जो कैसे कम जमीन से ज्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया कम जमीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार की जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
0: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
2: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है। फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं, और मेन जो ज्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम वहां पर पानी उपलब्ध है, तो कुछ में सब्जी लगा ली। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं, आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की जरूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, वही धान गेहूं पास रहे थे, तो कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नजदीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नजदीक है या किसी शहर के आसपास नजदीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गांव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यवसायिक खेती।
0: तो सर, अभी आपने बताया व्यवसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यवसायिक खेती क्या है।
2: हाँ, व्यवसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज्यादा ज्यादा बढ़ा पाए, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते हैं कोई भी काम उसको बोलते हैं व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाए जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती।
0: और सर, अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
2: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, राज्य सरकारों की, केंद्र सरकारों सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाई गई जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों की मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालन के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है। तो इसलिए सरकारी योजनाएं, उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज्यादा इन सब चीजों में फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है। फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है, तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यवसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उसे आमदनी कैसे बनाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे, आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी का हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, अब जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है, तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
0: जी, यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
2: जी जी,
0: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
2: जी देखिए, हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
0: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
2: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे, चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उसे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियां हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत, अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है, तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए आप ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं या, तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज्यादा लगता है, तो ये चुनौतियां। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुंच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
0: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
2: जी, ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती, क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज्यादा उसका बुरा असर हो रहा है, अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफी ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलकर एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलकर एक जगह आप मार्केट में बेचेंगे तो ज्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं।
0: जी तो सर, जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
2: जी देखिए, बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए, पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें, हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती, वो मूलतः लाभ आधारित है। हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है, पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे, लेकिन जो व्यावसायिक खेती, वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो, तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज्यादा है। जी
0: तो सर, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
2: देखिए, बिहार जैसे राज्य, हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे राजस्थान देख लीजिए या और भी पश्चिम भारत, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, वहाँ इतनी पानी की समस्या है, सिंचाई की समस्या, फिर भी वो हमसे ज्यादा आमदनी कमा रहे हैं, ज्यादा खेती को और उन्नत बना लिए हैं। तो ये निष्कर्ष ये है, हमारे यहाँ पानी की सालों भर सुविधा है और जमीन की जो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो बिहार में कृषि तेजी से बदल रहा है और हमारे लिए ये जो जलवायु, अनुकूल जलवायु के कारण से तेजी से बदल रहा है। दूसरा, व्यावसायिक खेती से किसानों की आय बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया, वही एक बीघा में धान लगाए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज्यादा, हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां, जैसे हमने बात किया, तो उस चुनौतियां, सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियों से आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो आखिरी जो है निष्कर्ष, ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
0: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं, वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। उन्नत कृषि,
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है, वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना।
5: पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
7: खुद भी बचे देश भी बचाए।
8: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
9: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
10: तीनू राजू पिन्नी और
9: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
10: 11 दोस्त?
9: टीकू वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
10: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
9: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
10: लेकिन ऐसा क्यों?
9: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
10: टीकी तो इसका हल क्या है?
9: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले, जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी

0: कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनकी बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफी बढ़ जाती है।
1: तो मैम, एफपीओ में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
0: जी, इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है, जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणें होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार एफपीओ की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं, किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपए किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपए किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएँ तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
0: जी, यही तो पूरा खेल है। फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार करने की कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाजार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सके। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
1: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
0: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन हैं उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो हैं उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने जिले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड, उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी एफपीओ बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
1: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है, और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें एफपीओ बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं?
0: जी ज़रूर। तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है, ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहली प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो एफपीओ होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल एफपीओ के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर, जिसे DSC कहते हैं, और DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपनी जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक

0: नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र आरओसी के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो, वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें सीईओ, व्यावसायिक कार्यों के लिए एक सीईओ और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
1: मैम, अगर एफपीओ बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो, तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
0: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि सीईओ का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
1: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
0: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10-15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स, जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
1: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें?
0: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
1: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
0: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
1: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: उन्नत कृषि
3: खांसी, एक खांसी, दो खांसी, तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो, खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
6: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके खास कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो उसमें सब्जियों की खेती आय बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया होता है, लेकिन मौसम की मार, खरपतवार, रोग और कीट अक्सर मुनाफे में बड़ी बाधा बन जाते हैं। ऐसे में मल्चिंग विधि किसानों के लिए एक आधुनिक और कारगर तकनीक बनकर उभरी है। मल्चिंग क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाए, किस तरीके के मल्चिंग का चुनाव किया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर शिरीन अख्तर से। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम, आप उद्यान सब्जी विज्ञान विभाग से, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है।
8: धन्यवाद
0: मैम। आपसे सबसे पहला सवाल कि मल्चिंग क्या है?
8: धन्यवाद उमा। आज की जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सब्जियों की खेती जो है किसानों की आय बढ़ाने की बहुत अच्छा जरिया है, और इसमें लेकिन बहुत सारा खरपतवार लगते हैं, रोग लगते हैं, जो कि अक्सर मुनाफे को बहुत हद तक घटा देते हैं। तो मल्चिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग वो तकनीक है जिसमें खेत में मिट्टी की सतह को किसी आवरण से ढक दिया जाता है। ये आवरण जैविक भी हो सकता है, जैसे कि सूखी घास हो सकता है, पुआल हो सकता है, फसल की अवशेष हो सकता है, या अजैविक भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक मल्च लगाते हैं, काली शीट या सिल्वर शीट, ये सब लगाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी में नमी बनाए रखना, खरपतवार को रोकना और फसल को अनुकूल वातावरण देना। तो सब्जी की खेती में आय बढ़ाना हर किसान का लक्ष्य होता है, लेकिन मौसम, रोग, कीट और खरपतवार जो है अक्सर मुनाफे को बाधा डालते हैं, और मल्चिंग विधि एक आधुनिक खेती की कारगर तकनीक बनकर उभरी हुई है, और ये जो है खरपतवार कीटों से सब्जी फसल को बचाती है, और फसल की पैदावार भी जो है 20-40% तक बढ़ा सकती है, और टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज या खरबूजा जैसी सब्जियों में मल्चिंग अपनाकर किसान कम लागत और कम सिंचाई में अधिक मुनाफा बहुत कमा सकते हैं।
0: तो मैम जैसे कि आप बता रहे थे पैदावार बढ़ाई जा सकती है और मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या फायदा होता है मल्चिंग का?
8: मल्च के जो फायदे हैं वो सबसे बढ़िया जो फायदा है वो मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो जैसे गर्मी होती है तो उस समय पे जो है तापमात्रा भी ज़्यादा होता है और पानी की भी कमी होती है, तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग फसल जो है सूखने लगता है, मिट्टी सूख जाती है, तो उस समय पे सिंचाई भी ज़्यादा नहीं मिलता है, पानी का थोड़ा सा कमी भी हो जाता है। तो उस समय पे अगर हम लोग मल्च देके रखते हैं तो मिट्टी की नमी सतह बनी रहती है और साथ साथ में जो है सब्जी फसल में खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखता है और वो फसल को बहुत सारा हानि भी पहुंचाती है। खरपतवार की वजह से रोग भी काफ़ी होता रहता है, तो खरपतवार को हम लोग अगर घटाना चाहते हैं तो उसमें जो काफ़ी सारा लागत लग जाता है, बहुत सारा लेबर इंटेंसिव हो जाता है सब्जी की खेती, उसमें रेगुलरली लेबर निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे जो है हमारा जो है फसल उगाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग अगर मल्चिंग की उपयोग करते हैं तो खरपतवार की वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर हम लोग काले रंग की पॉलिथीन मल्च लगाते हैं खास करके, तो उसमें जो है खरपतवार काफ़ी घटते हैं। और तीसरा चीज़ जो है मिट्टी का जो तापमान है वो भी मल्च से नियंत्रित रहता है, खास करके अगर हम लोग इसमें पुआल वगैरह की मल्चिंग करते हैं गर्मियों के समय पे, तो उसमें जो है मिट्टी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है कम रहता है, तापमान कम रहता है। यहीं पर अगर हम लोग ठंडे में पॉलीथीन मल्च लगाते हैं, प्लास्टिक के मल्चेस लगाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। और साथ साथ में जो है जैविक मल्च अगर हम लोग लगाते हैं, घास हो सकता है, पुआल हो सकता है या कंपोस्ट भी हो सकता है, तो वो आखिर में लास्ट में जो है मिट्टी में मिलके मिट्टी का उपजाऊ जो क्षमता है उसका भी सुधार करता है। तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब्जियों में ज़्यादातर मल्च हम लोग लगाते हैं और उससे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं और तापमान वगैरह जो है इसका जो है संतुलित रहता है। इसके अलावा जो है नमी क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो सिंचाई का भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो पानी जो है उसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसमें कम हो जाती है। और साथ साथ में जो है मिट्टी से जो पत्तियों पे कीचड़ उछल के आते हैं तो वो समस्या भी कम रहती है, और मिट्टी कहीं ना कहीं पौधे में उछल के आती है तभी जो है पौधे में फफूंद और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उसका खतरा आ जाता है। तो मल्चिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये खतरा भी टलता है, तो रोग की प्रकोप भी कम होती है, साथ साथ में जो है फल की क्वालिटी भी अच्छा होता है क्योंकि फल डायरेक्ट ज़मीन के या मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है तो बहुत सारा फफूंद उसमें लग सकता है, उसका क्वालिटी भी खराब हो सकता है, उसमें सड़न आ सकती है, लेकिन मिट्टी से डायरेक्ट अगर वो संपर्क में नहीं रहता है, मल्च के ऊपर रहता है, तो वो जो फल रहता है कद्दू वगैरह खास करके हम लोग देखते हैं या टमाटर भी देखते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। साथ साथ में जो है कुछ प्लास्टिक मल्च जैसे सिल्वर कलर के मल्च होते हैं, तो उन मल्च से जो है अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कीड़ा भी कम होता है, सफ़ेद मक्खी वगैरह जो है या फिर माहू होता है इनका प्रकोप भी घटता है।
0: मैम अभी आप अलग अलग प्रकार के मल्च के बारे में बता रहे थे, तो कितने प्रकार के मल्च होते हैं?
8: मुख्यतः मल्च जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक है जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में पोषक तत्व देते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियां हो गया, भूसा हो गया या कंपोस्ट हो गया, और दूसरा है अजैविक या इनऑर्गेनिक जो टिकाऊ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मल्च हुआ या फिर ग्रेवल या पत्थर जो होते हैं इनका भी मल्चिंग हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक या जैविक मल्च में जो है पत्तियां घास आती है जो कि आसानी से उपलब्ध है और कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाते हैं मिट्टी का, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या कोई पेड़ की छाल हो सकते हैं जो ज़्यादातर बड़े पेड़ों और झाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। भूसा भी हो सकते हैं, हम लोग खास करके सब्जियों के बगीचे में जो है भूसा को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है और मिट्टी को नमी वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। इस इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो कंपोस्ट से जो है मिट्टी का उर्वरता जो है वो अच्छे से सुधार हो सकता है। अजैविक मल्च में जो है प्लास्टिक शीट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और सब्जियों में खास करके टमाटर और मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो प्लास्टिक मल्च लगाने से जो है ठंडे में जो फसल होता है उसमें मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ा देता है, साथ साथ में नमी को भी बरकरार रखता है, तो उसमें सिंचाई का ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथ साथ में टमाटर और मिर्च में हम लोग देखते हैं कुकड़ी का प्रकोप होता है सफ़ेद मक्खी से, थ्रिप्स से, एफिड से, तो जो प्लास्टिक या सिल्वर मल्चिंग अगर हम लोग इसमें लगाते हैं, खास करके मिर्च में हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सिल्वर मल्चिंग का, तो वो जो है इसको ये जो सकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया या एफिड हो गया, माहू हो गया, इनको ये दूर रखते हैं और जो कुकड़ी जाती है रोग होते हैं उनको वो दूर रखते हैं। इसके अलावा ग्रेवल या स्टोन जो है ये भी देखते हैं, ये सजावटी जो बगीचे होते हैं उनके लिए उपयोग ज़्यादा होता है। और एक मल्च है जो लैंडस्केप फेब्रिक, तो ये फैब्रिक क्या है, ये जैसे हम लोग शेड नेट वगैरह रख देखते हैं वैसे टाइप का ही होता है, तो इसमें जो है पानी गुजरने देता है ये मल्च, लेकिन उसमें खरपतवार नहीं उग सकता।
0: जी मैम, तो इतने प्रकार के मल्च में एक सही मल्च का कैसे चुनाव करें?
8: तो हम लोग जो है सही मल्च के लिए सब्जी वाले बगीचे में अगर हम चयन करते हैं मल्च का, तो उसमें हम लोग जैविक मल्च उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो है प्लास्टिक मल्च में जो है सिल्वर मल्च का उपयोग बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमको मूल हमारा लक्ष्य है खरपतवार को नियंत्रण करना, तो काले रंग की मल्च, पॉलीथीन मल्च जो है वो बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण भी करती है। और अगर हमारा सजावटी कोई क्यारिया हो तो उसमें हम लोग लकड़ी के टुकड़े या फिर जो है पत्थर या बजरी जो है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए अगर हम देखते हैं तो टिकाऊ होता है प्लास्टिक मल्च, तो ये अधिकतर उपयोग होता है सब्जी की खेती में।
0: तो मैम मल्चिंग कैसे अपना सकते हैं?
8: खेत को हम लोग पहले अच्छे तरह से बेड बना लेंगे, उसको पहले निलाई गुड़ाई करेंगे, उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर जो है निलाई गुड़ाई करके अच्छे से उसका बेड तैयार कर लेंगे, फिर जो है मल्च हम जब करते हैं तो उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाना ज़रूरी होता है, खास करके प्लास्टिक मल्च के लिए। तो प्लास्टिक मल्च शीट जो है ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में प्लास्टिक मल्च के शीट उसमें लगाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पौधा लगेगा उसका जो विधि अनुसार जो दूरी होता है जिसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस प्लास्टिक मल्च के ऊपर छेद बना लेंगे। छेद बनाने के बाद में जो है हम लोग बाद में पौधे को रोपण करेंगे, पहले मल्च डल जाएगा उसके बाद में जो है पौधा रोपण होगा जो छेद बनाने के बाद में। और अगर हम लोग जैविक मल्च लगाते हैं तो पहले हम लोग जो है पौधा लगा सकते हैं, उसके बाद में पौधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में हम लोग जो पुआल हो या फिर सूखे घास हो उसको मिट्टी के ऊपर बिछा के उसको उपयोग कर सकते हैं।
0: और मैम इससे उत्पादन कैसे बढ़ता है और मुनाफा कैसे इससे ज़्यादा होता है?
8: मल्चिंग अगर हम अपनाते हैं तो सब्जी की पैदावार में हम लोग देखते हैं कि 20-40% की बढ़त हो सकती है, तो ये काफ़ी हद तक बढ़त है। और साथ साथ में जो है फसल जल्दी तैयार हो जाता है, तो जल्दी तैयार होने के लिए अर्ली फसल होता है तो किसान को जो है मुनाफा ज़्यादा मिलता है, बाज़ार में जो भाव मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। साथ साथ में क्योंकि मिट्टी से डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं रहता है, तो उसका जो फल होता है, फसल होता है, उसका गुणवत्ता भी ज़्यादा होता है, तो गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होने के कारण से जो है बाज़ार में कीमत भी अच्छा मिलता है। और शुरुआती लागत हो सकता है थोड़ा सा लगे, क्योंकि पॉलीथीन मल्च या प्लास्टिक मल्च अगर खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा लागत लगता है, लेकिन अल्टीमेटली सिंचाई भी कम पड़ता है, तो और जैसे आपको निराई गुड़ाई करने का लेबर भी कम पड़ता है, रोग प्रकोप जो है वो भी कम होता है, इसलिए उसका दवाई भी कम पड़ता है, तो अल्टीमेटली जो है आपका जो खर्चा होता है खेती का वो कम ही होता है, और क्योंकि फसल का गुणवत्ता ज़्यादा होता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है।
0: यानी कि थोड़ा सा खर्च और उसके बाद मुनाफा काफी होता है, पैदावार क्योंकि अच्छी हो जाती है, खरपतवार के नियंत्रण में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो बहुत फायदे हो सकते हैं मल्चिंग के। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई।
8: धन्यवाद उमा।
0: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
9: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
10: खुद भी बचे देश भी बचाए।
11: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
12: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
13: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
12: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
13: 11 दोस्त
12: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
13: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
12: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
13: लेकिन ऐसा क्यों?
12: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
13: टीकी तो इसका हल क्या है?
12: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
14: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोआन देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर, मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद 2.5 किलोग्राम यूरिया 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

में थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
3: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
2: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
4: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं, तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
4: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रुका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
2: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
4: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
2: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
4: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
2: मतलब इंसान को पता नहीं चलता?
4: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
4: यही तो अच्छी खबर है प्रिया, जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
2: सच में? कैसे?
4: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा सकता है।
2: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
4: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
2: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
4: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
2: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
4: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
2: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
4: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
2: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
4: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
2: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
4: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया, महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
2: जरा विस्तार से बताइए।
4: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
2: सही कहा आपने।
4: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
4: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गाँव मजबूत बनता है।
2: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गाँव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
4: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
2: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
4: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
2: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
4: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
2: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
4: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं, जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गाँव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
4: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है, ताकि सही जानकारी हर घर तक पहुंच सके। जहां जानकारी नहीं पहुंचती, वहां ऐसे कुछ रानी जैसा केस हो जाता है। उसी इलाके के पास एक और गाँव था, छोटा पुरवा, यहाँ रहती थी कमला देवी और उनकी बेटी रानी। रानी भी गुड़िया की ही उम्र की थी, हंसमुख, चंचल और पढ़ाई में अच्छी। जब गांव में एचपीवी टीकाकरण की बात आई तो आशा दीदी यहां भी आई और लोगों को समझाने लगी। उन्होंने कमला देवी से भी कहा, बहन अपनी बेटी को टीका जरूर लगवा लेना। लेकिन कमला देवी के घर का माहौल थोड़ा अलग था। उनके पति महेंद्र इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया, ये सब नई नई बातें हैं, हमारे जमाने में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो सुने रहते।
2: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
4: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
2: तो दोस्तों आज हमने जाना कि एचपीवी क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
4: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा, सेहत सही तो लाभ कहीं।
2: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू राजू पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
3: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: घरों कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स

0: विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और खास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
3: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाई फेस करते हैं, उनमें तीन कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रही फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
1: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
3: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका गुदे को खाते और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है, जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
1: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
3: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
1: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप को पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
3: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल

0: पत्ती मोड़ कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया, और सिकुड़ना, ये माइट के प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है, ताकि सारे कीट के प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं, इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
1: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए
0: जी,
1: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
0: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय है लीची के बगीचे में, लीची का जो क्षति करने वाले जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है, उस फल को हटाना चाहिए, और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट की वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई, तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि, उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है, और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडियां, ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़ियां, लेडीबर्ड बीटल, लेस हुई, तो इसको बचा के रखना चाहिए, हम कहे कि संरक्षण करना जरूरी है।
1: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
0: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए, तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पर जिक्र करूंगा, जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है, जिसका 5 SG मतलब सोल्युबल ग्रैन्यूल, उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% इसी आता है, मतलब इमल्सिफायबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है, और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल हैं उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
1: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई, उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
0: धन्यवाद आपको भी।
1: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल, और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी, एक खांसी, दो खांसी, तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर, आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
6: नमस्ते किसान भाइयों। सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला का जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सूखने लगती हैं, और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या व्हाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यूलियो ट्रैप है, उस क्यूलियो ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो एलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो यानी जो हम लोग हैं उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पे जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय में जो है कि इसको छिड़काव कर सकते हैं। अब इसके बाद भी जो है कि अगर लगता है कि नहीं सो अगर ये कंट्रोल नहीं हो रहा है अगर नीम के वायल से, लेकिन मुख्यतः ये है देखा गया है कि नीम के वायल को अगर हर एक हफ्ते पे अगर हम रिपीट करते हैं मतलब दोहराते हैं तो ये इंसेक्ट की संख्या कम रहती है और आपको रासायनिक कीटनाशी की ओर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसान भाइयों अगर ये भी उपलब्ध आपको नहीं है तो अगर ये फ्रूट फ्लाई से समस्या है तब उस कंडीशन में जो है इसमें जो इमामेक्टिन जो एक दवा है उसकी जो है 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में इस और उसमें कुछ स्टिकर मिला करके इसको छिड़काव करें तो इससे जो है कि आपको इसे निदान हो जाएगा। अब जो बात करते हैं इस कुकुरबिट्स या लतीदार के अलावे, तो लतीदार में किसान भाइयों एक और किट है जिसको हम लोग को उस पर चर्चा करना चाहिए, जैसे कि उसको बोलते हैं अंग्रेजी में बोलते हैं रेड पम्पकिन बिटिल, जो लौकी में जनरली आप देखते होंगे जहाँ पे भी कद्दू जो लगता है तो उसके झाका पे या नीचे में भी आपको देखते हैं तो लाल लाल टाइप के आपको कीट दिखाई देते हैं जिसको लाल ब्रिंग हम लोग कहते हैं। तो ये लाल ब्रिंग को रोकथाम करने के लिए शुरुआती कंडीशन में क्या होता है कि अगर राख है किसान भाइयों के पास उपलब्ध है राख, तो इसको राख का भुड़काव सवेरे के समय में करने से ये जो कीट है ये भाग जाते हैं और भागने के कारण आपको कोई रासायनिक कीटनाशी इस्तेमाल किए बिना इसे आप बच सकते हैं। ये कीट जो है मुख्यतः जो है आपके जो जमीन में जो सटे पहले तो ये पत्तियों को खाते हैं पत्तियों, उसके बाद क्या है कि अगर आपका फल निकलता है कद्दू का निकलता है जो जमीन से सटे हुए रहता है तो उसमें भी ये हल्का सा छिद्र बनाते हैं और बाद में जो है इसके अंदर खा करके और सब्जी को जो है मतलब वो खराब कर देता है, वो उसके मार्केट वैल्यू को जो है कम कर देता है। तो ये है, एक तो राख छिड़काव करना है, दूसरा जो है इसमें एक फेनभल का जो पाउडर आता है उसका 2% मात्रा जो है उसे 10 से 15 केजी जो है प्रति हेक्टेयर की दर से जो है उसको सवेरे के समय में भुड़काव करने से ये जो लाल ब्रिंग है इससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये तो हुई आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए। अब जो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जो पेस्ट है वो है भिंडी, तो भिंडी के लिए भी भिंडी में जो है कौन कौन जनरली कीट लगते हैं, तो भिंडी में सबसे ज्यादा जो है आप देखते होंगे कि जो उसका जो फल है तो फल को आप देखते होंगे कि उसमें छोटा सा पहले छिद्र करता है फिर बाद में क्या होता है कि आपके भिंडी को टेढ़े मेढ़े कर देता है वो, तो ये फल एवं प्ररोह बेधक कीट इसको बोलते हैं। तो ये इसके चलते क्या होता है ये आपका दो तरह से क्षति करता है, एक शुरुआती कंडीशन में ये क्या करता है कि जो भिंडी का जो छोटे पौधे होते हैं जो बढ़ने वाला पोर्शन होता है तो ये इसके जो शिशु है उसी में उसके बढ़ने वाला पोर्शन में ही उसको काट देता है और काट देने के बाद क्या होता है कि जो जो उसको बढ़ने वाला जो कली होता है चूंकि उसी को काट देता है तो पुनः जो है कि नीचे से या बगल से कली निकलती है जिसके चलते जो है कि उत्पादन पे बहुत मतलब इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक तो ये है शुरुआती कंडीशन में और बाद की कंडीशन में जो है कि आपके फल को ये टेढ़े मेढ़े कर देते हैं और आपका जो है कि कभी कभी आप देखेंगे क्या कि जो भिंडी का जो बढ़ने वाला जो एरिया है वो जो भाग है ऊपरी वाला भाग वो झुका हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ है क्योंकि उसको काट देते हैं इसके शिशु। तो अब इससे हम लोग कैसे इसका बचाव कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि आप अगर ऐसे भिंडी आपकी अगर में दिखती है तो उसको आपको तोड़ करके खेत में कभी नहीं फेंकें, उसको एक जगह जमा करें और उसको मिट्टी में दबा दें। तो पहला काम तो ये है, उसके बाद क्या है कि नीम आधारित जो है कि कीटनाशी हम लोग जो है कि इसमें छिड़काव कर सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि नीम की 1500 ppm की मात्रा जो है 4 लीटर पानी में प्रति लीटर पानी में इसको छिड़काव करना है। दूसरा जो कीटनाशी है वो है इमामेक्टिन बेंजोएट, ये इमामेक्टिन बेंजोएट पुनः जो है 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी में या यूँ कहें तो 10 लीटर पानी में 4 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट की दवा इसमें देना है। अविमामेक्टिन बेंजोएट जो है ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होता है, ये एक झिल्ली की तरह होता है। तो पहले इसको हम लोग को घुला लेना है और घुलाने के बाद तब इसको जो है हमारा स्प्रेयर है उस स्प्रेयर में डालना है और उसमें कुछ स्टिकर की मात्रा, जैसे कि अगर स्टिकर आपके पास नहीं हो तो एक रुपये वाला जो शैम्पू का सैसे आता है वो इसमें डालिए और पुनः उसको अच्छे ढंग से मिला लेने के बाद इसको जो है कि शाम के समय से 4 बजे के बाद इसको जो है छिड़काव करिए। तो ये हो गया। दूसरा जो कीटनाशी है वो स्पाइनोसेड है, स्पाइनोसेड 45 EC, यह एक लिक्विड के फॉर्म में ये कीटनाशी पाए जाते हैं और इसका जो है आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी में छिड़काव करने से आप इसे जो है कि रोकथाम कर से इससे हो जाता है। अब दूसरा जो है कि एक है जो लाल बग होता है एक भिंडी में, और ये क्या करता है कि ये इसके जो शिशु और जो वयस्क होते हैं वो रस चूसते हैं ये आपके जो भिंडी के जो पत्तियां होती है उसके, और जिसके चलते क्या होता है कि ये पत्तियां सूख जाती है। तो चूंकि ये एक बग है, रस चूसने वाली कीट है, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट के लिए थायोमेथोजम का जो है 35 EC का 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको छिड़काव करना है, ठीक है। थायोमेथोजम 75 EC। और दूसरी जो दवा है इसको हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL, इसकी जो है 1 ml मात्रा जो है प्रति 3 लीटर पानी में इसका छिड़काव करना है। अगर संख्या ज़्यादा हो तो आधा ml प्रति लीटर पानी में साथ में, हम किसान भाइयों बराबर बोलते हैं कि स्टिकर इसमें मिलाना ही मिलाना है, स्टिकर के मिलाने से, अगर स्टिकर या शैम्पू के मिलाने से ये कीटनाशी की क्षमता को बढ़ा देता है और ये कीटों के रोकने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, इसलिए स्टिकर आप जरूर लगाएं। तो ये भिंडी में लगने वाले जो मुख्यतः जो कीट है। दूसरा, अब चूंकि बीच बीच में किसानों को पानी भी हो जा रहा है जो इस साल जो हम लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होता है कि आप देखेंगे कि आपका जो भिंडी का जो पूरा पत्ती है तो उसमें जो भीन होता है वो पीला दिखता है और बाद में क्या होता है कि पूरी जो भिंडी के जो पत्ती है वो चितकावट टाइप से हो जाती है, पीली टाइप से हो जाती है, और एडवर्स कंडीशन में जब और ज़्यादा जब इसकी व्यापकता होती है तो कभी कभी आपका भिंडी भी पीला पीला जब निकलने लगता है, तो ये भी जो सफ़ेद मक्खी है उसके चलते होती है और यही जो मक्खी है सफ़ेद मक्खी ये इसके विषाणु को एक पौधे से दूसरे पौधे पे स्थानांतरित करती है। इसीलिए जब किसान भाइयों आपको अगर आपके खेत में ऐसा दिखता है पत्तियों पे ऐसा अगर ऐसा सिम्टम दिखता है ऐसा, तो आपको क्या करना है कि जहाँ पे दिखे अगर किसी ब्रांच में है तो उस ब्रांच को मतलब पीसी जिसे काटिए और काटने के बाद उसको मिट्टी में दबा देना। अगर पूरे पौधे में ही अगर है तो पूरे पौधे को ही नीचे से जड़ से उखाड़ करके और उसको खेत में नहीं छोड़ना है, उसको जितने भी अगर 5-10 पौधे में है आपके खेत में तो उसको उखाड़ करके और उसको जो है मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। चूंकि अगर आप किसान भाई उखाड़ करके अगर फील्ड में ही छोड़ देंगे, खेत में ही छोड़ देंगे, तो उसमें जो उस कीट का जो जीवन चक्र के जो रहता है तो पुनः आपका जो स्वस्थ पौधा है उसके ऊपर वो जाता है और जाने के बाद उसको पुनः उसमें जो विषाणु है उस विषाणु को वो अंतरित कर देता है, उसमें डाल देता है और जिसके चलते हैं कि आपका जो अच्छा पौधा है भिंडी का उसमें भी ये रोग फैल जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको किसान भाई ख्याल रखना है और मतलब इन चीज़ों के करने से हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो जो गर्मी के गर्मा का जो सब्जी लगा हुआ है इसको आप अच्छे से कीटों से नियंत्रित कर सकेंगे और अपनी उत्पादकता को बढ़ा करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद।
5: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि किसान भाई बहन आप सर के द्वारा जो भी बताए गए उपाय हैं उन्हें अपनाएंगे और कीटों का बेहतर प्रबंधन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
7: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
11: तीनू मीनू राजू पिन्नी और
10: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त
10: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
10: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
10: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी तो इसका हल क्या है?
10: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा भविष्य।

0: जरूरी काम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हम किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों आज उन्नत कृषि में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो केवल हमारी आमदनी ही नहीं बढ़ाता बल्कि आने वाली पीढ़ी की सेहत से जुड़ा है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करने वाले हैं पोषण सुरक्षा के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे। मैम आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: नमस्कार उमा जी और मेरे सभी श्रोता किसान भाइयों को मेरा प्रणाम।
0: मैम हम अक्सर खेती में पैदावार की बात करते हैं लेकिन आज हम पोषण की बात करने वाले हैं। और मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि आखिर पोषण सुरक्षा क्या है और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन जिसे कि हम कृषि प्रसार भी कहते हैं उसकी क्यों जरूरत है।
8: जी देखिए बहुत ही जरूरी सवाल है। आम तौर पर हमें लगता है कि अगर पेट भर गया है तो काम हो गया, लेकिन पोषण सुरक्षा का मतलब केवल पेट भरना नहीं बल्कि शरीर को वो सभी जरूरी तत्व देना है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज पदार्थ जो बीमारियों से लड़ने की हमें ताकत देता है। धान और गेहूं जैसे इनसे तो ऊर्जा मिल जाती है लेकिन शरीर को दालों और जो सब्जियां हैं इनसे जो प्रोटीन और खनिज पदार्थ है वो भी चाहिए। बिहार में हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है लेकिन अगर हम केवल 2 ही फसल उगाएंगे तो हमारे भोजन की थाली में विविधता खत्म हो जाएगी। इसी को बदलने के लिए कृषि विस्तार यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन की ज़रूरत है।
0: जी मैम, और मैं आपसे अब मैं जानना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप थोड़ा और अच्छे से बताएं, विस्तार से बताएं कृषि विस्तार के बारे में और किसान भाई बहनों से कैसे जुड़ सकते हैं।
8: जी कृषि विस्तार का मतलब है प्रयोगशाला से जानकारी को खेत तक पहुँचाना। हमारे कृषि समन्वयक और कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में है वे किसानों को बताते हैं कि कौन सी नई बीज की किस्में आई हैं, कहाँ बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है और कहाँ सुखाड़ क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के लिए कौन सी बीज विकसित हुई है और जो भी ज़्यादा पोषक तत्व वाले किस्में हैं वो कहाँ कहाँ लगाएं और कहाँ पर ये अच्छी उपज देगी।
0: मैम एक और बात कि किसान भाई बहन पोषण सुरक्षा में और क्या क्या कर सकते हैं।
8: पोषण सुरक्षा के मुख्यतः तीन मुख्य मंत्र हैं। पहला फसल विविधीकरण, जिसमें कि न केवल धान गेहूं बल्कि दालें तिलहन और मोटे अनाज उगाए जा सकते हैं, जैसे कि मक्का बाजरा मड़ुआ। और दूसरा मुख्य मंत्र है पोषण वाटिका, जिसे हम किचन गार्डन भी आम तो बोलचाल की भाषा में कहते हैं, जिसे हम घर के पीछे अपनी जो खाली जमीन है उस पर सहजन पालक टमाटर और फलदार पेड़ लगा सकते हैं। और तीसरा मूल मंत्र है एकीकृत खेती, खेती के साथ साथ पशुपालन और मछली पालन को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं।
0: मैम कई बार ऐसा होता है ना कि किसान भाई बहन पैसों की कमी की वजह से ये सब नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसे में सरकार इनकी कोई मदद कर रही है या करती है?
8: जी ज़रूर, कई बार सरकार इसमें बहुत ही बेहतरीन योजनाओं के द्वारा मदद कर रही है। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, इसके तहत दालों और मोटे अनाज के उत्पादन के लिए मुफ्त बीज और ट्रेनिंग मिलती है। दूसरा है पोषण अभियान, इसका मकसद महिलाएं और बच्चों में कुपोषण को खत्म करना। आंगनबाड़ी और कृषि विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तीसरा परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके जरिए आप जैविक खेती कर सकते हैं, बिना रासायनिक खाद के उगे अनाज ज़्यादा पोषक और बाजार में महंगे जरूर बिकते हैं। और चौथा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इससे आप टपक सिंचाई अपनाकर कम पानी में भी सब्जी और फल उगा सकते हैं।
0: तो मैम इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या हमें ब्लॉक जाना होगा?
8: जी आप अपने क्षेत्र के कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं और सीधे कृषि विज्ञान केंद्र भी आ सकते हैं। अब तो कोई योजनाओं का लाभ आप सीधे ऑनलाइन पंजीकरण से भी कर सकते हैं।
0: मैम मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में और भी विस्तृत जानकारी दें, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में, जिसे कि हम NFSM कहते हैं, और क्या इससे हमारे किसान भाई बहनों को क्या फ़ायदा मिलता है और किस तरीके से वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लाभ के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए और आवेदन कैसे कर सकते हैं?
8: जी ज़रूर, तो तीन सवाल आपने किया है कि इसके लाभ क्या हैं, पात्रता क्या है और आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो मैं पहले इसके लाभ के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके द्वारा हम नई और उन्नत किस्म के बीजों पर सब्सिडी मिलती है। दालों के लिए लगभग 25 रुपये प्रति केजी और धान गेहूं के लिए लगभग 10 किलो प्रति केजी तक की छूट मिल सकती है, ये बीज वितरण पर। दूसरा हम कर सकते हैं कि कृषि वैज्ञानिक आपके खेत पर आकर नई तकनीकों का प्रदर्शन करते हैं, इसके लिए किसानों को प्रति हेक्टेयर 6,000 से 15,000 तक की सहायता राशि दी जाती है। तीसरा मुख्य लाभ है कि आप जो भी कृषि उपकरण है, जैसे कि पंप सेट स्प्रेयर सीड ड्रिल कल्टीवेटर जैसे औजारों पर 50% तक की सब्सिडी मिलती है। और चौथा मुख्य लाभ ये है कि सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जैव उर्वरक जो बायोफर्टिलाइजर्स है, इसके इस्तेमाल के लिए भी आर्थिक मदद दी जाती है। दूसरा सवाल आपने किया कि इसकी पात्रता क्या है, तो सभी श्रेणी के किसान, छोटे सीमांत बड़े, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में 33% आवंटन छोटे और सीमांत किसानों के लिए, 30% आवंटन महिला किसानों के लिए आरक्षित है। एक किसान एक सीजन में अधिकतम 5 हेक्टेयर तक की सहायता ले सकता है। और रही बात इसको आवेदन करने के लिए, तो इसके आवेदन के लिए आप स्थानीय कृषि कार्यालय अपने ब्लॉक में किसी भी कृषि विस्तार अधिकारी जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या ग्राम कृषि समन्वयक से मिल सकते हैं। पंजीकरण के लिए अधिकांश राज्यों में इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि अपने बिहार में DBT पोर्टल है, उस पर आप पंजीकरण करा सकते हैं। और दस्तावेज के लिए आवेदन के लिए आमतौर पर आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, फोटोकॉपी, जमीन की कागजात, LPC रसीद और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
0: FM, अगर इन सारी चीजों से जुड़ी हुई और भी जानकारी चाहिए तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन किन से संपर्क कर सकते हैं?
8: जी, अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा के कार्यालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं।
0: मैम, अंत में आप किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहेंगे?
8: बस इतना कहना चाहूंगी कि स्वस्थ परिवार की शुरुआत खेत से होती है और आप किसान हैं, आप अन्नदाता हैं। आप अगर अपनी थाली में रंग बिरंगी चीजें रखेंगे, दालें, सब्जियां, फल, तो देश का भविष्य यानी कि हमारे जो बच्चे हैं वो शुरुआती तौर से बहुत ही मजबूत बनेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई। उम्मीद है कि आज हमारे किसान भाई बहन को समझ आया होगा, उन्होंने ये समझा होगा कि पोषण सुरक्षा के लिए हमें अपनी खेती के जो तरीके हैं उन्हें बदलने की जरूरत है और सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाइए। और जैसे कि मैम ने बताया, आप अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विभाग में जा सकते हैं, वहां संपर्क कर सकते हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
8: धन्यवाद।
0: अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात कि अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
9: उन्नत कृषि
10: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
11: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
12: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
13: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
13: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
12: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
14: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
15: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और...
14: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
15: 11 दोस्त?
14: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
15: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
14: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
15: लेकिन ऐसा क्यों?
14: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
15: टीकी, तो इसका हल क्या है?
14: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
16: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें।
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 एफएम ग्रीन पर।
7: एफएम ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से 90.8 एफएम ग्रीन और मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवाओं के करियर के बारे में और खास तौर से एग्रीकल्चर के फील्ड में आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं, किस दिशा में आप जाकर अपना करियर बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने बैंकिंग एग्जाम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा और उन्हीं बैंकिंग एग्जाम्स में से एक एग्जाम होता है IBPS AFO यानी कि IBPS के द्वारा जो बहुत सारे उनमें से एक होता है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर। अगर हम IBPS AFO के बारे में बात करें तो अब तक आप समझ गए होंगे ये एग्जाम IBPS कंडक्ट करवाता है। IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। आपको बता दें कि देश भर के सरकारी बैंकों में IBPS के द्वारा एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर यानी कि AFO के पद पर नियुक्ति की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि IBPS AFO है क्या। ये परीक्षा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या फिर उनसे संबंधित छात्रों के लिए विशेष तौर पर ली जाती है और AFO का जो मुख्य काम होता है, मेन काम होता है, वो होता है किसानों और कृषि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाएं देना, किसान के ऋण का मूल्यांकन करना, ग्रामीणों को वित्तीय सलाह देना और फिर किसानों को वित्तीय सलाह देना और साथ ही कृषि ऋण सहायता देना, ऐसे जो भी काम होते हैं यानी कि किसानों से जुड़े हुए बैंक में जो भी काम होते हैं वो एक AFO देखते हैं। और अगर हम बात करें कि AFO का नोटिफिकेशन कब आता है तो आमतौर पर AFO का नोटिफिकेशन जून से जुलाई के बीच आ जाता है। फिर ऑनलाइन आवेदन का जो लिंक होता है वो 1 से 3 हफ्ते तक ये खुला रहता है। तो अगर हम बात करें आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में तो आप जून या जुलाई में इस नोटिफिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप IBPS AFO के लिए एलिजिबल है या नहीं तो इसकी योग्यता क्या होती है, तो 4 साल का आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और जाहिर सी बात है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है, पोस्ट है, तो इसके लिए आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड डिग्री ही होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री एग्रीकल्चर में हो सकती है, हॉर्टिकल्चर में हो सकती है, डेयरी साइंस में हो सकती है, फिशरी में हो सकती है, फॉरेस्ट्री में हो सकती है, या फिर आपने फूड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है ग्रेजुएशन, या फिर आपने एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए तो मिनिमम आप 20 साल के होने चाहिए, अधिकतम आप 30 साल के होने चाहिए। और वहीं सरकारी नियमों के अनुसार OBC को अधिकतम वर्ष में 3 साल की छूट दी जाती है, वहीं ST या SC को 5 साल की छूट दी जाती है। और वहीं अगर आप पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं तो आपको 10 साल तक की छूट दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में यानी कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो आमतौर पर IBPS के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो प्रीलिम्स, मेंस और फिर कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी होता है, तो इस एग्जाम में भी आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले प्रीलिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाता है। इसमें इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और वहीं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। और आपको तीनों ही सेक्शन के लिए 40-40 मिनट का टाइम दिया जाता है यानी कि टोटल 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 125 मार्क्स के लिए ये 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक गलत जवाब पर आपके 0.25 मार्क्स कट जाते हैं यानी कि 1/4 मार्क्स आपके कट जाते हैं। और प्रीलिम्स एग्जाम के आगे की बात करें यानी कि मेंस के बारे में बात करें तो मेंस का एग्जाम आपका 45 मिनट का होता है और ये भी ऑनलाइन होता है और ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है। तो अब हम बात करते हैं कि मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेंस में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, पूरी तरह से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपके पास होनी चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। और मेंस के मार्क्स जो होते हैं ना वो फाइनल मेरिट में काम आते हैं और मेंस अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप इंटरव्यू भी फेस करते हैं। इंटरव्यू जैसे कि आमतौर पर होता है एक क्वालिफाइंग पर्सनालिटी टेस्ट होता है, लेकिन आपका जो फाइनल रिजल्ट बनता है यानी कि फाइनल मेरिट जो आपका बनता है उसमें इंटरव्यू का 20% और मेंस का 80% मार्क्स लिया जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में क्या होता है, तो प्रीलिम्स का जो रीजनिंग का सिलेबस होता है जो आमतौर पर बैंकिंग एग्जाम्स के होते हैं, यानी कि पजल्स होते हैं, सीटिंग होते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटीज जैसे टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो नंबर सिस्टम, इसके बिना बैंकिंग का एग्जाम कैसे पूरा हो सकता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, डीआई, प्रॉफिट लॉस, ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आपने बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी की है या कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इन टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जान लीजिए और एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ना अभी से शुरू कर दीजिए। और इसके साथ ही इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, क्लोज पूछा जाता है, एरर स्पॉटिंग होता है, पैराजम्बल्स होता है, जैसे बहुत ही बेसिक से जो सवाल होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि मेंस में क्या पूछा जाता है, तो मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज देखी जाती है आपकी एग्रीकल्चर की कितनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने एग्रीकल्चर के बारे में जितनी पढ़ाई की है वो तो काम आने ही वाली है, और साथ ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो भी आपको रटे हुए होने चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात करें जो मेंस में पूछे जाते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर कैसा है इस बारे में पूछा जाता है, सॉइल साइंस होता है, और क्रॉप प्रोडक्शन होता है, हॉर्टिकल्चर होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, ऐसे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर अब तक आपने मन बना लिया है कि आपको IBPS AFO बनना है, तो इसके लिए तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छी तरीके से समझें, सारे टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और कब कैसे किन टॉपिक्स की तैयारी करनी है, कहां से किसकी तैयारी करनी है, ये भी आप अपने दिमाग में बिठा लें या नोट कर लें। और साथ ही आप एक स्टडी प्लान भी बना लें कि आपको हर रोज़ आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं, या फिर एक हफ्ते में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। इन तरीकों से आप अपना एक स्टडी प्लान बना लें और हर एक सब्जेक्ट के लिए एक प्रॉपर टाइम ज़रूर निर्धारित कर लें। आप एक दिन में अगर 3 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप इंग्लिश रीजनिंग के साथ या तो फिर इंग्लिश क्वांट के साथ जा सकते हैं। और साथ में आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आ रहे हैं आपको सारे करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, उनसे रिलेटेड जो भी नए रेगुलेशंस आते हैं, रूल्स आते हैं, अगर कोई नई योजना आई हुई है तो उसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन चीज़ों के लिए बुक्स की हेल्प ले सकते हैं। और अभी तो हमारे पास सूचनाओं की, जानकारियों की बाढ़ है, और आप यूट्यूब से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। और अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप प्रैक्टिस करें, रिविज़न करें, मॉक टेस्ट लगाएं। हर किसी का कोई ना कोई वीक एरिया होता है, तो वीक एरिया पर आप ज़्यादा फोकस करें, और जहां गलती हो रही है मॉक टेस्ट में पता लग जाता है कि आपका कौन सा वीक एरिया है और कहां ज़्यादा आप गलतियां कर रहे हैं। कई बार हमारी तैयारी बहुत अच्छी होती है पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तो मॉक टेस्ट आपको इसके लिए हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें, और इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स भी आप ज़रूर पढ़ें। जो भी कृषि योजनाएँ आ रही है, किसान क्रेडिट कार्ड, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि आमतौर पर IBPS AFO का जून से जुलाई के बीच में नोटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन आप रेगुलर चेक करते रहें कि आपका नोटिफिकेशन कब आने वाला है और कहां से अप्लाई करना है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लगनी है वो सारी चीज़ें आप इकट्ठी करके रखें। किसी भी एग्ज़ाम की या पोस्ट की तैयारी के लिए जो मोटिवेशन होता है ना, कई बार उस पोस्ट से मिलने वाली सैलरी भी होती है। और अगर हम IBPS AFO की सैलरी की बात करें तो इन हैंड सैलरी जो होती है ना वो 38,000 से 60,000 पर मंथ की हो सकती है, और डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग की लोकेशन क्या है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। और ऐसी ही ढेर सारी जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

0: खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: चीन का हांजोऊ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग
1: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को अजीत का नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुविचार जो हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है, लिखते हैं, मनुष्य की आंखें बंद करने और डरने से कभी मुसीबत टला नहीं करती, बल्कि उसी मुसीबत का सामना करने से मनुष्य की आंखें खुला करती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का संदेश भेजते हुए हमें लिखते हैं, हम कार्यक्रम के माध्यम से उमंग कार्यक्रम को बता दें कि कई बार ये प्रश्न हमारे मन में उठता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए। इतनी अच्छी जानकारी के लिए उमंग NCERT की विमलेश जी और अजीत जी के साथ पूरी उमंग टीम को हमारी बहुत बहुत बधाई। श्रोताओ, अगला संदेश हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू का। और इसके साथ साथ हमें एक संदेश और मिला है, सुनते हैं, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया के साथ साथ राधिका और प्रभा देवी तामुरिया के साथ मास्टर अल कबीर। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी, मैडम बिमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम में पोंगल त्योहार पर प्रसारित कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम उठा। कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अंदाज इतना शानदार लगा कि हम भी पोंगल त्योहार की मस्ती में झूम गए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए आपका दिल से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर अंक एक से बढ़कर एक होता है, तो लाखों शब्द भी लिखे तो भी बहुत कम है। यमुना जी पर प्रसारित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। यह कार्यक्रम सुनवाने के लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। तो आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो श्रोताओं, हमारा सबसे पहला प्रश्न था,

0: आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सुन लेते हैं इसका जवाब। इसका जवाब है, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 10 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी, जो अब मुंबई कहलाता है। और सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमने आपसे पूछा था कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक कहाँ के स्तंभ से लिया गया है? तो इसका उत्तर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए शिला स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ में स्थित है। सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। श्रोताओं, हमारा अगला प्रश्न था, वैद्यराज जीवक के बारे में किस ग्रंथ में विस्तार से जानकारी मिलती है? तो सुन लीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है, वैद्यराज जीवक के बारे में हमें विनय पिटक ग्रंथ से विस्तृत जानकारी मिलती है। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें वैद्यराज जीवक की चिकित्सा विधा, महात्मा बुद्ध की सेवा और उनके शल्य कौशल का वर्णन है। अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। तो हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो सुन लीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर है, अप्रत्याशित रूप से बाढ़, भूकंप, सुनामी, सूखा, महामारियां, अतिवृष्टि और अनावृष्टि इत्यादि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख संकेतक हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न था कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था और वे किस देश के थे? तो इसका उत्तर है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम था यूरी गागरिन। वे सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्री थे। तो श्रोताओं, ये थे उत्तर हमारे पिछले सप्ताह के प्रश्नों के। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद किसे सबसे पहले दिया गया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारतीय सेना में सबसे ऊंचा पद क्या है और ये पद किसे सबसे पहले दिया गया था? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपना संदेश भी भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा सबसे पहला कार्यक्रम है पेड़ की बात। आपको बता दें इस कार्यक्रम के बारे में, ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 6 की पाठ्यपुस्तक में मुद्रित एक विज्ञान लेख पर आधारित है, जिसमें महान वनस्पति विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ पौधों और वनस्पतियों के बारे में रोचक जानकारी दी है।
1: साथियों नमस्कार, हम सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के बारे में जानते हैं। उनका बचपन प्रकृति का अवलोकन करते हुए बीता। पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से प्रेम करते हुए उनकी शिक्षा आरंभ हुई। जीव विज्ञान, भौतिकी और वनस्पति विज्ञान में उनकी महारत थी। उन्होंने बांग्ला भाषा में बच्चों के लिए बहुत सी विज्ञान कथाएं और लेख भी लिखे। जगदीश चंद्र बसु ने कई विज्ञान कथाएं लिखी हैं, जिनमें से निरुद्देशेर गोल्पो यानी लापता की कहानी 1896 में लिखी गई और बाद में 1921 में पलटक तूफान यानी भगोड़ा समुद्री तूफान के रूप में प्रकाशित की गई, जो बांग्ला विज्ञान कथा साहित्य की शुरुआती कृतियों में से एक है। उन्हीं विज्ञान लेखों में से एक रोचक लेख है पेड़ की बात। जगदीश चंद्र बसु को बच्चों से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने घर में भी प्रयोगशाला बना रखी थी। छुट्टियों के दिनों में उनके पास बहुत से बच्चे विज्ञान के प्रश्नों के साथ आते रहते थे। एक दिन कुछ बच्चों ने सोचा कि क्यों ना उनके पास चलें? तो आइए दोस्तों, हम भी चलते हैं बच्चों के साथ सर जगदीश चंद्र बसु के पास और सुनते हैं ये विज्ञान वार्तालाप।
2: चलो चलो सर
3: जी, हम पेड़ पौधों के बारे में पूछेंगे।
2: नमस्कार सर।
4: नमस्कार, और इतने सारे बच्चे। तो अब जरा अपना इंट्रोडक्शन दो।
5: सर मैं इशिता, मैं हूँ चेताली।
6: मैं शुभेंदु।
7: और मेरा नाम है इंदु।
8: और मैं सोमेश।
4: बहुत अच्छा। तो बच्चों ये बताओ कि तुम लोगों का आना कैसे हुआ?
5: सर हम आपसे पेड़ पौधों के बारे में जानना चाहते हैं।
4: देखो, पेड़ बनने की कहानी सबसे पहले शुरू होती है बीज से।
6: जी सर, मैंने अपने खेत में बीज को बोते हुए देखा है।
8: सर
7: फिर क्या होता है?
4: फिर होता यह है बच्चों कि बीज मिट्टी में पड़ा रहता है लंबे समय तक। जैसे ही वर्षा की बूंदें पड़ती हैं और मिट्टी थोड़ी गीली हो जाती है ना, बीज मानो सोचता है।
7: बीज सोचता है? क्या सोचता है?
4: वो सोचता है अब मिट्टी में पड़े रहने का समय नहीं है। उसे लगता है मानो प्रकृति उसे बड़े प्यार से पुकार रही हो। जैसे
9: उठो, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है, बाहर निकलो, सूर्य को देखो, अपने आसपास देखो, सब कुछ कितना सुंदर है।
5: वाह, कितनी सुंदर बात है।
4: अच्छा, एक बहुत मजेदार बात तुम लोगों को बताता हूँ बच्चों। देखो, जब अंकुर फूटेगा और डालियां निकलेंगी तो जड़ हमेशा नीचे की ओर ही जाएगी और तना ऊपर की ओर ही उठेगा। जानते हो, एक बार मैंने एक प्रयोग किया था। एक गमले में क्या था बताओ?
10: पौधा।
4: शाबाश। परीक्षण करने के लिए मैंने कुछ दिनों तक पौधे को उल्टा लटकाए रखा।
10: उल्टा?
4: हाँ, उल्टा। और जानते हो क्या हुआ? पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर।
7: फिर क्या हुआ?
4: फिर दो तीन दिनों के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उसकी सारी पत्तियाँ और डालियाँ टेढ़ी होकर ऊपर की ओर उठाई और जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। ऐसा लगा जैसे पौधे को भी प्रकृति का ये भेद मालूम हो गया हो। है ना रोचक बात?
7: यह तो बड़ी रोचक बात है सर। सर, एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे भी भोजन करते हैं?
4: हाँ, क्यों नहीं। देखो, हमें जिस प्रकार भोजन की जरूरत होती है ना, हमारे दांत होते हैं, है ना?
5: जी सर।
4: इसलिए हम भोजन को चबा चबा कर खाते हैं। लेकिन पेड़ पौधों के दांत नहीं होते, इसलिए वो केवल तरल द्रव्य या वायु से ही भोजन ग्रहण करते हैं। वो जड़ के द्वारा मिट्टी से रसपान करते हैं।
5: रसपान कैसे करते?
4: एक उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में चीनी डालने पर चीनी घुल जाती है ना?
5: जी सर।
4: वैसे ही मिट्टी में पानी डालने पर उसमें मिट्टी के बहुत से पोषक तत्व घुल जाते हैं। पेड़ पौधे उसी पोषक तत्व को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
5: अच्छा, अब समझ आया।
4: तो अब इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए चलो चलते हैं अपनी प्रयोगशाला में।
10: जी सर।
5: यहाँ तो कितने सारे पत्ते, बीज, पौधे के तने रखे हुए हैं। अरे, कितनी बड़ी प्रयोगशाला है।
11: यहाँ पे तो बहुत तरह के पत्ते हैं।
7: ये तो बहुत सुंदर पत्ते हैं, बिल्कुल हरे हरे। देखो, इतना बड़ा पेड़।
12: अरे, उधर देखो, सूखे पत्ते भी हैं।
13: अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।
5: और ये मशीन क्या है? चलो चलो, सर से पूछते हैं।
4: इसे कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यानी माइक्रोस्कोप।
7: माइक्रोस्कोप?
4: हाँ। अब इसका कमाल देखो। इशिता, तुम इधर आओ बेटा। हाँ, देखो।
5: जी सर।
4: हाँ, देखो, अब मैंने क्या किया कि इस माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर पौधे के इस तने को रखा। हाँ, आओ देखो। देखो बेटा, देखो इसमें, देखो क्या दिखाई दे रहा है।
7: अरे वाह, मुझे तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नलियां दिखाई पड़ रही है।
4: शाबाश।
7: हाँ, नलियां तो मुझे भी दिखाई पड़ रही है इसमें।
5: मुझे भी देखना है। सर, मैं भी देखूं?
4: हाँ, आओ।
7: मुझे भी देखना है।
4: देखो क्या दिखाई दिया।
7: इसमें तो बहुत सारी नलियां हैं।
4: शाबाश, बिल्कुल सही, लाखों पाइप हैं।
10: पाइप?
4: हाँ, यानी जड़ मिट्टी से जिस पोषक तत्व को सोखती है ना, वो पोषक तत्व इन्हीं पाइपों के द्वारा पूरे पेड़ तक पहुँचते हैं।
5: अच्छा, तो ये बात है।
4: अब देखो, जैसे हमारी नसें होती है ना, बिल्कुल यही बात है।
7: सर, पौधे वायु और सूर्य के प्रकाश से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो कैसे?
4: वृक्ष के पत्ते हवा से आहार यानी अपना भोजन ग्रहण करते हैं। क्या कभी तुम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से पत्तों को देखा है?
10: नहीं सर।
4: और अब देखते हैं पत्ते को। कौन सा पत्ता ले? ये वाला पत्ता लेते हैं और इसे मैं यहाँ पर रखता हूँ माइक्रोस्कोप के इस लेंस के ऊपर। हाँ, अब देखो कौन देखेगा सबसे पहले? शुभेंदु तुम देखो, क्या दिखाई दिया?
12: अरे वाह, कितना अद्भुत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पत्ते में अनगिनत छोटे छोटे मुंह हैं।
4: बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, पत्तों के इन्हीं छोटे छोटे मुखों और जड़ों से पेड़ पौधे हवा से नमी ग्रहण करते हैं और सभी पोषक तत्वों को इकट्ठा करके अपना भोजन तैयार करते हैं। और जानते हो इसे क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। अच्छा चलो बच्चों, अब एक और प्रयोग करते हैं। तैयार हो तुम लोग सब लोग?
10: जी सर।
4: तो अब सभी लोग बिल्कुल सावधान मुद्रा में खड़े हो जाओ, ऐसे। हाँ, शाबाश। और अब सब लोग एक लंबी सांस लो और अब छोड़ो। अब बच्चों ये बताओ कि तुमने सांस लेते समय क्या लिया और सांस छोड़ते समय क्या छोड़ा? इशिता तुम बताओ।
5: सर, टीचर बताती है कि हम सांस लेते समय मुख्य रूप से ऑक्सीजन लेते हैं।
4: शाबाश। और शुभेंदु तुम बताओ, हम सांस छोड़ते समय क्या छोड़ते हैं?
12: सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
4: हाँ।
12: लेकिन सर, ये तो जहरीली होती है।
4: बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। देखो बेटा, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी के सभी सांस लेने वाले जीव जंतु ऐसा ही करते हैं। अच्छा जरा सोचो, अगर ये जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो क्या होगा?
5: पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा।
4: सही कहा तुमने, शाबाश। लेकिन बेटा जरा विधाता की करुणा और चमत्कार तो देखो। जो गैस हम जीव जंतुओं के लिए जहर है, पेड़ पौधे उसी का सेवन करके उसे पूर्णतया शुद्ध कर देते हैं। यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है।
12: यानी यदि पेड़ पौधे नहीं होते तो
10: हम भी नहीं होते।
4: शाबाश। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी आज की बातचीत?
10: बहुत बढ़िया।
4: अब से एक काम जरूर करना है।
10: क्या सर?
4: जब भी किसी पेड़ पौधे को देखना ना, तो उसे बोलना थैंक यू प्लांट,
10: थैंक यू ट्री।
4: शाबाश।
1: तो साथियों, अब हम किसी भी पेड़ या पौधे को देखकर धन्यवाद तो जरूर कहेंगे, लेकिन सिर्फ धन्यवाद से ही काम नहीं चलेगा। बात तो तब है जब हम सिर्फ धन्यवाद ही ना कहें, बल्कि उनका पूरा ख्याल भी रखें, क्योंकि वो हैं तो हम हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेड़ की बात, और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में श्रीमती सरला ठकराल के जीवन की गाथा प्रस्तुत की गई है और बताया गया है कि किस प्रकार अनेक संघर्षों से गुजरने के बाद भी उन्होंने भारत की प्रथम महिला पायलट बनने का गौरव प्राप्त किया।

0: सफलता की बुलंदियों को सभी छूना चाहते हैं, कामयाबी सभी हासिल करना चाहते हैं,
1: लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदमों को चूमती है जो दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं।
0: आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो अपनी लगन और कार्य निष्ठा से लाखों करोड़ों लोगों की और विशेषकर महिलाओं की प्रेरणा स्रोत बन गई।
1: वे हैं सरला ठकराल, जिन्हें सन 1936 में मात्र 22 वर्ष की आयु में भारत की पहली महिला पायलट यानी विमान चालक बनने का श्रेय प्राप्त है।
0: भारतीय उड्डयन के इतिहास की बात करें तो अनेक महिलाएं हैं जिनका नाम उल्लेखनीय है। प्रेम माथुर सन 1947 में भारत की पहली महिला व्यावसायिक पायलट बनी। दूर्वा बैनर्जी 1956 में इंडियन एयरलाइंस की पायलट बनी। पद्मावती बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी, जो सन 2002 में एयर वाइस मार्शल के पद तक पहुंची। इन सारी महिलाओं ने उड्डयन के इतिहास में अपने पदचिन्ह छोड़े हैं और करोड़ों महिलाओं के लिए आकाश में मार्ग खोला है। लेकिन वो प्रथम महिला कौन है जिन्होंने सबसे पहले इन सब के लिए मार्ग बनाने की शुरुआत की? जी हां, उनका नाम है सरला ठकराल। उनका जन्म 8 अगस्त सन 1914 को दिल्ली में हुआ था। तब भारत में ब्रिटिश राज था। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह लाहौर निवासी श्री पीडी शर्मा से हुआ। विवाह के बाद वो अपने पति के साथ लाहौर चली गई। सरला के परिवार की एक बात बहुत दिलचस्प थी और वो ये कि उनके परिवार में 9 लोग ऐसे थे जिनका संबंध सीधा उड्डयन से था। परिवार के 5 सदस्य तो पायलट ही थे। उनके पति श्री पीडी शर्मा स्वयं एयर मेल पायलट थे, जो लाहौर से कराची हवाई डाक लाया ले जाया करते थे। घर में अक्सर बातें होती थी वायु यानों की, उड़ान की, पायलटों के चुनौतीपूर्ण जीवन की। इन बातों को सरला बहुत चाव से सुनती थी और धीरे धीरे उनके मन में भी उड्डयन क्षेत्र में जाने की इच्छा प्रबल होती गई। पति भी अक्सर सरला को प्रोत्साहित करते। सरला को प्रशिक्षण दिलाने का बीड़ा उठाया उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी ने। एक दिन की बात है,
2: सरला बेटी।
3: अरे बाबूजी, आप
2: कहां खोई हो बेटी? जरा मैं भी तो जानूं कि क्या सोच रही है मेरी बेटी।
3: जी, मैं सोच रही थी कि मैं भी खाली समय में कुछ कर लेती।
2: बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बेटे। एक बात कहूं?
3: जी
2: बेटा, मैंने अक्सर देखा है जब भी हम हवाई जहाज की, उड़ान की, पायलटों की बात करते हैं तो तुम बड़े शौक से सुनती हो।
3: जी बाबूजी, मुझे ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है।
2: तो फिर देर किस बात की? लाहौर फ्लाइंग क्लब के प्रमुख मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
3: अच्छा,
2: मैं उनसे कल ही बात करूंगा।
3: पर
2: मुझे लगता है तुम्हें वहां से पायलट बनने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए।
3: लेकिन बाबूजी, मैं क्या स्त्रियां पायलट बन सकती हैं?
2: बेटा ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हमारे घर में सभी पायलट हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर इस परंपरा की नई कड़ी तुम बन जाओ।
3: धन्यवाद बाबूजी।
2: ये बात हुई ना बेटा। वेरी नाइस बेटा।
0: साथियों, दूसरे ही दिन श्री शर्मा सरला को फ्लाइंग क्लब ले गए। इसके लिए एक परीक्षा देनी होती थी। सरला शुरू से ही पढ़ाई में कुशाग्र बुद्धि थी। उन्होंने तैयारी की और वे प्रथम प्रयास में ही सफल हो गईं। मेडिकल जांच व अन्य औपचारिकताओं के बाद उनका दाखिला लाहौर फ्लाइंग क्लब में हो गया। और अब शुरू हुआ उनका प्रशिक्षण। आज प्रशिक्षण का पहला दिन था।
4: साथियों, मैं आप सबका लाहौर फ्लाइंग क्लब में डेप्यूटी चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबको बधाई देता हूं पायलट बनने की ट्रेनिंग में चुने जाने के लिए। देखिए, कुछ मायनों में हमारा ये सत्र पिछले सभी सत्रों से बहुत अलग है। क्या आप बता सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ?
5: सर, मुझे तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है।
4: सब कुछ वैसा तो नहीं है, कुछ तो नया है।
6: सर, मैं बताऊं सर।
4: हाँ, कहो।
6: सर, मुझे लगता है पहली बार पायलट की ट्रेनिंग के लिए हमारे बीच एक महिला मित्र है।
4: बहुत खूब, पर तुम्हें कैसे पता कि ऐसा पहली बार हुआ है?
6: पिछले सप्ताह एक समाचार पत्र में छपा था।
4: बहुत अच्छे, वेरी वेल ऑब्जर्व। देखिए, पायलट बनने की पहली शर्त है आसपास की बातों का गहराई से अवलोकन करना।
3: सही बात,
4: एक पायलट को हमेशा सजग रहना होता है। अच्छा, अब बताओ कि और कौन कौन सी खूबियाँ एक पायलट में होनी चाहिए।
3: सर, मैं बताऊँ?
4: हाँ, सरला तुम बताओ।
3: सर, मुझे लगता है कि एक पायलट में सकारात्मक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। उसमें लगातार सीखने की इच्छा होनी चाहिए और उच्च दबाव या तनाव में भी अच्छी तरह से काम कर पाने की काबिलियत होनी चाहिए। समस्या को हल करना और टीम में अच्छी तरह से काम कर पाना भी पायलट की खूबियों में शामिल है।
4: बहुत अच्छे सरला।
3: धन्यवाद सर।
4: तो साथियों, तकनीकी ज्ञान अपनी जगह है, लेकिन ये व्यक्तिगत खूबियाँ यदि आप में हैं, तो बेशक एक दिन आप बेहतरीन पायलट बनेंगे। इस ट्रेनिंग के दौरान मैं आप सब से यही उम्मीद करूँगा। ऑल द बेस्ट।
3: थैंक यू सर।
0: प्रशिक्षण शुरू हुआ। इसमें सफलता उन्हीं को मिलती है जिनमें कठोर परिश्रम, कार्य के प्रति समर्पण और एकाग्रता होती है। कुछ प्रशिक्षु इस दौरान प्रशिक्षण छोड़कर चले गए, लेकिन सरला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साथियों, पायलट बनने के लिए ए श्रेणी का उड्डयन लाइसेंस प्राप्त करना होता था और इसके लिए उन्हें 1000 घंटे की उड़ान पूरा करना जरूरी था। और आखिर वो दिन आ गया जब उन्होंने 1000 घंटों की उड़ान बिना व्यवधान के पूरी की।
1: जिस दिन उनके प्रशिक्षण की आखिरी उड़ान थी, उस दिन उनका पूरा परिवार, मित्रगण, पत्रकार और भी कई गणमान्य लोग हवाई अड्डे पर मौजूद थे।
0: मीडिया के लिए एक महिला द्वारा प्रशिक्षण पूरा करना खासा दिलचस्पी का विषय था। उड़ान शुरू हुई।
7: घंटों की ट्रेनिंग पूरी होना मजा

0: 대로 뛰어서 됩니다.
1: 아메이징.
2: जब वो अपने जिप्सी मौत विमान से उतरकर लाउंज में आई तो लोगों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। उन दिनों में जिप्सी मौत विमान प्रशिक्षण के लिए पायलटों की पहली पसंद था। ये डबल इंजन वाला हल्का विमान था जिसमें दो लोग बैठ सकते थे।
3: दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने साड़ी पहनकर ये उड़ान भरी थी और उन दिनों वे 4 वर्ष की एक बेटी की माँ भी थी। ये वर्ष था सन 1936 का और सरला की उम्र थी मात्र 22 वर्ष।
2: इतनी कम आयु में ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करना सचमुच असाधारण बात थी। इस प्रशिक्षण के बाद उन्हें वायुयान उड़ाने का A-क्लास लाइसेंस प्रदान किया गया। समाचार पत्रों ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में जनता को बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लाहौर के एक प्रसिद्ध अखबार ने लिखा, आसमान में अब सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार नहीं, नारी ने भी अब छू लिया है आकाश को। सुप्रसिद्ध अखबार द ट्रिब्यून को साक्षात्कार देते हुए उन्होंने कहा था,
4: मुझे लगता है कि हमारे पास लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और विकल्प भी हमेशा होने चाहिए। जब मैंने वस्त्रों और आभूषणों का डिजाइन तैयार किया तो उस समय की लगभग सभी प्रसिद्ध महिलाओं को ये डिजाइन बहुत पसंद आए। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि एक बहुत बड़ा कुटीर उद्योग खड़ा हो गया जिसने बहुत सी महिलाओं को 20 वर्ष तक सम्मानजनक रोजगार दिया।
2: अपने जीवन में सफलता के कई आयामों को छूने वाली सरला ठकराल का 15 मार्च 2008 को दिल्ली में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ने वाली भारत की इस प्रथम महिला पायलट का जीवन साहस और आत्मविश्वास का एक अनूठा उदाहरण है जो महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
5: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरला ठकराल, भारत की पहली महिला पायलट। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग
7: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
11: तीनू राजू पिन्नी और
10: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त?
10: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
10: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
10: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी तो इसका हल क्या है?
10: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी सिलेज की जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: नाम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज बात होने वाली है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। विषय है गर्मी में भूमि और जल संरक्षण और किस तरीके से आने वाली फसलों की सुरक्षा की जा सकती है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, सरह कृषि अभियंत्रण विभाग से सरह असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद आपका।
0: सर, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कृषि में भूमि और जल संरक्षण का क्या महत्व है?
1: तो नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जैसा कि मैडम ने पूछा कि गर्मी के मौसम में भूमि और जल संरक्षण का क्या महत्व है, तो किसान भाइयों बहनों, आप जैसा जानते हैं कि आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये हमारी दिनचर्या को दिन प्रतिदिन समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है और ये और भी ज्यादा दृश्य में आता है जब गर्मी बढ़ती है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे मिट्टी की नमी घटती है, भूजल स्तर नीचे जाता है और यदि सावधानी ना बरती जाए तो मानसून के समय उपजाऊ मिट्टी बह जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए गर्मी का मौसम संरक्षण के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। अब आइए समझते हैं भूमि और जल संरक्षण के महत्व को। तो मिट्टी और पानी खेती की दो जीवन रेखाएं हैं। यदि मिट्टी का कटाव हो गया या वर्षा जल बहकर निकल गया तो चाहे हम कितनी भी खाद या बीज डाल लें, अपेक्षित उत्पादन नहीं मिल पाता। इसलिए गर्मी में किए गए संरक्षण के उपाय खरीफ फसलों की मजबूत नींव बनाते हैं।
0: तो सर, ऐसे में गर्मी में भूमि संरक्षण के लिए किसान भाई बहन कौन कौन से जरूरी उपाय कर सकते हैं?
1: किसान भाइयों बहनों, आइए देखते हैं हम कैसे गर्मी में भूमि और जल संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण है इसमें खेत को खाली न छोड़ें। गर्मी में खाली पड़ी जमीन सबसे अधिक पवन अपरदन का शिकार होती है। खेत में फसल अवशेष, भूसा या मल्च छोड़ना मिट्टी को ढक कर रखता है जिससे नमी सुरक्षित रहती है और कटाव कम होता है। दूसरा है मेड़ और खेत की सीमाओं की मरम्मत करना। गर्मी में खेतों की मेड़ों की मरम्मत कर लेनी चाहिए ताकि बरसात आने पर पानी खेत में रुके और मिट्टी बहकर बाहर ना जाए। तीसरा महत्वपूर्ण अवयव है फसल चक्र और हरी खाद की योजना। गर्मी के अंत में ढेंचा, सनई जैसी हरी खाद बोने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि ये फसल में मिट्टी की संरचना सुधारे और जल धारण क्षमता को बढ़ाए।
0: और सर, गर्मी में जल संरक्षण के लिए किसान भाई बहन कौन से जरूरी तरीके अपना सकते हैं?
1: गर्मी में जल संरक्षण की तैयारी के लिए निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जा सकता है। पहला है वर्षा जल संग्रहण की तैयारी। इसके लिए हम तालाब, गड्ढे, सूखता और समोच्च खाई जैसी संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं या उनकी साफ सफाई करके मरम्मत कर सकते हैं ताकि पहली बारिश का पानी इसमें आकर समाहित हो सके और वो बेकार ना जाए। दूसरा, समोच्च खेती और खाई का निर्माण। ढलान वाले खेतों में समोच्च रेखा पर खाइयां व बांध बना लेना चाहिए ताकि पानी के बहाव को धीमा किया जा सके और मिट्टी के अपरदन को रोका जा सके। तीसरा है जल धारण क्षमता बढ़ाने के उपाय। इसमें प्रमुख हैं गोबर की खाद, कंपोस्ट और जैविक खाद। मिट्टी को ये सारे अवयव स्पंज बना देते हैं जिससे कि पानी अधिक समय तक जमीन में रुकता है और ये मिट्टी में जल की धारण क्षमता को भी बढ़ाता है।
0: भूमि और जल संरक्षण के लिए ऐसी कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए और किसान भाई बहन सावधानी बरत सकते हैं?
1: हम जो यहाँ बताने वाले हैं तीन प्रमुख ध्यान देने योग्य सावधानियां हैं। पहला है अत्यधिक जुताई से बचें, क्योंकि अत्यधिक जुताई से कार्बनिक पदार्थ का ह्रास होता है, इससे मिट्टी कमजोर बनती है और जल धारण क्षमता कम होती है। रेतीली मिट्टी में पवन कटाव से बचाव हेतु खेत को ढक करके रखना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, पानी की निकासी नलियां पहले से साफ कर लेना चाहिए ताकि अधिक पानी खेत को ना डुबोए और ये वाटर लॉगिंग की समस्या ना बना दे।
0: तो सर अंत में अगर आप किसान भाई बहन को कोई संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा?
1: जरूर, हम किसान भाई और बहनों को कुछ समापन संदेश देना चाहते हैं। किसान भाई और बहनों, याद रखिए, पानी बचाओगे तो फसल पाओगे, मिट्टी बचाओगे तो भविष्य बचाओगे। गर्मी में की गई थोड़ी सी तैयारी बरसात में बड़ी समस्या से बचा सकती है और आपकी खेती को सुरक्षित, टिकाऊ और लाभकारी बना सकती है। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय किसान।
0: सर आपने बहुत ही उपयोगी बातें बताई, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की अपना और अपनी फसलों का रखें विशेष ध्यान और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक।

0: नाम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बावेस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोआन देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं धान की बुआई की विभिन्न तकनीकों के बारे में। किसान भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि धान हमारे लिए एक प्रमुख खाद्यान्न है, साथ ही हमारी कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाता है। इसलिए कई मायनों में धान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि धान की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो, और इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि किसान भाई बहन ये समझे, ये जाने कि किस तरह की मिट्टी में किस तरह की बुआई करनी चाहिए। आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी से। मैम, आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट, आप हैं शस्य विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद उमा, नमस्कार।
0: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि धान की बुआई की कितने प्रकार की तकनीकें होती हैं?
2: विशेषतः धान की बुआई जो हम करते हैं वो कई हद तक डिपेंड करती है कि किस तरह की मिट्टी है या किस तरह का जल वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर हम तरीकों की बात करें, विभिन्न तकनीकों की बात करें, तो बेसिकली तीन चार तकनीकें होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सोइंग, जिसको हम सीधी बुआई बोलते हैं। एक होती है ट्रांसप्लांटिंग, जिसको हम रोपाई विधि बोलते हैं। उसके बाद होती है श्री विधि, जिसको हम सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन बोलते हैं। और एक होती है मैकेनिकल सीडिंग, जिसमें हम अगर ड्रम सीडर वगैरह कोई मशीन्स यूज करके हम बुआई करते हैं बीज की। तो ये कुछ तकनीकें होती हैं। अब किसानों के पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कैसा जमीन है, उस पर जल जमाव हो रहा है या नहीं, या मिट्टी किस तरह का है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बुआई तकनीकें इस्तेमाल करना चाहते हैं।
0: जी मैम, तो मैम आप इन तीनों तकनीकों को विस्तार से समझा दीजिए।
2: पहली जो हमारी डायरेक्ट सोइंग यानी सीधी बुआई हो गई, तो डायरेक्ट सोइंग कहने का मतलब ही है कि हम या जब बुआई कर रहे हैं तो हम सीधे अपने जो मेन लैंड है, अपनी जो जमीन है, उस पर हम सीधे बुआई कर रहे हैं। तो दो प्रकार की डायरेक्ट सोइंग होती है, यानी सीधी बुआई दो तरीके की होती है। एक तो हमारी सूखी बुआई होती है और एक गीली बुआई होती है। सूखी को जिसको हम ड्राई DSR बोलते हैं और गीली बुआई जिसको हम वेट DSR बोलते हैं। तो सूखी क्या होती है कि जब किसानों के पास अगर पानी, वर्षा नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर पानी की कमी है, इरिगेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उस समय जल जमाव बहुत कम होता है ज़मीन पे। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जब हम वर्षा, जैसी पहली वर्षा आती है उसमें हम प्लॉविंग करते हैं और उसको सूखने के बाद, मतलब ज़मीन हमारी जो होती है वो हल्की सूखी होती है, और उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं, अपने धान की बुआई करते हैं। और दूसरी जो होती है गीली बुआई, गीली DSR जो होती है, उसमें जब अगर हमारे पास पहले क्या करते हैं बत्तर DSR जिसको बोलते हैं, उसमें हम थोड़ा इरिगेशन दे देते हैं। वर्षा अगर रहती है तो मिट्टी काफी गीली रहती है, तो हम उस समय प्लॉविंग करते हैं, उसके बाद हम पानी के ड्राई होने का वेट करते हैं। और जब हमारी मिट्टी में फील्ड कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि जब हल्की बहुत मॉइस्चर रहे मिट्टी में, तो हम सीधी बुआई करना चालू करते हैं धान की। अब सीधी बुआई करना कैसे है, हम सीधी बुआई करने के लिए जैसे धान की कोई भी वैरायटी है, अगर आप उसकी स्पेसिंग तो पहले देख लेते हैं, मतलब जनरली 20x10 के स्पेसिंग पे हम बुआई करते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लाइन 20 रो, जो हमारी रो के रो की डिस्टेंस होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम जब रो बनाते हैं उस पर लाइन, तो हम लाइन बनाकर और उस पर जो धान होता है उस पर सीधे तरीके से धान हम गिराते जाते हैं, उसको हम लाइन सोइंग बोलते हैं। और उसके बाद हम उसकी थिनिंग करके उसकी डिस्टेंस को मेनटेन करते हैं 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह की सीधी बुआई से क्या फ़ायदे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक पानी की बचत करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी को कोड़ना नहीं पड़ा या पडलिंग नहीं करनी पड़ी, मजदूरी कम हो जाती है इसकी वजह से, और काफ़ी हद तक समय की भी बचत होती है। जिन किसानों के पास मतलब पानी या जल जमाव नहीं है या पानी का फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में हम DSR जाते हैं, और DSR से काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि हमारे काफ़ी उसकी जो उपज होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और पानी जब बचता है, पानी मतलब पानी की बहुत ज़्यादा खपत नहीं होती है DSR में। दूसरी होती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग विधि। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि में क्या होता है कि पहले हमें नर्सरी लगाना होता है, तो नर्सरी हम अलग जगह करते हैं, और फिर जब नर्सरी का पौधा हमारा 20 से 25 दिन का हो जाता है, तो उस 20 से 25 दिन पुराने पौधे को हम उखाड़ कर एक एक करके हम उसको ज़मीन में लगाते हैं, हमारे मेन लैंड में लगाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी में जब बुआई कर रहे हैं तो नर्सरी मेन लैंड जब हम अपना प्रिपेयर कर रहे हैं उसके, समझ लीजिए मेन लैंड के सोइंग के 20 से 25 दिन पहले हमें अपना नर्सरी तैयार करके अपना बिछड़ा गिरा देना होता है। तो नर्सरी भी हम कई तरीके से तैयार करते हैं, चाहे वेट नर्सरी हो गया, ड्राई नर्सरी हो गया, डेपॉग नर्सरी हो गया, जो भी। तो अब हम जनरल जब बिछड़ा गिरा देते हैं तो उसके बाद 20 से 25 दिन के बाद क्या होता है कि जब हमारा धान में दो पत्तियां, दो लीफ जब अंकुरित होकर निकल आती हैं तो उस समय उसको हम निकालते हैं, और अपने मेन लैंड की तैयारी जो हमने कर रखी होती है, मेन लैंड की तैयारी कैसे करनी होती है, पडलिंग करना होता है, इरिगेशन करके उसको अच्छे से कोड़ना होता है, ताकि जब हम बीज निकाल रहे हैं, जो सीडलिंग्स हम जो निकाल रहे हैं उसके जड़े काफी अच्छे से पकड़ ले हमारे मिट्टी को। तो इसके लिए हमें पडलिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है।
0: पडलिंग यानी कि
2: हम कई बार, एक पडलर होता है, तो पडलर से हम कई बार मिट्टी को कोड़ रहे, अच्छी तरह से मिट्टी को मिला रहे, हमने पानी दिया, इरिगेशन दिया हमने मिट्टी में, और उसके बाद हमने कई बार पडलर चला दिया। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी, जो बड़े बड़े ढेर थे वो अच्छे अच्छे फाइन मतलब काफ़ी छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, और ये टूट जाने से क्या होता है कि वो काफ़ी स्टिकी मतलब काफ़ी अच्छे से वो जड़ों को पकड़ लेती हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे, मतलब जब हम वो सीडलिंग्स को हमने बिछड़े, जब हमारे बड़े हो जाते हैं, दो पत्ते जितने बड़े हो जाते हैं, तो उसको हम जब उखाड़ते हैं और दोबारा मेन लाइन में लाकर लगाते हैं, तो वो मेन लाइन में काफ़ी अच्छे से उनकी जड़ें पकड़ लेती हैं। तो इसलिए पडलिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे मेन लाइन के लिए, इस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तब। तो ट्रांसप्लांटिंग में क्या क्या, हमने पहले नर्सरी तैयार किया, जब हमारा बिछड़ा गिराया हमने, और जब वो 20 से 25 दिन पुराना हो गया तो हमने उस बिछड़े को, हमने उस पौधे को, मतलब हमने उस सीडलिंग को निकाला, और निकाल कर उसने मेन लैंड में उसको ट्रांसप्लांट कर दिया। और ट्रांसप्लांट करने के समय हमें ये ध्यान जरूर रखना है कि हमारी मिट्टी की पडलिंग काफ़ी अच्छे से हो गई हो, अतः क्या होगा कि जड़ें हमारी जो पौधे रहेंगे उसके जड़ें पकड़ेंगे नहीं मिट्टी पे। तो इसलिए ट्रांसप्लांट करना बहुत ज़रूरी होता है, और इस पर कुछ विशेष ध्यान रखनी पड़ती है हमारी ट्रांसप्लांटिंग में, वो ये कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें दूरी अच्छे से मेंटेन होनी चाहिए, 20 से 25 या 20 से 10, मतलब 20 बाई 10 या 20 बाई 25, ये हमारा 20 बाई 10 या 20 बाई 15, तो ये हमारा ट्रांसप्लांटिंग करने का स्पेस होता है, यानी दो रो टू रो के बीच की स्पेसिंग हमारी 20 होती है, और पौधे पौधे की स्पेसिंग जो होती है हमारी 10 से 15 सेंटीमीटर होती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी, किस तरह की वैरायटी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये विशेष ध्यान देना होता है आपको कि आपकी स्पेसिंग मेंटेन रहे उसमें, और पानी हमेशा रहना चाहिए। सबसे खास बात, जब आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उस केस में हमें ये ध्यान देना, जो कि DSR में नहीं था, हम जब ट्रांसप्लांट किया तो हमने विशेषता ये ध्यान रखना है कि हम जब पौधे को लगा देते हैं तो उसमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक की पानी हमेशा हम बरकरार रखते हैं, ताकि हमारा पौधा अच्छे से रहे। तो यूजुअली कहा जाता है कि ट्रांसप्लांटिंग हम उस जगह पे करते हैं जहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं हो, जैसे वर्षा हो गई और वर्षा का पानी काफ़ी हद तक उस ज़मीन पर टिका रहा, तो उस केस में हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं, काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो जिस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं होता उस केस में हम DSR कर सकते हैं। तो ये फ़र्क हो गया। और तीसरी विधि हो गई जो हमारी श्री विधि। तो श्री विधि तो और साइंटिफिक विधि हम जिसको बोलते हैं, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये थोड़ा साइंटिफिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें किसानों को विशेषतः बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ें तो हो गई हमारी नर्सरी की प्रिपेरेशन। तो जो हम नर्सरी तैयार करते हैं, अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांटिंग के समय बताया, हमने कहीं पे भी नर्सरी लगा दिया 20 से 25 दिन पे, तो उस केस में हमारे SRI के केस में क्या होता है कि हम जो नर्सरी तैयार करते हैं वो काफ़ी एरिया में, छोटे एरिया में करते हैं, और या तो हम डिपॉग नर्सरी भी तैयार करते हैं। तो उस डिपॉग नर्सरी में क्या होता है कि जब पौधे जो आपके 12 से 14 दिन के हो जाते हैं, तो उस केस में हम 12 से 14 दिन के पुराने पौधों को हम उठाकर उसको अलग अलग कर करके, और फिर हम मिट्टी में लगाते हैं। तो यहाँ पे भी हम ट्रांसप्लांटिंग ही कर रहे हैं, पर ये ट्रांसप्लांटिंग से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पहले तो हमने नर्सरी जो लगाया था पहले तो वो 20 से 25 दिन पुराना था, यहाँ पे जो हमारा नर्सरी है वो हम 10 से 12 14 दिन पुरानी सीडलिंग को ही उठाकर हम मिट्टी में लगाते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो अपनी मिट्टी को तैयार किया है वो और भी ज़्यादा हद तक, कई ज़्यादा हद तक मॉडलिंग हमने किया है। हमारी जो मिट्टी जो तैयार हुई है वो एकदम स्टिकी होती है, मतलब क्ले होती है। स्टिकी मतलब कि जैसे आप हाथ से उठाइएगा तो चिपचिपी मिट्टी लगेगी, तो हमने मिट्टी को इस तरह से तोड़ देना है पडलर से। तो हम इरिगेशन देते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होती हमारे खेत पे, हमने इरिगेशन दे दिया, मिट्टी पडलिंग कर दिया कई बार, और उसके बाद पडलिंग करके हमने अपने मिट्टी को इतने छोटे छोटे कण में तोड़ दिया कि जो छोटे छोटे ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स जो हम निकाल रहे हैं अपने डेपॉक नर्सरी से वो काफ़ी अच्छे से चिपक जाते हैं। इसमें जो एक दूसरी ध्यान हमें ये देनी है कि जो हम स्पेसिंग मेंटेन करते हैं वो 25-25 मतलब 25-25 रो टू रो होता है डिस्टेंस, और 25-25 प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करते हैं श्री विधि में। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि श्री विधि के जो छोटे छोटे जो सीडलिंग्स हैं अगर हम उनको ज़्यादा जगह देंगे तो उससे ज़्यादा टिलर्स निकलेंगे, मतलब ज़्यादा सेकेंडरी रूट्स और सेकेंडरी स्टेम्स निकलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं इसमें कि हम ये स्पेसिंग मेंटेन ज़रूर करते हैं 25x25 सेंटीमीटर का। दूसरी चीज़ कि जब हमने ट्रांसप्लांटिंग पहले जैसे किया था तो उसमें हमने सीडलिंग्स जो 20 से 25 दिन पुराना निकाला था तो उसमें हमने एक जगह पे जिसको हिल बोलते हैं, कई बार होता है कि हमने एक जगह पे एक से दो सीडलिंग्स डाल दिए, पर हमें श्री विधि में एक तरीका विशेष ध्यान ये देना होता है कि एक जगह पे हमें एक ही सीडलिंग डालना है और उसको बस चिपका देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर गाड़ते नहीं है उसको, बस वो इतना छोटा पौधा होता है कि वो आराम से आप अंगूठे से प्रेस कीजिएगा तो वो चिपक जाएगा। तो ये होता है, ये कुछ चीज़ें जो हमें विशेषतः ध्यान देनी होती है। तो पहला चीज़ ये हो गया कि नर्सरी 10 से 14 दिन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप उसको हटा रहे हैं, जब आप हर सीडलिंग्स को अलग कर रहे हैं तो एक एक सीडलिंग को ही हम एक जगह पे डालते हैं और बहुत ज़्यादा ज़ोर से मतलब अंदर घुसाते नहीं, जस्ट मतलब हमको बस थोड़ा सा उसको चिपका देना है, मिट्टी पे सटा देना है, वो अपने आप खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने आप बहुत काफ़ी अच्छे से टेलरिंग होती है उसकी और काफ़ी ज़्यादा ईड़ भी होती है। तो ये साइंटिफिक हमारा रिसर्च कहता है कि जब हम श्री विधि में लगाते हैं, प्रॉपर साइंटिफिक वे में धान लगाते हैं, तो हमारा ईड़ जो होता है धान का, जो हमारा उपज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है बाकी दोनों विधियों से। तो ये हो गई हमारी श्री विधि की कुछ और विशेषता। ध्यान इसमें ये देना होता है कि श्री विधि में हम जो जैसे आपने हमने नॉर्मल ट्रांसप्लांटिंग किया था तो उसमें हमने कहा था कि पानी को हमें 3 से 5 सेंटीमीटर तक मेंटेन रखना है स्टेजेस में उन पौधे में। तो लेकिन श्री विधि में क्या होता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि हमें हर समय 2 से 5 सेंटीमीटर का पानी उसमें जमा करके रखना है, नहीं। हम क्या करते हैं, अगर किसानों के पास जैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है, इसमें हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप पानी दे रहे हैं उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिन बाद जब मिट्टी में हल्के हल्के क्रैक्स, एकदम पतले सुई धागे जितने पतले क्रैक्स अगर जब नज़र आने लगे तो ही हम दूसरा इरिगेशन देते हैं। तो इसको हम ऑल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम श्री विधि में विशेषतः इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पानी बचे रहे और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से हमने जल को उसी समय डाला जब प्लांट पौधे को उस जल की आवश्यकता है, ना कि हमने हर समय डालकर अपने जल की भी बर्बादी की और मतलब पौधे को जब ज़रूरत है तो ही हम जल डाल रहे हैं इसमें श्री विधि में। तो ये होती है। और इसके अलावा एक चीज़ का मतलब जिसको हम लिमिटेशन बोल सकते हैं श्री विधि की, वो ये होती है कि थोड़े लेबर भले ज़्यादा लगते हैं इसमें, पर इसमें उपज जो कहते हैं उपज काफ़ी हद तक बेहतर आती है श्री विधि से अगर हम बुआई करें तो, अगर ट्रांसप्लांटिंग या DSR की अपेक्षा करें तुलना करें तो उससे ज़्यादा श्री विधि में हम पाते हैं अगर आप साइंटिफिकली बुआई उसकी करें तो। तो ये हमारी 3 तकनीकें थी। इसके अलावा एक होती है कि अगर किसानों के पास मैकेनिकल सीडिंग की अगर उनके पास सुविधा है तो जैसे ड्रम सीडर मेथड हो गया, तो इसमें क्या होता है कि ड्रम सीडर एक मशीन आता है जिससे सीधे सीधे अंकुरित बीजें जो होती हैं वो ड्रम सीडर में हम डालते हैं और ड्रम सीडर को चलाते हैं, वैसे चलते जाएगा वैसे वैसे वो सीडलिंग की बुआई होती जाएगी कुछ अपनी डिस्टेंस पे। तो वो ड्रम सीडर होता है क्या, वैसा मशीन होता है जैसे चक्के पे कुछ 20-25 सेंटीमीटर की दूरी पर कांटे होते हैं, तो जब जब हम उसको चलाएंगे तो वो कांटे के साथ साथ वो छेद मतलब उसी कांटे से वो जो अपना अंकुरित बीज है वो निकल कर और अपने निर्धारित स्पेस पर अपने आप लगते जाएगा जैसे जैसे हम उस मशीन को चलाएंगे। तो ये तो तब बात हो गई जब अगर किसानों के पास ये मशीन है। अगर किसानों के पास ये मशीन नहीं है तो ऊपर में से जो मैंने तीन बताए आप उन तीनों में से किसी भी तकनीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे जल आपके पास कितना अवेलेबल है, आप कितना खर्च कर सकते हैं, उस पे डिपेंडेंट है ये सब।
0: जी मैम, मैम इन तकनीकों को समझाते हुए कई बार आपने नर्सरी के बारे में बात की और एक बार आपने ये भी कहा कि कई प्रकार की नर्सरियां होती है।
2: जी,
0: तो मैम कितने प्रकार की नर्सरी होती है?
2: बेसिकली ये तो जब मैंने नर्सरी का बात करना इसमें इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम तीनों जब हमने विभिन्न तकनीकों की बुआई करने की जब बात की तो उसमें हम नर्सरी एक ही तरीके का नहीं लगाते। जैसे मैंने अभी बताया कि नर्सरी जो हमारी श्रीविधि में थी वो डिपॉग नर्सरी होती है। अगर हम ट्रांसप्लांट करें तो हम वेट नर्सरी भी कर सकते हैं, ड्राई नर्सरी भी कर सकते हैं। और DSR क्या होता है, DSR में तो हम डायरेक्टली बुआई कर रहे हैं तो उसमें हमें नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो नर्सरी बहुत हद तक हमें डिपेंड करता है कि हम कब अपने पौधे की बुआई करना चाहते हैं। जैसे कभी क्या हो गया कि अगर हमारे हम जो धान के पहले हमने जिस पौधों को लगा रखा है अगर उसके काटने के बाद हमारे पास ज़्यादा समय अगर नहीं है धान को लगाने के तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी अपना तैयार कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपना पौधा काटेंगे तो तुरंत से उसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकेंगे। तो अब नर्सरी बेसिकली तीन तरीके की होती है, एक होती है अपलैंड नर्सरी, एक लोलैंड नर्सरी और तीसरी होती है डिपॉग नर्सरी। तो अपलैंड नर्सरी हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं है, किसानों के पास इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई का कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसमें क्या कर सकते हैं किसान, उसमें ड्राई मेथड से करना क्या होता है कि हम उसमें जो हमारा अपलैंड ज़मीन होता है, अपलैंड ज़मीन मतलब कि जहाँ पे पानी जल जमाव ना हो, तो उसमें हम उसको छोटे छोटे उस जो मिट्टी है जो हमारी ज़मीन है उनको हम छोटे छोटे बेड में बांट लेते हैं। तो जैसे एक से एक 1.5 मीटर के चौड़ाई तक के बेड में बांट लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो धान रहता है हम उसको पहले अंकुरित करा देते हैं जिसको हम बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो आपको क्या करना है कि पहले एक दिन 72 घंटे के लिए आपको जो धान है उसको पानी में भिगो कर रखना है। देखिएगा कि जब उसमें अंकुरण थोड़ी सी हो जाए तो उसको उस जौ को हम क्या बोलते हैं प्री जर्मिनेटेड सीड। तो उस जौ को आपको छिड़क देना है, जो आपने अभी बेड बनाया था उसके ऊपर आपको स्प्रेड कर देना है और उसको अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप उसके ऊपर गनी बैग मतलब जो जूट के बैग होते हैं उसके ऊपर लगा दीजिए, बिछा दीजिए और अपना हल्का हल्का पानी आप हर 2-3 दिन में देते रहिए। तो इससे क्या रहेगा कि अंदर का मॉइस्चर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा और उसके बाद कुछ 4-5 दिनों के बाद आप गनी बैग को हटा दीजिए, देखिएगा कि वो आपका जो बीज है वो अंकुरण हो गया है। दूसरा विधि हो गया हमारा लोलैंड नर्सरी। तो लोलैंड नर्सरी तो सिंपल होता है, जहाँ पे पानी है आप पडलिंग कीजिए अपने ज़मीन पे, पडलिंग करके उसमें पानी की कोई कमी नहीं है, पानी ठहर रहा है, उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका नेचुरल जैसा सीड आता है आप उसको सिंपल ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। प्री जर्मिनेटेड सीड दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि अगर प्री जर्मिनेटेड है तो वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप प्री जर्मिनेटेड सीड ही लें और उसको आप ब्रॉडकास्ट कर दें और ब्रॉडकास्ट करने के बाद जैसे हम नॉर्मली अपना ब्रॉडकास्ट करने के बाद हम वेट करेंगे 20 से 25 दिन के बाद हम उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करेंगे। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने श्रीविधि के लिए बताया था डिपॉग नर्सरी, तो ये डिपॉग नर्सरी के लिए तो हमें ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब हम सीधे क्या कर सकते हैं कि अपने सीमेंट एरिया पर भी अपना वो नर्सरी तैयार कर सकते हैं। क्या करना है, प्लास्टिक शीट लेना है, उसके ऊपर कुछ 2 से 5 सेंटीमीटर का बालू हमें परत बना लेनी है उसकी, और उस बालू के ऊपर हमने क्या करना है कि हमने बीजों को काफ़ी घने मात्रा में ब्रॉडकास्ट करके, वो बीज जो हम छिड़क रहे हैं वो काफ़ी घना होना चाहिए। तो घना इसलिए होना चाहिए कि जब वो बड़ा होगा, अंकुरण जब होगी उसमें और जब उसकी जड़ें आएंगी तो जड़ें आपस में मिल जाएंगे, मतलब वो जड़ें आपस में एक दूसरे से बहुत एक दूसरे को पकड़ लेंगी। तो इससे क्या होगा कि एक तरह का मैट बन जाता है। तो जब आप उसको निकालिएगा बालू से तो आप उसको रोल करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही रोल मैट बनाकर आप उसको खेत पे लेके जाइए। खेत पे लेके जाने के बाद हर एक सीडलिंग को आप अलग कीजिए और उस सीडलिंग को आप मिट्टी में लगा दीजिए। तो ये होता है डिपॉग नर्सरी। तो ये डिपॉग नर्सरी हम श्रीविधि में इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मैंने बताया था कि पानी मॉइस्चर जो होता है वहाँ पे काफ़ी स्टिकनेस होती है, तो जब आप डिपॉग नर्सरी के जो पौधे होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और काफ़ी आसानी से वो चिपक जाता है, तो इसलिए हम श्रीविधि में यूजुअली डिपॉग नर्सरी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीन बेसिक नर्सरी है हमारी।
0: तो मैम आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि कितने तरीके से धान की बुआई होती है, साथ ही कितने प्रकार से नर्सरी तैयार की जाती है अलग अलग बुआई के लिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद धन्यवाद मुझे।
0: तो किसान भाई बहनों, आप अलग अलग तरीके से धान की बुआई कर सकते हैं, जिस तरह की मिट्टी है उस तरीके से, और साथ ही अलग अलग बुआई के लिए अलग अलग तरीके से नर्सरी तैयार करनी होती है, और कभी कभी नर्सरी नहीं भी तैयार करनी होती है, जैसे कि सीधी बुआई में। तो किसान भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा काफी उपयोगी साबित होगी। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की

0: टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, नीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त
3: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनकी जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी, तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, एएनएम दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के।

0: जन कल्याण के।
1: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
1: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
1: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
1: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
1: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
1: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम एक बहुत ही मनोरंजक विषय के बारे में बातें करने वाले हैं। आज हम बातें करने वाले हैं फिल्मों के बारे में। जी हाँ, ये जो फिल्में होती है ना, वो समाज का आईना होती है और फिल्में हो या साहित्य हो, ये कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से समाज को प्रभावित भी करती है और बहुत गहरे इन्फ्लुएंस डालती है, चाहे हमारी आज़ादी की बात हो या फिर किसी और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना हो। फिल्में, साहित्य, ये दोनों ही समाज को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित ज़रूर करती है और लेडीज़ फर्स्ट कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं उन फिल्मों के बारे में जो हर महिला को या हर लड़की को ज़रूर एक बार अपने जीवन में तो ज़रूर देखनी चाहिए। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो 2014 में रिलीज़ हुई फिल्म क्वीन है। क्वीन एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको शादी से कुछ समय पहले ही लड़का मना कर देता है शादी करने के लिए। पहले लड़के ने ही प्रपोज किया था, ठीक ठाक लव स्टोरी थी, लेकिन एन मौके पर लड़का लड़की को शादी के लिए मना कर देता है। उसके बाद वो लड़की कैसे बदलती है और क्या करती है अपने जीवन में, ये किसी बदले की कहानी नहीं है, वो किसी से बदला नहीं लेती है, लेकिन अपने जीवन में वो जो बदलाव लाती है और एक कॉन्फिडेंट लड़की बनकर जो बाहर आती है, वो बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। ये आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए। क्वीन 2014 में रिलीज हुई थी, हिंदी में अवेलेबल है। और छपाक 2020 में रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म छपाक, ये फिल्म सच्ची घटना से प्रेरित है। इस फिल्म में आप देखेंगे कि मालती नाम की लड़की पर एसिड अटैक होता है और किस तरीके से वो स्ट्रगल करती है, साहस दिखाती है और जस्टिस के लिए लड़ती है, ये बहुत इंस्पायरिंग कहानी है। और जब फिल्मों की बात आए और लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्मों की बात आए और दंगल की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल, जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में और जो लड़कियां किस तरीके से खेल में भी आगे बढ़कर परचम लहरा रही है। कई जगहों पर आज भी कुश्ती को लड़कों का खेल माना जाता है। जी हाँ, कुश्ती आज भी लड़कों का खेल माना जाता है, लेकिन इस भ्रम को तोड़कर लड़कियां कुश्ती में भी बहुत नाम कमाती है और ये भी रियल जिंदगी से इंस्पायर्ड कहानी है 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल। और 2012 की कहानी, अब तक जितनी भी फिल्मों की हमने बात की वो बदले की कहानी नहीं थी, लेकिन 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी बदले की कहानी है और ये इतनी कमाल की कहानी है, वाकई आप फिल्म देखने के बाद अंत में यही सोचेंगे कि इस फिल्म ने हमें बहुत चालाकी से ठगा है। और आप फिल्म देखिए, ज़्यादा बताने पर फिल्म का मजा ख़राब हो जाएगा। इस फिल्म में विद्या बाक्षी नाम की एक महिला है जो प्रेग्नेंट है और किस तरीके से प्रेगनेंसी की हालत में वो अपने पति को ढूंढने निकली है, ये उसकी जर्नी को दिखाता है और ये उसकी कहानी को दिखाता है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म कहानी। 2016 में एक और फिल्म रिलीज हुई थी पिंक, ये तीन लड़कियों की कहानी है जो मर्जी की बात करती है, महिला के अधिकार की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है। तीन लड़कियां जो एक मेट्रो शहर में रह रही है और वहां उसके साथ कुछ ऐसा होता है, एक रात कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि उसके बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है और उसके बाद एक सवाल निकल कर आता है कि क्या हाँ या ना मायने रखता है या नहीं। 2016 में रिलीज हुई फिल्म पिंक आपको जरूर देखनी चाहिए। और इंग्लिश विंग्लिश तो आप देखिए, अपनी मम्मी को दिखाइए, जरूर दिखाइए। 2012 में ये फिल्म आई थी श्रीदेवी की, बहुत ही कमाल की फिल्म, एक हाउसवाइफ जो इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है, अपना आत्मविश्वास और अपना स्वाभिमान, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लाने की कोशिश करती है, क्या उसकी जर्नी होती है और किस तरीके से वो इंग्लिश सीखती है या नहीं। और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा हर दूसरे घर की शायद यही कहानी है। 2012 में रिलीज हुई फिल्म इंग्लिश विंग्लिश जरूर देखिए। और हम आगे बढ़े तो द ग्रेट ग्रेट इंडियन किचन। ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। और इस फिल्म की बात करें तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके बहुत बड़े सपने तो नहीं है, बस छोटा सा सपना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन उसकी शादी हो जाती है और किस तरीके से वो किचन और घर गृहस्थी में उलझ कर रह जाती है और किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आप अगर ये फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप भी अपने घर पर यही गलती तो नहीं कर रहे हैं अपनी माँ के साथ या किसी ऐसी महिला के साथ जो जिन्होंने अपने आप को घर के प्रति समर्पित कर दिया है। ये फिल्म यानी कि द ग्रेट इंडियन किचन आपको जरूर देखनी चाहिए। और अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ ये फिल्म है आरओवी। और इस फिल्म के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, बस इतना बताऊंगी कि आरओवी को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से उसके घर वाले उसे खुद निकाल देते हैं। आगे उसकी जो भी जर्नी होती है उस दौरान उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और फिर अंत इस फिल्म का ऐसा होता है कि आप भौचक्के रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आपका दिल दुखेगा बहुत। ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अगली जो फिल्म मैं आपको बताने वाली हूँ वो है नील बटे सन्नाटा। 2015 में रिलीज हुई थी फिल्म नील बटे सन्नाटा। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो खुद पढ़ाई करती है ताकि उसकी बेटी भी अपने सपने पूरे कर सके, उसकी बेटी भी पढ़ाई कर सके। इस फिल्म का थीम यही है कि पढ़ना लड़कियों के लिए कितना जरूरी होता है और माँ और बेटी का बहुत ही प्यारा सा बॉन्ड इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। नील बटा सन्नाटा 2015 में रिलीज हुई थी, ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। अर्थ ये बहुत ही कमाल की फिल्म है, इस फिल्म को हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म बताती है कि एक महिला के जीवन का क्या अर्थ है, अगर उसकी शादीशुदा जिंदगी अचानक बिखर जाती है तो फिर क्या होता है। जब भी आप स्पाई थ्रिलर जासूस की कहानी पढ़ते हैं या फिर फिल्म के बारे में सोचते हैं तो कोई लड़का ही आपकी नज़र में आता है, लेकिन राजी ये बहुत ही कमाल की फिल्म है और ये आपकी उस सोच को चैलेंज करती है, उस सोच को तोड़ती है कि कोई स्पाई कोई जासूस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। राजी आलिया भट्ट की बहुत ही बेहतरीन फिल्म, 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और एक फिल्म बहुत चर्चित हुई थी जब वो रिलीज हुई थी, थप्पड़। सिर्फ एक थप्पड़ ही तो मारा है लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। थप्पड़ 2020 में रिलीज हुई थी और ये बहुत सही सवाल उठाती है। कोई भी इंसान जिसको अपने बराबर का समझता है या अपने से ऊपर समझता है उस पर कभी भी हाथ नहीं उठाता, लेकिन एक महिला पर एक पत्नी पर थप्पड़ उठाना कितना आसान होता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। और किस तरीके से ये फिल्म एक बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि एक थप्पड़ लेकिन एक थप्पड़ भी क्यों। ये फिल्म हर महिला को जरूर देखनी चाहिए। वैसे जब हमने डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड एक फिल्म की बात कर ही ली है तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे को कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, ये फिल्म आपको हिंदी में मिल जाएगी। जया नाम की एक मिडिल क्लास लड़की की कहानी है जिसकी शादी होती है और बाद में किस तरीके से उसे डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ता है और किस तगड़े तरीके से वो कमबैक करती है और सारी चीजें अपने हक में ले आती है। ये फिल्म बहुत ही कमाल की, मतलब कॉमेडी भी है और मैसेज भी साथ साथ दे जाती है, कहीं कहीं दिल दुखता भी है। तो 2022 में रिलीज हुई फिल्म जया जया जया हे ये आपको जरूर देखनी चाहिए। और अभी हमने राजी के बारे में बात की कि जब भी हम किसी जासूस की बात करते हैं या पुलिस ऑफिसर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कोई हीरो ही आता है, लेकिन जब हम मर्दानी फिल्म की बात करते हैं तो इस फिल्म में रानी मुखर्जी का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से केस को सुलझाता है। 2014 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद इस सीरीज के और भी फिल्में आई तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। 2014 में आई फिल्म मर्दानी, किस तरीके से रानी मुखर्जी का किरदार एक केस को सुलझाता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुलझाता है। और 2024 में रिलीज हुई फिल्म लापता लेडीज, एक साथ बहुत सारे मुद्दों को ये फिल्म उठाती है, घूंघट प्रथा, लड़कियों का पढ़ना और आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, बहुत सारी बातें ये फिल्म आपको बताती है। मतलब अगर इस फिल्म के मैसेजेस में यहाँ देने बैठ जाऊं तो 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाएंगे। आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी फिल्म और साथ साथ ये बहुत अच्छे मैसेजेस भी देती है। चाहे लड़की हो या लड़का हो हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। 2024 में रिलीज हुई थी फिल्म लापता लेडीज। और अब तक हमने जितनी भी फिल्मों के बारे में बात की उन फिल्मों को सिर्फ लड़की को नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कहते हैं नाम कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, उसी तरीके से किसी भी सफल स्त्री के पीछे एक ऐसे पुरुष का हाथ होता है जो उसे सपोर्ट करता है, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ा होता है और उसे प्रोत्साहित करता है। तो ये फिल्में सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखना चाहिए। अगर आप अपनी पत्नी अपनी बेटी अपनी बहन को या फिर अपने आसपास की स्त्रियों को बेहतर करते हुए देखना चाहते हैं, अच्छे मुकाम पर पहुंचते हुए देखना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनते हुए देखना चाहते हैं जरूरी नहीं है कि करियर में ही अच्छा करना अच्छा होता है, अगर वो हाउसवाइफ बनना ही चुनती हैं तो भी उनका आत्मसम्मान उतना ही जरूरी होता है। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में ये आपको बहुत अच्छी तरीके से देखने को समझने को मिलेगा, इसलिए जितनी भी फिल्मों के बारे में हमने बात की वो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं लड़कों को भी देखनी चाहिए। फिल्मों की बात करें तो फिल्मों की बात तो होती ही रहेगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप अगर कभी फ्री हो और कुछ अच्छा देखने का दिल करे और मोटिवेशनल देखने का दिल करे, मीनिंगफुल देखने का मन करे, तो ये फिल्में आप जरूर देखें अभी के लिए। तो लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए से होंगे और अपना और अपने अपनों का विशेष ख्याल रख रहे होंगे। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें और मुझे दे यानी कि आपकी होस्ट आपकी दोस्त उमा को दे इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
0: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़ कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं, छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है, ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाई बहनों को संबोधित हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, उन्नत कृषि में आज हम बात करने वाले हैं सस्य फसलों में फॉस्फोरस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फॉस्फोरस कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर से सस्य फसलों के लिए, और बिहार की मिट्टी में फॉस्फोरस की उपस्थिति परिस्थिति क्या है। इस बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कस्तूरिका सेन ब्योरा। मैम है डिपार्टमेंट ऑफ सॉयल साइंस से और मैम है असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद उमा।
0: मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सस्य फसल क्या है।
2: उमा, अगर हम लोग सस्य फसलों के बारे में आलोचना करें तो जैसे कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, तो इस राज्य में अगर हम सस्य फसलों के नाम पे जाए तो जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, जौ तथा इस तरह की अनेक फसलों उगाई जाती है, और हमारी जो बिहार की किसान है उनकी जो आय है उसकी 60-70% आपकी इस सस्य फसलों से ही आती है। तो इसकी गुणवत्ता और इस जो ये फसलें हैं इसकी उत्पादकता बढ़ाना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक पहलू है। तो कैसे हम लोग संतुलित मात्रा में इसमें पोषक तत्व प्रबंधन करें, ये हमारी सॉइल साइंस डिपार्टमेंट के लिए एक शोध की विषय है। और जो हमारे पोषक तत्व हैं, जैसे हम लोग पहले से भी जानते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये तीनों जो पोषक तत्व है वो बहुत मात्रा में जरूरत होता है इस सस्य फसलों में। तो ये तीनों न्यूट्रिएंट के बीच में जो फॉस्फोरस होता है ये बहुत अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है, जिसके बिना हमारी ये तीनों या जो भी सस्य फसलें हमारे बिहार में उगाई जाती है या फिर हमारे भारतवर्ष में उगाई जाती है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी। तो फॉस्फोरस एक बहुत अत्यंत जरूरी पोषक तत्व होती है अगर हम सस्य फसलों की बात करें, और सस्य फसल जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: तो मैम, फास्फोरस क्या है, अब ये बताइए।
2: जी, फास्फोरस पौधों के जीवन काल में एक अत्यंत जरूरी पोषक तत्व है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। और अगर हम लोग कोशिकाओं के अंदर की बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करें या फिर आलोचना करें तो उसमें ऐसे नाम है, अगर आप सुने होंगे ATP, ADP, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, तो फास्फोरस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सारे बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स का। यानी जितने भी जीवंत प्राणी है, जैसे कि हम लोग चाहे मनुष्य है, पौधा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु है, उनकी कोशिकाओं के लिए फास्फोरस बहुत अत्यंत जरूरी होता है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर पाए। तो फास्फोरस क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बहुत सारे बिंदुआ है या प्रक्रियाएं हैं जिसमें फास्फोरस जरूरी होती है, जैसे कि कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ऊर्जा संचरण, जड़ विकास, आपकी फ्लावरिंग, पुष्पन, और हमारी जो मैच्योरिटी स्टेज होती है सस्य फसलें स्पेसिफिकली।
0: तो मैम, सस्य फसलों में अगर हम फास्फोरस के रोल के बारे में बात करें तो इसका क्या रोल है?
2: जी, हमने अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया कि ये हमारी कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उसके साथ साथ अगर हम लोग एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट या फिर उसकी ग्रोथ के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये क्यों जरूरी है, ये हमारी जड़ जो होती है जब भी हम लोग रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो पहला जो डेवलपमेंट होता है हमारे पौधा वो होती है हमारी जड़। तो ये जड़ की जो विकास एवं वृद्धि होती है उसमें फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी होती है, यानी पौधों की प्रारंभिक विकास के लिए फास्फोरस अत्यंत जरूरी है। अगर जड़ ही विकसित नहीं होगा तो जो आपकी ऊपरी भाग है आपके पौधों का वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए जड़ को अच्छा और मजबूत बनाने के लिए हम लोग को उसी समय जड़ की विकास के लिए बुआई या रोपाई के समय में हम लोग फास्फोरस को अप्लाई करते हैं मिट्टी में। और भी बहुत सारे स्टेजेस से हमारे सस्य फसलों में जहाँ पे आपकी फास्फोरस की जरूरत होती है, जैसे कि आपकी मैंने पहले भी बताया मैच्योरिटी स्टेज में या पुष्पन की स्टेज में या फ्लावरिंग की स्टेज में, उसमें भी आपको फास्फोरस की कुछ मात्राओं की जरूरत होती है। और साथ ही साथ हमारे जैसे पोटेशियम होता है जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में या फिर कोई भी डिजीज या दूसरे जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं उसको पौधों में उसकी जो खराब स्थिति परिस्थितियां होती है उसको रोकने के लिए जैसे ये कारगर होता है, तो वैसे फास्फोरस भी ये सब कार्यों में भी इसकी अत्यंत बड़ा योगदान है। यानी फास्फोरस के बिना हमारी कोई भी सस्य फसलें अच्छी उत्पादन या फिर अच्छी वृद्धि इसकी नहीं हो सकती है।
0: मैम, जब फास्फोरस इतना इंपॉर्टेंट है तो बिहार की मिट्टी की अगर हम बात करें तो बिहार की मिट्टी में फास्फोरस की क्या स्थिति है?
2: जी, आपने ये बहुत अच्छी सवाल पूछा है। अगर हम देखें बिहार की हमारी मिट्टी को, बिहार की मिट्टी में ज़्यादा आपकी जलोढ़ मिट्टी आती है और जलोढ़ मिट्टी गंगा की गंगा तट की पूरा किनारे वाले जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे में इस तरह की मिट्टी आती है जिसको आप लोग हम लोग इंग्लिश में एलुवियल सॉइल बोलते हैं। उसके साथ साथ हमारी फास्फोरस की जो केमिस्ट्री है मिट्टी के अंदर वो बहुत यूनिक है। मतलब कैसे, जैसे कि अगर आपकी जो पीएच होता है, अगर आप सॉइल के पीएच के बारे में जानते होंगे तो दो तरह की या तीन तरह की सॉइल आपने पीएच के आधार में पढ़े हैं या फिर जाने हैं, जैसे कि एसिड सॉइल, न्यूट्रल सॉइल और अल्कलाइन सॉइल, यानी अम्लयुक्त मिट्टी, क्षारयुक्त मिट्टी। तो ये दोनों ही केस में फास्फोरस क्या होता है, मिट्टी के अंदर जमा हो जाता है यानी कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसका मतलब क्या होती है, हम जैसे ही फास्फोरस फर्टिलाइजर देते हैं या फिर फास्फोरस मिट्टी में सप्लाई करते हैं तो वो तुरंत अम्लीय मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के साथ फिक्स हो जाती है, और अगर आपकी न्यूट्रल या क्षारयुक्त मिट्टी होती है तो उसमें वो कैल्शियम के साथ या सोडियम के साथ फिक्स हो जाती है। तो यानी फास्फोरस देते ही वो कंपाउंड बना लेता है, यानी हम जितना भी प्रतिशत फर्टिलाइजर दे, फास्फेटिक फर्टिलाइजर दे, तो वो मिट्टी में लॉस हो जाती है, पौधे को पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए इसी कारणवशतः फास्फोरस की कमी हर एक भारतीय मिट्टी में है। तो अगर हम लोग बिहार की स्थिति देखें तो इसमें 4.13 टू 13.6 मिलीग्राम पर केजी फास्फोरस होता है जो मध्यम वर्ग होता है, यानी इसमें डेफिशिएंसी भी है, डेफिशिएंट सॉइल भी है और मीडियम डेफिशिएंट सॉइल भी है, यानी हाई फास्फोरस बिहार की सॉइल में नहीं है। तो हमारा इसीलिए जो फास्फोरस यूज एफिशिएंसी होती है सस्य फसलों में वो मैक्सिमम आपकी 15 से 20 या 30 प्रतिशत तक होता है। इसका मतलब क्या होता है, अगर हम 100 किलो फास्फोरस फर्टिलाइजर मिट्टी में दे रहे हैं देन इसका सिर्फ 15 से 20 प्रतिशत यानी 15 से 20 किलो यूज हो रहा है, बाकी जो 80 किलो होता है वो सॉयल के अंदर फिक्स हो जाती है। तो इसीलिए हमें फास्फोरस को देने की टाइम भी बहुत समझदारी से हम लोग को देना है ताकि जितना हम फास्फोरस की फर्टिलाइजर दे रहे हैं वो पौधों के अंदर जा रहा है। तो अगर हम इन नटसेल अगर हम बोले कि बिहार की सॉयल में फास्फोरस की क्या स्थिति है तो आप ये सोच सकते हैं 50 से 60% तो डेफिशिएंट और मार्जिनल डेफिशिएंट जोन में आएगी।
0: तो मैम, ऐसे में फास्फोरस की स्थिति को ठीक करने के लिए, फास्फोरस के मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रबंधन किए जा सकते हैं?
2: ये बहुत अहम पहलू है। हम लोग ये तो जान गए कि फास्फोरस की कमी है मिट्टी के अंदर, या फिर अगर हम लोग फर्टिलाइजर देते हैं तो वो बहुत जल्दी फिक्स हो जाती है, यानी हमारी जो भी पैसे लगेंगे फास्फोरस पे वो तो हमारा ज्यादा वेस्ट ही होगा। तो इसको हम लोग कॉम्बैट करने के लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे हम लोग हर एक न्यूट्रिएंट के क्षेत्र में जैसे हम करते हैं कि हमें सॉइल टेस्ट बेस्ड रिकमेंडेशन हमेशा करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग फास्फेटिक फर्टिलाइजर देने से पहले पहले मिट्टी को जांच ले अच्छी तरीके से, यानी उसमें फॉस्फोरस की मात्रा कितना पहले से उपलब्ध है के आधार पे हम लोग कितना और फर्टिलाइजर या फास्फेटिक फर्टिलाइजर की मात्रा देंगे वो कैलकुलेट करके ही हम लोग देंगे। हमारी बिहार की जो किसान भाइयों हैं वो बहुत अभी समझदार हो चुके हैं, वो हमेशा ही एक साल में एक बार जरूर अपनी सॉइल को जांच करते हैं, उसके बाद ही वो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर को देते हैं। ये एक अच्छी प्रक्रिया है या मैनेजमेंट प्रैक्टिस है जिसको हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। और एक इसके लिए जो फर्टिलाइजर है जैसे कि DAP, SSP और हम लोग यहाँ पे NPK के नाम पे भी जानते हैं, तो उसकी मात्रा को देखते हुए कितना जरूरत है उसके हिसाब से हमें देना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट में आएंगे तो फॉस्फरस फर्टिलाइजर की जो प्रयोग विधि है, एक इम्पॉर्टेंट प्रयोग विधि फॉस्फरस के केस में है जिसको हम लोग बैंड प्लेसमेंट के रूप में जाने जाते हैं, मतलब जानते हैं। तो बैंड प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे हमने पहले भी जाना कि फॉस्फरस ज़्यादा लॉस हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, बुआई या फिर रोपाई के समय में हम लोग फॉस्फरस को उसके सीड के पास ही देंगे या जड़ के पास ही हम लोग देने की कोशिश करेंगे, ताकि जड़ ही फॉस्फरस जो दे रहे हैं उसको वो ले ले, अब्सॉर्ब कर ले और अपटेक हो जो हमारे पौधों की ऊपरी भाग में, तो जैसे मिट्टी के अंदर वो ज्यादा लॉस ना हो। तो इस प्रक्रिया का या प्रयोग विधि को हम लोग बैंड प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हम लोग मैन्यूअर के साथ यानी जो कंपोस्ट है उसके साथ मिला के संतुलित प्रयोग भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे हम 50% जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उसको हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर से दे दें, और जो 50% हम लोग कोशिश करें कि जो कोई भी मैन्यूअर जैसे कंपोस्ट हुआ, वर्मी कंपोस्ट हुआ, ग्रीन मैन्यूअर या कोई भी इस तरह की आपके ऑयल केक्स हुए उसके साथ आप संतुलित मात्रा में भी प्रयोग कर सकते हैं, ताकि पौधा की जो दूसरे ग्रोथ स्टेजेस में है वो धीरे धीरे वो फास्फोरस सॉल्युबल होके जड़ के पास आ जाए। ये एक है मैनेजमेंट प्रैक्टिस। और दूसरा है बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु आज के डेट में है जो फास्फोरस की फास्फोरस जो फिक्स हो गया उसको घुलनशील बनाते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे आपने सुना होगा फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसको हम लोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में जानते हैं। हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय में भी एक बायो लैब है जहाँ पे हम लोग बायो फर्टिलाइजर भी उपलब्ध है, तो वहाँ से आप PSB को लेकर भी चाहे वो बीज उपचार करके या फिर मिट्टी में आप प्रयोग कर सकते हैं, ताकि फॉस्फोरस की जो अमाउंट है उसको हम लोग रिड्यूस कर सके, यानी कम मात्रा में उसको दे सकते हैं और अपने पैसों को बचा सकते हैं। और दूसरा जो है साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। साइट स्पेसिफिक फिर क्या होता है, हो सकता है मधेपुरा की मिट्टी में जितना फास्फोरस की जरूरत हो उतना भागलपुर की मिट्टी में नहीं हो, हो सकता है गंगा के किनारे जितनी जरूरत है वो गया में उतनी नहीं हो, तो हम लोग यानी जगह के हिसाब से उसकी प्रयोग विधि भी वैसे ही होगी, यानी जहाँ पे सुखाड़ है वहाँ पे हम लोग बीज उपचार करें, जहाँ पे पानी जमाव है वहाँ पे हम लोग बैंड प्लेसमेंट करें, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को घुलनशील बना के हम स्प्रे भी कर सकते हैं। तो यानी जगह के हिसाब से नई नई तकनीकों को प्रयोग करके हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट माइक्रोबियल एजेंट है यानी जो जिसको हम लोग जानते हैं माइकोराइजा, वेसिकुलर अर्बोस्क्यूलर माइकोराइजा, उसको भी अगर हम लोग बीज उपचार या जड़ के पास देंगे तो ये सिद्ध हो चुका है, विभिन्न आपके शोध पत्र अगर आप देखेंगे ये 20-30% फॉस्फोरस की मात्रा को कम करने की कोशिश करती है, यानी इसकी भी प्रयोग से हम लोग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की जो मात्रा है उसमें हम बचत कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसके द्वारा आप फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द आपके जो सस्य फसलें हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि।
0: मैम अगर आप अंत में किसान भाई बहनों को कोई संदेश देना चाहें तो?
2: जी जरूर, फास्फोरस सस्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बिहार की जलोढ़ एवं चूनायुक्त मिट्टियों में इसकी उपलब्धता सीमित होने के कारण इसकी वैज्ञानिक प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है, और यदि संतुलित मात्रा में इसकी उपयोग मिट्टी परीक्षण आधारित उपयोग किया जाए तो हम निश्चित तौर पे फास्फोरस की जो कमी है हमारी बिहार की मिट्टी में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, और हमारी जो भी सस्य फसलों हैं जैसे धान, गेहूं, मक्का जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है उनकी उत्पादकता में हम लोग उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
0: थैंक यू मैम, उम्मीद है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज की ये वार्ता काफ़ी उपयोगी साबित होगी, खास तौर से सस्य फसलों में क्या फास्फोरस का महत्व है और किस तरीके से वो फास्फोरस का प्रबंधन कर सकते हैं इसके बारे में जो आपने बताया। थैंक यू मैम।
2: थैंक यू वेरी मच।
0: दोस्तों आज के लिए इतना ही कि हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू राजू पिन्नी और
6: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त
6: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों, आज के टाइम पे ना हर चीज स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीजें। तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो जरूरत बन गई है, और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा। आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
8: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज करें। जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है, उसमें हम लोग डेटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका हम यूज कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज में डेटा है। आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीजों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में। जो भी तकनीक जो डेटा को यूज करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
0: तो सर, भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों जरूरी है?
8: क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज्यादा भारत में ही है, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाता है। तो अगर हम हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो वो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है। अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे, वो कृषि से बाहर जा रहे हैं। इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज करें। बहुत आसान है समझना, अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा और जो अभी जो करंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
0: सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
8: बिल्कुल,
0: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है नहीं, क्या ये सच है?
8: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है, जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं। जैसे कि आप बहुत तेज चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है, मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने जमीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप जमीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए, ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में। अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का, तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा, आपको कम सिंचाई करनी पड़े। तो बहुत सारे रिसर्च में हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
0: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी हैं?
8: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें, तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहे क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं, आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार, उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकते हैं।
0: तो सर क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है?
8: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना उसमें क्या भाव चल रहा है ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पर स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज़ हो रहे हैं, सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े शहरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
0: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
8: सबसे बड़ा फायदा तो इससे यह होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपके मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।
0: सर जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि मोबाइल में बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे स्टेप्स को भी काउंट करते हैं, तो क्या ऐसे कोई सेंसर होते हैं जो कि कृषि के क्षेत्र में किसान भाई बहन इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल फोन में?
8: मोबाइल फोन में डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सेंसर जो है वो बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप देखेंगे कोई भी वेबसाइट पे जाके, सबसे सिंपल सेंसर जो है जो यूज कर सकते हैं वो है सॉयल मॉइस्चर सेंसर। उसको आप आराम से खरीद सकते हैं और अपने मोबाइल डिवाइस में ही उसको इंटीग्रेट करके देख सकते हैं कि हमारे सॉयल का जो है, हमारे मिट्टी का जो है, उसमें क्या नमी का मात्रा है। अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की जरूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
0: अभी AI के बारे में बहुत बातें हो रही है, AI काफ़ी चर्चा में, तो क्या AI स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
8: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में AI का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। AI आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको AI चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज करना है। तो अभी AI का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और AI से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को। आपको बार बार उसमें जानकारी आते रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीज़न में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
0: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
8: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज़ कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज़ कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज़ कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नाम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आपको एक गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
0: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
8: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हर साल, यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, दो दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग हर चीज़ बताते हैं कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज़ करें।
0: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
8: तो ये ट्रेनिंग जो है इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा

0: गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है, IoT जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज IoT के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
1: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
0: तो स्मार्ट सिंचाई में भी IoT का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की जरूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब जब जरूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी, आप जानते होंगे डीजल का भी यूज होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज करें तो।
1: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज करना है तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है, डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है जरूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है किसान.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
1: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
0: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी, जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें और फिर आपको जवाब देगा। ऐसे भी आप AI का यूज कर सकते हैं।
1: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
0: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में और खासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे, या फिर जो भी ग्रोसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराने का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है ब्रोकोली है ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है, और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से, और आप देखेंगे कि 12 बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सारी फसलें जो है ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से होती हैं और AI मेथड से, इसमें AI यूज़ किया जाता है इसके लिए, आपको ग्रीन हाउस में होता है या पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं, लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
1: तो अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की जरूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है?
0: चुनौतियां, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो है वो सोचते हैं कि मोबाइल फोन जो है वो उतना सेफ नहीं है यूज करने में, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता

0: है तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, वो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए, क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
1: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
1: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद अमन जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी, बहुत बड़ा नंबर है ना। पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी, या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है, और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है, और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है, और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है। और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं, और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उससे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना? आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
2: खुद भी बचे देश भी बचाए।
3: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
5: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
4: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
5: 11 दोस्त?
4: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
5: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
4: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
5: लेकिन ऐसा क्यों?
4: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
5: तो इसका हल क्या है?
4: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते। और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें। और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोआन देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है, इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
0: तो मैम सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं पर स्वीट कॉर्न क्या है?
2: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है। खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नरमंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
0: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए?
2: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें बुआई के समय, तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। पौधों की संख्या, उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्रोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर दो बीज डालें ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
0: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बता दीजिए।
2: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की शुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
0: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
2: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं। और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें। और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पण की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
0: और मैम खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
2: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 केजी को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
0: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
2: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पण और दाना भराव का समय होता है उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूं, कीट प्रबंधन के लिए आप तना छेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं विभिन्न प्रकार की, ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है, और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है, तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर, या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
0: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं, और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी,
2: धन्यवाद।
0: आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि

0: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि नमस्कार, मैं हूं आरजी अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सभी के साथ मैं लेकर आ चुकी हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होती हैं बातें खेती से जुड़ी। और लेकर आती हूं मैं बहुत सारी ज़रूरी ज़रूरी बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। वैसे किसान भाइयों, हर रोज़ हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं, तो आज भी भाई यहाँ पर सर्दियों की बात करते हैं हम, तो सर्दियों में जो है बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां हैं वो आपके सामने आती हैं। और जहां तक बैंगन की बात है भाई, बैंगन के बहुत सारे जो रेसिपीज़ हैं वो आप बना सकते हैं हमारे किसान भाई। और फिलहाल अगर बैंगन की बात हो रही, तो सर्दियों में भी इसे बहुत ही इसकी मांग है बाज़ार में। और जहां तक इसकी उन्नत खेती की बात होती है, जी हां बिल्कुल आपने सही समझा, आज का हमारा विषय है बैंगन की उन्नत खेती। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, साथ ही मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद आपको।
0: मैम जैसे कि अभी हमारा ये जो सब्जेक्ट है जो है बैंगन की उन्नत खेती, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि बैंगन जो है वो किस समय में लगा सकते हैं। वो
1: बैंगन जो है हम जैसे जानते हैं कि ये सालों भर हो सकती है, ये सब्जी जो है आपको बाजार में हर समय पे मिलेगी, और उसी तरीके से जो है इसको साल भर हम उगा भी सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें किस्म अलग अलग होती है बस। तो अभी जो बैंगन आपको मिल रही है ये खरीफ बैंगन का फल है।
0: अच्छा, वो जो बैंगन जो हम देखते हैं अलग अलग कलर के होते हैं।
1: जी जी,
0: कई बार हम देखते हैं एक वाइट कलर के बैंगन होते हैं, हरी कलर के, और उसके अलावा पर्पल यानी कि बैंगनी। तो क्या ये अलग अलग किस्म के होते हैं या फिर ये कलर किस पे डिपेंड करता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बैंगन जैसे हैं जो जो अलग अलग कलर देखते हैं, तो कलर बैंगन का डिपेंड करता है। जो बैंगनी होती है, तो बैंगनी वाले बैंगन जो है उसमें एंथोसाइनिन ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: जबकि हरा जो बैंगन होता है, हरा बैंगन में एंथोसाइनिन नहीं होती है, उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होती है। जैसे जानते हैं हम लोग कि हरा क्लोरोफिल के से होती है, तो क्लोरोफिल उसमें ज्यादा होती है।
0: अच्छा।
1: सफेद बैंगन में एंथोसाइनिन क्लोरोफिल बहुत कम मात्रा में होती है या बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन सफेद बैंगन जो है एंटी डायबिटिक है।
0: अच्छा, मतलब जो आजकल हमारे जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए,
1: उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें डायबिटीज के खिलाफ जो गुणवत्ता है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड ज्यादा होती है, साथ साथ में सफेद बैंगन में शुगर की मात्रा भी कम होती है। तो ये सारा जो है ये एंटी डायबिटिक उसका गुण देता है उस सफ़ेद बैंगन को, तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं एंटी डायबिटिक के तौर से।
0: अगर ऐसे नॉर्मल लोगों की बात करें यानी कि जो जनरल जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए ये तीनों सही है ना?
1: हाँ बिल्कुल
0: किस्म,
1: बिल्कुल बिल्कुल तीनों किस्म आप खा सकते हैं। और बैंगन का तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है, कोई लंबा हरा पसंद करता है, कोई बैंगनी पसंद करता है, भरता के लिए जो आप देखते हैं
0: बैंगनी, जो
1: बैंगनी और गोल वाला जो किस्म है उसको प्रेफर करते हैं, लेकिन जो कलौंजी वगैरह है उसके लिए लंबा किस्म प्रेफर करते हैं। और जगह से भी पर प्लेस टू प्लेस जो है उसको वेरी करता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस
0: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि लगभग अगर बात करें बैंगन के समय की, सही समय की, तो आप 12 महीने से लगा सकते हैं। और फिलहाल मैम इसकी बुआई की विधि आप बताएं हमारे किसान भाइयों।
1: हाँ बिल्कुल, बैंगन 12 महीने लगा सकते हैं, लेकिन इसका मेन सीजन जो है ये खरीफ सीजन ही है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए
0: मतलब स्पेशली जो एक सीजन होना चाहिए वो,
1: अगर जो सीजन बोलेंगे तो ये खरीफ सीजन में ही जो है ज्यादा फसल जो उपज भी उस क्रॉप से आपको ज्यादा मिलती है। और ज्यादातर किसान भाई जो है वो खरीफ में ही लगाते हैं। गर्मा मौसम में भी बैंगन लगता है, लेकिन वो छोटे छोटे पॉकेट्स में ही बस लगता है। ज्यादातर लोग गर्मा बैंगन लगाते नहीं है, लेकिन लगाते भी है तो उसका किस्म भी अलग अलग होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो खरीफ वाला जो बैंगन है उसको आप लगाइएगा, जो उसका बुआई करते हैं जनरली जून के 15 से जुलाई के 15 तक
0: जी,
1: ठीक है। तो इसकी बुआई के एक महीने बाद इसकी रोपाई होती है, लगभग 30 से 32 दिन तक जो बिजड़ा है वो रेडी हो जाता है और फिर इसकी रोपाई होती है।
0: अच्छा।
1: तो और बुआई के लिए जो है इसका बीज दर जनरली जो है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए होती है, और बीज को शोधन करके अच्छे से नर्सरी बेड में गिराते हैं। नर्सरी बेड जो है लगभग 3 मीटर बाई 1 मीटर का एक एक क्यारी बन जाता है और 15 सेंटीमीटर रेस्ड बेड हम बनाते हैं और उसको भुरभुरा करके फिर लाइन में सोइंग करते हैं और सोइंग करने के बाद में हल्का सा वर्मी कंपोस्ट से इसको ढक देते हैं, रोज सिंचाई करते हैं एवं पुआल से भी उसको ढक देते हैं, हर दिन हल्का फुहारे से इसको सिंचाई करते हैं और जब अंकुरण हो जाता है, जब भी अंकुरण हम देखेंगे कि हो जा रहा है तुरंत पुआल को हटा देना है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में भी इसका अच्छा देखभाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि बिजड़ा स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ बिजड़ा अगर आप लगाएंगे तभी आपको उपज अच्छा आएगा
0: जी। तो वैसे भी स्वस्थ अगर बिजड़ा रहेगा तो आपके जो बैंगन भी होंगे वो अच्छे तरीके से आएंगे, मतलब जो इसका एप्रोप्रिएट साइज है।
1: हाँ हाँ एकदम, और उसमें डिजीज वगैरह भी नहीं आएगा।
0: और मैम आपने बुआई की बात की, तो रोपाई अब हमारे किसान भाई कैसे करेंगे?
1: बुआई जब किया उससे लगभग लगभग एक महीने में बिजड़ा जो है रोपाई के लिए रेडी हो जाता है
0: जी।
1: रोपाई के लिए जब बिजड़ा रेडी होगा तब हम देखेंगे लगभग एक एक सीडलिंग जो है 12 से 15 सेंटीमीटर हाइट का हो जाएगा और उसमें पेंसिल थिकनेस का जो है उसका जो स्टेम होगा, डंठल होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो उसी बिजड़े को हम लगाएंगे, स्वस्थ बिजड़ा को हम उठाएंगे नर्सरी बेड से लेके फिर उसको भी सीडलिंग को ट्रीटमेंट करके फिर लगाएंगे। उसको जनरली हम लोग कार्बेंडाजिम में ट्रीटमेंट करते हैं, सीडलिंग को 10 मिनट तक डिप कर लेते हैं, उसके बाद में जो है इमिडाक्लोप्रिड में भी सीडलिंग को और 5 मिनट डिप करके फिर उसको लगाते हैं। तो इनिशियल एक महीने तक जो है उसको डिजीज पेस्ट से भी जो है ये सीडलिंग डिप से बचाव मिल जाती है।
0: तो ये तो हुई रोपाई की बात, साथ ही
1: और रोपाई के साथ साथ में ये भी बोलना चाहेंगे कि रोपाई करना होगा कि इवनिंग टाइम में।
0: अच्छा,
1: मॉर्निंग में हम लोग रोपाई नहीं करते हैं, इवनिंग टाइम में रोपाई इसलिए करेंगे कि पौधे को ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगती है। तो उसको अगर सुबह हम रोपाई करते हैं तो धूप में वो पौधा मुरझा के मर जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इवनिंग टाइम में हम रोपाई करेंगे। और रोपाई में ये भी याद रखना होगा कि स्पेसिंग क्या होगा। तो जो खरीफ सीजन की बैगन होगी तो इसकी स्पेसिंग जनरली हम 75 सेंटीमीटर दो लाइन के बीच में और दो पौधे के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको हम लगाएंगे
0: जी। मतलब कि उस समय रुपाई करना है किसान भाइयों बैगन का जब मतलब सूर्य आपके ऊपर हो तब बिल्कुल ना करें, ना शाम के वक्त करें जब सूर्य ढल रहा होता है। तो इसके साथ ही मैम खाद और उर्वरक कैसे, मतलब किस प्रकार के खाद और उर्वरक देने चाहिए?
1: बैगन को जब भी आप लगाते हैं तो खेत की जब तैयारी करते हैं, इधर पे आपकी नर्सरी बन रही होती है, दूसरी तरफ से खेत की जुताई करके उसके फील्ड प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए और साथ साथ में जब आखिरी जुताई होती है उसी समय पे जो है गोबर की खाद, सड़ी हुई, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें मिलाना चाहिए। और लगाने से पहले बेसल डोज जो खाद का होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश जो है इसका बैगन में जनरली उसका मात्रा है 120-80-80।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये किलो प्रति हेक्टेयर के दर से होता है। तो पोटाश और फॉस्फोरस जो है उसकी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो है आधी मात्रा एज बेसल डोज लगाने से पहले खेत में अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए। उसके बाद में आप इसकी रोपाई करें। रोपाई करने के बाद में लगभग लगभग 40 दिन, 30 से 40 दिन के बीच में एक बार टॉप ड्रेसिंग करें, जो नाइट्रोजन बाकी आधा मात्रा बची है उसका फिर एक तिहाई मात्रा उसमें डालें।
0: अच्छा।
1: फिर बाकी जो दो तिहाई मात्रा रही उसको दो स्प्लिट डोज में और एप्लीकेशन करना चाहिए 30-30 दिनों में, क्योंकि बैगन लंबी अवधि तक चलने वाली फसल होती है, इसीलिए जो है इसके ऐसे करके खाद उसका यूज़ करना चाहिए ताकि इसमें पौधा भी हरा भरा बना रहे और उसमें उपज भी अच्छा आए।
0: अच्छा, तो ये उर्वरक की बात हो गई। सिंचाई की बात कर लेते हैं मैम। सिंचाई मतलब किस तरीके से और कितनी मात्रा में और किस समय पर करना चाहिए?
1: वर्षा में जब आप लगाएंगे तो सिंचाई से भी ज़रूरी होता है कि इसका जल निकासी भी अच्छा होना चाहिए।
0: हाँ,
1: तो खेत जब बनाइए उसी समय पे ड्रेनेज चैनल अच्छे से बनाना होगा और जब भी हम इसके रोपाई करेंगे उसके तुरंत बाद हमको हल्का एक कुछ दिनों तक जो है फुहारे से ही इसका एस्टेब्लिशमेंट तक जो है पानी देना होगा। जब एस्टेब्लिश हो गया लगभग लगभग रोपाई के 10-15 दिन के बाद में आप इसको हल्का सिंचाई कर देंगे। उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जो है इसमें सिंचाई करना होगा,
0: मतलब ज्यादा अगर
1: ज्यादा नहीं करना है। अगर बारिश हो रही है आपको सिंचाई की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बारिश नहीं है तब सब्जी फसल ऐसे है और बैगन भी खास करके ऐसी फसल है जिसमें आपको रेगुलर उसमें सिंचाई करना होगा, उसको पानी की जरूरत है लेकिन ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है,
0: नॉर्मल
1: वाटर लॉगिंग कंडीशन उसमें नहीं आना चाहिए।
0: अच्छा, तो ये भी बात हो गई सिंचाई की। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे कीट पतंगों से बचाएं अपने पौधों को और रोग से बचाएं, तो मैम जहाँ तक बैंगन की बात है तो बैंगन में कौन कौन से रोग लग सकते हैं और इसका जो उपचार है वो हम कैसे कर सकते हैं?
1: बैंगन में जो है हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग काना बैंगन से परेशान रह जाते हैं।
0: अच्छा,
1: तो उसमें जो है क्या है कीड़ा दिखते हैं अक्सर, आप देखेंगे मार्केट में जो है कीड़ा लगा हुआ बैंगन मिलता है, बैंगन को काटिए तो
0: जैसे कि गोभी में भी,
1: हाँ गोभी में भी जैसे आता है वैसे बैगन को भी काटिए हमेशा दिख जाता है कि अंदर में कीड़ा मिल जाता है। तो ये जो कीड़ा है ये फल एवं तना छेदक होता है।

0: या फिर स्पाइनोसैट का भी एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं। ये आधा ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका एप्लीकेशन करें। ये इसके अलावा जो है कीड़ा और ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लीफ हॉपर का प्रॉब्लम होता है या जैसिट का प्रॉब्लम होता है, उसमें छोटा छोटा देखिएगा एकदम बिल्कुल छोटा सा हरा रंग का या फिर सफ़ेद रंग का,
1: जिसे सफेद आम भाषा में वो पिल्लू बोलते हैं।
0: हाँ, पिल्लू तो वो कैटरपिलर हो गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये जो बोरर है, ये तना एवं फल छेदक वो वाला हो गया। ये जो माहू या लाही जो है, आम भाषा में इसको लाही या माहू जो बोलते हैं, वो भी कभी कभार लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भयंकर प्रभाव तो नहीं फेंकती है, लेकिन थोड़ा सा लीफ में इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम इमिडाक्लोरपिट का उपयोग कर सकते हैं, 1 ml प्रति 3 liter पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तो रहा कीड़ा के बारे में। अब डिजीज बैगन में जो है रोग भी आती है, सबसे भयंकर जो है झुलसा,
1: झुलसा रोग।
0: तो झुलसा फफूंद जनित भी हो सकता है या फिर बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो फफूंद होता है तो हम देखेंगे, जनरली हम जो देखते हैं उसका जो जड़ के ऊपर से जो तना निकलती है, तो मिट्टी के पास जो तना है वहाँ पर हम देखेंगे वो सड़ गया।
1: अच्छा।
0: बार्ग भी सड़ जाता है जो है, छिलका जो है उसका बार्क का, वो भी सड़ जाता है। या फिर नीचे पे जब गलन आने लगी उसी समय पे उसको अगर उठाते हैं, उसको हटाते हैं, उसको अगर तोड़ेंगे आप उस पौधे को निकालेंगे, तो उसके अंदर कभी देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद रंग की थोड़ा सा माइसिलियल ग्रोथ टाइप का हो रहा है, ये काला रंग का कुछ है, तो वो जो है ये फफूंद के लिए है।
1: अच्छा।
0: और अगर ऐसे नहीं है लेकिन बदबू बहुत भयंकर हो रही है और उसको उठा के फिर जो है काट के पानी के ग्लास में डालेंगे तो नीचे मिल्की ऊज टाइप का चीज़ निकलेगी, तब वो होगा बैक्टीरियल। ठीक है। तो इसके लिए जो है फफूंद के लिए अगर हो रहा है, फफूंद जनित अगर विल्टिंग है, तो उसके लिए आप कोई फफूंदनाशी डाल सकते हैं, जैसे कि आप मेटलैक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है। इसका 2 gram प्रति लीटर में घोल करके उसको अच्छे से प्लांट को भी स्प्रे करें, और ख़ास करके जो रूट के पास जो कॉलर रीजन होता है उसमें ड्रेंचिंग अच्छे से करना चाहिए, उसको अच्छे से भिगो देना चाहिए, उससे जो है इसकी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और अगर बैक्टीरियल होता है तो उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें।
1: अच्छा।
0: उसका जो है 1 gram प्रति 10 liter पानी में घोल करके उसको स्प्रे करते हैं, तो इससे भी काफ़ी, और साथ साथ में 3 gram प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये भी उस मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल होता है।
1: तो इस तरीके से जो किसान भाई हैं, अगर बैंगन के पौधे आपने लगाए हैं तो इस तरीके से आप उन्हें रोगों से बचा सकते हैं। फिलहाल तो किसान भाइयों, आपने विस्तार से जाना मैम से कि बैंगन की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपने जाना कि समय क्या है, आप कैसे लगा सकते हैं, विधि क्या है, इसके अलावे रोपाई आपको कैसे करनी चाहिए, खाद और उर्वरक कैसे होने चाहिए, सिंचाई आपको कब और कैसे करनी चाहिए, साथ ही रोग और रोगों के इलाज के बारे में भी बताया गया आप सभी को। तो आज के लिए तो किसान भाइयों इतना ही। अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी, और भी अलग विषय के साथ, जानकारियों के साथ मैं हाजिर होंगी 90.8 FM ग्रीन पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्य। उन्नत कृषि
2: खांसी, एक खांसी, दो खांसी, तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त है?
6: तीनू राजू पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू वो 11 दोस्त है जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके

0: जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
0: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
0: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु KS रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन 2 मई 1981। तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा। अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर पीके सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैर लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो सब संभव है। बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता। लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारे हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया। हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बदूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक, जैसे बहुत सारे धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
9: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
10: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
9: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
10: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
9: हमें गर्व

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर ले और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर ले, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोहान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है, लेकिन जहाँ तक खेती की बात है तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर है प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस जिले में हुई है, इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
2: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसकी खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छे से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीच प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वही पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार एक बार निकोनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में एक बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
2: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, सिराजीत, पंजाब एक किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव मुनेटा MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहली किस्म है PK 472, ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई की किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजैक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335, यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चपकीली होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और ये भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रंग वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH97-52 होती है, यह मध्यम अवधि एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जड़ सरण एवं पर्णिया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई की यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू जल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। संस्क्रिया
0: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए शस्यक्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: ये शस्यक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोने की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने के अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाले किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए। तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बन रेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 आवर्स 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या सीडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस 0.4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन की खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहां तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरने के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूनोजेनोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रवाहित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
0: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपनी फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
2: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाई में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोप्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग वो तंबाकू सुंडी होते हैं कि यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीफेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्लोरोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर की प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नजर आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी को कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनेजिन 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टुरल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 PPM 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाले कीड़ों के थाइमो जेकोब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
0: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुनिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी, एक खांसी दो खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त
6: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: जरूरी काम करो, कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
8: 90.8 MHz पर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूँ ईश्वर चंद्रा, और मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रोताओं आपके लिए एक खास विषय पर, जो कि आपके कृषि में जो लागत होती है उससे सीधा जुड़ा हुआ है, और आपके उत्पादन के साथ भी यह विषय जुड़ा हुआ है। विषय का नाम है नकली और मिलावट उर्वरकों की पहचान कैसे करें। जी हाँ, उर्वरक के तौर पर आप काफ़ी सारे पैसे, एक लागत जो है अपने खेती में लगाते हैं, और अगर वही उर्वरक नकली मिले तो फिर आपको दो तरफा नुकसान होती है, उत्पादन पे असर और दूसरा आपके लागत में वृद्धि। तो मैडम, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो नकली उर्वरक है उसकी पहचान आसानी से कैसे करें।
9: नमस्कार किसान बहनों और भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ और मैं सहायक प्राध्यापक कनीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ मृदा विज्ञान विभाग में। और मेरा आज का टॉपिक है जो हमारे उर्वरक हैं, जो हमारे कृषि निवेश में सबसे महंगा अगर निवेश किसी किसान अगर करते हैं तो हमारा उर्वरक है, उसमें जिसमें किसान अपना निवेश करते हैं अपने फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और इसमें हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे हमारे उर्वरक हैं जो हमारे किसान भाइयों और बहनों अपना यूज करते हैं खेती करने के लिए, उसमें मिलावट की जा रही है। तो हमारा लोकल सबसे ज़्यादा जो खाद प्रयोग किया जाता है खेती बाड़ी के लिए जो करते हैं, स्पेशली हम बिहार के कॉन्टेस्ट में बात करें तो जो बिहार के हमारे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। और फॉस्फेट का सोर्स लें, जो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक उर्वरक है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज कर लेते हैं। DAP करते हैं, आज की डेट में DAP करना यूज किए हैं, पहले SSP करते हैं जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिसमें DAP है जिसको डायमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, क्योंकि ये आपको नेत्रजन है और फॉस्फेट दोनों को सप्लाई करता है। और तीसरा उपयोगी हमारा उर्वरक जो है वो है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये सबसे ज़्यादा हमारा किसानों द्वारा यूज किया जाता है अपने फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और उसमें मिलावट का भी कारण है, क्यों इसको मिलावट किया जा रहा है। आप कृषि निवेश में देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर उनका पैसा लगता है किसी चीज़ पे तो हमारा उर्वरक है। और जब हमारा एग्रीकल्चर सीजन आता है, एग्रीकल्चर सीजन हमारा 3 सीजन है, खरीफ, रबी और जायड जिसको बोलते हैं हमारा, एक समर में जो हमारा जो ग्रीष्म काल में हमारा जो फसल का उत्पादन किया जाता है, जाड़े के मौसम में उत्पादन किया जाता है, और हमारा जब बरसात का मौसम आते हैं उस टाइम उत्पादन करते हैं, इसको हम जिसको हम एग्रीकल्चर सीजन बोलते हैं, कृषि का हमारा मौसम जिसमें है। उस टाइम ना जो भी ये फसल उपजाते हैं उस फसल उपजाने के समय में बहुत ज़्यादा उर्वरक प्रयोग करते हैं, और जो उर्वरक हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रियों द्वारा उतना वो नहीं सप्लाई कर पाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के लिए किसान भाई तो अप्लाई कर रहे हैं बट उनका उत्पादकता पर कोई असर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पौधों को जितना पोषक तत्व चाहिए वो मिलावट खाद होने के कारण उनको मिल नहीं पा रहा है, और जिसके कारण उनका मिलावट किया जा रहा है। और किसानों का भी ये होता है शिकायत है कि हम तो उर्वरक डाल रहे हैं, वो जब भी किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कॉन्टेक्ट करते हैं उनका बस यही सबसे बड़ा शिकायत है, हमें जितना उर्वरक डालना है जितना आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फसल के लिए उतना डाल रहे हैं, बट पोषक तत्व उतना नहीं जा रहा है और उनका उत्पादकता नहीं आ रहा है। तो उसकी पहचान करने का तरीका बहुत सारे हैं, आपका लैब टेक्निक्स है, जो लैब में हम सॉइल टेस्टिंग में जब कैसे जैसे मिट्टी का जाँच कराते हैं वैसे हमारा खाद पदार्थ का भी जाँच किया जाता है प्रयोगशाला में। और दूसरा जाँच करने का विधि है जिसको आप घर पर ही कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विधि है जो इसको मैं आगे चल के बताऊंगी कैसे इसका हम घर पर ही इसका इस विधि से इसको पहचानने की कोशिश करें, एटलीस्ट जो हमारे कम से कम जो हमारा बेसिक फर्टिलाइजर जिसको किसान यूज करते हैं अपने खेती बाड़ी में, यूरिया हो गया, DAP हो गया, SSP हो गया, MOP हो गया, इसका पहचान करने के विधि बताएंगे
10: जी। तो यहाँ पे जो बात आपको बताई जा रही है किसान भाइयों बहनों की, आप उर्वरकों को दो तरीके से उसकी जो गुणवत्ता है प्योरिटी है वो उसकी आप पहचान कर सकते हैं। एक तो लैब में जिसे कि आप जहाँ पर भी आप मिट्टी जांच कराते हैं वहाँ पर इसकी जांच होती है, और एक आप घर में भी कुछ नुस्खों को अपनाकर उसका आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि ये अभी प्राथमिक तौर पर असली या नकली दिख रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कोई शक हो, अगर आपको घर में जो नुस्खे अभी बताए जाएंगे उस नुस्खे से आपको ऐसा लगे कि उसमें वो खरा नहीं उतर रहा है, तो आप इसे लैब में भेजकर और आप इसकी जो जांच है वो सही तरीके से करके एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और साथ ही उसको आप जहां भी शिकायत दर्ज करनी है उसे आप कर सकते हैं। जी मैडम, दोनों विधियों में सबसे पहले घरेलू विधि की बात है।
9: जी, बिल्कुल। विधि बनाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो हमारा उर्वरक है, जो हमारा बेसिक उर्वरक है जिसको किसान यूज करते हैं अपने खेती बाड़ी के लिए, वो बेसिक उर्वरक मैंने बताया है यूरिया है, DAP है, SSP है, MOP है, इसमें कौन कौन से मिलावटी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहले आप अगर जहां से भी मुझे सुन रहे हैं इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। जैसे यूरिया जिसको हम बोलते हैं, यूरिया सबसे ज्यादा धड़ल्ले अगर कोई यूज होता है उर्वरक तो है यूरिया। यूरिया में मिलावटी पदार्थ क्या क्या यूज किया जाता है, साधारण नमक आप देखे होंगे, वो साधारण नमक नहीं जो हम टाटा वाले परचेज करते हैं, स्पेशली वो साधारण नमक जो हमको वार्ड में मिलता है बहुत सस्ते में, 2-1 रुपए मिल जाता है साधारण नमक, जिसका आप देखेंगे कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो साधारण नमक उसका मिलावट किया जा रहा है। नहीं तो MOP यूरिया के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो जो हमारा म्यूरेट पोटासिक फर्टिलाइजर है उसके कंपेरिजन सस्ता है, तो उसको नहीं तो थोड़ा अच्छा लेवल का फैक्ट्री है जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, नहीं तो वो MOP मिला दे रहा है। ये है यूरिया में मिलावटी पदार्थ। दूसरा हमारा आता है सबसे ज्यादा उर्वरक जो यूज होता है किसान द्वारा वो है DAP। DAP का पूरा नाम क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो उर्वरक है ये आपको नेत्रजन भी सप्लाई करता है और फॉस्फेट भी सप्लाई करता है। नेत्रजन आपको 18% सप्लाई करता है और जो फॉस्फेट हमारा वो 46% सप्लाई करता है। यूजुअली इसका मैं आपको बताना चाहूंगी इसका 2 ग्रेड होता है। ये तो ग्रेड 1 की मैं बात की जिसमें 18% नेत्रजन और 54% मेरा फॉस्फेट होता है, और दूसरा जो ग्रेड होता है वो 16:48 का रेशियो चलता है, मींस 16% आपको नेत्रजन होगा और 48% आपका फॉस्फेट होता है। यूजुअली अगर हम भारत के और अपने बिहार के कॉन्टेस्ट में बात करें, इनके परिपक्ष में बात करें, तो हमारा जो पहला ग्रेड है DAP का 18:46 वाला रेशियो वाला अनुपात वाला वही यूज होता है। इसमें जो मिलावटी पदार्थ हमारा है DAP से सस्ता हमारा था SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री में आसान है और ये सस्ता होता है। तो DAP थोड़ा महंगा है इसको मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री द्वारा, तो नहीं तो DAP में SSP का मिलावट कर दे रहे हैं। रॉक फॉस्फेट आप लोग जानते होंगे, ये क्या है कि मिनरल है
10: जी,
9: जो हमारा पहाड़ी पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाता है रॉक फॉस्फेट। इसको क्या पाउडर बनाते हैं उसके साथ मिलावट कर देते हैं, नहीं तो इसका मिलावट किया जा रहा है। अदरवाइज एक NPK का मिश्रण का भी एक फर्टिलाइजर होता है, उसका मिश्रण इसमें मिला दिया जाता है। नहीं तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर किसी कोई इसमें मिलावटी पदार्थ जो है वह चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी तो आप लोग देखे होंगे हर जगह पाया जाता है, हम भी हमारे नदी किनारे जो जगह होते हैं चिकनी

0: इसका अपना एसएसपी का कार्ड देंगे जी। और दूसरा इसमें मिलावट किया जाता है, आप देखेंगे जिप्सम, जिप्सम भी क्या है, यह हमारा ये भी ये मिनरल्स है जो हमारा लोकली पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में अवेलेबल होता है। इस जिप्सम का भी प्रयोग मिलावट करने में किया जा रहा है। और एमओपी बचता है जिसको इम्यूरेटा पोटास कहते हैं, जो भी किसान भाई अप्लाई करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पोटास में ना दिखता कैसा है। पोटास हमको आपको वैसे ही लाल रंग का दिखता है, जैसे हमको आप हमारे ईट ईटे होते हैं जो चूरा देखते हैं, देखते हैं कैसे लाल लाल टाइप में होता है, उस चूरे का भी इसमें मिलावट किया जाता है। ये मिलावटी पदार्थ है पोटास में। और जो साधारण नमक है उसमें लाल रंग का कुछ मिलावट करके, नहीं तो साधारण नमक में वही ईटे का क्या बोलते हैं उसको पीस देंगे बारीक बारीक टाइप हो, उसमें साधारण नमक मिलाकर और उसको पोटास में मिला देते हैं। और बहुत सारे हमारे उर्वरक हैं, जैसे आज के डेट में सबसे ज्यादा हमको अगर मेजर इम्पैसिस की बोले बात की जा रही है, तो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो हमारे बिहार की मिट्टी में ही नहीं, पूरे भारत की मिट्टी में, पूरे विश्व की मिट्टी में इसकी कमी आ जा रही है। वो हमारा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक है, इसलिए जिंक जो फर्टिलाइजर है, जिंक का जो फर्टिलाइजर का सोर्स है, उर्वरक का सोर्स है, स्रोत है, उसका प्रयोग करने के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड किया जा रहा है। और वो जिंक का जो हमारा उर्वरक स्रोत है वो है जिंक सल्फेट, इसमें मिलावट आपको की जाती है मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट यूजुअली आपका जो हमारा द्वितीय पोषक तत्व होता है, मुख्य पोषक तत्व, उसका कैटेगरी का है। बट मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना बिल्कुल जिंक सल्फेट की तरह ही दिखता है, और जिंक सल्फेट के कंपैरिजन में जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो सस्ता है, इसलिए इसमें इसका मिलावट किया जा रहा है
1: जी। तो ये रही बात कि क्या क्या चीजें मिलाई जाती हैं। तो आपने देखा किसान भाइयों की जो चीजें आपके आसपास कूड़े में पड़ी है या जमीन में पड़ी हुई है उसे मिलाकर आपको महंगे दामों पर बेच दिया जाता है, और जो बाजार में उर्वरकों की एक कमी एक पीरियड में आती है, एक समय में बाजार में कमी आ जाती है, तो उसका एक फायदा उठाते हैं कुछ जो बिचौलिए हैं या ऐसे जो बाजार में जो दलाल हैं वो इसका फायदा उठाते हैं और आपको नकली उर्वरक के तौर पर बेच देते हैं। तो मैडम अब बात है कि इसको हम टेस्ट कैसे करें।
0: टेस्ट करने का पहला आपको घरेलू विधि बताऊंगी, फिर इसके बाद जो हमारा लैब टेक्निक जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसमें आऊंगी। लेबोरेटरी मेथड में तो यूजुअली आप अपने घर पे इसका नहीं कर पाएंगे, आपको इसको प्रयोगशाला में देने पड़ेंगे जहां परख नली का और हमारे जो केमिकल्स रिएजेंट उसका प्रयोग करके उसका जांच करते हैं। तो घरेलू विधि बहुत आसान विधि है। आप जैसे यूरिया देखेंगे, यूरिया आपको दिखता कैसे है, बहुत सफेद टाइप का दिखेगा, चमकदार दिखता है ये इसका देखने में, और इसका जो दाने होते हैं समान आकार के होते हैं। तो इसका प्रयोग करना बहुत सिंपल विधि है। आप यूरिया का कभी हाथ में लेकर देखिएगा तो कभी आपको जब दाने को प्रयोग करेंगे तो गर्म हल्का फील होगा। कभी आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उस शीशे का गिलास आप लेंगे, उस शीशे गिलास में क्या करेंगे पानी ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, एक चम्मच यूरिया जो हमारा है उसको लेना है, और आप उसमें यूरिया एक चम्मच यूरिया डालने से पहले उस पानी का जो गिलास में शीशे गिलास में ये गिलास पानी नहीं उसका आप तापमान देखिएगा क्या रहेगा, चेक मत कीजिए, जस्ट आप बोलते हैं ना फील मेथड जिसको बोलते हैं हम, आप अपने हाथ से छू रहे हैं उससे प्रयोग से हम समझ जाते हैं हाँ इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या होगा। अब उसमें आपको क्या करना है, एक चम्मच जो हमारा यूरिया है उसमें मिला देना है। यूरिया बहुत अच्छे से घुल जाएगा। यूरिया एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये पानी में घुलनशील पदार्थ है, बहुत घुलनशील उर्वरक है और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। अगर नहीं घुल रहा है अच्छे से तो यहाँ पर भी एक चेक मेथड हो गया हमारा कि उसमें कुछ मिलावट है। दूसरा इसका उपाय जानने का, जब उसको आप अच्छे से घुल रहे हैं, बहुत अच्छे से घुल गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, पानी जैसा पहले उसका रंग था वैसे ही रंग हो गया, और देखिए पहले जो पानी का तापमान था और यूरिया घुलाने के बाद तापमान में दोनों में अंतर आएगा। जब यूरिया पूरे अच्छे से घुल जाएगा पानी में तो देखेंगे तापमान जो पहले था उससे तापमान से थोड़ा उसमें गिरावट आएगी, मींस थोड़ा ठंडा आपको महसूस होगा। तो इसका मतलब उस यूरिया में कोई मिलावट नहीं है, वो हमारा जो यूरिया उर्वरक है वो शुद्ध है। एक विधि हुआ इसको घर में जानने का, और जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसको मैं आगे आपको चर्चा करूंगी कैसे इसके करते हैं। ये यूरिया
1: वगैरह का जो है
0: डीएपी का भी बता रही हूँ। डीएपी एसएसपी आप जो दोनों देखेंगे ना आपको गहरे भूरे रंग का या काले रंग का दिखता है, बस दोनों में यही अंतर है। डीएपी और एसएसपी जो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का सोर्स है, डीएपी का आपको करना क्या है, आपको दो विधि बताती हूँ डीएपी का आपको जान करने का। बहुत सारे हमारे जो हमारा एक किसान हमारे हैं जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, तो स्पेशली अगर हम बिहार के परिवेश में बात करें सर, तो वहाँ पर क्या होता है लोग खैनी खाते हैं। खैनी बनाने का विधि आपको पता होगा कैसे खाते हैं, अपने पंजे पे अपने जो अंगूठे को उसको ऐसे ऐसे कर रगड़ते हैं। तो आपको क्या करना हुआ, जो हमारा डीएपी है डीएपी का दाना होता है उसको को बारीक पीस लेना है, उस बारीक पीसे हुए थोड़ा सा बारीक पीसे हुए को आपको अपने हथेली पे रख लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाना है, और आपको जैसे खैनी को मैसते

0: आप खैनी और चूना को ऐसे ही कहकर मैसना है। जब आप कुछ देर उसको ऐसे करके मलोगे तो आपको देखेगा अमोनिया का जैसे होता है गंध आता है, उससे कुछ गंध निकलेगा और वो गंध अमोनिया का होता है। अगर ऐसा गंध आ रहा है तो आप समझ जाए आपको आपका डीएपी में मिलावट नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का भी नेत्रजन का भी स्रोत है, तो उसका इवोल्यूशन होता है। ये पहला विधि होगा। दूसरा विधि क्या करना आता है आपको करना है, एक चम्मच आपको डीएपी ले लेना है, चम्मच में डीएपी ले लेना थोड़ा मात्रा में। आप जो मोमबत्ती है उसको जला लीजिए और फिर क्या करना है, उस जो चम्मच में आपने डीएपी रखा है उसके लौह के ऊपर रख देना है, मोमबत्ती में जो हमारा जल रहा है उसके लौह के ऊपर रख देना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और गर्म होगा, चम्मच हमारा गर्म होगा और चम्मच में हमारा क्या रखा है, डीएपी रखा है, तो आप देखेंगे जो हमारा डीएपी का जो दाना है वो जैसे साबुदाने को कैसे आप पानी डालते तो फूल जाता है, वैसे ही फूल जाएगा ये, और फिर घुलते फूलते फूलते क्या होगा, वो पूरा घुल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया चेक मेथड, अगर पूरा अच्छे से घुल गया और साबुदाना जैसा फूल जाता है पानी में वैसे ही भी फूल जाएगा, फूल गया इसमें मिलावट नहीं है, ये डीएपी का हो गया।
1: डीएपी के बारे में
0: एसएसपी में बस आपको यही अंतर आएगा, जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसके दाने को जो चम्मच में रख के मोमबत्ती पे या कहीं पर भी या आप तवा पे भी कर सकते हैं गर्म, इसका जो दाना है उसमें ये फूलता नहीं है, और डीएपी का दाना फूल जाता है और एसएसपी का दाना फूलता नहीं है, ये दोनों बस अंतर आता है। अगर इसका दाना फूल गया मिस मिलावट नहीं है, और इसका दाना एसएसपी का दाना नहीं फूलता है। तो ये हमारा चेक विधि घर का है,
1: घर घरेलू विधि है, जिसमें कि
0: सर मैं एमओपी के बारे में बताना चाहूंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा एक करेक्शन ये कर दूं अपने साथियों को कि मैडम ने तंबाकू की तरह आपको मल के बताया, लेकिन हालांकि हम लोग तंबाकू को किस तरह से प्रमोट नहीं करें, साथ ही सलाह भी देते हैं कि कोई लोग इसका सेवन ना करें, लेकिन वो एक उन्होंने तरीका बताया है कि जिस तरीके से ये गांव में अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं उस विधि से आप अपना सकते हैं।
0: जी, जी, जी। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो उर्वरक है जिसका प्रयोग करते हैं आप, वो है एमओपी, पोटास जिसको आप बोलते हैं, अपने भाषा में हम लोग म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं बोलते, वो तो साइंटिफिक हो गया बोला, यूजुअली हमारे किसान भाई क्या बोलते हैं इसको, पोटास बोलते हैं। तो पोटास का कैसे करना है, इसके भी जानकारी के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे आपको हम बताएं यूरिया को पानी में घोलना था शीशे के गिलास में लेकर, वैसे ही हमारा पोटास जो है पानी में घुलनशील पदार्थ है, उर्वरक है, शीशे के गिलास लेना है उसमें पानी डाल देना है, और एक चम्मच क्या करना है आपको, जो हमारा पोटास है वो भी पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको एक चम्मच पोटास को लेना है और पानी में आपको घोलना है, पानी के चम्मच से कैसे स्टीरिंग करते हैं घोलते हैं ऐसे ऐसे करके चम्मच से, तो अगर जो अगर ये पोटास शुद्ध है तो उसका जो पदार्थ उसमें जो कण हो वो क्या कर जाएगा आपका, आपका जो पानी का सतह है ग्लास में पानी का जो सतह है उसमें नीचे बैठ जाएगा, और जितने पदार्थ उसमें थोड़े थोड़े ऊपर आ जाएगा, तो समझिए वो जो पदार्थ ऊपर आ गए वो उसमें मिलावट किए गए हैं, और जो पदार्थ नीचे बैठे वो मिलावटी नहीं थे। अगर ऊपर में बहुत सारे कण ऊपर में आ जाए तो समझ जाइए उसमें मिलावट किए गए हैं, हमारे जो हमारे ब्रिक ईटा ईटा का जो बुरादा होता है उसका मिलावट है साधारण नमक में मिलाकर, और पूरे कण बैठ गए तो समझिए इसमें मिलावट नहीं है, बहुत ज्यादा पानी की सतह पे आ रहे हैं तो वो मिलावट किए गए हैं। ये हमारे घरेलू उपाय हो गए, इसको पचाने का तरीका हो गया।
1: तो ये इन विधियों से घरेलू तरीके से आप इसका आप पहचान कर सकते हैं। कुछ और घरेलू विधि अन्य उर्वरकों के लिए है, या फिर हम लैब की तरफ चले?
0: अब लैब की तरफ सर मूव,
1: अब लैब की तरफ चलते हैं। तो अब हम यूरिया जो सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है किसान भाइयों के लिए, वो लैब में किस तरीके से इसको भेजेंगे, क्या वहाँ प्रमाण पत्र मिलेगा, और उसके बाद आपका क्या कदम होगा?
0: जी, जैसे उर्वरक का भी जैसे आप हमारा मृदा विज्ञान का जाँच हो रहा है, मृदा का जाँच होता है जिसको हम सॉइल टेस्टिंग लैब बोलते हैं, मृदा जांच प्रयोगशाला जो है उसी मिट्टी प्रयोगशाला में आपके जो उर्वरक है उसकी भी टेस्ट की जाती है, और उसका टेस्ट कराना भी बहुत अनिवार्य माना जा रहा है कि आप कौन से कंपनी का कौन से फैक्ट्री में बना है वो उर्वरक, कहाँ से आपने खरीदा है। आप तो अप्लाई आपने को जितना निवेश करना था आपने निवेश कर दिया, बट आपको जाँच के बारे में नहीं पता है, तो अगर नहीं आपने एक बार अप्लाई किया उर्वरक, आपकी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं आई है, और आपका जो मृदा है मृदा में उतने हमारे पोषक तत्व नहीं उत्पन्न है, तभी तो हम डालते हैं ना उर्वरक, तो आप इसको जरूर से जरूर, इसका हम आपको नम्र निवेदन करेंगे, बिल्कुल आप अपने उर्वरक जो भी उर्वरक करें एटलीस्ट पूरे साल में एक बार तो जरूर अपने जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं, स्पेशली ये तीन उर्वरक जो हमारे हैं यूरिया डीएपी एसएसपी और एमओपी, ये तीनों को जाँच अपने प्रयोगशाला में जाँच जरूर कराएं। और इसमें जांच प्रयोगशाला करने का विधि मैं बता देती हूँ, हम क्या क्या इसमें केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बस वो रिएजेंट हमारे लैब में प्रयोग में प्रयोगशाला में रहते हैं, जिससे हमारे जो भी हमारे टेक्नीशियन होते हैं या साइंटिस्ट लोग होते हैं वैज्ञानिक लोग उसका जाँच करते हैं। तो यूरिया जाँच करने का विधि क्या है प्रयोगशाला में, आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं एक परख नली लेते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उस परख नली में क्या करते हैं 1 ग्राम जो यूरिया है वो लेते हैं, और उसमें 5 ml क्या करते हैं हम, जो आसुत जल जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं वो डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं उसमें हम उसको अच्छे से घोल लेते हैं पानी में यूरिया को, और 5 से 6 बूंद हम ड्रॉप वाइज सिल्वर नाइट्रेट नामक एक रिएजेंट होता है जो कि बहुत महंगा आता है। इसका अगर हम देखेंगे एक 10 ml का जो डब्बा 7 से 8 हज़ार का कॉस्ट आता है इसका, क्योंकि सिल्वर है तो आप समझ सकते हैं कि महंगा ही होगा ये हमारा रिएजेंट। 5 से 6 बूंद सिल्वर नाइट्रेट का घोल बना लेते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट का घोल बना लेंगे थोड़ा सा, और 5 से 6 बूंद हम अपने उसमें डाल देते हैं। अगर वो दही जैसा सफ़ेद बनता है, बिल्कुल दही जैसा सफ़ेद एक पारदर्शी टाइप बन जाता है, दही जैसा हम जमाते हैं ना, और दही जैसे कैसे उसका दिखता है सफ़ेद दिखने लगता है उसका जो अवशेष बोलते हैं, अगर ऐसा बनता है तो समझिए उस पदार्थ में मिलावटी है। उसे बनना अगर दिखता है तो, अगर नहीं रहा है पूरा अच्छे से घुल गया तो समझ जाइए कोई अवशेष नहीं मिला, तो यूरिया हमारा जो है शुद्ध है, ये हमारा
1: जी यूरिया का
0: हो गया। डीएपी हम बताते हैं, डीएपी में जांच कैसे करते हैं। डीएपी का मैंने आपको पहले ही बताया, डीएपी 2 का स्रोत है, नेत्रजन का भी स्रोत है और हमारा फॉस्फेट का भी स्रोत है। तो नेत्रजन को जांच करना है प्रयोग में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो डीएपी में नेत्रजन है उसको जांच करने के लिए क्या करना है, डीएपी को पाउडर लेना है, डीएपी मतलब जो हमारा उसके जो दाने होते हैं इसको पीस लेना है, उसको 1 ग्राम लेना है और उसको परख नली में डाल देना है। फिर क्या करना है उसमें 5 ml हमको डिस्टिल वाटर है वो डाल देंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे, और फिर उसमें 1 ml हम नाइट्रिक एसिड मिलते हैं जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं वो मिलाते हैं, फिर अच्छे से हिलाते हैं। अगर वो घुल जाए और हमको दिखे बिल्कुल पारदर्शी जैसा दिखने लगे या अर्ध पारदर्शी दिखना लगे तो समझ जाइए डीएपी शुद्ध है, डीएपी में कोई मिलावट नहीं है हमारा। अब इसमें यही नेत्रजन का चेक करने का विधि हुआ प्रयोगशाला में, और इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहता है, तो फॉस्फेट का चेक कैसे करेंगे, फॉस्फेट चेक करने का भी बस है जो हमारा इसमें रिएजेंट यूज करते हैं वो बदल जाता है, बाकी विधि सेम ही है। इसमें क्या करते हैं, वही हम करते हैं जो हमारा पीसा हुआ डीएपी है उसको परख नली में ले लेते हैं, और उसमें 5 ml आप क्या कर देते हैं हम जो हमारा डिस्टिल वाटर वो डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं अच्छे से घोल लेते हैं, घोल लेने के बाद एक फिल्टर पेपर होता है हमारे लैब में प्रयोग किया जाता है बहुत, उससे उसको छान लेते हैं। छानने के बाद क्या कर देते हैं जो हमारा छानने के बाद जो हमारा मिलता है फिल्ट्रेट मिलता है, उस फिल्ट्रेट में 1 ml हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिला देते हैं। फिर उससे सिल्वर नाइट्रेट के जैसे हम घोल मिलाएंगे तो उसमें आपको जो अवक्षेप मिलता है वो पीले रंग का हमको मिलता है, पीले रंग का बनना शुरू हो जाता है। जैसे ही पीले रंग का अवक्षेप बनना हमको शुरू हो जाता है तो उसमें 5 से 6 ml हम नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं, और नाइट्रिक एसिड में अच्छे से घुल जाता है, बहुत अच्छे से घुल गया, अच्छा दिखा हमको कलर, बिल्कुल कोई उसमें अवक्षेप नीचे बने सतह पे नहीं दिखा, तो समझ जाना है उसमें फॉस्फेट उपस्थित है और उस डीएपी में कोई मिलावट फॉस्फेटिक अदर फॉस्फेटिक पदार्थ का मिलावट नहीं किया गया है।
1: अब अगला हमारा है
0: एमओपी का।
1: एमओपी
0: की जांच करने के लिए भी क्या करना है हमको, आपको 1 चम्मच हमको जो एमओपी उर्वरक है उसको ले लेना है, और उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर को वो मिला लेना, अच्छे से उसमें घोल कर लेना है उसको। फिर क्या करना है उसमें हमको 2 ml घोल उस जो पानी में पोटास को घोले हैं अपने 5 ml या 10 ml डिस्टिल वाटर में, फिर वहाँ से क्या करना है हमको 2 ml वहाँ से निकाल लेना है पानी और पोटास के घोल से 2 ml अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं। फिर उसमें 2 ml हम क्या डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और 1 ml हम क्या डालते हैं बेरियम क्लोराइड डालते हैं। अगर ये दोनों फिर उसके बाद दोनों जो हमारा रिएजेंट है हमारा केमिकल रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं, अगर घुलते घुलते ये अगर हमारा जो घोल मिल जाता है और बहुत स्वच्छ बिल्कुल पारदर्शी मिलता है तो समझ जाना है कि हमारा जो पोटास है वो उर्वरक शुद्ध है। अगर हमको सफ़ेद अवक्षेप नहीं मिलता है तो अगर सफ़ेद अवक्षेप मतलब अवक्षेप का मतलब कुछ कुछ पारदर्शकता टाइप पर नहीं दिखे सफ़ेद टाइप पर दिखने लगे तो मीन समझ जाना है इसे उसमें मिलावट की गई है। ये हमारा प्रयोगशाला की विधि है इसको जांच करने का।
1: ये प्रयोगशाला की विधि साथियों आपको इसलिए बताई गई ताकि आप उससे कम से कम अवगत रहें, और हम चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रयोगशाला से हमें सर्टिफिकेट भी कोई निर्गत होगा जिसमें कि वो असली या नकली की जो वहाँ पर बात है वो प्रमाणित हो पाए।
0: जी जी बिल्कुल, जो भी हमारा हमारा हमारा जो प्रयोगशाला है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट जहाँ की जाती है स्पेशली मृदा विज्ञान विभाग इसको कंडक्ट कराता है, तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे हमारा आज के डेट में बहुत ज़्यादा भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा बहुत ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम बोलते हैं ना जो हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें, पोषक तत्व प्रबंधन में ये पोषक तत्व प्रबंधन के ही मतलब उसका ही भाग है कि हम उर्वरक का टेस्ट कैसे करें उर्वरक का जाँच कैसे करें, और ये जब ये बहुत सारी जो हमारे इस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जा रही है हर यूनिवर्सिटी करा रही है इंस्टीट्यूट जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं, और जहाँ पर ये प्रयोगशाला की जाती है तो जैसे आपको मृदा कार्ड मिलता है सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं, हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको मिलता है, मिट्टी का जो जांच कराते हैं, वैसे ही आपको ये प्रमाणित करके दिया जाता है प्रयोगशाला द्वारा कि आप जो जो उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उस उर्वरक में अगर कुछ मिलावट है तो वो भी लिख कर दिया जाता है इसकी मिलावट की गई है, नहीं मिलावट है तो बताया जाता है हाँ 100% ये जो आपका उर्वरक है जिस कंपनी से या जिस कंपनी का परचेज किए, जहाँ से भी परचेज किए हैं, जो आपका फर्टिलाइजर डीलर है जहाँ से भी परचेज करा है, ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है उसका भी आपको ये दिया जाता है, एश्योरेंस दिया जाता है, चाहे उस पर लिख जाएगा मिलावट है तो कितनी परसेंट की मिलावट है, शुद्ध है 100% शुद्ध है कि नहीं है
1: जी। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से बता दी गई साथियों कि नकली और मिलावटी उर्वरकों की पहचान आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। साथियों आप हम बखूबी समझते हैं कि कृषि में सबसे ज़्यादा जो लागत है उर्वरकों में ही होती है और लगभग 25% तक की जो लागत मूल्य है वो उर्वरक के तौर पर आप करते हैं, ऐसे में अगर नकली उर्वरक आपको मिले तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है और पूरे कृषि जगत का है, इसलिए हमने ये भाग आपके लिए लेकर आए। और साथियों जो कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग है उसको भी हमने कई भागों में आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि हमारा एक सीरीज भी चलता है जिसमें कि आपको संतुलित उर्वरक के ऊपर आपको पूरी ब्यौरा दी जाती है कि किस तरीके से आपको संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है, साथ ही अल्टरनेट क्या यूज़ करना है, आपको जैविक विधि से भी बताई जाती है कि रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए किस तरीके से जैविक या फिर आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर हमारे किसान भाइयों बहनों को जानकारी देने के लिए। हम कृषक मंच कार्यक्रम में कुछ और भी कार्यक्रम लेकर इसी तरह से आते रहेंगे। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है, डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं, अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तोड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला लें और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिलाकर दें। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं, तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकती हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। इसलिए जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं, वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती हैं, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं, वो खुद को सुरक्षित रखती हैं, बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती हैं। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यहीं से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे जरूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए जरूरी होता है कि महिलाएं भी कमाएं। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएं समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है, लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रहे हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत जरूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देखरेख, उस पैसे की देखरेख और सारी चीजें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी जरूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीजें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। सबसे जरूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आजादी देना कि वो नौकरी करना चाहती है या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखे एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूं आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियां और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु का या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
8: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नजर आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
0: संक्रमण होने
8: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नजर आता है, और खास करके कम उम्र के पशुओं में, 2 साल 3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बच्चों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
0: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
8: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती है, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं, और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
0: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
8: ज्यादातर पाया ही जाता
0: और
8: है।
0: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
8: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
0: और गला
8: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
0: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
8: भैंस वंश में ज्यादा होती है,
0: तो इसके लक्षण क्या?
8: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहां पर सूजन हुआ वहां पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहां पर जहां पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है, और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
0: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
8: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुँह में होने वाले रोग,
0: खुर और मुँह,
8: हाँ, तो खुर और मुँह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन इसके लिए खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
0: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
8: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है, और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला ये बीमारी है। और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है। किया जा रहा है लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए, तो हम लोग जो
0: उनको नुकसान होता है,
8: दूध में काफी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है, जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस होता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं, अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता, उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
0: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मायने रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर, पशुओं पर, और डॉक्टर साहब ने बताया किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, साथ ही इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं, यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे हम आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है, तो कैसे फैलती है ये?
8: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव, गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
0: और नमी में ही बैक्टीरिया जो है वो उत्पन्न होते हैं।
8: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है, इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर, मक्खी और चमोकन, जो किलनी, जू, इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊंचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो, और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं, साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
0: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
8: जी, ये सब सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से, उनके जो छींकने के माध्यम से, चारे के माध्यम से, या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो अगल बगल पशु रहते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, उसके चलते भी, तो ये संक्रामक रोग है और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
0: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो, यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
8: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
0: अच्छा।
8: और उसके रखने के जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
0: अच्छा।
8: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ
0: FMD.
8: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
0: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज्यादा अच्छा होगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को जो बीमार पशु है उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक है अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
8: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर की कॉमन चारागाह है,
0: जहां पर सभी पशु,
8: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंघे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल जो जल जमाव है वहां का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
0: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
8: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
0: अच्छा।
8: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
0: अच्छा।
8: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
0: कृमिनाशक
8: दवा बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
0: तो हमारे किसान भाइयों और पशु

0: इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावे क्योंकि HS हेमरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है, तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियां ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भिंग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है, वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई जरूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ सबसे जरूरी है कि चिकित्सा से जरूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
1: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक

0: दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोहान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तोड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़ कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। तो मैम सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
0: मैम बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रॉ मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोसाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती खत्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे एनआरसी सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है, इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
0: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे।
2: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम अच्छा। लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे, इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें वो उसका चयन कर लें, उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं, फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीवकृत सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं, अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं, जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं, उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑस्टन मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं तो इसमें पूरे बैग में छेद की ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीविकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीविकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसिलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसिलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे, तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं, तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाले बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग आते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और दोसा सरा हुआ गोबर लेते हैं दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले ली, ये सारा को मिलाकर के भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको यदि 2 साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीविकृत करते हैं। ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई मेटलिक कुछ चीज हो, पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है, लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है ये सब है तो वो सब को हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीविकृत करेंगे। निर्जीविकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं, केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीविकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाइजिन 1 ग्राम और 1 लीटर पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीविकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12-15 दिन के बाद केसिंग करते हैं तो इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब मैसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं, और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केशिंग की लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत डाल देते हैं, और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं, और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन पानी हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, जब हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है, और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहां पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 सेंटीमीटर मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है, और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद इसका यह तुराई योग्य हो जाता है, और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
0: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
2: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग दोसा सरा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं, प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे 1 भागिए लेंगे, और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं, और यदि और सारे चीज लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, एक टोकरी है तो फिर एक टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर ले करके हम लोग उसको मिलाते हैं, और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवित करना ये हम लोग करते हैं, फिर उसका यूज करते हैं।
0: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
2: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 25 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है, तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी ग्रो कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बन डाइजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है। तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है। तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए। उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा, जैसे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके, जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से, वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो कोप्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि लोगों को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
0: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
6: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए, और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की बात करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही। और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं। और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते। इस भीषण गर्मी में भी बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है। और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल ले, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले। और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दे। और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहे 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है। और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और खास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है, जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइजर के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है। और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफी मददगार साबित होता है और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है और 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15 से 20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 एफएम ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15 से 20 मिनट के बाद आपको करना क्या है? तो 15 से 20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत जरूरी होते हैं और खास तौर से चंदन और एलोवेरा। तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है। तो आप बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुंचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है। और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले। अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर,

0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों आज के टाइम पे ना हर चीज स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीजें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो जरूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
1: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज करें, जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है।

0: prší. बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। और दोस्तों आज के टाइम पे ना हर चीज़ स्मार्ट हो रही है, फिर चाहे हम हो या हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे आसपास की लगभग सारी ही चीज़ें, तो ऐसे में हमारी कृषि क्यों पीछे रहे, उसे भी स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट फार्मिंग आज के टाइम पे कहें तो ज़रूरत बन गई है। और इस विषय में हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य सिन्हा, आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए।
0: सर सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्मार्ट फार्मिंग क्या है।
1: तो स्मार्ट फार्मिंग ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि हम डेटा का यूज करें, जैसे कि नॉर्मल कृषि होती है उसमें हम लोग डेटा पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। डेटा मतलब कोई भी ऐसा चीज जिसका हम यूज कर सकते हैं कृषि में। डेटा आजकल हर चीज़ में डेटा है, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो तो आप अपना कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो भी एक डेटा है। कैसे हम डेटा को बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम डेटा को यूज़ कर सकते हैं कृषि में, तो हम ऐसे चीज़ों को स्मार्ट कृषि कह सकते हैं। तो आप देखते होंगे अभी नया नया तकनीक, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं कृषि में। जो भी तकनीक जो डेटा को यूज़ करके आपको अच्छा डिसीजन लेने में मदद करे, ऐसी कृषि को हम स्मार्ट खेती कह सकते हैं।
0: तो सर भारत में स्मार्ट फार्मिंग क्यों ज़रूरी है?
1: क्योंकि देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में हमारे छोटे जोत के किसान सबसे ज़्यादा भारत में ही हैं, इसीलिए। और उनको आप देख रहे होंगे कि आजकल क्लाइमेट चेंज का बहुत सारा ज़्यादा बात है, कभी वर्षा आ जाती है कभी सुखाड़ आ जाता है। तो अगर हम हमारे किसान स्मार्ट कृषि का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्मार्ट कृषि करेंगे तो अपने संसाधन का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि अभी कितना लेबर भी मिलना कितना मुश्किल हो गया है, अभी हर इनपुट का भी कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे युवा हैं हमारे वो कृषि से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए अगर वो स्मार्ट कृषि करेंगे और बहुत अच्छे से, बहुत ये डिफिकल्ट नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को इससे डर लगता है कि हम कैसे यूज़ करें। बहुत आसान है समझना, अगर वो एक छोटा सा ट्रेनिंग कर लें इसके ऊपर कि कैसे हम मोबाइल या उपकरण को कैसे यूज़ करें, तो आराम से उसको सम्मिलित कर सकते हैं अपने कृषि में और अपना पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, अपना दाम भी उनको कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा पैदावार भी होगा और जो अभी जो करंट टाइम्स है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाएंगे।
0: सर जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि ये बहुत मुश्किल है,
1: बिल्कुल,
0: और उनके मन में ये भी बात आती है कि ये बड़े किसानों के लिए है, जो छोटे लेवल पर खेती गृहस्थी कर रहे हैं उन्हें लगता है कि ये उनके लिए है नहीं, क्या ये सच है?
1: बिल्कुल ये सच नहीं है। एक्चुअली अगर मान लीजिए कोई भी किसान जो एक स्मार्टफोन यूज़ करता है, आप जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन में आजकल 15 से 18 सेंसर लगे रहते हैं, तो वो सेंसर भी जो है एक तरह से वो स्मार्ट डिवाइस ही है। जो आपका स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, जैसे कि आप बहुत तेज चलते हैं तो आपका स्टेप्स वो काउंट कर लेता है। मान लीजिए आप उसको बहुत गर्म जगह में मोबाइल फ़ोन को ले जाते हैं तो फिर वो अपने आप बोलता है कि आप इसको किसी ठंडे जगह में ले जाइए। तो ये सब सेंसर का है जो प्रयोग है जो मोबाइल फ़ोन में होता है। ऐसे ही सेंसर हम अपने ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप जानते होंगे बहुत अमेजन जैसी वेबसाइट पे बहुत कम दाम में सेंसर मिलता है, 1500 रुपये में सॉयल मॉइस्चर सेंसर आप खरीद सकते हैं। तो वो सेंसर अगर आप ज़मीन में लगा देंगे, अपने मिट्टी में लगा देंगे, तो वो बता देगा कि आपकी मिट्टी को कब सिंचाई चाहिए, ऐसे हम कितना पानी जो है वो वेस्ट होता है सिंचाई के चक्कर में। अगर वो आप डिवाइस लगा देंगे 1500 रुपये का तो आपको बता देगा कि आपको कब आपकी ज़मीन को सिंचाई चाहिए, तो आप इसमें अपना कितना कम पानी लागत आपको कितना कम हो जाएगा अगर आपको कम सिंचाई करनी पड़े तो। बहुत सारे रिसर्च में हैं, बहुत सारे शोध में ये पता चला है कि 30-40% जो है आप सिंचाई का पानी बचा सकते हैं। तो मान लीजिए इतना पानी आप बचा लिए तो आपको कितनी लागत कम हो जाएगी कृषि में। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, इसलिए बहुत आसान है यूज़ करना, बस थोड़ा सा धैर्य रखना है किसान को कि हम थोड़ा सा छोटा मोटा चीज़ करके ट्राई करें। एक बार वो ट्राई करेंगे तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो उसको बड़े वृहद स्तर पे कर पाएंगे।
0: ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने। तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें कौन कौन सी हैं?
1: तो स्मार्ट फार्मिंग की मुख्य तकनीकें, तो जैसा अभी मैं बता रहा था कि सेंसर जो है इसको हम IoT भी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसका फुल फॉर्म है। तो सेंसर के माध्यम से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं कृषि में, जैसे कि आपका टेम्परेचर, मान लीजिए कि कब आपका टेम्परेचर कब रहे क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं, आपके सॉइल के मिट्टी जो है उसमें नमी कितनी हद तक है ये सभी आप सेंसर के माध्यम से देख सकते हैं। तो एक तो कैटेगरी हो गया इसका जिसको हम IoT बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दूसरा कैटेगरी जो है वो ड्रोन्स हो गया आपका, ड्रोन के माध्यम से भी हम बहुत सारा सिंचाई कर सकते हैं, उसमें स्प्रे कर सकते हैं, सिंचाई तो नहीं स्प्रे कर सकते हैं हम, और भी उससे हम डेटा निकाल के ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारा चेंज आ रहा है ओवर द ईयर्स, कैसे चेंज आ रहा है। इसके अलावा हमारा मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप में आप देखते होंगे कितने सारे आजकल मोबाइल एप्लीकेशन है। एक बहुत अच्छा मोबाइल एप्लीकेशन है मौसम, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि आपके स्पेसिफिक लोकेशन में, मतलब आपके जगह पे क्या मौसम का हाल रहेगा, अगले 7 दिन में क्या रहेगा, इस महीने क्या रहेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे तकनीक हैं मोबाइल फ़ोन का, बहुत सारा ऐप एप्लीकेशंस भी हैं। अभी हाल ही में कृषि मंडपम में एक बहुत अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जो कहते हैं भारत विस्तार। उस ऐप के माध्यम से भी आप अपने लोकेशन के हिसाब से अनेक भारतीय भाषा में देख सकते हैं, कुछ भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं कृषि के आधारित, आपको तुरंत जवाब मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं जो कि हमारे स्मार्ट कृषि के तहत हो सकता है।
0: तो सर क्या बिहार में स्मार्ट फार्मिंग के कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण है?
1: हाँ बिल्कुल, अभी बिहार में जो है बहुत सारे ऐसे मॉडल चल रहे हैं जिसमें स्मार्ट कृषि का उपयोग किया जा रहा है। जैसे आप मंडी का रेट्स जो है, जो बिहार में डिफरेंट डिफरेंट मंडी है उसका रेट्स भी आप कितना, उसमें क्या भाव चल रहा है, ये भी आप मोबाइल ऐप में देख सकते हैं। ये भी एक तरह से स्मार्ट कृषि का ही जरिया है। आप ये भी जानते होंगे एक बहुत अच्छा योजना है जिसको कहते हैं हम नमो ड्रोन दीदी योजना। तो इस योजना के माध्यम से भी आप ड्रोन का किसान अपने खेत पे उस पे स्प्रे करवा सकते हैं, लागत उससे कम कर सकते हैं। और भी सिंचाई के लिए सेंसर बहुत अच्छे वृहद तरीके पे यूज हो रहे हैं। सैटेलाइट के से भी बहुत सारा डेटा अभी अर्जित हो रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे कि हम बहुत सारा डिसीजन लेने में हमें आसानी पड़ता है। अभी तो और भी ऐसे ऐसे मॉडल आ गए हैं जैसे कि पॉली हाउस में, ग्रीन हाउस में, जिसमें कि अपने घर बैठे बैठे आप अपना पूरा फार्म को चला सकते हैं। अभी हाइड्रोपोनिक्स बहुत सारे लोग जो आप दिल्ली में देखेंगे या फिर बड़े बड़े महानगरों में देखेंगे कि हाइड्रोपोनिक्स मैक्सिमम स्मार्ट कृषि के तहत हो रहा है, जिसमें कि मैक्सिमम जो काम है वो आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल डिवाइस से पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपने पूरे सेटअप को। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है जो कि बिहार में भी अभी हो रहा है।
0: तो अगर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे किसान भाई बहनों को इससे क्या फ़ायदा होगा?
1: सबसे बड़ा फायदा तो इससे यह होगा कि लागत में बहुत कमी आएगी, क्योंकि अभी लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी खेत गांव में भी आप जाएंगे तो आपको लेबर का में कठिनाई होती है मिलने में। इसके अलावा आप देखेंगे कि मौसम पे हमें बहुत ज़्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते हैं आपके मानसून के समय आपको बारिश होगा ही, कभी गर्मी के समय में बारिश नहीं होती है, कभी बहुत ज़्यादा सुखाड़ पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। ये सब चीज़ से आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, तो आपका कृषि को आप उसी माहौल में ढला सकते हैं और इस हिसाब से आप अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इसीलिए हर किसान को ये कहना चाहेंगे कि आप छोटे चीज़ से उसको यूज़ करें, कोई बहुत बड़ा सेटअप मत लगा लें क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट करें अपने खेत पे, कोई सेंसर ले लें, कोई मोबाइल डिवाइस का यूज़ करें, देखिए कि बहुत सारा चीज़ आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सारा चीज़ आपको मतलब आपको मिल जाएगा पॉसिबिलिटी उससे।

0: अगर वो नमी का मात्रा कम हो जाएगा तो अपने आप आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा या फिर एक अलार्म बजने लगेगा कि अब आपको सिंचाई की जरूरत है। तो इससे एक शुरू करने के लिए अच्छा जरिया हो सकता है। डायरेक्ट मोबाइल का तो एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन मोबाइल का ही सेंसर जो है वो यूज हो सकता है स्मार्ट कृषि में भी।
1: अभी एआई के बारे में बहुत बातें हो रही है, एआई काफी चर्चा में है, तो क्या एआई स्मार्ट फार्मिंग में किसी तरीके से मदद कर सकता है?
0: हाँ बिल्कुल, स्मार्ट कृषि में एआई का बहुत महत्व है, क्योंकि जो भी आपको डिसीजन जो आप लेते हैं, जो भी किसान को मान लीजिए डिसीजन, तो फाइनल जो डिसीजन लेना है वो किसान को ही लेना है। एआई आपको बहुत सारा बता सकता है ऑप्शन, जैसे कि आपको क्या कहते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है जिसमें कि आपको चार मिलते हैं ऑप्शंस, तो आपको एआई चार पांच ऑप्शन बता सकता है, उसमें जो सही है वो आपको ही चूज करना है। तो अभी एआई का मॉडल जो है बहुत सारा डेवलप हो रहा है, अभी बहुत सटीक नहीं है ये जानकारी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जिसपे कि आप रिलाई कर सकते हैं। जो भारत विस्तार है वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जिसको हर लोग यूज़ कर सकते हैं। और एआई से क्या होगा कि फ्यूचर में जितना ये मॉडल डेवलप होते जाएंगे, अभी तो ये हर दिन मॉडल अपने आप डेवलप हो रहे हैं, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे कि इतना अच्छा ये मॉडल डेवलप हो जाएगा कि वो अपने से वो भी वो डिसीजन ले पाएगा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से को यूज़ करेंगे अगर आप, तो बहुत अच्छा कृषि कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे मोबाइल पे एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में आप अपना खेत को मैप कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हेक्टेयर का खेत है, उसको आप मैप कर सकते हैं, उसके लोकेशन को। आपको बार बार उसमें जानकारी आते रहेगी कि कब वर्षा हुआ आपके खेत में, आपको खेत में सबसे अच्छा क्या लगाना चाहिए, इस सीजन में आपको क्या लगाना चाहिए, किसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में। तो इस तरह ये सब ऐप का यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके और भी अच्छा खेती कर सकते हैं और भी अच्छी कमाई कर सकते हैं।
1: मतलब इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कैसे शुरू कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग?
0: हाँ बिल्कुल, तो शुरू करने के लिए सबसे अच्छा तो रहेगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ ऐप जो है, कुछ ऐप जो है वो आप जरूर यूज कीजिए। जैसे भारत विस्तार के बारे में मैं बता रहा था, वो जरूर यूज कीजिए। एक मौसम नाम का ऐप है, वो भी जरूर यूज कीजिए, उससे आपको मौसम आधारित जानकारी मिलेगी। ई नाम का ऐप है जिसमें कि आपको मंडी का रेट्स मिलता है कि किस किस मंडी में क्या क्या रेट चल रहा है हमारे कृषि के प्रोडक्ट का। तो ये सब अगर आप इससे शुरुआत करेंगे तो आपको एक अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी जानकारी उसी ऐप के माध्यम से मिलेगी कि हम और इसको कैसे आगे बड़े स्तर पे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक माध्यम हो सकता है शुरुआत करने के लिए। उसके बाद फिर आप छोटा एक्सपेरिमेंट कीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप सेंसर ले लिए, उस सेंसर को लगा के आप देखिए कि सच में ये काम कर रहा है कि नहीं, ये हमको हेल्प कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए आप कोई गमला, आपके घर में आप गार्डनिंग करते हैं अपने घर में ही, और आपके घर में मान लीजिए आप 5 दिन के लिए घर के बाहर जा रहे हैं, तो आप वो सेंसर खरीद लीजिए और उस सेंसर को लगा लीजिए अपने गमले में लगा लीजिए। तो हो सकता है जब आपको मोबाइल पे अलार्म आने लगेगा कि अब आपके गमले को पानी की आवश्यकता है, तो आप किसी को घर पे बोल दीजिए या फिर पड़ोस में कि आपके गमले में पानी दे दें। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं ताकि आपको भरोसा बने कि ये सच में हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है।
1: मतलब बहुत छोटे लेवल पर शुरुआत कर सकते हैं, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं।
0: बिल्कुल हाँ, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर आप शुरू से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए और आप नहीं अच्छे से समझ पाए सारा चीज को, तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज आप सीखिए। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है हर साल, यहाँ पे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर एक ट्रेनिंग होती है, 2 दिन का ट्रेनिंग होता है जिसमें कि हम लोग हर चीज बताते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं, कैसे वीडियो बना सकते हैं, कैसे आप डिफरेंट ऐप्स को यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप ऐसी ट्रेनिंग को आप अगर अटेंड करते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसे यूज करें।
1: सर अभी आप ट्रेनिंग के बारे में बता रहे थे, तो किस तरीके से किसान भाई बहन इस ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं और ये कब होता है?
0: तो ये ट्रेनिंग जो है इसके आप अपने नियरेस्ट जो आपका आत्मा है, हर जिले में बिहार में एक आत्मा होता है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, वहाँ पर जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि हम डिजिटल कृषि के ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो साल में एक बार करवाती है, लेकिन और सब भी जो है यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि हमारे राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमारा बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है पटना में, वो लोग भी करवाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम कहाँ पे करना चाहते हैं ट्रेनिंग, तो वो आपको रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग करवाते हैं। हर साल एक बार तो ये ट्रेनिंग जरूर हमारे विश्वविद्यालय में होती है। अभी जनवरी के महीने में यहाँ पर वो ट्रेनिंग आयोजित की गई थी।
1: तो मतलब अपने पास के आत्मा केंद्र पे जाकर आप इनरोल करा सकते हैं खुद।
0: बिल्कुल।
1: तो सर आप लगातार सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, आईओटी के बारे में भी आपने बताया, तो ये कैसे काम करता है?
0: तो आईओटी जो है, आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये काम करता है, ये आपके मोबाइल से इंटीग्रेटेड रहता है। तो मान लीजिए कि कुछ भी

0: मेजर करना हो, मान लीजिए ह्यूमिडिटी मेजर करना हो, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए तापमान मेजर करना हो, ये सब चीज़ को हम IoT से कर सकते हैं। अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे सेंसर हैं, कितने सारे गैरेज आप देखेंगे, गैरेज आजकल ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि आप एक बटन दबाएंगे तो, या फिर कोई भी आसपास गाड़ी आ रही है तो वो गैरेज अपने आप खुल जाएगा, उसको पता चलेगा कि कोई ऑनर उसका आ रहा है, या वो गैरेज छोड़िए मान लीजिए बल्ब भी आजकल आने वाला है, सेंसर वाला बल्ब आने लगा है, कोई भी आदमी पास करेगा उस बल्ब के रास्ते तो वो बल्ब अपने आप जलने लगेगा। तो ये सब सेंसर है। IoT जनरली ऐसे ही काम करता है कि वो डिसीजन लेता है आपके मूवमेंट को देख के, या फिर आपके टेम्परेचर को देख के, या फिर आपका ह्यूमिडिटी को देख के। तो ये सब चीज IoT के अंदर आता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर।
1: और स्मार्ट सिंचाई कैसे काम करता है?
0: तो स्मार्ट सिंचाई में भी IoT का ही एक माध्यम है। स्मार्ट सिंचाई में आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट सेंसर, बहुत सारे सेंसर लगा दिए अपने पूरे खेत में, तो वो एक सारे सेंसर मिलके एक डिसीजन ले लेंगे कि आपके खेत को सिंचाई की जरूरत है, और फिर वो आपको अलार्म आ जाएगा मोबाइल पे, आपको मैसेज आ जाएगा कि अब आपको पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। तो इस तरह आप क्या करेंगे, जब जब जरूरत है खेत को सिंचाई की तभी आप सिंचाई देंगे, ये नहीं कि कभी भी सिंचाई दे दिए, उससे बहुत वेस्टेज होता है पानी का भी, संसाधन का भी, आप जानते होंगे डीजल का भी यूज होता है जनसेट चलाने में, पंप चलाने में, तो ये सब आपका 30-40% आपका जो है बचत हो सकता है अगर आप ये का यूज करें तो।
1: तो सर AI और डेटा एनालिटिक्स का कैसे उपयोग कर सकते हैं किसान भाई बहन?
0: तो AI और डेटा एनालिटिक्स का अगर आपको बेसिक यूज करना है तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी ने भी ऐसा ऐप बनाया हुआ है, जैसे कि आप देहात नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है, डिजिटल नाम ग्रीन नाम की एक कंपनी है उसने भी एक ऐप बनाया है। तो ये सब ऐप जो है अभी ये सब ऐप उतने उन्नत नहीं हुए हैं, अभी बेसिक ही हैं, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं कि ये सब ऐप से आप कुछ सीखें और बड़ा करें। जैसे भारत विस्तार ऐप जो है जरूर आप यूज़ करना चाहें। एक और ऐप है kisan.ai, ये भी एक बहुत अच्छा ऐप है जिसमें कि आप सिर्फ कुछ भी आप बोलिए और वो आपको उसका जवाब देगा, आपको सिर्फ किसी भी भारतीय भाषा में आपको वो बोलना है और आपको जवाब आएगा। तो ये सब यूज़ करके किसान भाई जो है वो शुरुआत कर सकते हैं, और एक अच्छा शुरुआत रहेगा तो फिर वो आगे इसको बड़े स्तर पे कर सकते हैं।
1: तो AI का इस्तेमाल ऐसे भी किया जा सकता है कि कोई फोटो आपने भेजी और आपको उसके रोग के बारे में पता करना हो, तो ये भी हो सकता है कि AI?
0: बिल्कुल हाँ, ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है उसके ऊपर भी, जैसे कि आप जानते होंगे एक प्लांटिक्स ऐप है, एक हमारी यूनिवर्सिटी ने भी एक ऐप बनाया है ई-निरोग ऐप, ये सब ऐप का भी आप यूज़ करके मान लीजिए कोई भी फसल में आपको प्रॉब्लम है तो उसका फोटो अगर आप अपलोड कर दीजिए तो AI वो एनालाइज कर लेगा कि कौन सा रोग है उसमें और फिर आपको जवाब देगा। ऐसे भी आप AI का यूज़ कर सकते हैं।
1: तो सर अभी बहुत सारे लोग स्मार्ट खेती कर रहे होंगे, तो क्या भारत में कोई सफल उदाहरण है जिन्होंने स्मार्ट खेती की है या ऐसा कुछ?
0: हाँ, बहुत सारे सफल उदाहरण हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्रीन हाउस अभी ऐसे लग रहे हैं भारत में जो कि पूरा पूरा AI से कंट्रोल्ड है, पूरा IoT से कंट्रोल्ड है। तो ज़्यादातर आप अगर देखेंगे कि दक्षिण भारत में, और ख़ासकर आप देखेंगे ऐसे स्टेट जो हैं महाराष्ट्र गुजरात, उस समय बहुत सारे लोग ऐसे ग्रीन हाउस में ये सब काम कर रहे हैं और अच्छा सफल हो रहे हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं स्विगी का इंस्टामार्ट आप देखे होंगे, या फिर जो भी ग्रोसरी का डिलीवरी ऐप होता है जैसे कि आप किराने का सामान मंगा सकते हैं, उसमें देखे होंगे अलग सेक्शन होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें कि आपको आप लेट्यूस या जो कैबेज है ब्रोकोली है ये सब खरीद सकते हैं जो पूरा ऑर्गेनिक माध्यम से बना है, और उसका दाम बहुत ज़्यादा रहता है मार्केट प्राइस से, और आप देखेंगे कि 12 बजते हर दिन के 12 दोपहर के 12 बजते वो बिक जाता है, इतना डिमांड है उसका, क्योंकि लोगों को पता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये सारी फसलें जो है ज़्यादातर हाइड्रोपोनिक सिस्टम से होती है और AI मेथड से, इसमें AI यूज़ किया जाता है इसके लिए, आपको ग्रीन हाउस में होता है या पॉली हाउस में होता है जिसमें कि AI का यूज़ किया जाता है, IoT का यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो छोटे छोटे अगर आप हम छोटा शुरुआत करें तो बाद में आप ऐसा उद्यम लगाने का सोच सकते हैं।
1: तो अभी शुरुआत धीरे धीरे करने की ज़रूरत है, लेकिन सर जब हम कोई भी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, तो स्मार्ट फार्मिंग अपनाने में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है?
0: चुनौतियाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो ये आ सकती है कि अभी भी हमारे किसान बंधु जो है वो सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो उतना सेफ नहीं है यूज़ करने में, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, तो जनरली लोगों को एक डर रहता है स्मार्टफोन यूज़ करने में। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे हम मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं, कैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं या फेसबुक कैसे यूज़ करते हैं, छोटा छोटा चीज़ का से शुरुआत कीजिए तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा आप मोबाइल के अलावा और भी चीज़ से आप जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि आप जब भी जाएं किसी ट्रेनिंग में तो वहाँ पे लोगों से पूछें कि अभी क्या कौन सी नई ऐप है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने बनाया है, या फिर अगर मान लीजिए रेडियो का जो प्रसारण है, ये मान लीजिए मेरे पास रेडियो नहीं है तो हम कैसे इसको और सुन सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से सुन सकते हैं क्या? तो ये अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वैसा रखेंगे कि जानने का जागरूकता रहेगा तो आप जरूर सीख जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मतलब वृद्ध हैं लेकिन तब भी वो बहुत अच्छा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, और बहुत सारे ट्रेनिंग में हम ऐसे लोगों को, ऐसे किसान को देखते हैं जो कि बिल्कुल मोबाइल फ़ोन यूज़ ही नहीं करते हैं, स्मार्टफोन सब फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, वो छोटा वाला फ़ोन आता है। तो थोड़ा सा ये तकनीक सीखिए, क्योंकि नई तकनीक सीखेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो अभी ज़रूरत है कि आप तकनीक को अपना दोस्त बनाइए, तभी आप सफल हो पाएंगे।
1: ये बात तो बहुत सही कही आपने कि नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए और तकनीक को अपना दोस्त बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसे अपना दुश्मन समझना चाहिए। तो सर अंत में किसानों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
0: तो मेरा संदेश यही होगा किसानों को कि आप सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते रहिए, मतलब आप छोटा छोटा शोध करते रहिए अपने जगह पर। ये देखिए कि हम कैसे मोबाइल फ़ोन का अगर हम यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ऐप का यूज़ कर रहे हैं जैसे भारत विस्तार का मैंने बताया, आप उसको यूज़ करके देखिए कि सच में वो आपको फ़ायदा पहुँचा रहा है कि नहीं। ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत खास फ़ायदा ना दिखे उसमें, तो कम से कम यूज़ कीजिए तो आपको खुद पता चलेगा कि वो सच में कारगर है या नहीं। या मान लीजिए वो सेंसर है, IoT वाला सेंसर है, वो आप देखिए कि सच में वो काम कर रहा है कि नहीं, कारगर है कि नहीं। तो घबराइए मत, मतलब आपको हमेशा तकनीक का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, और ये देखना है कि सच में आपके ज़िंदगी में कुछ चेंज आ रहा है कि नहीं उस तकनीक को यूज़ करने के बाद। तो मेरा ये संदेश रहेगा कि आप हमेशा अपना दिमाग खुला रखिए और नई तकनीक को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहिए।
1: तो बिल्कुल नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार रहिए, और अगर संभव हो सके, संभव या फिर ज़रूरी है कि आप ट्रेनिंग लीजिए और छोटे छोटे ऐप्स का इस्तेमाल कीजिए। सर आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम हमारे किसान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। सर आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए।
1: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्व

0: संख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में हम बातें करने वाले हैं शिक्षा के बारे में, लड़कियों की शिक्षा के बारे में। लड़कियों की शिक्षा बहुत ज़रूरी है, पर आज भी कई सारे माता पिता ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि लड़के को पढ़ा लेंगे तो शायद अच्छा होगा, लेकिन लड़की को पढ़ाएंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। और सोचिए, अब इस सदी में भी ये धारणा बनाने वाले लोग कितने पीछे हैं, इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़की और लड़के दोनों का पढ़ना ज़रूरी है। लड़कियों का पढ़ना, महिलाओं का पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के का, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो या फिर कोई कौशल प्रशिक्षण हो। इससे वो अपने जीवन के फैसले खुद ले पाती हैं और समाज में वो सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। लड़कियों की शिक्षा इसलिए ज़रूरी है कि ये लड़की और लड़के के बीच एक समानता स्थापित करता है। एक लड़का पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि वो अपना जीवन आगे चला लेगा, नौकरी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे पता होती है, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, वो अवेयर होता है। वहीं एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं होती है तो वो किसी के अधीन होती है, उसे नहीं पता होता है कि उसके अधिकार क्या है, वो अपने जीवन के साथ क्या करेगी या फिर अपने जीवन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी खुद लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो समाज में आवाज़ उठा सकती है, भेदभाव को चुनौती दे सकती है। जब माता पिता को लगता है कि एक लड़की पढ़कर क्या ही कर लेगी, इसका मतलब वो माता पिता अपनी बेटी से जरा भी प्यार नहीं करते और अपने भविष्य को भी सुरक्षित नहीं करना चाहते। जब एक लड़की पढ़ती है तो उसे गरीबी भी कम होती है। घर का हर सदस्य जब कमा रहा होता है तो जाहिर सी बात है ना कि गरीबी कम होगी। लड़की भी पढ़ेगी, वो कोई नौकरी करेगी, लड़का भी पढ़ेगा, वो नौकरी करेगा, तो घर में पैसे ज़्यादा आएंगे, गरीबी कम होगी। जब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो सिर्फ नौकरी ही नहीं, वो अपना कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकती है और परिवार की आय बढ़ा सकती है। इस तरीके से क्या होगा कि जो गरीबी का चक्र है वो टूटेगा और परिवार आर्थिक रूप से बेहतर हो सकता है। और जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तब उसे पता होता है कि पढ़ना कितना ज़रूरी है। उसके बाद वो अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाती है, फिर चाहे उसकी अगली पीढ़ी में लड़की हो या लड़का। जब एक माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों की स्कूलिंग घर से ही शुरू हो जाती है, घर पर माँ पढ़ाती है। तो अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ ना आप अपने आप को गरीबी रेखा से निकाल रहे हैं, समाज को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि अपनी बेटी की अगली पीढ़ी को भी आप शिक्षित कर रहे हैं। इसलिए लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अभी भी हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा बहुत बेहतर नहीं हुई है। पता है, लड़कियों के लिए एक और परेशानी बहुत बड़ी है और वो परेशानी है कि बहुत ही कम उम्र में उनकी शादी करा दी जाती है। जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने भविष्य के बारे में सोच पाने में सक्षम होती है, और जब जाहिर सी बात है ना, जब मम्मी पापा अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें उम्मीद होती है कि ये भविष्य में कुछ बेहतर करेगी, और ये उम्मीद उन्हें इस बात से रोकती है कि बचपन में ही उस बच्ची की शादी करा दी जाए। सोचिए कि एक फैसला कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी, ये फैसला उसे बाल विवाह से भी बचा सकता है। और बाल विवाह से जुड़े बहुत सारी परेशानियां होती है और उन परेशानियों से आप अपनी बच्ची को बचा सकते हैं। माता पिता को लगता है कि अगर हम बच्ची की शादी कम उम्र में कर देंगे तो हम जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, बच्ची का घर बस जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता है मानसिक, शारीरिक कितनी ही तरह की परेशानियों से एक बच्ची गुजरती है। फिर अगर आप अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं तो वो अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। बचपन में शादी करा देना बहुत गलत है, क्योंकि ये उसके शरीर को, उसके मन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है। अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं का स्वास्थ्य जल्दी खराब हो जाता है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें होती है और उनमें से एक वजह होती है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि उनके स्वास्थ्य को क्या चाहिए, उनके शरीर के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और जब लड़की के पास जागरूकता होती है, ज्ञान होता है, वो शिक्षित होती है, तब वो अपने स्वच्छता के बारे में, पोषण के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में पूरी तरह से जागरूक होती है।
और जब वो अपने लिए जागरूक होती है तो सिर्फ अपने लिए जागरूक नहीं होती, अपने परिवार के लिए भी जागरूक होती है और वो अपने परिवार को भी इन बातों के बारे में बताती है। और सोचिए, वो अपने परिवार को, पूरे परिवार को स्वस्थ रखने में मदद करती है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है कि क्या खाना चाहिए, किस तरीके से साफ सफाई करनी चाहिए और क्या कुछ जरूरी है, कौन से पोषक तत्व हमारे शरीर में जाना चाहिए। आपको पता है हमारे भारत में संतुलित आहार की बहुत कमी है, क्योंकि जागरूकता ही नहीं है लोगों को। लोगों को लगता है कि पेट भरना काफी है। और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि पेट भरना काफी है? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, वो शिक्षित ही नहीं है। अगर आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तब आपको बैलेंस डाइट के बारे में भी पता होता है। आपको पता होता है कि दाल चावल के साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, यानी कि पोषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। ये हमें तब अच्छे से पता लगता है जब हम शिक्षित होते हैं, और जब हम शिक्षित होते हैं तो अपने आप को आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र बनाते हैं। जब एक महिला नौकरी करती है तो वो अपनी आय से परिवार की तो मदद करती ही है, साथ ही अपने आप को भी स्वतंत्र महसूस करती है। उसके पास बहुत सारे रोजगार के अवसर खुल जाते हैं। जब वो अच्छी तरीके से उसने पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा उसने प्राप्त की है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, बहुत सारी चीजें बन सकती है। रोजगार होता है तब वो शोषण से बचती है। और एक पढ़ी लिखी लड़की अपने अधिकारों को जानती है, समझती है कि उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ हिंसा हो रही है। कई बार महिलाएं इसलिए भी हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है। और कई बार तो महिलाएं इसलिए हिंसा को सह लेती है क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई जो उसके साथ हिंसा कर रहा है, तो फिर वो कहां जाएगी। क्योंकि हिंसा करने वाला घर का ही होता है ना कोई, वो व्यक्ति जो आपका पेट पाल रहा है। तो फिर ऐसी स्थिति में महिलाओं को समझ नहीं आता कि वो पेट पालने वाले के खिलाफ अगर आवाज उठाएगी तो फिर क्या होगा। लेकिन जब वो पढ़ी लिखी होती है, उसके पास रोजगार के अवसर होते हैं, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती है, तो फिर वो हिंसा को नहीं सहती। मानव तस्करी ना अक्सर उन व्यक्तियों की जाती है, उन लड़कियों की जाती है जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं है। जब आप पढ़े लिखे होते हैं तो आपको पता होता है, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं, तो आप अपने आप को बहुत सारे परेशानियों से बचा सकते हैं। और उनमें से एक परेशानी है मातृ और शिशु मृत्यु दर। जी हाँ, जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वो जानती है कि उसे कब गर्भ धारण करना है, उसके लिए कौन से पोषण जरूरी हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि उन्हें पता होता है कि कौन से पोषक तत्व खाने चाहिए, अपने शरीर को वो कैसे स्वस्थ रख सकती है। तो जब उनसे ये सारी बातें पता होती है तो वो अपने आप को तो सुरक्षित रखती ही है, साथ ही बच्चे को भी, अपने पेट में पलने वाले बच्चे को भी, और अगर उसका बच्चा जन्म ले चुका है तो नवजात बच्चे की भी वो सुरक्षा करना जानती है अच्छी तरीके से। सोचिए, एक लड़की के पढ़ने से कितनी सारी चीजें बदल सकती है और कितनी सारी चीजें बेहतर हो सकती है। और मैंने अभी आपको बताया कि जब हमें जागरूकता होती है, हम पढ़े लिखे होते हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, तब उसे पता होता है कि कब उसे गर्भ धारण करना है और कब नहीं, और क्या चीजें जरूरी होती है। तो ये जनसंख्या नियंत्रण में भी काफी महत्वपूर्ण होता है। एक शिक्षित महिला परिवार नियोजन के बारे में जानती है और अपने बच्चों की संख्या के बारे में समझती है, अपने बच्चों के पालन पोषण को बेहतर तरीके से वो समझती है और अपने बच्चों के पालन के लिए बेहतर योजना बना सकती है, और फिर वो अपने परिवार का अच्छी तरीके से विकास करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाती है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उसके भविष्य के बारे में भी अधिक ध्यान देती है। इससे सिर्फ पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है, बेहतरी की ओर आगे बढ़ता है। बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर जीवन स्तर, बहुत सारी बीमारियों से बचाव जो कि जागरूकता की कमी की वजह से होती है, और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाता है। जब घर की महिलाएं जागरूक होती है तो बहुत सारी चीजें बदलती है, और जब एक समाज मजबूत बनेगा, स्वस्थ बनेगा और शिक्षित बनेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का भी विकास होगा। और अगर आपको लग रहा है कि लड़की को पढ़ाने में पैसे खर्चे होंगे तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, CBSE उड़ान योजना, और भी न जाने कितनी सारी योजनाएं जो ये सुनिश्चित करता है कि बच्ची पढ़े, न सिर्फ उसे जो शुरुआती शिक्षा है वो मिले, बल्कि CBSE उड़ान योजना तो खास तौर से उन बच्चियों के लिए है जो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहती है। सोचिए, आपकी बेटी, आपकी बहन इंजीनियर बन सकती है और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों, लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एक लड़की पढ़ जाती है तो समाज मजबूत बनता है, स्वस्थ बनता है और
शिक्षित बनता है। लेकिन इसमें बहुत सारी आज भी चुनौतियां हैं। परिवार जागरूक नहीं है, हमारा समाज जागरूक नहीं है, माता पिता इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। उन्हें लगता है कि लड़की अगर बाहर पढ़ने जाएगी तो बिगड़ जाएगी। अरे अगर वो पढ़ने जाएगी तो बिगड़ेगी नहीं, बढ़ जाएगी, समझ जाएगी, अपने फैसले खुद ले पाएगी और भविष्य में उसके खिलाफ कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, उसे हिंसा नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक वो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए और उसे ये समझाइए कि लड़कों का जितना जरूरी है नौकरी करना, उतना ही जरूरी है कि लड़की भी अपने पैरों पर खड़ी हो, लड़की भी अपने लिए खुद जिम्मेदार बने। बहुत सारे माता पिता को लगता है कि बाहर हमारी बच्ची सुरक्षित नहीं है, तो इसके लिए बच्चियों को क्यों कैद करना? जो आपके घर पर बच्चे हैं, जो लड़के हैं, उन्हें समझाइए, उन्हें बताइए। कहते हैं कि जब एक लड़की पढ़ जाती है तो पूरा समाज शिक्षित हो जाता है, लेकिन जब एक लड़का पढ़ जाता है ना तो पूरा समाज सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ जरूरी है कि आप लड़कों को भी समझाइए कि उनकी जिम्मेदारी है उनके आसपास की हर लड़की को सुरक्षित रखना। लड़का कुछ गलत कर देगा, इसके लिए ऐसा क्यों करना कि लड़की को उसके अधिकारों से वंचित कर देना। आपके घर पर आपका बेटा होगा, आपका भाई होगा और आपका पति भी, शायद वो भी शायद बाहर किसी लड़की को परेशान करता होगा, और वो जो परेशानी किसी लड़की के जीवन में पैदा कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है कि कल को उस लड़की को पढ़ाई छोड़नी पड़े। तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप अपने घर के पुरुषों को इस बारे में समझाएंगे कि लड़कियों का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है, एक बेहतर समाज के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए। तो लड़कियों को पढ़ाइए, लड़कों को भी पढ़ाइए और समझाइए, उन्हें समझाइए कि लड़कियों का सम्मान करना कितना जरूरी है, लड़कियों को बराबरी का हक देना कितना जरूरी है। लड़की पढ़ेगी तो समाज शिक्षित होगा, लड़का पढ़ेगा, समझेगा, समझदार होगा और उसमें थोड़ी सी संवेदना जाग जाएगी तो समाज सुरक्षित होगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज के कार्यक्रम को यही विराम देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, और अगर आप इस डर से लड़कियों की पढ़ाई रोक रहे हैं कि बाहर वो सुरक्षित नहीं है, तो जिससे सुरक्षित नहीं है उसे समझाइए। और ध्यान रखें कि लड़कों को ये जरूर समझाएं कि बाहर अगर किसी की बेटी है, बहन है, बच्ची है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसके आसपास मौजूद हर इंसान की होती है और पुरुष की होती है। अगर एक लड़का अच्छी तरीके से समझ जाएगा तो समाज की हर स्त्री सुरक्षित हो जाएगी। अभी के लिए लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जाने से पहले खास बात कि अपना और अपने अपनों का रखें खास ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहें। नमस्कार।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
3: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
4: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
3: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
4: लेकिन ऐसा क्यों?
3: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूरदराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
4: टीकी तो इसका हल क्या है?
3: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
5: याद रखो, आपके बच्चों के टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा।

0: जरूरी काम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्व

0: हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
5: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
4: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
5: आपकी सेहत की बातें,
4: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
5: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
4: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
5: वो कहाँ पर?
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
5: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
4: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.5 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर ले और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर ले, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सोआन देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीज उपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आज उन्नत कृषि कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं स्वीट कॉर्न के बारे में, यानी कि मीठे मक्के के बारे में। मीठा मक्का क्या है और कब इसकी बुआई की जाती है, क्या तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुमारी रश्मि। आप हैं पौधा प्रजनन विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: नमस्कार, मैं आज आपको मीठी मक्का की वैज्ञानिक खेती की विधि के बारे में बताऊंगी।
0: तो मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि स्वीट कॉर्न क्या है? मक्का तो हम जानते हैं, पर स्वीट कॉर्न क्या है?
2: मीठी मक्का मीठी और स्वादिष्ट एक विशेष प्रकार की मक्का है जिसका दाना अधिक मीठा होता है। इसे सब्जी और अनेक तरह के पकवान जैसे स्वीट कॉर्न केक, स्वीट कॉर्न क्रीम इत्यादि बनाने में भी प्रयोग किया जाता है और हरा भुट्टा तोड़ने के तुरंत बाद हरे पौधे को काटकर हरे चारे के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। अधिक आय प्राप्त करने के लिए हम स्वीट कॉर्न को गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर आदि के साथ इसका रबी में और मौसम में अंतर्वर्ती फसलों में उपयोग कर सकते हैं। इसकी जलवायु के बारे में मैं बताना चाहूँगी। स्वीट कॉर्न की बुआई के समय मिट्टी का सर्वाधिक उपयुक्त तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भूमि के चयन को लेकर हम बात करें तो आमतौर पर इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, लेकिन एसिडिक और एल्कलाइन सॉइल में इसका उपयुक्त खेती नहीं हो सकता है।

0: खेत में जल निकासी की व्यवस्था पर्याप्त होनी चाहिए। स्वीट कॉर्न की बुआई जिस खेत में करनी होती है उसमें 400 मीटर तक अन्य किसी दूसरी वैरायटी की किस्म नहीं लगानी चाहिए। और जब हम बात करें कि 400 मीटर की दूरी के अंतर्गत मक्का किसी और किस्म का नहीं होना चाहिए, तो अगर किसी ने लगा दिया है 400 मीटर के सर्कल में, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 15 से 20 दिन के इंटरवल पे आप अपनी बुआई करें, ताकि नर मंजर आने में 15 दिन का इंटरवल होना चाहिए। खेत की तैयारी की बात हम करें तो खेत की जुताई को पाटा लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर समतल कर लेना चाहिए। बुआई के 20 दिन पहले लगभग 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर खेत में डालकर मिला देना चाहिए। बुआई के समय को हम लेकर बात करें तो उत्तरी भारत में खरीफ में जून से जुलाई और रबी में 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई की जानी चाहिए।
1: और बुआई के साथ मैम ये सवाल भी आता है कि बीज की मात्रा क्या होनी चाहिए।
0: जी, बीज की मात्रा के बारे में मैं बताऊंगी कि सामान्य मिठास वाली, इसे स्टैंडर्ड स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसके लिए बीज की मात्रा है 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। और अधिक मिठास वाली मक्का, जिसे सुपर स्वीट कॉर्न वैरायटीज बोलते हैं, इसे 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। जहाँ तक पंक्तियों और पौधों से पौधों की दूरी की बात हम करें, बुआई के समय तो स्वीट कॉर्न की बुआई 60 से 75 सेंटीमीटर कतारों से कतारों के बीच तथा 20 से 25 सेंटीमीटर पौधों से पौधों के बीच की दूरी रखनी चाहिए। उपयुक्त पौधों की संख्या 66 से 67,000 प्रति हेक्टेयर मेंटेन करनी चाहिए और बीज उपचारित करके इसे लगाना चाहिए। जहाँ तक बीज उपचार की बात है, बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को थिरम 4 ग्राम प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए तथा तना छेदक से बचाव के लिए फिप्टोनिल 6 ml प्रति केजी बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई का सही तरीका अगर हम बात करें तो बीज कतारों में और मेड़ों पर बोने चाहिए। स्वीट कॉर्न की सभी किस्मों के बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर की जानी चाहिए, परंतु अधिक मिठास वाली सुपर स्वीट वैरायटीज को 2 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं। आरंभ में प्रत्येक स्थानों पर 2 बीज डालें, ताकि गर्मी में अंकुरण के 10 दिन एवं सर्दी में 15 से 20 दिन के बाद प्रत्येक स्थानों पर एक ही पौधा रहने दें।
1: और मैम बीज की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में भी बता दीजिए।
0: उन्नतशील किस्मों के बारे में मैं बताऊंगी। स्वीट कॉर्न की खेती के लिए किसान भाई अपने क्षेत्र की प्रचलित जो भी वैरायटीज हैं इनका चुनाव करें। जैसे भारत में स्वीट कॉर्न की कुछ प्रचलित किस्में हैं, इनमें माधुरी प्रिया, अल्मोरा स्वीट कॉर्न, विन ऑरेंज स्वीट कॉर्न और सिंजेंटा की सुगर 75 है, इसे आप लगा सकते हैं। ये काफ़ी उपज देने वाली किस्में मैंने आपको बताई हैं और इनकी मिठास भी 15 से 20% मतलब सामान्य मक्के से ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए स्वीट कॉर्न को लोग खाने के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये कहाँ लगाई जाती हैं, अनुमोदित क्षेत्र के बारे में मैं बताऊँगी। खरीफ में संपूर्ण भारत में तथा रबी में प्रायद्वीपीय भारत में इसे उगाया जा सकता है।
1: और मैम कटाई का क्या समय होता है, क्योंकि जब हम स्वीट कॉर्न की बात करते हैं तो कटाई का समय बेहद विशेष हो जाता है।
0: खरीफ में इसे 70 से 75 दिन में हम ये तैयार हो जाता है, इसकी हम कटाई कर सकते हैं। और रबी में 80 से 85 दिन में ये तैयार हो जाता है, आप इसकी कटाई कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो 110 से 130 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरे भुट्टे को हम तुड़ाई कर सकते हैं और 250 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका चारा हम प्राप्त करते हैं। इसलिए ये हमारे, अगर आपके पास पशु है तो आप काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं स्वीट कॉर्न की खेती करके। और उर्वरक प्रबंधन की बात हम करें तो उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर करना चाहिए। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 से 170 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 से 80 किलोग्राम पोटास डालनी चाहिए। खेत में अगर जिंक की कमी हो तो 25 केजी प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट डालना चाहिए। फास्फोरस पोटास जिंक सल्फेट की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में डालें तथा नाइट्रोजन को 5 भागों में बांटकर विभिन्न अवस्थाओं में डालें। और 10% नाइट्रोजन बुआई के समय, 20% नाइट्रोजन 4 से 5 पत्तों की अवस्था पर डालें, 30% नाइट्रोजन 8 पत्तों की अवस्था पर एवं 30% नाइट्रोजन पुष्पन की अवस्था पर डालें जब उसमें नरमंजरी मादा मंजरी आने लगती है, और 10% नाइट्रोजन भुट्टे की दूधिया अवस्था में, जिस समय दूध बनता है उस अवस्था में डालें। उर्वरक को बीज के 7 से 8 सेंटीमीटर के करीब डालना चाहिए।
1: और मैम खरपतवार का कैसे प्रबंध करना चाहिए, उसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए?
0: जी, खरपतवार प्रबंधन के लिए चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और अन्य खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए एट्राजिन 1 से 1.5 केजी को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर एक हेक्टेयर में बुआई के तुरंत बाद, लेकिन अंकुरण के पहले छिड़काव करना चाहिए। जहां तक जल प्रबंधन की बात है, हल्की मिट्टी में 7 से 8 सिंचाई एवं भारी मिट्टी में 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: किस तरीके से फसल कटाई करनी चाहिए और सिंचाई का क्या ध्यान रखना चाहिए?
0: सिंचाई में हमें ये भी ध्यान रखना है कि पौधे के में जब पुष्पन और दाना भराव का समय होता है, उस समय हमें नमी बरकरार रखनी है खेत में, और सर्दी में 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक जमीन में नमी बरकरार रखें। एवं कीट प्रबंधन की मैं चर्चा कर लूं, कीट प्रबंधन के लिए आप तना छेदक कीट है इसे नियंत्रित करने के लिए पौधा जमने के 10 दिन बाद 85% वेजिटेबल पाउडर वाला कार्बोलिल को 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर गोब में छिड़काव करें। और अंतर्वर्ती फसलें भी इसमें ली जाती हैं, विभिन्न प्रकार की ये खासियत है। तो इसमें आप सर्दी में स्वीट कॉर्न के साथ गेंदा, ग्लैडियोलस, मसाले, मटर, गोभी, पालक, धनिया इत्यादि सफलतापूर्वक आप उगा सकते हैं। और स्वीट कॉर्न को मेड़ के दक्षिणी भाग में एवं अंतर्वर्ती फसल को मेड़ के उत्तरी भाग में लगाना चाहिए। स्वीट कॉर्न के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी अंतर्वर्ती फसल की लगाने की स्थिति में 75 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अंतर्वर्ती फसलों की खेती शहर के आसपास के क्षेत्रों में करने से किसान भाई काफी लाभान्वित हो सकते हैं। और फसल कटाई की बात आपने छेड़ी थी, तो इस सिलसिले में मैं बताना चाहूंगी कि बीज के अंकुरण के लगभग 45 दिनों के बाद नर मंजरी आती है एवं इसके 2 से 3 दिनों के बाद मादा मंजरी आती है। और गर्मी के मौसम में परागण के 18 से 22 दिनों के बाद स्वीट कॉर्न के भुट्टे की तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद जब आप इसकी तुड़ाई करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसे रेफ्रिजरेटेड वैन में ही हम ट्रांसपोर्ट करें। और सर्दी के मौसम में परागण के 25 से 30 दिनों के बाद भुट्टे की तुड़ाई की जा सकती है। इस अवस्था में तुड़ाई की अवस्था को पहचानने के लिए हम ये देख सकते हैं कि ऊपरी भाग यानी सिल्क के सूखने से मादा मंजरी के सूखने की अवस्था में इसे हम पहचान सकते हैं कि ये मैच्योर हो गया है। और जब हम छिलका हटाते हैं तो दाने में दूध भरा होता है, इसे दबाने से दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, तो इस अवस्था में हम इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। हरे भुट्टे के तोड़ने के बाद बचे हुए हरे पौधे के चारे को इस्तेमाल कर सकते हैं हम। भुट्टे की तुड़ाई सुबह या शाम में करें ताकि जो नमी है वो बरकरार रहे और ये ज़्यादा मॉइस्चर लॉस ना हो, ताकि मिठास बनी रहे। कटाई उपरांत प्रबंधन की बात करें तो भुट्टे की तुड़ाई के बाद इसे तुरंत मंडी में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को ढेर लगाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे लकड़ी के डब्बे या कार्टून आदि में रखना चाहिए। कमरे के तापमान पर 24 घंटे के अंदर स्वीट कॉर्न के भुट्टे का 50% शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसे हाइड्रो कूलिंग एवं पैकेजिंग कर कोल्ड स्टोरेज में पहुंचा देना चाहिए। भुट्टे को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रेफ्रिजरेटेड वैन का ही प्रयोग करें। और ये सारी खासियत है स्वीट कॉर्न में। स्वीट कॉर्न की खेती से किसान भाई काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। इसे काफ़ी चाव से खाया जाता है, इसके विभिन्न व्यंजन बनते हैं, तो और इसका सीड भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। तो किसान भाई इसका बीज को बेच सकते हैं, बीज बनाकर या इसकी खेती करें और इसे काफ़ी लाभान्वित हुए।
1: यानी कि स्वीट कॉर्न उगाने के बाद तो फायदे होते ही हैं और साथ में बीज भी बेचकर किसान भाई बहन बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उम्मीद है कि जो भी मक्के की खेती करने की सोच रहे होंगे वो स्वीट कॉर्न के बारे में भी सोचेंगे। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारियाँ दी,
0: धन्यवाद।
1: आज के लिए इतना ही, आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अंग उमंग में। जी हां, हम किसानों के लिए बहुत सारी चर्चाएं लेकर आते हैं, लेकिन जब हमारे किसान बंधु हैं, हमारे किसान भाई बहने हैं, और उनके लिए साथ ही कृषि में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनसे जुड़ी लोकगीत ना हो तो ये थोड़ा सा अधूरा रह जाता है। तो आइए इस अधूरेपन को पूरा करते हैं हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा। हमारे स्थानीय कलाकार साथ ही यहाँ पर मुख्य गायक हैं रविंद्र रामपुरी जी, और इनका साथ देने के लिए हैं ताराकांत ठाकुर जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, साथ ही पंडित रघुनंदन जी। आइए सुनते हैं।

0: अभी आपने एक बहुत ही मधुर कृषि गीत सुना और इसके बाद एक और खास कृषि गीत, और इसमें आप सुनेंगे कि क्या दिनचर्या होती है किसानों की। इस लोकगीत के द्वारा हम पेश करते हैं हमारे किसान बंधुओं की दिनचर्या। आइए सुनते हैं हमारे मुख्य गायक ताराकांत ठाकुर जी, इनके साथ हैं बम बम जी, राजेंद्र पांडे जी, कुंदन कुमार मिश्रा जी, पंडित रघुनंदन जी और रविंद्र रामपुरी जी।
1: सुबह उठते ही किसान कैसे खुश हो जाता है, कैसे अपने हल बैलों को खिला पिला के तैयार कर लेता है, कैसे अपने घर वाले को, घर के बाल बच्चे को खेत में आने के लिए कहते हैं, और वो किस तरह से परेशान रहते हैं और उस परेशानी में क्या खुशी मनाते हैं। आइए हम इस लोकगीत के

0: इस गीत को सुनकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ज़रूर ग्रामीण जीवन का एक दृश्य है वो ज़रूर आया होगा। लोकगीत की एक यही विशेषता होती है कि ये अपने आप में सारे विश्व को, चाहे वो गांव से लेकर शहर हो, हर संस्कृति को समाये रखता है। तो आज के लिए इतना ही। सुनते रहिए 90.8 FM ग्रीन और सुनते रहिए अंग उमंग कार्यक्रम। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। कल आपके एग्जाम AAG 3-4 का एग्जाम है और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर डॉक्टर SS आचार्य मौजूद हैं आपके रिविजन के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर, आज के रेडियो रिविजन की शुरुआत कीजिए।
2: ओके, थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आज जो इसके बारे में चर्चा करेंगे वो है वीड मैनेजमेंट, जो हम लोगों का कोर्स कोड है AAG 3-4, जो कि एग्रोनॉमी का सबसे एक इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो कोर्स में तो बहुत सारा सिलेबस में जो दिया हुआ है, इसको थोड़ा बढ़िया करके आपको आप लोगों का पढ़ना है। जैसे कि अगर शुरुआत करें तो वीड क्या होता है, व्हाट इज ए वीड, वीड का डेफिनेशन, ए प्लांट विच इज आउट ग्रोन आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम विच इंटरफेयर्स विथ आवर क्रॉप फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक न्यूट्रिएंट, लाइट, वाटर। सो दीज आर द थिंग्स फर्स्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीड, व्हाट आई शुड राइट इन इफ डेफिनेशन विल बी आस्क्ड साइंटिफिकली, देन तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वीड में एक है कि वीड का जो हार्मफुल इफेक्ट है तो उसको थोड़ा बढ़िया करके देखना है। जैसे कि वीड का हार्मफुल इफेक्ट्स में हम लोग अगर कवर करेंगे तो कि कंपटीशन विद द क्रॉप्स, दिस अगर सबसे ज़्यादा वीड क्यों वीड कंट्रोल करना ज़रूरी है कि इसका जो कंपटीशन है क्रॉप के साथ फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर, स्पेस, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा चीज़ हुआ, वीड्स increase the cost of cultivation of our crop, because when we are controlling weeds we are investing some amount and that amount increases our cost of cultivation. Third is, weeds harbor insect, disease, nematodes. Weeds interfere with our harvesting and field operations. Weeds reduce the quality of the produce. Weeds become give some toxic effects to the crops and to the fields also, to other crops also, and that is that we will call it as allelopathic effect of weeds. तो ये सब थोड़ा बढ़िया करके कवर करना है। इसके बाद हुआ कि weeds का जो harmful effect के बाद, weed का सिर्फ harmful नहीं है प्लांट के लिए, वीड भी हार्मफुल है कुछ एनिमल के लिए, कुछ ह्यूमन बींग के लिए, उसको भी बढ़िया करके तुम लोग थोड़ा नोट्स देखोगे, कवर करोगे। इसके बाद आ जाएंगे तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन में बेनिफिशियल इफेक्ट है, जैसे कि कुछ ग्रासेस है यूज़ किया जाता है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जो कि फील्ड को बाइंड करने के लिए, सॉइल को बाइंड करने के लिए कुछ वीड्स से ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, कुछ वीड्स से फॉडर के हिसाब में यूज़ किया जाता है, कुछ वीड्स से मेडिसिनल वैल्यू है। सो दीज आर ऑल द बेनिफिशियल वैल्यूज ऑफ वीड्स यू शुड कवर। सॉइल ऑल्सो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के हिसाब में कुछ वीड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हो गया कि सॉइल, जैसे कि कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं हमारा एनवायरमेंट में, उसको हार्बर करने के लिए उसको उसका हैबिटेट है वीड्स। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कवर। दूसरा चीज हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनुअल वीड्स क्या हुआ कि जो वीड्स एक सीजन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट किया विद एक सीजन और इन वन ईयर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, देन वी विल कॉल इट एज एनुअल वीड। देन बाइनियल वीड अगर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीशन हो रहा है 2 साल में, देन वी विल कॉल इट एज बाइनियल वीड. पेरिनियल वीड मतलब कि इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा मोर देन 2 ईयर्स. सो ये क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ग्रासेस, इसे सेजेस, साइपेरस फैमिली का जो सेजेस. इसके बाद हो गया ब्रॉड लीव डुइट्स. इसके बाद हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इट कैन बी कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल वीड्स. दोज वीड्स व्हिच ग्रो इन द लैंड सरफेस दैट वी विल कॉल इट एज टेरेस्ट्रियल वीड्स. दोज ग्रो ऑन द वाटर bodies, then it is called aquatic weeds. So this classification is also important on the basis of whether it is on the land or on the water. Then classification whether it is growing in the crop land weed or garden weed or pasture weeds, forest weeds. On the basis of reproduction, there is one classification can be done that seed propagated weed or vegetatively propagated weed. On the basis of origin, it can be classified as indigenous weed. अगर ये हमारा कंट्री का है, नेटिव टू आवर रीजन है, देन इंडिजिनस वीड. अदरवाइज इट इज कॉल्ड एक्जोटिक वीड. एक्जोटिक वीड्स आर आल्सो कॉल्ड एलियन वीड्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट्स वी विल कॉल इट एज खरीफ वीड. अगर खरीफ सीजन में हो रहा है खरीफ वीड, रबी सीजन में है तो रबी वीड, और समर सीजन में है तो समर वीड. सो दीज आर सम क्लासिफिकेशंस व्हिच यू शुड कवर. इन एडिशन टू दिस वन क्लासिफिकेशन इज whether it is associative weed. What is definition of associative weed? What is parasitic weed? जैसे कस्कुटा, नोरांथस, ओरोबांके, टी, दीज आर पैरासाइटिक वीड्स. वो कौन सा कैसे पैरासाइटिक है, whether it is stem parasite, whether it is root parasite, whether it is total stem parasite or partial stem parasite or total root parasite and partial root parasite, इसको भी थोड़ा अच्छा सा कवर करोगे. इसके बाद आ जाओ कि क्रॉप वीड कंपटीशन. व्हाट इज क्रॉप वीड कंपटीशन? क्रॉप वीड कंपटीशन हुआ व्हेन क्रॉप्स कंपीट विथ वीड्स फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, लाइक न्यूट्रिएंट के लिए कैसे कंपीट कर रहा है. जैसे कि नाइट्रोजन पाने के लिए अगर फील्ड में वीड है, क्रॉप है, देन वीड विल ग्रो फास्टर बिकॉज दे विल कंपीट बेटर देन मोर देन योर क्रॉप्स. सो कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन फॉर लाइट एंड कंपटीशन फॉर स्पेस, ये चार चीज को क्रॉप वीड कंपटीशन में अगर आएगा तो लंग क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखना है. इसके बाद हो गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वीड फैक्टर्स, क्रॉप फैक्टर, वीड फैक्टर हुआ. अगर वीड स्पेसिस, कौन सा वीड स्पेसिस है, वीड का डेंसिटी कितना है, वीड का बायोमास कैसा है, कब वीड इमर्ज कर रहा है, अगर टाइम ऑफ इमर्जेंस के ऊपर भी इसका क्रॉप वीड कंपटीशन डिपेंड करता है. उसी टाइप का अगर क्रॉप फैक्टर देखें, क्रॉप अगर पहले डेवलप कर गया, क्रॉप अगर पहले ग्रोथ हो गया तो वीड का कंपटीशन कम हो सकता है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो. इसके बाद आ जाओ कि वीड को जब इतना लॉस कर रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ विल कंट्रोल वीड्स. अगर वीड कंट्रोल मेथड देखेंगे कि सबसे इसको अगर ऐसे ये पढ़ोगे कि द टोटल वीड कंट्रोल मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू वन इज प्रिवेंटिव मेथड. प्रिवेंटिव मेथड मींस दिस इज अ मेथड व्हिच वी शुड डू. इफ वी अडॉप्ट दिस मेथड द वीड्स विल कम in very lesser quantity in the field. So what are the preventive methods? Like your use of clean seed, certified seed, well decomposed FYM, then clean farm machinery, quarantine measures are done for controlling, for preventive methods. These are the preventions. Then cultural method. Agar cultural method dekhenge ki manipulation of agronomic practices to favor crop growth and suppress weeds, that we will call it as cultural method. जिसमें कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, टाइमली सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग इज ऑल्सो मेथड बाई विच वी कैन कंट्रोल वीड्स. देन ऑप्टिमम सीड रेट, प्रॉपर क्रॉप ज्योमेट्री, इसका जो कंसेप्ट है इसको भी बढ़िया करके पढ़ेंगे. मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ, दीज आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच यू शुड नो एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड हाउ वी विल डू. देन मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में अगर देखेंगे कि मैकेनिकल मेथड हो गया कि हैंड वीडिंग करेंगे या होइंग करेंगे, इंटरकल्चर करेंगे, टीलेज करेंगे, मोइंग करेंगे, दीज आर सम मैकेनिकल मेथड्स. और अगर फिजिकल मेथड देखेंगे, बर्निंग करेंगे, प्लॉडिंग करेंगे, फ्लेमिंग करेंगे, दीज आर द फिजिकल मेथड्स बाय अप्लाइंग सम फोर्स और प्रेशर और फिजिकल एजेंट्स. वी आर इफ वी कंट्रोल वीड्स देन इट इज कॉल्ड फिजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. देन बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर देखेंगे, व्हेन वी आर अप्लाइंग सम इंसेक्ट्स, पैथोजेंस और फिशेस और ग्रेजिंग एनिमल्स एंड कंट्रोल वीड्स, देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. देन लास्टली कम्स योर chemical control. What is chemical control? When we are controlling any weed by the use of some chemicals, and those chemicals are called herbicides. So, इसको बढ़िया करके पढ़ोगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मस्ट है. So, what is herbicide? What are the types of herbicide? What are the classification of herbicide? जैसे different groups हुआ, dinitro alanil कौन सा है, growth regulator type of herbicide कौन सा है, और different जो phenoxy acetic acid type of herbicides कौन सा है, इसको थोड़ा classification को देखोगे. इसके बाद हुआ और एक classification, it is classification on the basis of group. और एक है कि classification on the basis of, अगर सिलेक्टिविटी देखेंगे कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स मतलब दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल द वीड्स विदाउट हैम्परिंग द विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, दैट विल कॉल इट एज सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन. इफ यू अप्लाई इन राइस ऑल्सो दैट विल बी किल्ड, दैट मीन्स इट इज नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. जैसे कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल 2,4-D. सबका कुछ कुछ एग्जांपल पढ़ोगे. जैसे कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड अगर है तो ग्लाइफोसेट, पैराक्वाट, दीज आर द ग्लूफोसिनेट, अमोनियम, दीज आर द नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स. देन बेस्ड ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर देखेंगे, व्हाट इज प्री प्लांट एप्लीकेशन, व्हाट इज प्री इमरजेंस एप्लीकेशन, व्हाट इज पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, व्हाट इज अर्ली पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, इसको भी बढ़िया करके पढ़ना है. ठीक, इसके बाद आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन, वेदर इट इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स, मींस दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल्स वन ऑफ द कॉन्टैक्टेड प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स. सिस्टमिक हर्बिसाइड्स, दोज हर्बिसाइड्स व्हिच वंस इट इज अप्लाइड ऑन द लीव्स, इट विल बी द रूट्स विल आल्सो बी किल्ड, अदर लीव्स विल आल्सो बी किल्ड, दैट मींस इट इज सिस्टमिक, इट इज पॉइजनस, इट इज ट्रांसलोकेटेड टुवर्ड ऑल द पार्ट्स, दैट इज, दैट विल कॉल इट एज सिस्टमिक हर्बिसाइड्स. सो देन अगर देखेंगे कि डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, मोड ऑफ एक्शन में जैसे कि हम लोग बहुत अच्छा करके डिस्कशन किए थे, पढ़े थे बढ़िया करके, एसिटिल कोएंजाइम ए टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स कौन सा है, दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल थ्रू द एसिटिल कोएंजाइम ए जो एंजाइम सिंथेसिस इनहिबिशन, दैट इज ग्रास किलर्स, ऑल द फॉप्स, ऑल द डीम्स एंड जो डेंस, जो जैसे हुआ क्लोडिना फॉप, जो कोई जलो फॉप, दीज आर द हर्बिसाइड्स, दीज आर द एसिटिल कोएंजाइम ए हर्बिसाइड्स. देन आ जाओ तुम्हारा अगर देखेंगे कि ALS इनहिबिटर, जितना सब सल्फोनिल यूरिया ग्रुप का है, आंख बंद करके उसको देखना है कि दिस इज द ALS इनहिबिटर, दोज हर्बिसाइड्स. ALS इनहिबिटर मतलब कि जो प्रोटीन को कुछ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलाइन जो प्रोटीन है उसको कंट्रोल इनहिबिट करने में मदद करेगा और वीड को मारेगा. इसके बाद आ जाओ कि तुम्हारा अगर कौन सा फोटोसिस्टम वन टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स है, जैसे कि पैराक्वाट, डाइक्वाट हुआ, फोटोसिस्टम वन को के ऊपर एक्शन है उसका. इसके बाद फोटोसिस्टम टू, आट्राजिन, सिमाजिन, दिस आर द फोटोसिस्टम टू, आइसोप्रोटोन, इट इज द फोटोसिस्टम टू. इसके बाद आ जाओ कि तुम्हारा जो PPO ग्रुप, प्रोटोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, देन योर ग्लाइफोसेट इज कमिंग अंडर योर ग्लाइफोसेट का जो ग्रुप है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड जो सिंथेसिस को ब्लॉक करता है. देन SPPD इनहिबिटर में जो है हमारा टिम्बोट्रियन, इस तो टोटल ग्रुप, टोटल मोड ऑफ एक्शन को बढ़िया करके पढ़ोगे, उसके अंदर में से एक दो क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, मस्ट है. इसके बाद आ जाओ हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी. सो व्हाट इज हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, डेफिनेशन क्या है? जैसे कि हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी मतलब कि कुछ वीड्स, कुछ क्रॉप्स, कुछ प्लांट के ऊपर एक्शन होगा और कुछ प्लांट के ऊपर हर्बिसाइड का जब एक्शन नहीं है, दैट वी विल कॉल इट एज हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी. मतलब कि सिलेक्टिवली इट कंट्रोल्स सम प्लांट्स विदाउट किलिंग अदर्स. ठीक, देन अगर इसके बाद अगर देखेंगे कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जैसे कि हुआ जो कि टोटली सबको मरता है, सबको किल करता है, तो इसके बाद आ जाओ कि जो हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, डिफरेंट व्हाट आर द वेज बाय व्हिच हर्बिसाइड बिकम सिलेक्टिव. तो इसके अंदर में अगर देखेंगे कि फिजिकल सिलेक्टिविटी, केमिकल सिलेक्टिविटी, बायोलॉजिकल सिलेक्टिविटी, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बढ़िया करके इसको देखो, कि उसका सिर्फ कंसेप्ट को देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके उसको कंसेप्ट को देखो, क्या है कंसेप्ट, क्या क्यों यूज हुआ है। और कुछ कुछ है जैसे कि तुम्हारा अट्राजिन मेज में अप्लाई होता है तो अट्राजिन वीड को किल करता है, मेज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। क्या है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेस, वो जो टर्म्स है उसको थोड़ा बढ़िया करके देखोगे। प्रोपानिल एक एग्जाम बोल देता हूँ, हम सब नहीं बोलूंगा। प्रोपानिल जैसे प्रोपानिल अप्लाई करते हैं राइस में तो राइस का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वहां पर वुड्स मरते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्टिविटी इज देयर। सो इसको थोड़ा बढ़िया करके देखो। इसके बाद आ जाओ कि हमारा हर्बिसाइड, लास्ट में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मींस जो अगर एक पॉपुलेशन, एक वीड पॉपुलेशन पहले कंट्रोल हो रहा था, लेकिन अभी जब हम अप्लाई कर रहे हैं दोज पॉपुलेशन आर बीइंग रेजिस्टेंट, दोज पॉपुलेशन आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, देन वी विल कॉल इट एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में जैसे कि दो टाइप का रेजिस्टेंस है कि योर क्रॉस रेजिस्टेंस एंड अनदर इज जो क्रॉस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एंड अनदर, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़िया करके देखोगे तो उसका जो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स उसको उसका जो जैसे कि अगर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ज़्यादा टारगेट प्रोटीन वहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ, तो ज़्यादा वहाँ पर जो अल्टर जो टारगेट साइट है वो अल्टर टारगेट साइट हो गया, देन वी विल कॉल इट एज द रेजिस्टेंस हैज बीन अचीव्ड by which weeds cannot be controlled those type of resistance that we will call it as target site resistance। जैसे कि और एक है कि non-target site resistance, और जो दो type का है cross resistance और multiple resistance, इसको इसका definition, इसका जो concept है तो इसको बढ़िया करके पढ़ोगे। जैसे कि resistance of two or more herbicides having the same mode of action is called cross resistance, और मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर देखेंगे कि रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि एक वीड अगर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन वाला हर्बिसाइड को रेजिस्टेंट है, देन वी विल कॉल इट एज मल्टीपल रेजिस्टेंस। ठीक, सो कैसे रेजिस्टेंस को मैनेज करेंगे, जैसे कि वो हर्बिसाइड रोटेशन करेंगे, हर्बिसाइड मिक्सचर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, the use of recommended dose apply करेंगे, ज्यादा डोज में नहीं देंगे कि कम डोज में नहीं करेंगे, तो these are the things you should know। इसके बाद lastly हो गया कि herbicide का जो what are the different benefits क्या है, क्या क्या और demerits है इसको भी देखोगे, और finally integrated weed management, when we do weed management through by applying various type of methods like cultural, like physical, mechanical and herbicide, then we will call it as integrated weed management। So what is the concept of integrated weed management, why we do that, how we do that, इसको बढ़िया करके देखो। और पूरा एकदम जैसे कि ये तो एक्सटर्नल बाहर से क्वेश्चन आएगा, तो इसको बढ़िया करके थोड़ा पूरा नोट को अच्छे से पढ़ो, पढ़ के एग्जाम में अपीयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर AG324 वीट मैनेजमेंट।
1: थैंक यू सो मच सर, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो दोस्तों कल आप AG324 यानी कि वीट मैनेजमेंट की एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिवीजन में। अभी एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और कल आपके यानी कि मंडे को आपके कोर्स AHT321 यानी कि हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है, और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर शशि हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिवीजन के लिए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद अनु। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो आपका एग्ज़ाम है मंडे को हाईटेक हॉर्टिकल्चर का, तो सबसे पहले हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आपको ध्यान रखना है कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर है क्या। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया है, इसमें हम एप्लीकेशन करते हैं जो भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज है, ऑटोमेशन प्रोसेस है, मैकेनाइजेशन है, प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर है, और जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है हम वो इस्तेमाल करके जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसको हम ग्रो करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीडलिंग टू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तक हम जो भी मैकेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं वो एडवांस तरीके से करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो इससे क्या होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है, लेबर का रिक्वायरमेंट कम होता है, जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हमें मिलते हैं, जो हार्वेस्ट होता है, उसका क्वालिटी अच्छा होता है। तो इसके बाद आता है कि कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, मैकेनाइजेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरीगेशन, माइक्रो प्रोपागेशन। तो ये सारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं, आपको इन सारे कॉम्पोनेंट्स का जो डेफिनेशन है, ये कॉम्पोनेंट्स क्या है, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आपको सारे कॉम्पोनेंट्स को पढ़ना है, माइक्रो इरीगेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, फर्टिलाइजर शेड्यूलिंग कैसे करते हैं हम, पीएच और ईसी बेस्ड। तो अभी एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपका नर्सरी मैनेजमेंट, जो हाईटेक नर्सरीज होती है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जब नर्सरी की बात आती है तो सबसे पहले है कि नर्सरी क्या होता है। तो नर्सरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम प्लांटिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सीड से प्रोड्यूस करें या फिर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करें। जहाँ पे भी हम न्यू प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो नर्सरी होती है। अब बात आती है कि हम नर्सरी को मैकेनाइजेशन या हाईटेक कैसे बनाते हैं। तो उसमें जब भी हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन यूज़ करते हैं और उस प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में हम वहाँ का टेम्परेचर, CO2 या फिर मॉइस्चर हम मेनटेन कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि नर्सरी की बात हो रही है तो हम कौन कौन से नर्सरी का डिफरेंट मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के हम नर्सरी बेड्स बना सकते हैं, रेज्ड बेड बना सकते हैं या फिर सनकिन बेड यूज़ करेंगे। तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छी नर्सरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, और एक नर्सरी को आप मैकेनाइजेशन हम एक नर्सरी का आप कैसे कर सकते हैं और उसको फिर कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपागेशन का जब आप डेफिनेशन लिखिए, तो ये मैंने आपको क्लास में ही बहुत बार बताया है कि जब भी आप माइक्रो प्रोपागेशन डेफिनेशन लिखिए तो कुछ चीज़ें आप उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे माइक्रो है, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रो प्रोपागेशन का जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें एक्सप्लांट आपको आना चाहिए, जैसे एक्सप्लांट जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट है जिससे हम माइक्रो प्रोपागेशन के लिए प्लांट्स इनिशिएट करते हैं। दूसरा उसमें आना चाहिए एसेप्टिक कंडीशंस, जो एसेप्टिक कंडीशंस मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स। थर्ड पॉइंट आना चाहिए द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है। चौथा आना चाहिए कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। माइक्रो प्रोपेगेशन जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशंस, ये लैब कंडीशंस हम बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मेंटेन करते हैं, जिसमें कि हम टेम्परेचर और लाइट, स्पेसिफिकली टेम्परेचर और लाइट हम मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और लाइट हमारा 16 आवर्स लाइट एंड 8 आवर्स डार्क पीरियड रखते हैं। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3-4 चीज़ें वो आपके डेफिनेशन में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके अलावा इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ईयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हो सकता है, डिजीज फ्री हम प्लांटलेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। उसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट होता है, उसके अलावा कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन में आपको एक और चीज़ पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, जो स्टेज 1-4 है, स्टेज 1 एस्टैब्लिशमेंट, स्टेज 2 शूटिंग, स्टेज 3 रूटिंग एंड फाइनली स्टेज 4 हार्डनिंग। तो ये चारों स्टेजेस आप ज़रूर याद रखें, और जब अगर आपको ये क्वेश्चन में आए कि डिफरेंट स्टेजेस क्या है, तो आप मार्क्स ज़रूर देख लें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर दो मास का है तो आप सिंपली स्टेजेस लिख के स्टेजेस के पॉइंट्स देके चल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मार्क्स में है तो आपको पूरा उसको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे आप नंबर ला सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी पढ़ लें कि माइक्रो प्रोपेगेशन किस किस क्रॉप्स में इंपॉर्टेंटली हो सकता है और कौन कौन से डिफरेंट तरह से टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन क्या क्या है। जैसे आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जिस ऑर्गन को हम कल्चर कर रहे होते हैं या जिस पार्ट को हम एक्सपेंड ले रहे थे, जनरली हम उसी हिसाब से उसको कल्चर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मेरिस्टेम को हम ले रहे हैं तो वो मेरिस्टेम कल्चर है। अगर हम शूट टिप्स को ले रहे हैं एज एन एक्सपेंड तो शूट टिप कल्चर है। अगर हम नोडल सेगमेंट्स ले रहे हैं तो नोडल सेगमेंट कल्चर हो जाता है। अगर उसके अलावा भी है कैलस कल्चर जिसमें हम कैलस को ग्रो करते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जिसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं एंड देन यही सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं जो हम फर्दर सिंथेटिक सीड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन है वो आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट को या फिर मीडिया को हम कैसे स्टरलाइज करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वेट हीट स्टरलाइजेशन, ये सब आप ज़रूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है क्या। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जिसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। अब या तो वो फुली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या फिर पार्शियली हम कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें हम पार्शियली क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड नेट्स या फिर वॉक इन टनल्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हम पॉली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हमको कंट्रोल कंडीशंस भी क्रिएट करना है तो वो हम कंडीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हम कूलिंग सिस्टम्स यूज़ करेंगे या फिर हीटर्स यूज़ करेंगे, एयर कंडीशनर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट अगर हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है तो हम मिस्टर्स या फॉगर्स यूज़ करके ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमें लाइट सेंसर्स रख के हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हम बल्ब यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें लाइट फोटो पीरियड्स को हम कंप्लीट कर सकें। उसके अलावा हम CO2 भी उसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम वेंटिलेशन, फॉगिंग, मिस्टिंग, शेडिंग, ये सब के थ्रू हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स पे हम कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में आते हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल एंड इरिगेशन इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। तो माइक्रो इरिगेशन में आपका एप्लीकेशन हम वाटर प्लांट्स को हम वाटर अप्लाई करते हैं बट उतने स्मॉल क्वांटिटीज में, बट वो रूट जोन में हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर अपटेक कैपेसिटी है और इनफैक्ट जो वाटर यूज एफिशिएंसी है प्लांट्स का वो मैक्सिमम हो सके। तो डिफरेंट मेथड्स है माइक्रो इरिगेशन के, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्ट्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर्स या बबलर मेथड, ये सब जब हम यूज़ करते हैं तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। उसमें अभी हर मेथड का, या जैसे आप ड्रिप इरिगेशन हो तो ड्रिप इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, फॉर एग्जांपल मेन पंप है, मेन लाइन है, फिल्टर्स हैं, सब मेन्स हैं, लैटरल्स हैं, इमिटर्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स आप ज़रूर पढ़ लें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ड्रिप इरिगेशन में एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन में। और फाइनली माइक्रो इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है, जैसे इसमें वाटर सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, 30-70% तक हम वाटर सेव कर सकते हैं। जो हम वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उससे सिंस वाटर जो है सिर्फ रूट जोन में जा रहा है और बाकी सॉइल पे नहीं जा रहा है तो इससे जो वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा भी इसमें हम अगर इरिगेशन वाटर के साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम फर्टिलाइजर्स भी मिला के, मतलब उसमें इरिगेशन वाटर में ही हम फर्टिलाइजर मिक्स करके डाल दें, सो इससे फर्टिलाइजर की यूज़ एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। बट सिमिलरली इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि क्लॉगिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम ड्रिप या स्प्रिंकलर की बात करते हैं, तो जो उसके एमिटर्स हैं वो बहुत बार सॉल्ट्स की वजह से क्लॉग हो जाते हैं। इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब माइक्रो इरिगेशन आप पढ़ें तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन है और उसके क्या क्या हर टाइप ऑफ के क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं एंड देन उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ECN pH based fertigation। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम फर्टिलाइजर जो हम इरिगेशन वाटर यूज़ करते हैं उसका हम पीएच और ईसी ये दोनों मेंटेन करते हैं। जितना प्लांट को के लिए ऑप्टिमम पीएच हो होता है हम वही वो उस वाटर का हम वैसे ही पीएच और ईसी मेंटेन बैलेंस करके देते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन होता है वो भी हम उसी हिसाब से देते हैं, फर्टिगेशन हम इसी बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैनोपी मैनेजमेंट। तो कैनोपी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो कैनोपी मैनेजमेंट में हम करते क्यों हैं, कैनोपी मैनेजमेंट हम करते हैं ताकि जो भी प्लांट्स है उसका हम जो स्प्रेड है जो कैनोपी है उसको हम थोड़ा अच्छे से बैलेंस करके चलें ताकि जो हम जो हमारा प्रोड्यूस हो उसका क्वांटिटी क्वालिटी वो बेटर हमें मिल सके। तो कैनोपी मैनेजमेंट में बेसिकली हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग में हम ये जब प्लांट बहुत छोटे स्टेज पर रहता है जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं और इनिशियल यंग स्टेज पर रहता है तब हम ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ट्रेनिंग में हम बेसिकली प्लांट को एक शेप दे रहे होते हैं जो उसके लाइफ लॉन्ग उस शेप में उसको मेंटेन करने के लिए हम ट्रेन करते हैं प्लांट को। जैसे अगर एप्पल है तो हम उसको मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर पे दे रहे हैं, पियर है पीच है तो उसको हम ओपन सेंटर में दे रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ के हिसाब से हम उसके ट्रेनिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं। अगर वो ग्रेप्स हैं तो ग्रेप को हम बावर सिस्टम या निफन सिस्टम पे ट्रेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है उसमें प्रूनिंग। एक बार प्लांट अगर ट्रेन हो गया देन उसका कैनोपी मेंटेन करने के लिए हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रूनिंग में क्या होता है जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको हम रिमूव करते हैं। अब प्रूनिंग कैसे करेंगे ये भी आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि प्रूनिंग ऐसा देख के करना होता है जो भी हमारे डिजीज पार्ट्स हैं उसको उसको रिमूव करना है। एंड देन हर प्लांट में प्रूनिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन दे उसकी बियरिंग हैबिट क्या है। अगर वो न्यू फ्लशेस पे बियर कर रहे हैं जैसे कि गुआवा, उसमें आपके जो बियरिंग होती है वो न्यू फ्लशेस पे होती है तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग करते हैं ताकि हर बार हम प्रून करें और हर बार हमारे पास न्यू फ्लशेस आए जिसपे न्यू ग्रोथ आ सके और उसी ग्रोथ पे फ्रूट्स आ सके। बट अगर हम एप्पल की बात करें तो उसमें ओल्ड सीजन ग्रोथ पे आते हैं तो उसमें हम प्रूनिंग 1/3 करते हैं।

0: लिए भी कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा कैनोपी मैनेजमेंट तो हम करते ही हैं, साथ में रूट स्टॉक्स सारे क्रॉप्स का, जो भी आपका मेजर क्रॉप्स है जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, इसकी जो इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स है ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। एंड देन इसके हाई डेंसिटी प्लांटिंग और कैनोपी मैनेजमेंट के जो भी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं ये भी आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट आता है आपका प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं यूजिंग एआई टूल्स। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जीआईएस, जीपीएस, डीजीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सेंसर्स, ये आपको अलग अलग भी पढ़ना है तो इसमें आप सबके डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लें। एंड देन इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो रिमोट सेंसिंग में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विदाउट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली इसके डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स भी होते हैं रिमोट सेंसिंग में, जैसे सेंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप ये कॉम्पोनेंट्स और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, हम हॉर्टिकल्चर में कहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, जीपीएस, डीजीपीएस इनका या वीआरए इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है ये आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा लास्ट टॉपिक आपका आता है मैकेनाइजेशन इन हार्वेस्टिंग या मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। तो अभी जैसे हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी क्रॉप की तो क्रॉप में डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अभी बहुत सारे हार्वेस्टर्स आ गए हैं मार्केट में जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को मैकेनिकली हार्वेस्ट करने के लिए। कोई भी अगर क्रॉप है तो बहुत सारे शेकर्स होते हैं, मैकेनिकल शेकर्स जो ट्री को शेक करते हैं ताकि जो भी फ्रूट्स हैं वो नीचे आ जाए, और देन नीचे कलेक्टर्स भी होते हैं जो शेक्ड फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट हार्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप्ड होते हैं, कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मैकेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके डेफिनेशन आप ज़रूर याद कर लेंगे, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ड्रिप इरीगेशन, फर्टिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में उसके जो प्रिसीजन फार्मिंग के 4 R's हैं, राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ये ज़रूर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है, जनरली आता है, तो आप ये ज़रूर ध्यान दे दें। इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था जिसका आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, सारे स्टूडेंट्स ने एक एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाया था, आप वो टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है लेकिन वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है। तो बहुत डिटेल में नहीं लेकिन एक ओवरव्यू आप वो सारे टॉपिक्स का ज़रूर पढ़ लें जो भी आपको असाइनमेंट में दिया गया था। इसके अलावा जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, जो मैंने आपको क्लास में बताया, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो पहले ज़रूर ये देख लें कि वो कितने नंबर का है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मिड टर्म में भी ऐसे ये गलतियां करते हैं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें पूरा डिटेल लिख रहे हैं एंड देन आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखें, एंड देन अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो कोशिश करें उसको कुछ आप टेबल्स बना दें या फिर डायग्राम्स बना दें या फिर कुछ चार्ट्स बना दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, देन वो उससे आपके मार्किंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, थोड़ा आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। एंड देन कोशिश करें कि आपका जो आंसर्स है वो आप बहुत क्लीन लिखें, आपकी हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छी हो, अंडरलाइन कर दें, थोड़ा कॉपी अच्छी तरीके से नीटली क्लीन लिखें एंड थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो स्टूडेंट्स कल जाकर अच्छे से एग्जाम दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन।

0: मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। कल आपके एग्जाम AAG 3-4 का एग्जाम है और आज हमारे साथ आपके कोर्स लीडर डॉक्टर SS आचार्य मौजूद हैं आपके रिविजन के लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर आज के रेडियो रिविजन की शुरुआत कीजिए।
1: ओके थैंक यू। सो स्टूडेंट्स आज जो इसके बारे में चर्चा करेंगे वो है वेट मैनेजमेंट, जो हम लोगों का कोर्स कोड है AAG 3-4, जो कि एग्रोनॉमी का सबसे एक इम्पोर्टेंट कोर्स है। तो कोर्स में तो बहुत सारा सिलेबस में जो दिया हुआ है इसको थोड़ा बढ़िया करके आपको आप लोगों का पढ़ना है। जैसे कि अगर शुरुआत करें तो वीड क्या होता है, व्हाट इज ए वीड, वीड का डेफिनेशन, ए प्लांट विच इज आउट ग्रोन आउट ऑफ प्लेस एंड आउट ऑफ टाइम विच इंटरफेयर्स विथ आवर क्रॉप फॉर डिफरेंट पर्पजेस लाइक न्यूट्रिएंट, लाइट, वाटर। सो दीज आर द थिंग्स फर्स्ट यू शुड नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वीड, व्हाट आई शुड राइट इन इफ डेफिनेशन विल बी आस्क्ड साइंटिफिकली, देन तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वीड में एक है कि वीड का जो हार्मफुल इफेक्ट है तो उसको थोड़ा बढ़िया करके देखना है। जैसे कि वीड का हार्मफुल इफेक्ट्स में हम लोग अगर कवर करेंगे तो कि कंपटीशन ऑफ द क्रॉप्स, दिस अगर सबसे ज़्यादा वीड क्यों वीड कंट्रोल करना ज़रूरी है कि इसका जो कंपटीशन है क्रॉप के साथ फॉर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, लाइट, वाटर, स्पेस, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है। दूसरा चीज़ हुआ वीड्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ आवर क्रॉप, बिकॉज वेन वी आर कंट्रोलिंग वीड्स वी आर इन्वेस्टिंग सम अमाउंट एंड दैट अमाउंट इंक्रीजेस आवर कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। थर्ड इज वीड्स हार्बर इंसेक्ट, डिजीज, निमाटोड्स, वीड्स इंटरफेयर विथ आवर हार्वेस्टिंग एंड फील्ड ऑपरेशंस, वीड्स रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, वीड्स बिकम give some toxic effects to the crops and to the fields also, to other crops also, and that is that we will call it as allelopathic effect of weeds. तो ये सब थोड़ा बढ़िया करके कवर करना है। इसके बाद हुआ कि weeds का जो harmful effect के बाद, weed का सिर्फ harmful नहीं है प्लांट के लिए, वीड भी हार्मफुल है कुछ एनिमल के लिए, कुछ ह्यूमन बींग के लिए, उसको भी बढ़िया करके तुम लोग थोड़ा नोट्स देखोगे, कवर करोगे। इसके बाद आ जाएंगे तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ वीड्स, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन में बेनिफिशियल इफेक्ट है, जैसे कि कुछ ग्रासेस है यूज़ किया जाता है कि सॉइल कंजर्वेशन के लिए, जो कि फील्ड को बाइंड करने के लिए, सॉइल को बाइंड करने के लिए कुछ वीड्स से ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, कुछ वीड्स से फॉडर के हिसाब में यूज़ किया जाता है, कुछ वीड्स से मेडिसिनल वैल्यू है। सो इस दीज आर ऑल द बेनिफिशियल वैल्यूज ऑफ वीड्स यू शुड कवर। सॉइल ऑल्सो ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के हिसाब में कुछ वीड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद हो गया कि सॉइल जैसे कि कुछ बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म जो कि रहते हैं हमारा एनवायरमेंट में, उसको हार्बर करने के लिए उसको उसका हैबिटेट है वीड्स। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड कवर। दूसरा चीज हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे कि एनुअल वीड्स क्या हुआ कि जो वीड्स एक सीजन में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट किया विद एक सीजन और इन वन ईयर उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है, देन वी विल कॉल इट एज एनुअल वीड। देन बाइनियल वीड अगर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीशन हो रहा है 2 साल में, देन वी विल कॉल इट एज बाइनियल वीड। पेरिनियल वीड मतलब कि इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा मोर देन 2 ईयर्स। सो ये क्लासिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ग्रासेस, जैसे सेजेस, साइपरस फैमिली का जो सेजेस। इसके बाद हो गया ब्रॉड लीव वीड्स। इसके बाद हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट इट कैन बी कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल वीड्स, दोज वीड्स विच ग्रो इन द लैंड सरफेस दैट वी विल कॉल इट एज टेरेस्ट्रियल वीड्स, दोज ग्रो ऑन द वाटर bodies then it is called aquatic weeds. So this classification is also important on the basis of whether it is on the land or on the water. Then classification whether it is growing in the crop upland weed or garden weed or pasture weeds, forest weeds. On the basis of reproduction, there is some one classification can be done that seed propagated weed or vegetatively propagated weed. On the basis of origin, it can be classified as indigenous weed. अगर ये हमारा कंट्री का है, नेटिव टू आवर रीजन है, देन इंडिजिनस वीड, अदरवाइज इट इज कॉल्ड एक्जोटिक वीड. एक्जोटिक वीड्स आर आल्सो कॉल्ड एलियन वीड्स. देन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट्स, वी विल कॉल इट एज खरीफ वीड. अगर खरीफ सीजन में हो रहा है खरीफ वीड, रबी सीजन में है तो रबी वीड, और समर सीजन में है तो समर वीड. सो दीज आर सम क्लासिफिकेशंस व्हिच यू शुड cover. In addition to this, one classification is whether it is associative weed. What is definition of associative weed? What is parasitic weed? Jaise kaskuta, noranta, sorobanke, tea, these are parasitic weeds. Wo kaun sa kaise parasitic hai? Whether it is stem parasite, whether it is root parasite, whether it is total stem parasite or partial stem parasite or total root parasite and partial root parasite. Isko bhi thoda acha sa cover karoge. इसके बाद आ जाओ कि क्रॉप वीड कंपटीशन. व्हाट इज क्रॉप वीड कंपटीशन? क्रॉप वीड कंपटीशन हुआ व्हेन क्रॉप्स कंपीट विद वीड्स फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, लाइक न्यूट्रिएंट के लिए कैसे कंपीट कर रहा है. जैसे कि नाइट्रोजन पाने के लिए अगर एक फील्ड में वीड है, क्रॉप है, देन वीड विल ग्रो फास्टर बिकॉज दे विल कंपीट बेटर देन, मोर देन योर क्रॉप्स. सो कंपटीशन फॉर न्यूट्रिएंट, कंपटीशन फॉर वाटर, कंपटीशन फॉर लाइट एंड कंपटीशन फॉर स्पेस, ये चार चीज को क्रॉप वीड कंपटीशन में अगर आएगा तो लंग क्वेश्चन आ सकता है, इसको लिखना है. इसके बाद हो गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वीड फैक्टर्स, क्रॉप फैक्टर, वीड फैक्टर हुआ. अगर वीड स्पेसिस, कौन सा वीड स्पेसिस है, वीड का डेंसिटी कितना है, वीड का बायोमास कैसा है, कब वीड इमर्ज कर रहा है, अगर टाइम ऑफ इमर्जेंस के ऊपर भी इसका क्रॉप वीड कंपटीशन डिपेंड करता है. उसी टाइप का अगर क्रॉप फैक्टर देखें, क्रॉप अगर पहले डेवलप कर गया, क्रॉप अगर पहले ग्रोथ हो गया तो वीड का कंपटीशन कम हो सकता है. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो. इसके बाद आ जाओ कि वीड को जब इतना लॉस कर रहा है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हाउ विल कंट्रोल वीड्स. अगर वीड कंट्रोल मेथड देखेंगे कि सबसे इसको अगर ऐसे ये पढ़ोगे कि द टोटल वीड कंट्रोल मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू वन इज प्रिवेंटिव मेथड. प्रिवेंटिव मेथड मींस दिस इज अ मेथड व्हिच वी शुड डू. इफ वी अडॉप्ट दिस मेथड द वीड्स विल कम in very lesser quantity in the field. So what are the preventive methods? Like your use of clean seed, certified seed, well decomposed FYM, then clean farm machinery, quarantine measures are done for controlling, for preventive methods. These are the preventions. Then cultural method. Agar cultural method dekhenge ki manipulation of agronomic practices to favor crop growth and suppress weeds, that we will call it as cultural method. जिसमें कि हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, टाइमली सोइंग, टाइम ऑफ सोइंग इज ऑल्सो मेथड बाई विच वी कैन कंट्रोल वीड्स. देन ऑप्टिमम सीड रेट, प्रॉपर क्रॉप ज्योमेट्री, इसका जो कंसेप्ट है इसको भी बढ़िया करके पढ़ोगे. मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ, दीज आर द कल्चरल प्रैक्टिसेस विच यू शुड नो एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड हाउ वी विल डू. देन मैकेनिकल मेथड, मैकेनिकल और फिजिकल मेथड में अगर देखेंगे कि मैकेनिकल मेथड हो गया कि हैंड वीडिंग करेंगे या होइंग करेंगे, इंटरकल्चर करेंगे, टीलेज करेंगे, मोइंग करेंगे, दीज आर सम मैकेनिकल मेथड्स. और अगर फिजिकल मेथड देखेंगे, बर्निंग करेंगे, प्लॉडिंग करेंगे, फ्लेमिंग करेंगे, दीज आर द फिजिकल मेथड्स बाय अप्लाइंग सम फोर्स और प्रेशर और फिजिकल एजेंट्स. वी आर इफ वी कंट्रोल वीड्स देन इट इज कॉल्ड फिजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. देन बायोलॉजिकल कंट्रोल अगर देखेंगे, व्हेन वी आर अप्लाइंग सम इंसेक्ट्स, पैथोजेंस और फिशेस और ग्रेजिंग एनिमल्स एंड कंट्रोल वीड्स, देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स. देन लास्टली कम्स योर केमिकल कंट्रोल. व्हाट इज केमिकल कंट्रोल? व्हेन वी आर कंट्रोलिंग एनी वीड बाय द यूज ऑफ सम केमिकल्स, एंड दोज केमिकल्स आर कॉल्ड हर्बिसाइड्स. सो इसको बढ़िया करके पढ़ोगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मस्ट है. सो व्हाट इज हर्बिसाइड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, जैसे डिफरेंट ग्रुप्स हुआ, डाइनाइट्रो एलिनिल, एलिनिल कौन सा है, ग्रोथ रेगुलेटर टाइप ऑफ हर्बिसाइड कौन सा है, और डिफरेंट जो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स कौन सा है, इसको थोड़ा क्लासिफिकेशन को देखोगे। इसके बाद हुआ और एक क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, और एक है कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अगर सिलेक्टिविटी देखेंगे कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स मतलब दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल द वीड्स विदाउट हैम्परिंग द विदाउट हार्मिंग द क्रॉप्स, दैट विल कॉल इट एज सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड किल मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन, इफ यू अप्लाई इन राइस ऑल्सो दैट विल बी किल्ड, दैट मीन्स इट इज नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। जैसे कि सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स में हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल 2,4-D, सबका कुछ कुछ एग्जाम्पल पढ़ोगे। जैसे कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड अगर है तो ग्लाइफोसेट, पाराक्वाट, दीज आर द ग्लूफोसिनेट, अमोनियम, दीज आर द नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स। देन बेस्ड ऑफ टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर देखेंगे, व्हाट इज प्री प्लांट एप्लीकेशन, व्हाट इज प्री इमरजेंस एप्लीकेशन, व्हाट इज पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, व्हाट इज अर्ली पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन, इसको भी बढ़िया करके पढ़ना है। ठीक, इसके बाद आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसलोकेशन, वेदर इट इज कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स, मींस दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल्स वन ऑफ द कॉन्टैक्टेड प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड्स। सिस्टमिक हर्बिसाइड्स, दोज हर्बिसाइड्स व्हिच आर वंस इट इज अप्लाइड ऑन द लीव्स, इट विल बी द रूट्स विल आल्सो बी किल्ड, अदर लीव्स विल आल्सो बी किल्ड, दैट मींस इट इज सिस्टमिक, इट इज पॉइजनस, इट इज ट्रांसलोकेटेड टुवर्ड ऑल द पार्ट्स, दैट इज दैट विल कॉल इट एज सिस्टमिक हर्बिसाइड्स। सो देन अगर देखेंगे कि डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स, मोड ऑफ एक्शन में जैसे कि हम लोग बहुत अच्छा करके डिस्कशन किए थे, पढ़े थे बढ़िया करके, एसिटिल कोएंजाइम ए टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स कौन सा है, दोज हर्बिसाइड्स व्हिच किल थ्रू द एसिटिल कोएंजाइम ए जो एंजाइम सिंथेसिस इनहिबिशन, दैट इज ग्रास किलर्स, ऑल द फॉप्स, ऑल द डीम्स एंड जो डेंस, जो जैसे कि हुआ क्लोडिना फॉप, जो क्विजेलो फॉप, दीज आर द हर्बिसाइड्स, दीज आर द एसिटिल कोएंजाइम ए हर्बिसाइड्स। देन आ जाओ तुम्हारा अगर देखेंगे कि ALS इनहिबिटर जितना सब सल्फोनिल यूरिया ग्रुप का है, आंख बंद करके उसको देखना है कि दिस इज द ALS इनहिबिटर, दोज हर्बिसाइड्स ALS इनहिबिटर, मतलब कि जो प्रोटीन को कुछ ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलाइन जो प्रोटीन है उसको कंट्रोल इनहिबिट करने में मदद करेगा और वीड को मारेगा। इसके बाद आ जाओ कि तुम्हारा अगर कौन सा फोटोसिस्टम वन टाइप ऑफ हर्बिसाइड्स है, जैसे कि पाराक्वाट, डाइक्वाट, वह फोटोसिस्टम वन को के ऊपर एक्शन है उसका। इसके बाद फोटोसिस्टम टू अट्राजिन, सिमाजिन, दिस आर द फोटोसिस्टम टू, आइसोप्रोटोन, इट इज द फोटोसिस्टम टू। इसके बाद आ जाओ कि तुम्हारा जो PPO ग्रुप, प्रोटोपरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, देन योर ग्लाइफोसेट इज कमिंग अंडर योर ग्लाइफोसेट का जो ग्रुप है कि एरोमेटिक अमीनो एसिड जो सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, देन SPPD इनहिबिटर में जो है हमारा टिम्बोट्रियन, इस तो टोटल ग्रुप, टोटल मोड ऑफ एक्शन को बढ़िया करके पढ़ोगे, उसके अंदर में से एक दो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हो, लंग क्वेश्चन हो, मस्ट है। इसके बाद आ जाओ हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी। सो व्हाट इज हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, डेफिनेशन क्या है, जैसे कि हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी मतलब कि कुछ वीड्स, कुछ क्रॉप्स, कुछ प्लांट के ऊपर एक्शन होगा और कुछ प्लांट के ऊपर हर्बिसाइड का जब एक्शन नहीं है, दैट वी विल कॉल इट एज हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी, मतलब कि सिलेक्टिवली इट कंट्रोल्स सम प्लांट्स विदाउट किलिंग अदर्स। ठीक, देन अगर इसके बाद अगर देखेंगे कि नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड, जैसे कि हुआ जो कि टोटली सबको मरता है, सबको किल करता है, तो इसके बाद आ जाओ कि जो हर्बिसाइड सिलेक्टिविटी डिफरेंट, व्हाट आर द वेज बाय व्हिच हर्बिसाइड बिकम सिलेक्टिव, तो इसके अंदर में अगर देखेंगे कि फिजिकल सिलेक्टिविटी, केमिकल सिलेक्टिविटी, बायोलॉजिकल सिलेक्टिविटी, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू बढ़िया करके इसको देखो कि उसका सिर्फ कंसेप्ट को देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाके उसको कंसेप्ट को देखो, क्या है कंसेप्ट, क्या क्यों यूज हुआ है, और कुछ कुछ है जैसे कि तुम्हारा अट्राजिन मेंस में अप्लाई होता है तो अट्राजिन वुमेन को किल करता है, मेंस का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, क्या है ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेज, वो जो टर्म्स है उसको थोड़ा बढ़िया करके देखोगे। प्रोपानिल एक एग्जाम बोल देता हूँ, आंसर नहीं बोलूंगा। प्रोपानिल जैसे प्रोपानिल अप्लाई करते हैं राइस में तो राइस का प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन योर वहाँ पर वीड्स मरते हैं, व्हाट इज द रीजन, तो व्हिच टाइप ऑफ सिलेक्टिविटी इज देयर, सो इसको थोड़ा बढ़िया करके देखो। इसके बाद आ जाओ कि हमारा हर्बिसाइड, लास्ट में हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। हर्बिसाइड रेजिस्टेंस मीन्स जो अगर एक पॉपुलेशन, एक वीड पॉपुलेशन पहले कंट्रोल हो रहा था, लेकिन अभी जब हम अप्लाई कर रहे हैं दोज पॉपुलेशन आर बीइंग रेजिस्टेंट, दोज पॉपुलेशन आर नॉट बीइंग कंट्रोल्ड, देन वील कॉल इट एज हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। तो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस में जैसे कि दो टाइप का रेजिस्टेंस है कि योर क्रॉस रेजिस्टेंस एंड अनदर इज जो क्रॉस रेजिस्टेंस मैकेनिज्म एंड अनदर, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़िया करके देखोगे तो उसका जो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स उसको उसका जो जैसे कि अगर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ज़्यादा टारगेट प्रोटीन वहाँ पर एक्युमुलेशन हुआ, तो ज़्यादा वहाँ पर जो अल्टर्ड जो टारगेट साइट है वो अल्टर्ड टारगेट साइट हो गया, देन वी विल कॉल इट एज द रेजिस्टेंस हैज बीन अचीव्ड बाय व्हिच वीड्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड दोज टाइप ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी विल कॉल इट एज टारगेट साइट रेजिस्टेंस। जैसे कि और एक है कि नॉन टारगेट साइट रेजिस्टेंस, और जो दो टाइप का है क्रॉस रेजिस्टेंस और मल्टीपल रेजिस्टेंस। इसको इसका डेफिनेशन, इसका जो कंसेप्ट है तो इसको बढ़िया करके पढ़ोगे। जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ टू और मोर हर्बिसाइड्स हैविंग द सेम मोड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड क्रॉस रेजिस्टेंस, और मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर देखेंगे कि रेजिस्टेंस टू हर्बिसाइड्स हैविंग डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, मतलब कि एक वीड अगर डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन वाला हर्बिसाइड को रेजिस्टेंट है देन वी विल कॉल इट एज मल्टीपल रेजिस्टेंस। ठीक, सो कैसे रेजिस्टेंस को मैनेज करेंगे, जैसे कि वह हर्बिसाइड रोटेशन करेंगे, हर्बिसाइड मिक्सचर अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटेड वील मैनेजमेंट करेंगे, क्रॉप रोटेशन करेंगे, यूज ऑफ रिकमेंडेड डोज अप्लाई करेंगे, ज़्यादा डोज में नहीं देंगे कि कम डोज में नहीं करेंगे, तो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। इसके बाद लास्टली हो गया कि हर्बिसाइड का जो व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स, क्या है क्या क्या और डिमेरिट्स है इसको भी देखोगे, और फाइनली इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, व्हेन वी विल डू वीड मैनेजमेंट थ्रू बाय अप्लाइंग वेरियस टाइप ऑफ मेथड्स लाइक कल्चरल, लाइक फिजिकल, मैकेनिकल एंड हर्बिसाइड, देन वी विल कॉल इट एज इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। सो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, व्हाई वी डू दैट, हाउ वी डू दैट, इसको बढ़िया करके देखो। और पूरा एकदम जैसे कि ये तो एक्सटर्नल बाहर से क्वेश्चन आएगा तो इसको बढ़िया करके थोड़ा पूरा नोट को अच्छा से पढ़ो, पढ़ के एग्जाम में अपीयर करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर AG324 वीट मैनेजमेंट। थैंक यू,
0: थैंक यू सो मच सर। उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो दोस्तों कल आप AEG 324 यानी कि वीड मैनेजमेंट के एग्ज़ाम दीजिए और अच्छा परफॉर्म कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन
2: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
2: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
2: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
2: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
2: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा के पूर्व संध्या पर प्रसारित होने वाले हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो रिविजन में। अभी एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं और कल आपके यानी कि मंडे को आपके कोर्स AHT 321 यानी कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है और आज आपकी कोर्स लीडर डॉक्टर शशि हमारे स्टूडियो में मौजूद है आपके रेडियो रिविजन के लिए। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद अनु। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो आपका एग्ज़ाम है मंडे को हाईटेक हॉर्टिकल्चर का। तो सबसे पहले हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आपको ध्यान रखना है कि हाईटेक हॉर्टिकल्चर है क्या। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर जैसा आप लोगों को पढ़ाया गया है इसमें हम एप्लीकेशन करते हैं जो भी हमारे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऑटोमेशन प्रोसेस है, मैकेनाइजेशन है, प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर है और जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है हम वो इस्तेमाल करके जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसको हम ग्रो करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द सीडलिंग टू हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग तक हम जो भी मैकेनाइजेशन प्रोसेस करते हैं वो एडवांस तरीके से करते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस आपको ध्यान रखना है कि इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। तो इससे क्या होता है कि हायर प्रोडक्टिविटी होती है, लेबर का रिक्वायरमेंट कम होता है, जो क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हमें मिलते हैं जो हार्वेस्ट होता है उसका क्वालिटी अच्छा होता है। तो उसके बाद आता है कि कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है। हाईटेक हॉर्टिकल्चर के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, मैकेनाइजेशन, प्रिसीजन फार्मिंग, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन। तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स का जो डेफिनेशन है ये कंपोनेंट्स क्या है, उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब आपको पढ़ना है। जैसे आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से हाईटेक हॉर्टिकल्चर में आपको सारे कंपोनेंट्स को पढ़ना है। माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, फर्टिलाइज़र शेड्यूलिंग कैसे करते हैं हम, पीएच और ईसी बेस्ड। तो अभी एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपका नर्सरी मैनेजमेंट, जो हाईटेक नर्सरीज होती है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं। तो जब नर्सरी की बात आती है तो सबसे पहले है कि नर्सरी क्या होता है। तो नर्सरी एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हम प्लांटिंग मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो सीड से प्रोड्यूस करें या फिर ग्राफ्टिंग या लेयरिंग के थ्रू प्रोड्यूस करें। जहाँ पे भी हम न्यू प्लांट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे थे वो नर्सरी होती है। अब बात आती है कि हम नर्सरी को मैकेनाइजेशन या हाईटेक कैसे बनाते हैं। तो उसमें जब भी हम प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन यूज़ करते हैं और उस प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में हम वहाँ का टेम्परेचर, CO2 या फिर मॉइस्चर हम मेनटेन कर रहे होते हैं तो उसमें हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब नर्सरी की बात हो रही है तो हम कौन कौन सी नर्सरी का डिफरेंट मीडिया हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के हम नर्सरी बेड्स बना सकते हैं, रेज्ड बेड बना सकते हैं या फिर सनकिन बेड यूज़ करेंगे। तो इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि एक अच्छी नर्सरी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और एक नर्सरी को आप मैकेनाइजेशन हम एक नर्सरी का आप कैसे कर सकते हैं और उसको फिर कैसे मेंटेन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन का जब आप डेफिनेशन लिखें तो ये मैंने आपको क्लास में ही बहुत बार बताया है कि जब भी आप माइक्रो प्रोपगेशन डेफिनेशन लिखें तो कुछ चीज़ें आप उसमें ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे माइक्रो है, माइक्रो मतलब स्मॉल, तो माइक्रो प्रोपगेशन का जब डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें एक्सप्लांट आपको आना चाहिए, जैसे एक्सप्लांट जो कि एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट है जिससे हम माइक्रो प्रोपगेशन के लिए प्लांट्स इनिशिएट करते हैं। दूसरा उसमें आना चाहिए एसेप्टिक कंडीशंस, जो एसेप्टिक कंडीशंस मतलब फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ माइक्रोब्स। थर्ड पॉइंट आना चाहिए द यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम, जो हम न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होता है। चौथा आना चाहिए कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। माइक्रो प्रोपगेशन जब हम बात करते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशंस ये लैब कंडीशंस हम बहुत अच्छे से प्रिसाइजली मेंटेन करते हैं, जिसमें कि हम टेम्परेचर और लाइट, स्पेसिफिकली टेम्परेचर और लाइट हम मेंटेन करके रखते हैं। टेम्परेचर 25 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस और लाइट हमारा 16 आवर्स लाइट एंड 8 आवर्स डार्क पीरियड रखते हैं। तो जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो ये सारी चीज़ें ज़रूर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 3-4 चीज़ें वो आपके डेफिनेशन में ज़रूर इंक्लूडेड होनी चाहिए। उसके अलावा इसके क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ईयर राउंड प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हो सकता है, डिजीज फ्री हम प्लांटलेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। उसके अलावा इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट होता है, उसके अलावा कंटामिनेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा माइक्रो प्रोपेगेशन में आपको एक और चीज़ पढ़ना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, जो स्टेज 1-4 है, स्टेज 1 एस्टैब्लिशमेंट, स्टेज 2 शूटिंग, स्टेज 3 रूटिंग एंड फाइनली स्टेज 4 हार्डनिंग। तो ये चारों स्टेजेस आप ज़रूर याद रखें, और जब अगर आपको ये क्वेश्चन में आए कि डिफरेंट स्टेजेस क्या है, तो आप मार्क्स ज़रूर देख लें कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 2 मार्क्स का है तो आप सिंपली स्टेजेस लिख के स्टेजेस के पॉइंट्स दे के चल सकते हैं। अगर वो ज़्यादा मार्क्स में है तो आपको पूरा उसको डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो ज़्यादा अच्छे आप नंबर ला सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी पढ़ लें कि माइक्रो प्रोपेगेशन किस किस क्रॉप्स में इंपॉर्टेंटली हो सकता है, और कौन कौन से डिफरेंट तरह से टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन क्या क्या है। जैसे आपको ऑलरेडी बताया गया था कि जिस ऑर्गन को हम कल्चर कर रहे होते हैं या जिस पार्ट को हम एक्सपेंड ले रहे थे, जनरली हम उसी हिसाब से उसको कल्चर का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेरिस्टेम को हम ले रहे हैं तो वो मेरिस्टेम कल्चर है। अगर हम शूट टिप्स को ले रहे हैं एज एन एक्सप्लांट तो शूट टिप कल्चर से। अगर हम नोडल सेगमेंट्स ले रहे हैं तो नोडल सेगमेंट कल्चर्स हो जाता है। अगर उसके अलावा भी है कैलस कल्चर, जिसमें हम कैलस को ग्रो करते हैं। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें हम सोमैटिक एम्ब्रियोज को ग्रो करते हैं, एंड देन यही सोमैटिक एम्ब्रियोज होते हैं जो हम फर्दर सिंथेटिक सीड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन, जो डिफरेंट मेथड्स ऑफ माइक्रो प्रोपेगेशन है, वो आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा जो स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है और उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट को या फिर मीडिया को हम कैसे स्टरलाइज करते हैं, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, वेट हीट स्टरलाइजेशन, ये सब आप ज़रूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन है क्या। तो प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में हम क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं अंडर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं। अब या तो वो फुली कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या फिर पार्शियली, हम कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं इसमें हम पार्शियली क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, नेट हाउस, शेड नेट्स या फिर वॉक इन टनल्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस भी हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर हम पॉली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में हमको कंट्रोल कंडीशंस भी क्रिएट करना है, तो वो हम कंडीशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर हमको टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो हम कूलिंग सिस्टम्स यूज़ करेंगे या फिर हीटर्स यूज़ करेंगे, एयर कंडीशनर्स यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, अगर हमको ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है तो हम मिस्टर्स या फॉगर्स यूज़ करके ह्यूमिडिटी मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा लाइट सेंसर्स रख के हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। आर्टिफिशियली हम बल्ब यूज़ कर सकते हैं ताकि उसमें लाइट फोटो पीरियड्स को हम कंप्लीट कर सकें। उसके अलावा हम CO2 भी उसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हम वेंटिलेशन, फॉगिंग, मिस्टिंग, शेडिंग, ये सब के थ्रू हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स पे हम कंडीशंस को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल आता है आपका माइक्रो इरिगेशन। माइक्रो इरिगेशन में आते हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल एंड इरिगेशन इज एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द प्लांट्स। तो माइक्रो इरिगेशन में आपका एप्लीकेशन, हम प्लांट्स को हम वाटर अप्लाई करते हैं बट उतने स्मॉल क्वांटिटीज में, बट वो रूट जोन में हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो वाटर अपटेक कैपेसिटी है और इनफैक्ट जो वाटर यूज़ एफिशिएंसी है प्लांट्स का, वो मैक्सिमम हो सके। तो डिफरेंट मेथड्स हैं माइक्रो इरिगेशन के, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्ट्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर्स या बबलर मेथड, ये सब जब हम यूज़ करते हैं तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो इरिगेशन। उसमें अभी हर मेथड का, या जैसे आप ड्रिप इरिगेशन हो तो ड्रिप इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है। फॉर एग्जांपल, मेन पंप है, मेन लाइन है, फिल्टर्स हैं, सब मेन्स हैं, लैटरल्स हैं, इमिटर्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स आप ज़रूर पढ़ लें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं ड्रिप इरिगेशन में एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन में। और फाइनली माइक्रो इरिगेशन का क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे इसमें वाटर सेविंग बहुत ज़्यादा होती है, 30-70% तक हम वाटर सेव कर सकते हैं। जो हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी है उसको हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद उससे सिंस वाटर जो है सिर्फ रूट जोन में जा रहा है और बाकी सॉइल पे नहीं जा रहा है, तो इससे जो वीड्स की जो ग्रोथ होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा भी इसमें हम, अगर इरिगेशन वाटर के साथ हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम फर्टिलाइजर्स भी मिला के, मतलब उसमें इरिगेशन वाटर में ही हम फर्टिलाइज़र मिक्स करके डाल दें, सो इससे फर्टिलाइज़र की यूज़ एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। बट सिमिलरली इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि क्लॉगिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम ड्रिप या स्प्रिंकलर की बात करते हैं, तो जो उसके एमिटर्स हैं वो बहुत बार सॉल्ट्स की वजह से क्लॉग हो जाते हैं। इसमें इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जब माइक्रो इरीगेशन आप पढ़ें तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो इरीगेशन है और उसके क्या क्या हर टाइप ऑफ के क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं एंड देन उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये आप ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ECN pH बेस्ड फर्टिगेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हम फर्टिलाइज़र जो हम इरिगेशन वाटर यूज़ करते हैं उसका हम pH और EC ये दोनों मेंटेन करते हैं। जितना प्लांट को के लिए ऑप्टिमम pH होता है हम वही उस वाटर का हम वैसे ही pH और EC मेंटेन बैलेंस करके देते हैं। उसके बाद और जो सॉल्यूशन होता है वो भी हम उसी हिसाब से देते हैं, फर्टिगेशन हम इसी बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैनोपी मैनेजमेंट। तो कैनोपी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें तो कैनोपी मैनेजमेंट में हम करते क्यों हैं, कैनोपी मैनेजमेंट हम करते हैं ताकि जो भी प्लांट्स है उसका हम जो स्प्रेड है जो कैनोपी है उसको हम थोड़ा अच्छे से बैलेंस करके चलें ताकि जो हमारा प्रोड्यूस हो उसका क्वांटिटी क्वालिटी वो बेटर हमें मिल सके। तो कैनोपी मैनेजमेंट में बेसिकली हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग प्रैक्टिसेस करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग में हम ये जब प्लांट बहुत छोटे स्टेज पर रहता है, जब हम प्लांटिंग कर रहे होते हैं और इनिशियल यंग स्टेज पर रहता है, तब हम ट्रेनिंग प्रैक्टिस करते हैं। और ट्रेनिंग में हम बेसिकली प्लांट को एक शेप दे रहे होते हैं जो उसके लाइफ लॉन्ग उस शेप में उसको मेंटेन करने के लिए हम ट्रेन करते हैं प्लांट को। जैसे अगर एप्पल है तो हम उसको मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर पे दे रहे हैं, पियर है पीच है तो उसको हम ओपन सेंटर में दे रहे हैं ताकि उसकी ग्रोथ के हिसाब से हम उसके ट्रेनिंग सिस्टम डिसाइड करते हैं। अगर वो ग्रेप्स हैं तो ग्रेप को हम बावर सिस्टम या निफन सिस्टम पे ट्रेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है उसमें प्रूनिंग। एक बार प्लांट अगर ट्रेन हो गया देन उसके कैनोपी मेंटेन करने के लिए हमें प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रूनिंग में क्या होता है जो भी अनवांटेड पार्ट्स हैं उसको हम रिमूव करते हैं। अब प्रूनिंग कैसे करेंगे ये भी आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि प्रूनिंग ऐसा देख के करना होता है जो भी हमारे डिजीज पार्ट्स हैं उसको रिमूव करना है। एंड देन हर प्लांट में प्रूनिंग प्रैक्टिसेस डिफरेंट होती है बेस्ड ऑन द उसकी बियरिंग हैबिट क्या है। अगर वो न्यू फ्लशेस पे बियर कर रहे हैं, जैसे कि गुआवा, उसमें आपके जो बियरिंग होती है वो न्यू फ्लशेस पे होती है, तो उसमें हम बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग करते हैं ताकि हर बार हम प्रून करें और हर बार हमारे पास न्यू फ्लशेस आए जिसपे न्यू ग्रोथ आ सके और उसी ग्रोथ पे फ्रूट्स आ सके। बट अगर हम एप्पल की बात करें तो उसमें ओल्ड सीजन ग्रोथ पे आते हैं, तो उसमें हम प्रूनिंग 1/3 करते हैं ताकि हर साल हमें न्यू फ्रूटिंग पर्स मिलते रहे। तो इसके अलावा हम दूसरे रूट प्रूनिंग वगैरह भी करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है अगर बहुत सारे क्रॉप्स में, स्पेशली जिसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग यूज़ करते हैं उसमें कैनोपी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैनोपी मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करेंगे तो इंटरकल्चर ऑपरेशंस एंड हार्वेस्टिंग प्रोसेस भी हमारा इजी हो जाता है। और इसी कैनोपी मैनेजमेंट के अंदर आपका एक टॉपिक आता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जिसमें हम नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ा देते हैं पर स्क्वायर यूनिट एरिया। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए भी कैनोपी मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसके अलावा कैनोपी मैनेजमेंट तो हम करते ही हैं, साथ में रूट स्टॉक्स सारे क्रॉप्स का, जो भी आपका मेजर क्रॉप्स है जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, इसकी जो इम्पोर्टेंट रूट स्टॉक ड्वार्फिंग रूट स्टॉक्स है ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। एंड देन इसके हाई डेंसिटी प्लांटिंग और कैनोपी मैनेजमेंट के जो भी लिमिटेशंस और एडवांटेजेस हैं ये भी आप ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट आता है आपका प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, साइट स्पेसिफिक क्रॉप मैनेजमेंट करते हैं यूजिंग AI टूल्स। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं GIS, GPS, DGPS, रिमोट सेंसिंग सेंसर्स, ये आपको अलग अलग भी पढ़ना है तो इसमें आप सबके डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लें। एंड देन इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या एडवांटेजेस हैं एंड लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल रिमोट सेंसिंग की अगर बात करें तो रिमोट सेंसिंग में हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं विदाउट किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो सिमिलरली इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स भी होते हैं रिमोट सेंसिंग में, जैसे सेंसर्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप ये कंपोनेंट्स और इसका क्या क्या एप्लीकेशन है हम हॉर्टिकल्चर में, कहाँ पे हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, DGPS इनका या VRA इनका यूज़ कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेंगे। उसके अलावा लास्ट टॉपिक आपका आता है मैकेनाइजेशन इन हार्वेस्टिंग या मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग। तो अभी जैसे हम हाईटेक हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, तो जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी क्रॉप की, तो क्रॉप में डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए अभी बहुत सारे हार्वेस्टर्स आ गए हैं मार्केट में जो हेल्प करते हैं फार्मर्स को मैकेनिकली हार्वेस्ट करने के लिए। कोई भी अगर क्रॉप है तो बहुत सारे शेकर्स होते हैं, बहुत सारे शेकर्स होते हैं मैकेनिकल शेकर्स जो ट्री को शेक करते हैं ताकि जो भी फ्रूट्स हैं वो नीचे आ जाए, और देन नीचे कलेक्टर्स भी होते हैं जो शेक्ड फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट हार्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप्ड होते हैं, कन्वेयर सिस्टम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं मैकेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके डेफिनेशन आप ज़रूर याद कर लेंगे, जैसे हाईटेक हॉर्टिकल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, ड्रिप इरीगेशन, फर्टिगेशन, प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग में उसके जो प्रिसीजन फार्मिंग के 4 R's हैं, राइट सोर्स, राइट रेट, राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ये ज़रूर ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता है, जनरली आता है, तो आप ये ज़रूर ध्यान दे दें। इन सारे टॉपिक्स के अलावा कुछ टॉपिक्स जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट में दिया था, जिसका आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है, सारे स्टूडेंट्स ने एक एक टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाया था, आप वो टॉपिक्स भी पढ़ लेंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर है, लेकिन वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर के अंदर ही आता है, तो बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू आप वो सारे टॉपिक्स का ज़रूर पढ़ लें जो भी आपको असाइनमेंट में दिया गया था। इसके अलावा जब आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, जो मैंने आपको क्लास में बताया, जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखें तो पहले ज़रूर ये देख लें कि वो कितने नंबर का है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने मिड टर्म में भी ऐसे ये गलतियां करते हैं कि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें पूरा डिटेल लिख रहे हैं एंड देन आपके पास 5 नंबर क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको शॉर्ट एंड क्रिस्प लिखें, एंड देन अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो कोशिश करें उसको कुछ आप टेबल्स बना दें या फिर डायग्राम्स बना दें या फिर कुछ चार्ट्स बना दें अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, देन वो उससे आपके मार्किंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, थोड़ा आपका आंसर अट्रैक्टिव लगता है। एंड देन कोशिश करें कि आपका जो आंसर्स है वो आप बहुत क्लीन लिखें, आपके हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छी हो, अंडरलाइन कर दें, थोड़ा कॉपी अच्छी तरीके से नीटली क्लीन लिखें एंड थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच मैम, उम्मीद है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। तो स्टूडेंट्स कल जाकर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए बिना किसी हेजिटेशन के, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।

0: नमस्कार, मैं हूँ आरजे अनु। आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और आप सभी के साथ मैं लेकर आ चुकी हूँ उन्नत कृषि कार्यक्रम, जिसमें होती हैं बातें खेती से जुड़ी। और लेकर आती हूँ मैं बहुत सारी ज़रूरी बातें हमारे किसान भाइयों के लिए। वैसे किसान भाइयों, हर रोज़ हम एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होते हैं, तो आज भी भाई यहाँ पर सर्दियों की बात करते हैं हम। तो सर्दियों में जो है बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो सब्जियां हैं वो आपके सामने आती हैं। और जहां तक बैंगन की बात है भाई, बैंगन के बहुत सारे जो रेसिपीज़ हैं वो आप बना सकते हैं हमारे किसान भाई। और फिलहाल अगर बैंगन की बात हो रही तो सर्दियों में भी इसे बहुत ही इसकी मांग है बाज़ार में। और जहां तक इसकी उन्नत खेती की बात होती है, जी हां बिल्कुल आपने सही समझा, आज का हमारा विषय है बैंगन की उन्नत खेती। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर जी, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, साथ ही मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: धन्यवाद आपको।
0: मैम जैसे कि अभी हमारा ये जो सब्जेक्ट है जो है बैंगन की उन्नत खेती, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे किसान भाइयों को आप बताएं कि बैंगन जो है वो किस समय में लगा सकते हैं। वो
1: बैंगन जो है हम जैसे जानते हैं कि ये सालों भर हो सकती है, ये सब्जी जो है आपको बाजार में हर समय पे मिलेगी, और उसी तरीके से जो है इसको साल भर हम उगा भी सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन इसमें किस्म अलग अलग होती है बस। तो अभी जो बैंगन आपको मिल रही है ये खरीफ बैंगन का फल है।
0: अच्छा, वो जो बैंगन जो हम देखते हैं अलग अलग कलर के होते हैं।
1: जी जी,
0: कई बार हम देखते हैं एक वाइट कलर के बैंगन होते हैं, हरी कलर के, और उसके अलावा पर्पल यानी कि बैंगनी। तो क्या ये अलग अलग किस्म के होते हैं या फिर ये कलर किस पे डिपेंड करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, बैंगन जैसे है जो अलग अलग कलर देखते हैं, तो कलर बैंगन का डिपेंड करता है। जो बैंगनी होती है तो बैंगनी वाले बैंगन जो है उसमें एंथोसाइनिन ज्यादा होती है।
0: अच्छा,
1: जबकि हरा जो बैंगन होता है, हरा बैंगन में एंथोसाइनिन नहीं होती है, उसमें क्लोरोफिल ज्यादा होती है। जैसे जानते हैं हम लोग कि हरा क्लोरोफिल के से होती है, तो क्लोरोफिल उसमें ज्यादा होती है।
0: अच्छा,
1: सफेद बैंगन में एंथोसाइनिन क्लोरोफिल बहुत कम मात्रा में होती है या बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन सफेद बैंगन जो है एंटी डायबिटिक है।
0: अच्छा, मतलब जो आजकल हमारे जो डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए
1: बहुत अच्छा है। इसमें डायबिटीज के खिलाफ जो गुणवत्ता है उसमें क्लोरोजेनिक एसिड ज्यादा होती है, साथ साथ में सफेद बैंगन में शुगर की मात्रा भी कम होती है। तो ये सारा जो है ये एंटी डायबिटिक उसका गुण देता है उस सफ़ेद बैंगन को, तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं एंटी डायबिटिक के तौर से।
0: अगर ऐसे नॉर्मल लोगों की बात करें यानी कि जो जनरल जो स्वस्थ लोग हैं उनके लिए ये तीनों सही है ना?
1: हाँ बिल्कुल किस्म बिल्कुल हाँ। तीनों किस्म आप खा सकते हैं, और बैंगन का तो कंज्यूमर प्रेफरेंस भी अलग अलग होता है। कोई लंबा हरा पसंद करता है, कोई बैंगनी पसंद करता है, भरता के लिए जो आप देखते हैं
0: बैंगनी जो
1: बैंगनी और गोल वाला जो किस्म है उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो कलौंजी वगैरह है उसके लिए लंबा किस्म प्रेफर करते हैं, और जगह पर प्लेस टू प्लेस जो है उसको वेरी करता है कंज्यूमर का प्रेफरेंस
0: जी। तो किसान भाइयों आपने जाना कि लगभग अगर बात करें बैंगन के समय की, सही समय की, तो आप 12 महीने से लगा सकते हैं। और फिलहाल मैम इसकी बुआई की विधि आप बताएं हमारे किसान भाइयों।
1: हाँ बिल्कुल, बैंगन 12 महीने लगा सकते हैं, लेकिन इसका मेन सीजन जो है ये खरीफ सीजन है।
0: अच्छा,
1: तो इसके लिए
0: स्पेशली जो एक सीजन होना चाहिए,
1: अगर जो सीजन बोलेंगे तो ये खरीफ सीजन में ही जो है ज्यादा फसल जो उपज भी उससे उस क्रॉप से आपको ज्यादा मिलती है। और ज्यादातर किसान भाई जो है वो खरीफ में ही लगाते हैं। गर्मा मौसम में भी बैंगन लगता है, लेकिन वो छोटे छोटे पॉकेट्स में ही बस लगता है। ज्यादातर लोग गर्मा बैंगन लगाते नहीं है, लेकिन लगाते भी है तो उसका किस्म भी अलग अलग होती है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो खरीफ वाला जो बैंगन है उसको आप लगाइएगा, जो उसका बुआई करते हैं जनरली जून के 15 से जुलाई के 15 तक
0: जी।
1: ठीक है, तो इसकी बुआई के एक महीने बाद इसकी रोपाई होती है। लगभग 30 से 32 दिन तक जो बिजड़ा है वो रेडी हो जाता है, और फिर इसकी रोपाई होती है।
0: अच्छा,
1: तो और बुआई के लिए जो है इसका बीज दर जनरली जो है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए होती है। और बीज को शोधन करके अच्छे से नर्सरी बेड में गिराते हैं। नर्सरी बेड जो है लगभग 3 मीटर बाई 1 मीटर का एक एक क्यारी बन जाता है, और 15 सेंटीमीटर रेस्ड बेड हम बनाते हैं, और उसको भुरभुरा करके फिर लाइन में सोइंग करते हैं। और सोइंग करने के बाद में हल्का सा वर्मी कंपोस्ट से इसको ढक देते हैं, रोज सिंचाई करते हैं, एवं पुआल से भी उसको ढक देते हैं। हर दिन हल्का फुहारे से इसको सिंचाई करते हैं, और जब अंकुरण हो जाता है, जब भी अंकुरण हम देखेंगे कि हो जा रहा है, तुरंत पुआल को हटा देना है।
0: अच्छा।
1: उसके बाद में भी इसका अच्छा देखभाल करना चाहिए और देखना चाहिए कि बिजड़ा स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ बिजड़ा अगर आप लगाएंगे तभी आपको उपज अच्छा आएगा
0: जी। तो वैसे भी स्वस्थ अगर बिजड़ा रहेगा तो आपके जो बैंगन भी होंगे वो अच्छे तरीके से आएंगे, मतलब जो जो इसका एप्रोप्रिएट साइज है।
1: हाँ हाँ एकदम, और उसमें डिजीज वगैरह भी नहीं आएगा।
0: और मैम आपने बुआई की बात की, तो रोपाई अब हमारे किसान भाई कैसे करेंगे?
1: बुआई जब किया उससे लगभग एक महीने में बिजड़ा जो है रोपाई के लिए रेडी हो जाता है
0: जी।
1: रोपाई के लिए जब बिजड़ा रेडी होगा तब हम देखेंगे लगभग एक एक सीडलिंग जो है 12 से 15 सेंटीमीटर हाइट का हो जाएगा, और उसमें पेंसिल थिकनेस का जो है उसका जो स्टेम होगा, डंठल होगा, वो ऐसे हो जाएगा। तो उसी बिजड़े को हम लगाएंगे, स्वस्थ बिजड़ा को हम उठाएंगे नर्सरी बेड से लेके फिर उसको भी सीडलिंग को ट्रीटमेंट करके फिर लगाएंगे। उसको जनरली हम लोग कार्बेंडाजिम में ट्रीटमेंट करते हैं, सीडलिंग को 10 मिनट तक डिप कर लेते हैं, उसके बाद में जो है इमिडाक्लोप्रिड में भी सीडलिंग को और 5 मिनट डिप करके फिर उसको लगाते हैं। तो इनिशियल एक महीने तक जो है उसको डिजीज पेस्ट से भी जो है ये सीडलिंग डिप से बचाव मिल जाती है।
0: तो ये तो रोपाई की बात साथ ही,
1: और रोपाई के साथ साथ में ये भी बोलना चाहेंगे कि रोपाई करना होगा कि इवनिंग टाइम में।
0: अच्छा,
1: मॉर्निंग में हम लोग रोपाई नहीं करते हैं, इवनिंग टाइम में रोपाई इसलिए करेंगे कि पौधे को ट्रांसप्लांटिंग शॉक लगती है, तो उसको अगर सुबह हम रोपाई करते हैं तो धूप में वो पौधा मुरझा के मर जा सकता है, ख़त्म हो सकता है। तो इसीलिए इवनिंग टाइम में हम रोपाई करेंगे। और रोपाई में ये भी याद रखना होगा कि स्पेसिंग क्या होगा।
0: अच्छा।
1: तो जो खरीफ सीजन की बैगन होगी तो इसकी स्पेसिंग जनरली हम 75 सेंटीमीटर दो लाइन के बीच में और दो पौधे के बीच में 60 सेंटीमीटर की दूरी पे इसको हम लगाएंगे
0: जी। मतलब कि उस समय रुपाई करना है किसान भाइयों बैगन का जब मतलब सूर्य आपके ऊपर हो तब बिल्कुल ना करें, ना शाम के वक्त करें जब सूर्य ढल रहा होता है। तो इसके साथ ही मैम खाद और उर्वरक कैसे, मतलब किस प्रकार के खाद और उर्वरक देने चाहिए?
1: बैगन को जब भी आप लगाते हैं तो खेत की जब तैयारी करते हैं, इधर पे आपकी नर्सरी बन रही होती है, दूसरी तरफ से खेत की जुताई करके उसके फील्ड प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, और साथ साथ में जब आखिरी जुताई होती है उसी समय पे जो है गोबर की खाद सड़ी हुई, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर की दर से उसमें मिलाना चाहिए। और लगाने से पहले बेसल डोज जो खाद का होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश जो है इसका बैगन में जनरली उसका मात्रा है 120/80/80।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो ये किलो प्रति हेक्टेयर के दर से होता है। तो पोटाश और फॉस्फोरस जो है उसकी पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की जो है आधी मात्रा एज बेसल डोज लगाने से पहले खेत में अच्छे तरीके से मिला देना चाहिए। उसके बाद में आप इसकी रोपाई करें। रोपाई करने के बाद में लगभग 30 से 40 दिन के बीच में एक बार टॉप ड्रेसिंग करें, जो नाइट्रोजन बाकी आधा मात्रा बची है उसका फिर एक तिहाई मात्रा उसमें डालें।
0: अच्छा।
1: फिर बाकी जो दो तिहाई मात्रा रही उसको दो स्प्लिट डोज में और एप्लीकेशन करना चाहिए 30-30 दिनों में, क्योंकि बैगन लंबी अवधि तक चलने वाली फसल होती है, इसीलिए जो है इसके ऐसे करके खाद उसका यूज़ करना चाहिए ताकि इसमें पौधा भी हरा भरा बना रहे।
0: अच्छा।
1: और उसमें उपज भी अच्छा आए।
0: अच्छा, तो ये उर्वरक की बात हो गई, सिंचाई की बात कर लेते हैं मैम। सिंचाई मतलब किस तरीके से और कितनी मात्रा में और किस समय पर करना चाहिए?
1: वर्षा में जब आप लगाएंगे तो सिंचाई से भी ज़रूरी होता है कि इसका जल निकासी भी अच्छा होना चाहिए।
0: तो
1: खेत जब बनाइए उसी समय पे ड्रेनेज चैनल अच्छे से बनाना होगा, और जब भी हम इसकी रोपाई करेंगे उसके तुरंत बाद हमको हल्का एक कुछ दिनों तक जो है फुहारे से ही इसका एस्टेब्लिशमेंट तक जो है पानी देना होगा। जब एस्टेब्लिश हो गया लगभग रोपाई के 10-15 दिन के बाद में आप इसको हल्का सिंचाई कर देंगे, उसके बाद में आवश्यकता अनुसार जो है इसमें सिंचाई करना होगा।
0: मतलब ज्यादा अगर
1: ज्यादा नहीं करना है, अगर बारिश हो रही है आपको सिंचाई की जरूरत
0: नहीं
1: है, लेकिन अगर बारिश नहीं है तब सब्जी फसल ऐसी है और बैगन भी खास करके ऐसी फसल है जिसमें आपको रेगुलर उसमें सिंचाई करना होगा, उसको पानी की ज़रूरत है लेकिन ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है,
0: नॉर्मल
1: वाटर लॉगिंग कंडीशन उसमें नहीं आना चाहिए।
0: अच्छा, तो ये भी बात हो गई सिंचाई की। और जहाँ तक बात है कि हम कैसे कीट पतंगों से बचाएं अपने पौधों को और रोग से बचाएं, तो मैम जहाँ तक बैंगन की बात है तो बैंगन में कौन कौन से रोग लग सकते हैं और इसका जो उपचार है वो हम कैसे कर सकते हैं?
1: बैंगन में जो है हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग काना बैंगन से परेशान रह जाते हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें जो है क्या है, कीड़ा दिखते हैं अक्सर। आप देखेंगे मार्केट में जो है कीड़ा लगा हुआ बैगन मिलता है, बैगन को काटिए तो
0: जैसे कि गोभी में भी,
1: हाँ गोभी में भी जैसे आता है वैसे बैगन को भी काटिए हमेशा दिख जाता है अंदर में कीड़ा मिल जाता है। तो ये जो कीड़ा है ये फल एवं तना छेदक होता है।
0: अच्छा।
1: ये सबसे खतरनाक कीड़ा है बैगन का। और इसके बचाव के लिए जो है शुरू में तो देखते हैं कि जब हम पौधा को लगा दिए उस समय पे शूट पे आता है, उसके तना पे आता है, तो जब देखेंगे तना पे आएगा तो ऊपर से थोड़ा सा मुरझाया सा लगेगा, तो जहाँ तक मुरझा हुआ है वहाँ तक क्लिपिंग कर दे और अच्छे से जो है इसमें उसके बाद में जो है इंडोक्साकार्ब आप अप्लाई कर सकते हैं 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के फिर इसको स्प्रे करें, इसका 15 दिन के अंतराल पे स्प्रे कर सकते हैं। या फिर स्पाइनोसेट का भी एप्लीकेशन आप लोग कर सकते हैं, ये 0.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके इसका एप्लीकेशन करें। ये इसके अलावा जो है कीड़ा और ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लीफ हॉपर का प्रॉब्लम होता है या जैसिट का प्रॉब्लम होता है, उसमें छोटा छोटा देखिएगा एकदम बिल्कुल छोटा सा हरा रंग का या फिर सफ़ेद रंग का,
0: जिसे सफेद आम भाषा में वो पिल्लू बोलते हैं।
1: हाँ, पिल्लू तो वो कैटरपिलर होगा।
0: अच्छा।
1: हाँ, ये जो बोरर है तना एवं फल छेदक वो वाला हो गया। ये जो माहू या लाही जो है, आम भाषा में इसको लाही या माहू जो बोलते हैं, वो भी कभी कभार लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भयंकर प्रभाव तो नहीं फेंकती है, लेकिन थोड़ा सा लीफ में इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम इमिडाक्लोरपिट का उपयोग कर सकते हैं, 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। ये तो रहा कीड़ा के बारे में। अब डिजीज बैगन में जो है रोग भी आती है, सबसे भयंकर जो है झुलसा
0: रोग।
1: तो झुलसा फफूंद जनित भी हो सकता है या फिर बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो फफूंद होता है तो हम देखेंगे जनरली हम जो देखते हैं उसका जो जड़ के ऊपर से जो तना निकलती है, तो मिट्टी के पास जो तना है वहाँ पे हम देखेंगे वो सड़ गया।
0: अच्छा।
1: बार्ग भी सड़ जाता है जो है, छिलका जो है उसका बार्क का वो भी सड़ जाता है, या फिर नीचे पे जब गलन आने लगी उसी समय पे उसको अगर उठाते हैं, उसको हटाते हैं, उसको अगर तोड़ेंगे आप उस पौधे को निकालेंगे तो उसके अंदर कभी देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद रंग की थोड़ा सा माइसिलियल ग्रोथ टाइप का हो रहा है, ये काला रंग का कुछ है, तो वो जो है ये फफूंद के लिए है।
0: अच्छा।
1: और अगर ऐसे नहीं है लेकिन बदबू बहुत भयंकर हो रही है और उसको उठा के फिर जो है काट के पानी के ग्लास में डालेंगे तो नीचे मिल्की ऊज टाइप का चीज़ निकलेगी, तब वो होगा बैक्टीरियल। ठीक है। तो इसके लिए जो है फफूंद के लिए अगर हो रहा है, फफूंद जनित अगर विल्टिंग है, तो उसके लिए आप कोई फफूंदनाशी डाल सकते हैं, जैसे कि आप मेटलैक्सिल प्लस मैंकोजेब का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा रहता है, इसका 2 ग्राम प्रति लीटर में घोल करके उसको अच्छे से प्लांट को भी स्प्रे करें, और ख़ास करके जो रूट के पास जो कॉलर रीजन होता है उसमें ड्रेंचिंग अच्छे से करना चाहिए, उसको अच्छे से भिगो देना चाहिए, उससे जो है इसकी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और अगर बैक्टीरियल होता है तो उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करें।
0: अच्छा।
1: उसका जो है 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोल करके उसको स्प्रे करते हैं तो इससे भी काफ़ी, और साथ साथ में 3 ग्राम प्रति लीटर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ये भी उस मिला के अगर स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक इसका कंट्रोल होता है।
0: तो इस तरीके से जो किसान भाई हैं, अगर बैंगन के पौधे आपने लगाए हैं तो इस तरीके से आप उन्हें रोगों से बचा सकते हैं। फिलहाल तो किसान भाइयों आपने विस्तार से जाना मैम से कि बैंगन की उन्नत खेती आप कैसे कर सकते हैं, इसमें आपने जाना कि समय क्या है, आप कैसे लगा सकते हैं, विधि क्या है, इसके अलावे रोपाई आपको कैसे करनी चाहिए, खाद और उर्वरक कैसे होने चाहिए, सिंचाई आपको कब और कैसे करनी चाहिए, साथ ही रोग और रोगों के इलाज के बारे में भी बताया गया आप सभी को। तो आज के लिए तो किसान भाइयों इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी और भी अलग विषय के साथ जानकारियों के साथ मैं हाजिर होंगी 90.8 FM ग्रीन पर। सुनते रहें उन्नत कृषि कार्य। उन्नत कृषि।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और।
5: और तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा।

0: कल्याण के।
1: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
2: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
6: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
5: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
6: आपकी सेहत की बातें,
5: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
6: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
5: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
6: वो कहाँ पर?
5: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
6: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
5: जुड़े हैं 90.8 FM ग्रीन से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके सपने बहुत बड़े थे और हौसले उससे भी बड़े। कहानी है सुधा चंद्रन की। मुंबई में जन्मी सुधा को बचपन से ही नृत्य से बहुत प्यार था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब सुधा नृत्य की दुनिया में खो जाती थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को समझा और सिर्फ 5 साल की छोटी सी उम्र में उन्हें कला सदन नाम के एक प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय में दाखिला दिलाया। 5 साल की छोटी सी बच्ची जिन्हें बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आती, तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को लगा कि इतनी छोटी सी बच्ची क्या सीखेगी। शुरुआत में शिक्षकों को ऐसा लगा था, लेकिन जल्दी ही सुधा की प्रतिभा ने सबको चौंका दिया। उनके गुरु K.S. रामास्वामी भागवतार ने उन्हें अपना विशेष शिष्य बना लिया और उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षण देना शुरू किया। सुधा नृत्य में तो अच्छी थी ही, बल्कि पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उन्होंने अपनी 10वीं की परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। उनका जीवन एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह रंगों से भरा हुआ था, सपनों, मेहनत और सफलता के रंग। लेकिन इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं। सपनों, मेहनत, सफलता, परेशानी, कठिनाई, इन सब के रंग सुधा के लिए अभी आने बाकी थे। किस्मत में कुछ और भी लिखा था। 2 मई 1981 का वो दिन जब सुधा की जिंदगी बदल गई, उनकी जिंदगी का वो सबसे कठिन दिन। 2 मई 1981, तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई। इलाज के दौरान उनके दाहिने पैर में ग्रैंगीन हो गया। डॉक्टरों के पास उनकी जान बचाने के लिए एक ही रास्ता था, उनकी टांग को काट देना। एक नृत्यांगना के लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उनके सारे सपने एक ही पल में टूट गए हों। लेकिन सुधा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बैसाखियों के सहारे चलना सीखा, अपने दर्द को सहा और धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। इसी दौरान उन्हें जयपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर PK सेठी के बारे में पता चला। डॉक्टर सेठी ने उन्हें जयपुर फुट नाम का एक कृत्रिम पैड लगाया और उन्हें भरोसा दिलाया कि वो फिर से सामान्य जीवन जी सकती है। लेकिन सुधा को सामान्य जीवन नहीं जीना था, वो तो एक नृत्यांगना बनना चाहती थी। और सुधा के मन में बस एक ही सवाल था, एक ही बात की बेचैनी कि क्या वो फिर से नृत्य कर पाएंगी, अपने बचपन का प्यार, अपना सपना जी पाएंगी। तो उन्होंने डॉक्टर सेठी से पूछा, क्या मैं फिर से नृत्य कर पाऊंगी? डॉक्टर सेठी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम कोशिश करोगी तो

0: अब संभव है, बस यही शब्द सुधा की ताकत बन गए। उन्होंने दोबारा नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत बहुत दर्दनाक था क्योंकि कई बार नृत्य करते वक्त उनके पैर से खून निकलता, उनका संतुलन बिगड़ता और शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन सुधा के साथ था और सुधा अपने शरीर को बारंबार इस चीज के लिए तैयार कर रही थी कि उन्हें नृत्य करना है। उनका हौसला नहीं टूटा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनके गुरु ने, उनके डॉक्टर ने और उनके घर वालों ने मिलकर उनका साथ दिया। गुरु और डॉक्टर ने मिलकर उनके लिए एक विशेष कृत्रिम पैर तैयार किया जो नृत्य करने के लिए उपयुक्त था। धीरे धीरे कठिन अभ्यास के बाद वही सुधा जो कभी चल भी नहीं पाती थी फिर से मंच पर नृत्य करने लगी। उनका हर कदम, हर मुद्रा लोगों के दिल को छू जाती थी। ये सिर्फ नृत्य नहीं था, ये कहानी थी उनके संघर्ष और जीत की। और आपको पता है, उनकी इस प्रेरणादायक यात्रा पर एक फिल्म भी बनाई गई, मयूरी, जिसमें उन्होंने खुद अभिनय किया और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। बाद में उन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में काम भी किया और एक सफल अभिनेत्री के रूप में पहचान भी बनाई। शायद आपने भी सुधा चंद्रन को किसी फिल्म में या फिर किसी सीरियल में देखा होगा। 1984 में जो उन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी मयूरी, उसमें भी उन्होंने काम किया। कई सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया, हालांकि मयूरी तेलुगु फिल्म थी, लेकिन हिंदी फिल्मों की बात करें तो मालामाल वीकली, उसमें आपको वो ठकुराइन का किरदार याद तो होगा जो बड़ी कठोर थी। शोला और शबनम में गोविंदा की बहन बनी थी। रघुवीर में आरती वर्मा और मिलन फिल्म में जया। अंजाम में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने कई सारे सीरियल्स में भी काम किया। चश्मे बदूर, हीना, रिश्ते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तुम बिन जाऊं कहां, विष्णु पुराण, जमी से आसमां तक जैसी बहुत सारी धारावाहिकों में उन्होंने काम किया। किस देश में मेरा दिल है, कस्तूरी में मासी का किरदार निभाया, माता की चौकी में श्वेता देवी का किरदार निभाया। तो उन्होंने अपने नृत्य के साथ साथ एक्टिंग भी की। वैसे आपको बता दूं, सुधा चंद्रन के पिताजी एक अभिनेता भी थे, साथ ही उन्होंने USIS कंपनी में काम भी किया था। और उनकी बेटी एक प्रसिद्ध नृत्यांगना बनी और साथ ही उन्होंने अभिनय में भी अपना रंग जमाया। दोस्तों, सुधा चंद्रन की कहानी हमें ये बताती है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर हम हार न माने, हम अपने हौसले को कभी टूटने ना दें, तो हमारी मंजिल हमसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ रहा है। हमारे आपके सबके जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब हमें लगता है कि अब शायद हमसे और नहीं होगा, अब हमारी मंजिल हमें नहीं मिलेगी, हमारा सपना हमसे रूठ गया। लेकिन जिंदगी में चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना आए, अगर हमारे इरादे मजबूत हों और हम हार ना माने, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले खास बात की अपना और अपने अपनों का रखें खूब ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। और ध्यान रखें कि आप खुद से तभी प्यार कर पाएंगे जब आप अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने लिए जीना नहीं छोड़ेंगे। मैं चलती हूँ, लेकिन आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए। नमस्कार।
1: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तोड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन। और मैं आप सभी को बता दूं कि आज एक बार फिर हम एक खास विषय लेकर हाजिर हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और बहुत ही खास विषय है सोयाबीन की। हम बात करें सोयाबीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर प्रोटीन रिच सोर्स में आप सबसे ज़्यादा अगर बात करो कि किस चीज़ में प्रोटीन है, तो हम बात करते हैं सोयाबीन की। जी हाँ, इसके हमारे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही लाभ है। लेकिन जहाँ तक खेती की बात है, तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे किसान भाइयों के सामने आती हैं। तो उन्हीं समस्याओं का हल करने के लिए आज हमारे बीच, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश देव रंजन सर, और वो आपको सारी बातें बताएंगे जिससे कि आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राकेश देव रंजन सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं प्लांट फिजियोलॉजी में, और साथ ही ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से हैं। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद
0: सर। जहां हम रहते हैं वो है बिहार क्षेत्र, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो क्या हमारे क्षेत्र के किसान भाई सोयाबीन की खेती कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, सोयाबीन की खेती बिहार में अब संभव है। सोयाबीन को पीला सोना भी कहा जाता है, और किसान का मानना है कि सोयाबीन की खेती से निश्चित रूप से लाभ मिलता है और इसमें नुकसान की गुंजाइश बहुत ही कम होती है। जहाँ तक बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो बिहार में अब निर्मल ये बहुत सारे प्रखंड में सोयाबीन की खेती हो रही है। इधर हाल में खगड़िया बेगूसराय में खेती, सोयाबीन की खेती ज़्यादा से ज़्यादा किसान कर रहे हैं। खगड़िया में मक्के गेहूँ की खेती से बाहर निकलकर अब जिले के किसान अधिक फायदे वाली फसलों की बुआई में रुचि दिखा रहे हैं। हाल के कुछ वर्षों में जिले के किसान सोयाबीन की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। कम लागत पर अधिक आय होने के कारण इन दिन प्रखंड में अधिक से अधिक सोयाबीन की खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के आंकड़े के अनुसार 10 से अधिक सोयाबीन की इस खेती इस जिले में हुई है। इसलिए हमारे बिहार के किसान सोयाबीन की खेती कर सकते हैं।
0: जी तो सर, अभी हम बात करते हैं फसल चक्र की। कहा जाता है कि अधिक लाभ हमें चाहिए तो फसल चक्र हमें अपनाना चाहिए खेती में। अगर सोयाबीन की हम बात करें, तो हमारे किसान भाइयों को अगर इसमें लाभ चाहिए सोयाबीन की खेती में, तो वो फसल चक्र कैसे अपनाएंगे?
2: जहाँ तक फसल चक्र का सवाल है, तो इसकी खेती के लिए खेतों की 4 बार अच्छी से जुताई करने के बाद अच्छे कंपनी के बीच प्रति कट्ठा 1 किलोग्राम की दर से बोया जाए, तो इससे अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। वहीं पौधों को उखड़ा रोग से बचाने के लिए बुवाई के समय खेतों में थाइमेट को डाला जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। आषाढ़ महीने में इसकी बुवाई की जाती है। इसकी खेती की विशेषता ये होती है कि किसानों को उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, साथ ही बरसात का मौसम रहने से सिंचाई भी नहीं होती है। पौधे उगने के बाद खर पतवार के अनुसार 1 बार निकोनी की आवश्यकता होती है, इससे इसके पौधे में प्रायः रोग नहीं के बराबर लगता है। कभी कभी दीमक युक्त मिट्टी में उखड़ा रोग लगता है, पौधे में कीड़ों का प्रकोप देखा जाता है, और इसके बचने के लिए 100 दिन के परे फसल चक्र में 1 बार डाइमिथेन 45 कीटनाशक एवं टॉनिक का छिड़काव किया जाता है। इससे फसल चक्र को हम अपना सकते हैं।
0: जी तो इस प्रकार किसान भाइयों, आप फसल चक्र अपना सकते हैं। और वहीं पर अच्छी उपज की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब, अच्छी उपज के लिए सोयाबीन की अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद अच्छा होगा हमारे किसान भाइयों के लिए?
2: हमारे क्षेत्र में सोयाबीन की खेती का प्रारंभ काली तूर नामक किस्म से हुआ था, जिसके दाने काले रंग के थे। उसके पश्चात पीले दाने वाले T9 की किस्में आई थी। इसकी सफलता के बाद अलंकार, अंकुर, शिलाजीत, पंजाब 1 किस्म का द्वारा पसंद की गई थी। बाद में गौरव मोनेटा MSCS 13, मैक्स 58, पूसा 16, पूसा 20, पूसा 24 किस्में धीरे धीरे प्रचलन में आई। बिहार के किसानों के लिए जो किस्म जो अधिक महत्वपूर्ण है उसके बारे में मैं एक एक करके बता रहा हूँ। एक पहले किस्म है PK 472, ये मोटे पीले दाने वाले मध्यम ऊंचाई के किस्म का पौधा सीधा होता है। इसे पकने में 110 से 115 दिन का समय लेता है और पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। यह किस्म पीला मोजाइक, पर्ण धब्बा एवं बैक्टीरियल बीमारी से प्रतिरोधी होने के साथ साथ कई प्रकार के कीड़ों से प्रतिरोधी होता है। दूसरी वैरायटी है JS335, यह भी पीले दाने वाली होती है और शीघ्र पकने वाली 100 से 105 दिनों की होती है। इसके फूल बैंगनी रंग के होते हैं तथा फलियां जो होती है वो चिकनी एवं चटकी होती है और इसकी जो पैदावार है 25 से 30 प्रति क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा एवं अंगमारी रोगों के लिए प्रतिरोधी तथा मोजैक एवं तना मक्खी के लिए सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैक्स 450 है, जिसकी उपज 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्य पत्ती रोधी रोगों से प्रतिरोधक तथा पत्ती खाने वाले कीड़ों से सहनशील होती है। तीसरी वैरायटी जो चौथी वैरायटी के बारे में है NRC 12, जिसे अहिल्या 2 के नाम से भी जाना जाता है। 100 से 105 दिनों में पकने वाली पीले दानों वाली इस किस्म में बैंगनी फूल पाए जाते हैं और ये 100 दिनों की होती है और इसकी उपज की क्षमता 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। यह किस्म जीवाणु पत्ती धब्बा तथा अन्नपूर्ण बच्ची कीड़ों से तथा मोजैक तथा तना मक्खी के लिए सहनशील है। दूसरी वैरायटी अहिल्या 4 है, इसकी भी उपज काफ़ी अच्छी होती है, 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और यह भी बहुत सारी बीमारियों के प्रति सहनशील होती है। अगली वैरायटी है प्रताप सोया 1, जिसे RAUS 5 के नाम से भी जाना जाता है। यह 95 दिनों में पकने वाली इस किस्म की पत्तियां गहरी तथा हरी तथा भूरे रंग वाली होती है। 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाली इस किस्म के 100 दानों का भार 10 से 12 ग्राम होता है। यह किस्म गर्डल बीटल नामक कीड़ों से अत्यधिक प्रतिरोधी होती है। अगली वैरायटी JH 93-05 होती है, यह भी 90 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म में अंकुरण क्षमता उत्तम दाना तथा मध्यम मोटा होता है तथा 100 दानों का भार 9 से 10 ग्राम होता है। अगली वैरायटी JH 97-52 होती है, यह मध्यमवर्ती एवं मध्यम दाने वाली प्रजाति है। यह अक्टूबर 2008 में केंद्रीय प्रजाति अनुशंसा समिति CBRC द्वारा नई दिल्ली द्वारा मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के लिए अनुशंसित है। अगली वैरायटी JH 95-60 है, इस वैरायटी को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा अनुशंसित किया गया है। इस वैरायटी का मुख्य 20 से 25 क्विंटल प्रति क्विंटल हेक्टेयर उपज है और यह जड़ सरण एवं पर्णिया बीमारी, पत्ती चूसक कीटों, पत्तियां काटने वाले कीटों के लिए प्रतिरोधी सहनशील क्षमता होती है। अगली वैरायटी प्रताप राज 24, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और मध्यम ऊंचाई में यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और इस किस्म में तेल की मात्रा 21.5% होती है। यह किस्म गर्डल बीटल सेमी लूपर तंबाकू जल्ली तथा मध्य प्रतिरोधी पाई जाती है तथा पित्त विषाणु रोग, चारकोल रोग तथा पत्ती धब्बा रोगों से मध्य प्रतिरोधी पाई गई है। सस्क्रिया
0: जी, तो यहाँ पर किस्मों के बारे में आपने जाना कौन कौन से वैरायटीज़ हैं और इसके साथ ही अब हम बात करते हैं अधिक उपज के लिए सस्क्रियाओं के बारे में। डॉक्टर साहब, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
2: ये सस्क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण खेतों की तैयारी करना होता है। सोयाबीन के लिए चिकनी भारी उपजाऊ अच्छी जल निकास वाली तथा ऊसर रहित मिट्टी उपयुक्त रहती है। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेतों को भली भांति तैयार करनी चाहिए। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे भूमि में उपस्थित कीड़े रोग एवं खरपतवार के बीजों की संख्या में कमी होती है तथा भूमि के जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। खेत से पूर्व फसल के अवशेष एवं जड़े को निकालकर इसमें भली भांति सरी हुई गोबर के खाद या कंपोस्ट मिला देने से अच्छी उपज प्राप्त होती है। इसके बाद दो बार बखर या कल्टीवेटर से जुताई कर ढेले फोड़कर भूमि को भुरभुरी कर ले तथा पाटा चलाकर खेतों को समतल बना देना अच्छा होता है। खेतों की अच्छी तैयारी अधिक अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इस फसल की बुआई का जो समय होता है वो जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई के प्रथम सप्ताह तक सबसे उपयुक्त होता है। बोने के समय अच्छे अंकुरण हेतु भूमि में 10 सेंटीमीटर गहराई तक उपयुक्त नमी होनी चाहिए। जुलाई के प्रथम सप्ताह के पश्चात बोनी की बीज दर जो होती है 5 से 10% बढ़ा देनी चाहिए। बीज की मात्रा का सवाल है तो उसमें छोटे दाने वाली जो किस्म होती है उसमें 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए एवं अगर मध्यम दाने की अगर बीज हो तो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेने चाहिए और अगर बड़े दाने वाली किस्म हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लेनी चाहिए। अच्छी उपज के लिए ये जरूरी है कि बीज का उपचार होना चाहिए, तो बुआई से पहले सोयाबीन के बीजों को उपचारित करें। कार्बन रेजिम या थीरम के 2 किलोग्राम बीज का 24 घंटा पहले बीज के साथ उपचार करें तथा ट्राइकोडर्मा के टैल्क सूत्रीकरण के साथ 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज या स्यूडोमोनास फ्लोरेंस के साथ 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज का प्रयोग करने से अच्छी उपज की प्राप्ति होती है। ये जरूरी है कि कोई भी फसल तभी अच्छी होती है जब हम मिट्टी का परीक्षण ये करें। तो संतुलित उर्वरक या मृदा स्वास्थ्य हेतु मिट्टी में मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, पोषण तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, तांबा, लोहा, ये सब होने से मिट्टी अच्छी होती है और उपज भी अच्छी होती है। सोयाबीन की खेती अधिक हल्की रेतीली या हल्की भूमि को छोड़कर सभी प्रकार के भूमि में सफलतापूर्वक की जाती है, परंतु पानी निकास वाली चिकनी दोमट मिट्टी सोयाबीन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जहाँ भी खेत में पानी रुकता हो वहाँ सोयाबीन को नहीं लेना चाहिए। सोयाबीन फसल के लिए शुष्क गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके बीजों का जमाव 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 दिन में हो जाता है, जबकि इससे कम तापमान होने पर बीजों का जमाव में 8 से 10 दिन लगते हैं। अतः सोयाबीन के खेती के लिए 60 से 65 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान उपयुक्त माने गए हैं। खेत की जो जुताई है ये वर्षा प्रारंभ होने पर 2 या 3 बार बकर या पाटा चलाकर खेत को तैयार कर ले और इससे हानि पहुंचाने वाले कीटों के सभी अवस्थाओं के नष्ट होंगे। जहां तक संभव हो आखिरी बकरनी या पाटा के समय अंकुरित खरपतवार ये नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तक उर्वरक का सवाल है, सोयाबीन में थोड़ी उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम होती है। सोयाबीन की बुआई से पूर्व खेत को तैयार करते समय अच्छी सरी हुई गोबर की खाद 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम बकरनी के समय खेत में अच्छी तरह से मिला दें तथा बोते समय 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फॉस्फोरस, 20 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर दे देने से अच्छा रहता है। यह मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। गहरी काली मिट्टी में जिंक सल्फेट 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एवं उतली मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 फसलों के देने के बाद उपयोग में करना चाहिए। इसके बाद खरपतवार सबसे ये महत्वपूर्ण होता है। फसल के प्रारंभिक 30 से 40 दिनों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यकता होती है। बतर आने पर डोरा या कुल्फा चलाकर खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए एवं दूसरी निदाई अंकुरण होने के 30 या और 45 दिनों के बाद करें। 25 से 20 दिनों के खरीफ फसल में घास कुल के खरपतवार को नष्ट करने के लिए क्यूनोजेलोफास इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर अथवा घास कुल के और चौरी पत्ती वाली खरपतवारों के इमेजोथाइफर 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की अनुशंसा की जाती है। सिंचाई के बारे में यह है कि खरीफ मौसम में फसल होने के कारण सामान्यतः सोयाबीन की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। फलियों में दाना भरते समय अर्थात सितंबर माह में यदि खेत में नमी पर्याप्त न हो तो आवश्यकता अनुसार 1-2 हल्की सिंचाई करने से सोयाबीन की अच्छी उपज प्राप्त होती है। वर्षा न होने पर उपयुक्त सिंचाई नमी के अनुसार समय पर की जा सकती है। फसल की कटाई के समय जब सोयाबीन की फलियां सूख जाए और पत्तों का रंग बदल कर पीला हो जाए और पत्ते गिर जाए तब फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है और कटाई हाथों से धरती से करें। कटाई के 2-3 दिन तक धूप में अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद पौधे में से बीज को निकालने के लिए थ्रेशर, ट्रैक्टर, बेलों या अन्य कृषि संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बीज का भंडारण करना चाहिए। सोयाबीन के बीज के अच्छी तरह से सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से सुखाकर साफ कर ले और छोटे आकार के बीजों को, प्रवाहित बीजों को, डंठल को निकाल दे और बीज के भंडारण होते सूखी जगह का चयन कर और इसमें नमी से बचाना बहुत आवश्यक होता है।
0: जी, तो यहाँ पर पूरी बातें आपने जानी है कि शस्य क्रियाएं, और इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर कीट लगने की बात करें और इन वजह से पौधों को रोग भी हो जाता है, तो हमारे किसान भाई को हम बताना चाहेंगे कि कौन कौन से कीट लगते हैं और इन कीटों से कैसे बचा सकते हैं वो अपने फसलों को, उसके बारे में जानकारी दें।
2: ये हानिकारक कीटों के बारे में मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ। इसमें मुख्यतः सफ़ेद मक्खी जो होती हैं वो लगती हैं। सफ़ेद मक्खी के रोकथाम के लिए थाइम में मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफोजोब्स 300 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करें। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। दूसरा जो होता है रोग, वो तंबाकू सुंडी होते हैं कीट। यदि इस कीट का हमला दिखाई दे तो एसीटेट 57 या SP 800 ग्राम या क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC को 1.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। यदि जरूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करें। और तीसरी कीट जो होती है बालू वाली सुंडी होती है। बालू वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर या केरोसिन में डालकर इसे खत्म किया जा सकता है। इसका हमला अगर ज़्यादा हो तो क्लोरोफॉस 300 मिलीलीटर या डाइलोक्लोरोफॉस 200 मिलीलीटर के प्रति एकड़ में स्प्रे करें। इसके अलावा जो रोग के बारे में जो है, पीला चितकबरा रोग जो होता है ये प्रमुख रोग होता है। यह सफ़ेद मक्खी के कारण फैलता है। इसमें अनियमित पीले हरे धब्बे पत्ते पर नज़र आते हैं। प्रभावित पौधे पर फलियां विकसित नहीं होती है और इसके रोकथाम के लिए पीला चितकबरा रोग की प्रतिरोधी किस्म का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद मक्खी को रोकथाम के लिए डाई मेथोमॉक्स 40 ग्राम या ट्राइफ्रो जोसफ 400 मिलीलीटर के स्प्रे प्रति एकड़ में करने से फ़ायदा मिलता है। यदि आवश्यकता पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिन के बाद दूसरी स्प्रे करना चाहिए। अगला, फफूंदी का कैसे नियंत्रण करेंगे। अगर फफूंदी रोग लग जाता है तो सोयाबीन के पत्तों पर कई तरह के धब्बे वाले फफूंदी जनित रोग नियंत्रण के लिए कार्बोनाजेडिन 50 WP या थाइफेनेट मिथाइल 70 WP 0.05 से 0.1% से 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में छिड़काव करना चाहिए। पहली छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था पर तथा दूसरी छिड़काव 40 से 45 दिनों के बाद करना चाहिए। एक जो और रोग है वो बैक्टीरियल पैस्टूरियल नामक रोग होता है। इसके रोकथाम के लिए सेट्रोसाइक्लिन या कासुगामिसिन के 200 ppm 200 मिलीग्राम दवा प्रति लीटर पानी के घोल और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल के मिश्रण में छिड़काव करना चाहिए। एक और जो विषाणु से द्वारा वायरस से द्वारा जो रोग है वो पीला मोजाइक वायरस है। इसके एफिड, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि द्वारा फैलता है। अतः केवल रोग रहित स्वस्थ बीज का उपयोग करना चाहिए एवं रोग फैलने वाले कीड़ों के थाइमो जेकॉब 70 WMJ 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से उपचारित कर देने से इसमें रोग की थोड़ा सा कमी आती है एवं इसे 30 दिन के अंतराल पर दोहराते रहें। रोगी पौधे को खेत से निकाल दें। इथेनोफ्रेनोकॉक्स 10 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर, थाइमेट 25 WG 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से उपयोग करने से इस विषाणु जनित रोग पर काबू पाया जा सकता है।
0: जी, तो यहाँ पर आपने पूरी जानकारी पाई है सोयाबीन के खेती के बारे में और सारी बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं शुरू से लेकर कि आप खेती कर सकते हैं बिहार में या नहीं, इससे किसान भाइयों को कैसे लाभ होगा, फसल चक्र अपनाना कैसे है आपको और अच्छी उपज के लिए कौन सा प्रभेद आपको लेना है, शस्य क्रियाओं के बारे में बात किया हमने और कीट के बारे में जाना, साथ ही उनसे होने वाले रोगों से हम कैसे निजात पा सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी अगर बिहार में आप कोशिश करते हैं सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं तो एक बार इस रेडियो टॉक को ज़रूर सुने, आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप आसानी से खेती कर पाएंगे, आपकी जो भी दिक्कतें हैं वो थोड़ी कहीं ना कहीं सॉल्व ज़रूर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और भी बातें होंगी, फिलहाल नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी, एक खांसी दो खांसी तीन, बच गई भैया देश की भीड़। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू देख कितने दोस्त हैं।
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त
6: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी, तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन यानी हरियाली से खुशहाली तक।
9: 90.8 MHz पर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं हूं ईश्वर चंद्रा और मेरे साथ हैं डॉक्टर सोनल कुमारी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रोताओं आपके लिए एक खास विषय पर, जो कि आपके कृषि में जो लागत होती है उससे सीधा जुड़ा हुआ है और आपके उत्पादन के साथ भी यह विषय जुड़ा हुआ है। विषय का नाम है नकली और मिलावट उर्वरकों की पहचान कैसे करें। जी हाँ, उर्वरक के तौर पर आप काफ़ी सारे पैसे, एक लागत जो है अपने खेती में लगाते हैं, और अगर वही उर्वरक नकली मिले तो फिर आपको दो तरफा नुकसान होती है, उत्पादन पर असर और दूसरा आपके लागत में वृद्धि। तो मैडम, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि जो नकली उर्वरक हैं उसकी पहचान आसानी से कैसे करें।
10: नमस्कार किसान बहनों एंड भाइयों, मेरा नाम सोनल हुआ और मैं सहायक प्राध्यापक कनीय वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ मृदा विज्ञान विभाग में। और मेरा आज का टॉपिक है जो हमारे उर्वरक हैं, जो हमारे कृषि निवेश में सबसे महंगा अगर निवेश किसी किसान अगर करते हैं तो हमारा उर्वरक है, उसमें जिसमें किसान अपना निवेश करते हैं अपने फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और इसमें हमारा टॉपिक है कि बहुत सारे हमारे उर्वरक हैं जो हमारे किसान भाइयों और बहनों अपना यूज करते हैं खेती करने के लिए, उसमें मिलावट की जा रही है। तो हमारा लोकल सबसे ज़्यादा जो खाद प्रयोग किया जाता है खेती बाड़ी के लिए जो करते हैं, स्पेशली हम बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो बिहार के हमारे किसान हैं वो सबसे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करते हैं। और फॉस्फेट का सोर्स लें, जो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक उर्वरक है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज कर लेते हैं। DAP करते हैं, आज की डेट में DAP करना यूज किए हैं, पहले SSP करते हैं जिसको सिंगल सुपर फॉस्फेट बोलते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया जिसमें DAP है जिसको डायमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं, क्योंकि ये आपको नेत्रजन है और फॉस्फेट दोनों को सप्लाई करता है। और तीसरा उपयोगी हमारा उर्वरक जो है वो है MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। ये सबसे ज़्यादा हमारा किसानों द्वारा यूज किया जाता है अपने फसल उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। और उसमें मिलावट का भी कारण है, क्यों इसको मिलावट किया जा रहा है। आप कृषि निवेश में देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर उनका पैसा लगता है किसी चीज़ पे तो हमारा उर्वरक है। और जब हमारा एग्रीकल्चर सीजन आता है, एग्रीकल्चर सीजन हमारा 3 सीजन है, खरीफ, रबी और जायड जिसको बोलते हैं हमारा, एक समर में जो हमारा जो ग्रीष्म काल में हमारा जो फसल का उत्पादन किया जाता है, जाड़े के मौसम में उत्पादन किया जाता है, और हमारा जब बरसात के मौसम आते हैं उस टाइम उत्पादन करते हैं, इसको हम जिसको हम एग्रीकल्चर सीजन बोलते हैं, कृषि का हमारा मौसम जिसमें है। उस टाइम ना जो भी ये फसल उपजाते हैं उस फसल उपजाने के समय में बहुत ज़्यादा उर्वरक का प्रयोग करते हैं, और जो उर्वरक हमारे यहाँ बनाए जा रहे हैं फैक्ट्रियों द्वारा उतना वो नहीं सप्लाई कर पाते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं मिलावट करते हैं, और मिलावट करने के ना किसान भाई तो अप्लाई कर रहे हैं बट उनका उत्पादकता पर कोई असर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पौधों को जितना पोषक तत्व चाहिए वो मिलावट खाद होने के कारण उनको मिल नहीं पा रहा है, और जिसके कारण उनका मिलावट किया जा रहा है। और किसानों का भी ये होता है शिकायत है कि हम तो उर्वरक डाल रहे हैं, वो जब भी किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को कॉन्टेक्ट करते हैं उनका बस यही सबसे बड़ा शिकायत है, हमें जितना उर्वरक डालना है जितना आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए फसल के लिए उतना डाल रहे हैं, बट पोषक तत्व उतना नहीं जा रहा है और उनका उत्पादकता नहीं आ रहा है। तो उसकी पहचान करने का तरीका बहुत सारे हैं, आपका लैब टेक्निक्स है, जो लैब में हम सॉइल टेस्टिंग में जब कैसे जैसे मिट्टी का जाँच कराते हैं वैसे हमारा खाद पदार्थ का भी जाँच किया जाता है प्रयोगशाला में। और दूसरा जाँच करने का विधि है जिसको आप घर पर ही कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विधि है जो इसको मैं आगे चल के बताऊंगी कैसे इसका हम घर पर ही इसका इस विधि से इसको पहचानने की कोशिश करें, एटलीस्ट जो हमारे कम से कम जो हमारा बेसिक फर्टिलाइजर जिसको किसान यूज करते हैं अपने खेती बाड़ी में, यूरिया हो गया, DAP हो गया, SSP हो गया, MOP हो गया, इसका पहचान करने के विधि बताएंगे
9: जी। तो यहाँ पे जो बात आपको बताई जा रही है किसान भाइयों बहनों की, आप उर्वरकों को दो तरीके से उसकी जो गुणवत्ता है प्योरिटी है वो उसकी आप पहचान कर सकते हैं। एक तो लैब में, जिसे कि आप जहाँ पर भी आप मिट्टी जांच कराते हैं वहाँ पर इसकी जांच होती है, और एक आप घर में भी कुछ नुस्खों को अपनाकर उसका आप ये निर्धारण कर सकते हैं कि ये अभी प्राथमिक तौर पर असली या नकली दिख रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कोई शक हो, अगर आपको घर में जो नुस्खे अभी बताए जाएंगे उस नुस्खे से आपको ऐसा लगे कि उस पर वो खरा नहीं उतर रहा है, तो आप इसे लैब में भेजकर और आप इसकी जो जांच है वो सही तरीके से करके एक सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं, और साथ ही उसको आप जहां भी शिकायत दर्ज करनी उसे आप कर सकते हैं। जी मैडम, दोनों विधियों में सबसे पहले घरेलू विधि की बात है।
10: जी, जी। बिल्कुल, विधि बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी जो हमारा उर्वरक है, जो हमारा बेसिक उर्वरक है जिसको किसान यूज करते हैं अपने खेती बाड़ी के लिए, वो बेसिक उर्वरक मैंने बताया है यूरिया है, DAP है, SSP है, MOP है, इसमें कौन कौन सा मिलावटी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पहले आप अगर जहाँ से भी मुझे सुन रहे हैं इसको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा। जैसे यूरिया जिसको हम बोलते हैं, यूरिया सबसे ज़्यादा धड़ल्ले अगर कोई यूज होता है उर्वरक तो है यूरिया। यूरिया में मिलावटी पदार्थ क्या क्या यूज किया जाता है, साधारण नमक आप देखे होंगे, वो साधारण नमक नहीं जो हम टाटा वाले परचेज करते हैं, स्पेशली वो साधारण नमक जो हमको वार्ड में मिलता है बहुत सस्ते में, 2-1 रुपये मिल जाता है साधारण नमक, जिसका आप देखेंगे कण बहुत बड़े बड़े होते हैं, वो साधारण नमक उसका मिलावट किया जा रहा है। नहीं तो MOP यूरिया के कंपेरिजन में अगर देखेंगे तो जो हमारा म्यूरेट पोटासिक फर्टिलाइजर है उसके कंपेरिजन सस्ता है, तो उसको नहीं तो थोड़ा अच्छा लेवल का फैक्ट्री है जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, नहीं तो वो MOP मिला दे रहा है। ये है यूरिया में मिलावटी पदार्थ। दूसरा हमारा आता है सबसे ज़्यादा उर्वरक जो यूज होता है किसान द्वारा वो है DAP। DAP का पूरा नाम क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जो उर्वरक है ये आपको नेत्रजन भी सप्लाई करता है और फॉस्फेट भी सप्लाई करता है। नेत्रजन आपको 18% सप्लाई करता है और जो फॉस्फेट हमारा वो 46% सप्लाई करता है। यूजुअली इसका मैं आपको बताना चाहूँगी इसका 2 ग्रेड होता है। ये तो ग्रेड 1 की मैं बात की जिसमें 18% नेत्रजन और 54% मेरा फॉस्फेट होता है, और दूसरा जो ग्रेड होता है वो 16:48 का रेशियो चलता है, मीन्स 16% आपको नेत्रजन होगा और 48% आपका फॉस्फेट होता है। यूजुअली अगर हम भारत के और अपने बिहार के कॉन्टेस्ट में बात करें, इनके परिपक्ष में बात करें, तो हमारा जो पहला ग्रेड है DAP का 18:46 वाला रेशियो वाला अनुपात वाला वही यूज होता है। तो इसमें जो मिलावटी पदार्थ हमारा है DAP से सस्ता हमारा था SSV सिंगल सुपर फॉस्फेट। इसका बनाना, इसको मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री में आसान है और ये सस्ता होता है। तो DAP थोड़ा महंगा है इसको मैन्युफैक्चर करना फैक्ट्री द्वारा, तो नहीं तो DAP में SSV का मिलावट कर दे रहे हैं। रॉक फॉस्फेट आप लोग जानते होंगे ये क्या है कि मिनरल है
9: जी,
10: जो हमारा पहाड़ी पठारी क्षेत्र होता है वहाँ पर बहुत ईजिली मिल जाता है रॉक फॉस्फेट। इसको क्या पाउडर बनाते हैं उसके साथ मिलावट कर देते हैं, नहीं तो इसका मिलावट किया जा रहा है। अदरवाइज एक NPK का मिश्रण का भी एक फर्टिलाइजर होता है, उसका मिश्रण इसमें मिला दिया जाता है। नहीं तो सबसे सस्ता प्रोडक्ट अगर किसी कोई इसमें मिलावटी पदार्थ जो है वह चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी तो आप लोग देखे होंगे हर जगह पाया जाता है, जहाँ भी हमारे नदी किनारे जो जगह होते हैं चिकनी मिट्टी बड़ी आसानी से मिल जाती है। उसको सुखाते हैं, बहुत महीन पाउडर बनाते हैं और DAP के साथ बनाते हैं, फिर DAP का दाना दाना जैसे हम देखेंगे दानेदार होता है वो बहुत सामान दाना नहीं होता है, लेकिन दानेदार टाइप का होता है और वो डीएपी में मिलाकर उसको डीएपी का मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है। तीसरा हमारा है सबसे सस्ता फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जिसको अप्लाई किया जाता है किसान द्वारा, वो है एसएसपी। एसएसपी का पूरा क्या नाम है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिसमें 16% हमको फॉस्फोरस होते हैं और इसमें जो मिलावटी पदार्थ है क्ले मिट्टी जिसको बोले चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का बस वही है प्रोसेस जो डीएपी मिलाने का तरीका है, उसको सुखाएंगे बहुत महीन पाउडर बनाएंगे उसमें मिलावट करके इसका अपना एसएसपी का आकार दे देंगे जी। और दूसरा इसमें मिलावट किया जाता है, आप देखेंगे जिप्सम, जिप्सम भी क्या है, ये है हमारा, ये भी है मिनरल्स है जो हमारा लोकली पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में अवेलेबल होता है। इस जिप्सम का भी प्रयोग मिलावट करने में किया जा रहा है और एमओपी बचता है जिसको इम्यूरेट पोटास कहते हैं। जो भी किसान भाई अप्लाई करते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो पोटास मेरा दिखता कैसा है, पोटास हमको आपको वैसे ही लाल रंग का दिखता है जैसे हमको आप हमारे ईट ईटे होते हैं जो
9: चूरा,
10: उस चूरा देखते हैं कैसे लाल लाल टाइप का मिलता है, उस चूरे का भी इसमें मिलावट किया जाता है। ये मिलावटी पदार्थ है पोटास में। और जो साधारण नमक है उसमें लाल रंग का कुछ मिलावट करके, नहीं तो साधारण नमक में वही ईटे का क्या बोलते हैं उसको पीस देंगे बारीक बारीक टाइप हो, उसमें साधारण नमक मिलाकर और उसको पोटास में मिला देते हैं। और बहुत सारे हमारे उर्वरक हैं जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा हमको अगर मेजर इम्पैसिस की बोले बात की जा रही है तो हमारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो हमारे बिहार की मिट्टी में ही नहीं पूरे भारत की मिट्टी में पूरे विश्व की मिट्टी में इसकी कमी आ जा रही है। वो हमारा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक है, इसलिए जिंक जो फर्टिलाइजर है, जिंक का जो फर्टिलाइजर का सोर्स है, उर्वरक का सोर्स है, स्रोत है, उसका प्रयोग करने के लिए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट द्वारा बहुत ज़्यादा ही रिकमेंड किया जा रहा है। और वो जिंक का जो हमारा उर्वरक स्रोत है वो है जिंक सल्फेट, इसमें मिलावट आपको की जाती है मैग्नीशियम सल्फेट की। मैग्नीशियम सल्फेट यूजुअली आपका जो हमारा द्वितीय पोषक तत्व होता है, मुख्य पोषक तत्व उसका कैटेगरी का है, बट मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है ना बिल्कुल जिंक सल्फेट की तरह ही दिखता है और जिंक सल्फेट के कंपैरिजन में जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो सस्ता है, इसलिए इसमें इसका मिलावट किया जा रहा है
9: जी। तो ये रही बात कि क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं, तो आपने देखा किसान भाइयों की जो चीज़ें आपके आसपास कूड़े में पड़ी है या ज़मीन में पड़ी हुई है उसे मिलाकर आपको महंगे दामों पर बेच दिया जाता है और जो बाज़ार में उर्वरकों की एक कमी एक पीरियड में आती है, एक समय में बाज़ार में कमी आ जाती है तो उसका एक फ़ायदा उठाते हैं कुछ जो बिचौलिए हैं या ऐसे जो बाज़ार में जो दलाल हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं और आपको नकली उर्वरक के तौर पर बेच देते हैं। तो मैडम अब बात है कि इसको हम टेस्ट कैसे करें।
10: टेस्ट करने का पहला आपको घरेलू विधि बताऊंगी, फिर इसके बाद जो हमारा लैब टेक्निक्स जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसमें आऊंगी। लेबोरेटरी मेथड में तो यूजुअली आप अपने घर पे इसका नहीं कर पाएंगे, आपको उसको प्रयोगशाला में देने पड़ेंगे जहां परख नली का और हमारे जो केमिकल्स रिएजेंट है उसका प्रयोग करके उसका उसका जांच करते हैं। तो घरेलू विधि बहुत आसान विधि है। आप जैसे यूरिया देखेंगे, यूरिया आपको दिखता कैसा है, बहुत सफ़ेद टाइप का दिखेगा, चमकदार दिखता है ये इसका देखने में और इसका जो दाने होते हैं समान आकार के होते हैं, तो इसका प्रयोग करना बहुत सिंपल विधि है। आप यूरिया का कभी हाथ में लेकर देखिएगा तो कभी आपको जब दाने प्रयोग करेंगे तो गर्म हल्का फील होगा। कभी आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, उस शीशे का गिलास आप लेंगे, उस शीशे गिलास में क्या करेंगे पानी ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, एक चम्मच यूरिया जो हमारा है उसको लेना है और आप उसमें यूरिया एक चम्मच यूरिया डालने से पहले उस पानी का जो गिलास में शीशे गिलास में ये गिलास पानी नहीं उसका आप तापमान देखिएगा क्या रहेगा, चेक मत कीजिए, जस्ट आप बोलते हैं ना फील्ड मेथड जिसको बोलते हैं, हम आप अपने हाथ से छू रहे हैं उससे प्रयोग से हम समझ जाते हैं कि हाँ इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या होगा। अब उसमें आपको क्या करना है, एक चम्मच जो हमारा यूरिया है उसमें मिला देना है, यूरिया बहुत अच्छे से घुल जाएगा। यूरिया एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा ये पानी में घुलनशील पदार्थ है, बहुत घुलनशील उर्वरक है और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। अगर नहीं घुल रहा है अच्छे से तो यहाँ पर भी एक चेक मेथड हो गया हमारा, उसमें कुछ मिलावट है। दूसरा इसका उपाय जानने का, जब उसको आप अच्छे से घुल रहे हैं, बहुत अच्छे से घुल गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, पानी जैसा पहले उसका रंग था वैसे ही रंग हो गया, और देखेंगे पहले जो पानी का तापमान था और अब यूरिया घुलाने के बाद तापमान में दोनों में अंतर आएगा। जब यूरिया पूरे अच्छे से घुल जाएगा पानी में तो देखेंगे तापमान जो पहले था उससे तापमान से थोड़ा उसमें गिरावट आएगी, मीन्स थोड़ा ठंडा आपको महसूस होगा। तो इसका मतलब उस यूरिया में कोई मिलावट नहीं है, वो हमारा जो यूरिया उर्वरक है वो शुद्ध है। एक विधि हुआ इसका घर में जानने का, और जो हमारा लेबोरेटरी मेथड है उसको मैं आगे आपको चर्चा करूंगी कैसे इसके करते हैं। ये यूरिया
9: वगैरह का जो है
10: डीएपी का भी बता रही हूँ, डीएपी एसएसपी आप जो दोनों देखेंगे ना आपको गहरे भूरे रंग का या काले रंग का दिखता है, बस दोनों में यही अंतर है। डीएपी और एसएसपी जो हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का सोर्स है, डीएपी का आपको करना क्या है, आपको दो विधि बताती हूँ डीएपी का आपको जान करने का। बहुत सारे हमारे जो हमारा एक किसान हमारे हैं जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, तो स्पेशली अगर हम बिहार के परिवेश में बात करें सर, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग खैनी खाते हैं। खैनी बनाने का विधि आपको पता होगा कैसे खाते हैं, अपने पंजे पे अपने जो अंगूठे को उसको ऐसे ऐसे कर रगड़ते हैं। तो आपको क्या करना हुआ, जो हमारा डीएपी है, डीएपी का दाना होता है, उसको को बारीक पीस लेना है। उस बारीक पीसे हुए, थोड़ा सा बारीक पीसे हुए को आपको अपने हथेली पे रख लेना है, फिर उसमें थोड़ा सा चूना मिलाना है, और आपको जैसे खैनी को मैसते हो ना आप, खैनी और चूना को ऐसे करके मैसना है। जब आप कुछ देर उसको ऐसे करके मलोगे तो आपको देखेगा अमोनिया का जैसे होता है गंध आता है, उससे कुछ गंध निकलेगा और वो गंध अमोनिया का होता है। अगर ऐसा गंध आ रहा है तो आप समझ जाएं आपको आपका डीएपी में मिलावट नहीं है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन का भी नेत्रजन का भी स्रोत है, तो उसका इवोल्यूशन होता है। ये पहला विधि होगा। दूसरा विधि क्या करना आता है आपको करना है, एक चम्मच आपको डीएपी ले लेना है, चम्मच में डीएपी ले लेना थोड़ा मात्रा में। आप जो मोमबत्ती है उसको जला लीजिए, और फिर क्या करना है, उस जो चम्मच में आपने डीएपी रखा है उसके लौह के ऊपर रख देना है, मोमबत्ती में जो हमारा जल रहा है उसके लौह के ऊपर रख देना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और गर्म होगा, चम्मच हमारा गर्म होगा और चम्मच में हमारा क्या रखा है, डीएपी रखा है, तो आप देखेंगे जो हमारा डीएपी का जो दाना है वो जैसे साबुदाने को कैसे आप पानी डालते तो फूल जाता है, वैसे ही क्या फूल जाएगा ये, और फिर घुलते फूलते फूलते क्या होगा, वो पूरा घुल जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। तो ये एक दूसरा मेथड हो गया चेक मेथड, अगर पूरा अच्छे से घुल गया और साबुदाना जैसा फूल जाता है पानी में वैसे ही भी फूल जाएगा, फूल गया इसमें इसमें मिलावट नहीं है, ये डीएपी का हो गया।
9: डीएपी के बारे में
10: एसएसपी में बस आपको यही अंतर आएगा, जो हमारा सिंगल सुपर फॉस्फेट है, इसके दाने को जो चम्मच में रख के मोमबत्ती पे या कहीं पर भी या आप तवा पे भी कर सकते हैं गर्म, इसका जो दाना है उसमें ये फूलता नहीं है, और डीएपी का दाना फूल जाता है, और एसएसपी का दाना फूलता नहीं है, ये दोनों बस अंतर आता है। अगर इसका दाना फूल गया मिस मिलावट नहीं है, और इसका दाना एसएसपी का दाना नहीं फूलता है। तो ये हमारा चेक विधि घर का है,
9: घर घरेलू विधि है, जिसमें कि मैडम
10: सर मैं एमओपी के बारे में बताना चाहूंगी।
9: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसमें थोड़ा एक करेक्शन ये कर दूं अपने साथियों को कि मैडम ने तंबाकू की तरह आपको मल के बताया, लेकिन हालांकि हम लोग तंबाकू को किस तरह से प्रमोट नहीं करते, साथ ही सलाह भी देते हैं कि कोई लोग इसका सेवन न करे, लेकिन वो एक उन्होंने तरीका बताया है कि जिस तरीके से ये गांव में अक्सर लोग ऐसा किया करते हैं उस विधि से आप अपना सकते हैं।
10: जी, जी। और तीसरा हमारा महत्वपूर्ण जो उर्वरक है जिसका प्रयोग करते हैं आप, वो है एमओपी, पोटास।

0: अगर ये पोटाशुद्ध है तो उसका जो पदार्थ उसमें जो कण है वो क्या कर जाएगा आपका, आपका जो पानी का सतह है ग्लास में पानी का जो सतह है उसमें नीचे बैठ जाएगा, और जितने पदार्थ उसमें थोड़े थोड़े ऊपर आ जा रहे थे, समझिए वो जो पदार्थ ऊपर आ गए वो उसमें मिलावट किए गए हैं, और जो पदार्थ नीचे बैठे वो मिलावटी नहीं थे। अगर ऊपर में बहुत सारे कण ऊपर में आ जा रहे थे, समझ जाइए उसमें मिलावट किए गए हैं, हमारे जो हमारे ब्रिक ईटा ईटा का जो बुरादा होता है उसका मिलावट है साधारण नमक में मिलाकर, और पूरे कण बैठ गए तो समझिए उसमें मिलावट नहीं है, बहुत ज़्यादा पानी के साथ प्यार है तो वो मिलावट किए गए हैं। ये हमारे घरेलू उपाय हो गया, इसको पचाने का तरीका हो गया।
1: तो ये इन विधियों से घरेलू तरीके से आप इसका आप पहचान कर सकते हैं, कुछ और घरेलू विधि अन्य उर्वरकों के लिए है या फिर हम लैब की तरफ चले?
0: अब लैब की तरफ चलते हैं।
1: तो अब हम यूरिया जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है किसान भाइयों के लिए, वो लैब में किस तरीके से इसको भेजेंगे, क्या वहाँ प्रमाण पत्र मिलेगा और उसके बाद आपका क्या कदम होगा?
0: जी, जैसे उर्वरक का भी, जैसे आप हमारा मृदा विज्ञान का जाँच हो रहा है, मृदा का जाँच होता है जिसको हम सॉइल टेस्टिंग लैब बोलते हैं, मृदा जाँच प्रयोगशाला जो है, उसी मिट्टी प्रयोगशाला में आपके जो उर्वरक है उसकी भी टेस्ट की जाती है, और उसका टेस्ट कराना भी बहुत अनिवार्य माना जा रहा है कि आप कौन से कंपनी का, कौन से फैक्ट्री में बना है वो उर्वरक, कहाँ से आपने खरीदा है। आप तो अप्लाई, आपने को जितना निवेश करना था आपने निवेश कर दिया, बट आपको जाँच के बारे में नहीं पता है। तो अगर नहीं आपने एक बार अप्लाई किया उर्वरक, आपकी उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं आई है, और आपका जो मृदा है, मृदा में उतने हमारे पोषक तत्व नहीं उत्पन्न है, तभी तो हम डालते हैं ना उर्वरक, तो आप इसको जरूर से जरूर, इसका हम आपको नम्र निवेदन करेंगे, बिल्कुल आप अपने उर्वरक, जो भी उर्वरक कर रहे हैं, एटलीस्ट पूरे साल में एक बार तो जरूर अपने जो उर्वरक का प्रयोग करते हैं, स्पेशली ये तीन उर्वरक जो हमारे हैं, यूरिया, DAP, SSP और MOP, ये तीनों का जाँच अपने प्रयोगशाला में जाँच जरूर कराएं। और इसमें जांच प्रयोगशाला करने का विधि मैं बता देती हूँ, हम क्या क्या इसमें केमिकल रिएजेंट यूज करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, बस वो रिएजेंट हमारे लैब में प्रयोग में प्रयोगशाला में रहते हैं, जिससे हमारे जो हमारे जो भी हमारे टेक्नीशियन होते हैं या साइंटिस्ट लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग, उसका जाँच करते हैं। तो यूरिया जाँच करने का विधि क्या है प्रयोगशाला में, आपको क्या करना है, इसमें हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं जिसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उस परख नली में क्या करते हैं, 1 ग्राम जो यूरिया है वो लेते हैं, और उसमें 5 ml क्या करते हैं हम, जो आसुत जल जिसको हम डिस्टिल वाटर बोलते हैं वो डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं उसमें हम उसको अच्छे से घोल लेते हैं पानी में यूरिया को, और 5 से 6 बूंद हम ड्रॉप वाइज, सिल्वर नाइट्रेट नामक एक रिएजेंट होता है जो कि बहुत महंगा आता है, इसका अगर हम देखेंगे एक 10 ml का जो डब्बा 7 से 8 हज़ार का कॉस्ट आता है इसका, क्योंकि सिल्वर है तो आप समझ सकते हैं कि महंगा ही होगा ये हमारा रिएजेंट। 5 से 6 बूंद सिल्वर नाइट्रेट का घोल बना लेते हैं हम, सिल्वर नाइट्रेट का घोल बना लेंगे थोड़ा सा, और 5 से 6 बूंद हम अपने उसमें डाल देते हैं, अगर वो दही जैसा सफ़ेद बनता है, बिल्कुल दही जैसा सफ़ेद पारदर्शी टाइप बन जाता है, दही जैसा हम जमाते हैं ना, और दही जैसे कैसे उसका दिखता है, सफ़ेद दिखने लगता है उसका जो अवशेष बोलते हैं, अगर ऐसा बनता है तो समझिए उस पदार्थ में मिलावटी है, उसे बनना अगर दिखता है तो, अगर नहीं रहा है पूरा अच्छे से घुल गया तो समझ जाइए कोई अवशेष नहीं मिला, तो यूरिया हमारा जो है शुद्ध है, ये हमारा
1: जी, यूरिया का
0: हो गया। DAP का हम बताते हैं, DAP में जांच कैसे करते हैं, DAP का मैंने आपको पहले ही बताया, DAP 2 का स्रोत है, नेत्रजन का भी स्रोत है और हमारा फॉस्फेट का भी स्रोत है, तो नेत्रजन को जांच करना है प्रयोग में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो DAP में नेत्रजन है उसको जांच करने के लिए क्या करना है, DAP को पाउडर लेना है, DAP मतलब जो हमारा उसके जो दाने होते हैं उसको पीस लेना है, उसको 1 ग्राम लेना है और उसको परख नली में डाल देना है, फिर क्या करना है उसमें 5 ml हमको डिस्टिल वाटर है वो डाल देंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे, अब फिर उसमें 1 ml हम नाइट्रिक एसिड मिलते हैं जिसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं वो मिलाते हैं, फिर अच्छे से हिलाते हैं, अगर वो घुल जाए और हमको दिखे बिल्कुल पारदर्शी जैसा दिखने लगे या अर्ध पारदर्शी दिखना लगे तो समझ जाइए DAP शुद्ध है, DAP में कोई मिलावट नहीं है हमारा। अब इसमें यही नेत्रजन का चेक करने का विधि हुआ प्रयोगशाला में, और इसमें फॉस्फेट भी प्रेजेंट रहता है, तो फॉस्फेट का चेक कैसे करेंगे, फॉस्फेट चेक करने का भी बस है जो हमारा इसमें रिएजेंट यूज करते हैं वो बदल जाता है, बाकी विधि सेम ही है। इसमें क्या करते हैं, वही हम करते हैं, जो हमारा पीसा हुआ DAP है उसको परख नली में ले लेते हैं, और उसमें 5 ml आप क्या कर देते हैं हम, जो हमारा डिस्टिल वाटर वो डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं अच्छे से घोल लेते हैं, घोल लेने के बाद एक फिल्टर पेपर होता है हमारे लैब में प्रयोग किया जाता है बहुत, उससे उसको छान लेते हैं, छानने के बाद क्या कर देते हैं, जो हमारा छानने के बाद जो हमारा मिलता है फिल्ट्रेट मिलता है, उस फिल्ट्रेट में 1 ml हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल मिला देते हैं, फिर उससे सिल्वर नाइट्रेट के जैसे हम घोल मिलाएंगे तो उसमें आपको जो अवक्षेप मिलता है वो पीले रंग का हमको मिलता है, पीले बन का रंग का बनना शुरू हो जाता है, जैसे ही पीले रंग का अवक्षेप बनना हमको शुरू हो जाता है तो उसमें 5 से 6 बिंद हम नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं, और नाइट्रिक एसिड अच्छे

0: घुल जाता है, बहुत अच्छे से घुल गया, अच्छा दिखा हमको कलर, बिल्कुल कोई उसमें अक्षेप नीचे बने सतह पे नहीं दिखा, तो समझ गाना है उसमें फॉस्फेट उपस्थित है और उस डीएपी में कोई मिलावट फॉस्फेटिक अदर फॉस्फेटिक पदार्थ का मिलावट नहीं किया गया है।
1: अब अगला हमारा है
0: एमओपी का।
1: एमओपी
0: की जांच करने के लिए भी क्या करना है हमको, आपको एक चम्मच हमको जो एमओपी उर्वरक है उसको ले लेना है और उसमें 10 ml डिस्टिल वाटर को वो मिला लेना, अच्छे से उसमें घोल कर लेना उसको। फिर क्या करना है उसमें हमको 2 ml घोल उस जो हम पानी में पोटास को घोले हैं अपने 5 ml या 10 ml डिस्टिल वाटर में, फिर वहाँ से क्या करना है हमको 2 ml वहाँ से निकाल लेना है पानी और पोटास के घोल से 2 ml। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं, फिर उसमें 2 ml हम क्या डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं और 1 ml हम क्या डालते हैं बेरियम क्लोराइड डालते हैं। अगर ये दोनों, फिर उसके बाद दोनों जो हमारा रिएजेंट है हमारा केमिकल रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड डालने के बाद अच्छे से मिला लेते हैं। अगर घुलते घुलते ये अगर हमारा जो घोल मिल जाता है और बहुत स्वच्छ बिल्कुल पारदर्शी मिलता है तो समझ जाना है कि हमारा जो पोटास है वो उर्वरक शुद्ध है। अगर हमको सफ़ेद अक्षेप नहीं मिलता है तो अगर सफ़ेद अक्षेप मतलब अक्षेप का मतलब कुछ कुछ पारदर्शिता टाइप नहीं दिखे सफ़ेद टाइप का दिखने लगे तो मीन समझ जाना है इसे उसमें मिलावट की गई है। ये हमारा प्रयोगशाला की विधि है इसको जांच करने
1: का। ये प्रयोगशाला की विधि साथियों आपको इसलिए बताई गई ताकि आप उससे कम से कम अवगत रहें और हम चलते चलते ये भी जानना चाहेंगे कि क्या प्रयोगशाला से हमें सर्टिफिकेट भी कोई निर्गत होगा जिसमें कि वो असली या नकली की जो वहाँ पर बात है वो प्रमाणित हो पाए।
0: जी जी बिल्कुल, जो भी हमारा हमारा जो प्रयोगशाला है हमारा लेबोरेटरी टेस्ट जहाँ की जाती है स्पेशली मृदा विज्ञान विभाग इसको कंडक्ट कराता है। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे हमारा आज के डेट में बहुत ज़्यादा भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार द्वारा बहुत ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें हम बोलते हैं ना जो हमारा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमारा है पोषक तत्व का प्रबंधन कैसे करें, पोषक तत्व प्रबंधन में ये पोषक प्रबंध तत्व प्रबंधन के ही मतलब उसका ही भाग है कि हम उर्वरक का टेस्ट कैसे करें उर्वरक का जाँच कैसे करें। और ये जब ये बहुत सारी जो हम इस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की कराई जा रही है हर यूनिवर्सिटी करा रही है इंस्टीट्यूट जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं और जहाँ पर ये प्रयोगशाला की जाती है। तो जैसे आपको मृदा कार्ड मिलता है सॉइल हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं हमारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपको मिलता है मिट्टी का जो जांच कराते हैं वैसे ही आपको ये प्रमाणित करके दिया जाता है प्रयोगशाला द्वारा कि आप जो जो उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं उस उर्वरक में अगर कुछ मिलावट है तो वो भी लिख कर दिया जाता है इसकी मिलावट की गई है, नहीं मिलावट है तो बताया जाता है 100% ये जो आपका उर्वरक है जिस कंपनी से या जिस कंपनी का परचेज किए जहाँ से भी परचेज किए हैं जो आपका फर्टिलाइजर डीलर है जहाँ से भी परचेज कर रहा है ये शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है उसका भी आपको ये दिया जाता है एश्योरेंस दिया जाता है चाहे उस पर लिख जाएगा मिलावट है तो कितने परसेंट की मिलावट है शुद्ध है 100% शुद्ध है कि नहीं है।
1: जी तो ये बात आपको अच्छी तरीके से बता दी गई साथियों कि नकली और मिलावटी उर्वरकों की पहचान आप आसानी से कैसे कर सकते हैं। साथियों आप हम बखूबी समझते हैं कि कृषि में सबसे ज़्यादा जो लागत है उर्वरकों में ही होती है और लगभग 25% तक की जो लागत मूल्य है वो उर्वरक के तौर पर आप करते हैं। ऐसे में अगर नकली उर्वरक आपको मिले तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान आपका है और पूरे कृषि जगत का है, इसलिए हमने ये भाग आपके लिए लेकर आए। और साथियों जो कि संतुलित उर्वरक का प्रयोग है उसको भी हमने कई भागों में आपके लिए हम लेकर आए हैं ताकि हमारा एक सीरीज भी चलता है जिसमें कि आपको संतुलित उर्वरक के ऊपर आपको पूरी ब्यौरा दी जाती है कि किस तरीके से आपको संतुलित उर्वरक प्रयोग करना है साथ ही अल्टरनेट क्या यूज़ करना है। आपको जैविक विधि से भी बताई जाती है कि रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता को कम करने के लिए किस तरीके से जैविक या फिर आप बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर हमारे किसान भाइयों बहनों को जानकारी देने के लिए। हम कृषक मंच कार्यक्रम में कुछ और भी कार्यक्रम लेकर इसी तरह से आते रहेंगे। नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तोड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्री फाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: लेडीज फर्स्ट। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका स्वागत है लेडीज फर्स्ट कार्यक्रम में। दोस्तों समय बदल रहा है और बदलते समय के साथ महिलाओं ने अपनी जंजीरें तोड़ दी है और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आज भी महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि खुद की वजह से, खुद की मानसिकता की वजह से या अपने घर वालों की मानसिकता की वजह से घर तक सिमटी हुई हैं। वो बाहर नहीं जा पाती, बाहर के काम नहीं कर पाती और खुद के लिए पैसे नहीं कमा पाती। और वो महिलाएं जिन्हें उनके घर वालों ने इस बात की आज़ादी दी है कि वो खुद के लिए पैसे कमा सकती हैं, उसे बहुत बड़ा एक आज भी सौभाग्य माना जाता है, बहुत बड़ी आज़ादी मानी जाती है। सोचिए जो पुरुषों के लिए बहुत ही आम है कि पुरुष खुद के लिए कमा सकते हैं, पुरुष परिवार के लिए कमा सकते हैं, महिलाएं क्यों नहीं कमा सकती है? महिलाओं को भी वही आज़ादी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं घर तक ही सिमटी रहती हैं, घर तक ही वो सीमित रहती हैं, तो फिर बहुत सारे उसके नुकसान भी होते हैं और इसके नुकसान अब तक की जितनी पीढ़ियाँ थी उन देखती आई हैं। और इसीलिए आजकल आप सुनेंगे कि खुद माता पिता भी चाहते हैं कि उनकी बेटियां आत्मनिर्भर हो, ताकि अगर कोई ऐसा वक्त आए जब उसे अपने आत्मसम्मान को चुनना हो तो वो कमजोर ना पड़े सिर्फ ये सोचकर कि आगे मेरा गुजारा कैसे हो। आजकल बहुत सारे माता पिता इस बात को समझने लगे, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं और ससुराल वाले हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि उनकी घर की बहुएं बाहर जाकर काम करें या फिर उनकी घर की बेटियां बाहर जाकर काम करें। ये उनके आन के खिलाफ लगता है और ये बहुत गलत है। आपकी बेटी अगर कमा रही है, आपकी बहू अगर कमा रही है, तो ये आपके आन के खिलाफ नहीं होता है, बल्कि ये आपके हक में होता है कि आपके घर का हर सदस्य आत्मनिर्भर है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। जी हाँ, जब एक महिला कमाती है तो वो न केवल आत्मनिर्भर होती है बल्कि उसके अंदर आत्मविश्वास भी होता है। और अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, यानी कि आप आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपको आत्मविश्वासी ही होना पड़ेगा। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं तो फिर आपको खुद पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा भी होने लगता है धीरे धीरे। और जब आप खुद पर भरोसा करने लगती हैं, आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, तो फिर आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा खुद करती हैं। फिर आपको कभी भी किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है और आप अपने लिए सही और गलत का चुनाव खुद कर सकती हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ना भी जानती हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं वो खुद के लिए डिसीजन भी ले सकते हैं। हालांकि जो भी हम डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के बड़े फैसले लेते हैं, उसमें अपने घर वालों से बातचीत करनी चाहिए, उन्हें भी शामिल करना चाहिए। लेकिन आज भी बहुत सारे घरों में ये होता है कि जब घर के बड़े फैसले लिए जाते हैं, जिसमें आर्थिक रूप से जुड़े हुए फैसले हो या कोई प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई बातें हो, तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें उस काबिल नहीं समझा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कमा नहीं पाती हैं। जब एक महिला कमाती है तो वो सिर्फ ना अपने लिए बल्कि अपने घर वालों के लिए भी डिसीजन लेने में सक्षम हो जाती है और उसे किसी भी तरह का डर या दबाव महसूस नहीं होता है। वो किसी पर निर्भर नहीं होती है और ये उसकी नई पहचान बन जाती है। महिलाओं का कमाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं वो बहुत तरह के अत्याचार और घरेलू हिंसा सहती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि उनके पास कोई आर्थिक मदद नहीं है और ऐसे में उनमें आत्मविश्वास की कमी तो आती ही है, जिसकी वजह से उन्हें मानसिक और भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ता है। लेकिन जो महिलाएँ आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं वो खुद को सुरक्षित रखती है बल्कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके बेहतर जीवन जीने के लिए भी स्वतंत्र होती है। और जो महिलाएं कमा रही होती हैं, अगर उन पर घरेलू हिंसा होती है, तो वो जानती हैं कि वो अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। उन्हें अपने गुजारे के लिए घरेलू हिंसा को सहने की जरूरत नहीं होती है। आप थोड़ा पीछे जाएंगे और पिछले जनरेशन की महिलाओं को देखेंगे तो वो सिर्फ एक शादी में, एक घरेलू हिंसा वाली शादी में इसलिए बंधी रह गई थी क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं थी और उनमें आत्मविश्वास नहीं था। यही से शुरू होती है जेंडर इक्वालिटी की बात। जब समय बदलता है, जब महिलाएं आत्मविश्वासी होती है, जब महिलाएं खुद के लिए खड़ी होती हैं और पुरुषों के बराबर खड़ी होती हैं, तो यहीं से जेंडर इक्वलिटी की बात शुरू हो जाती है। और अपने समाज में एक और परेशानी है जिसे विडंबना है कि हम परेशानी मानते नहीं हैं और हमने अपना लिया है, और अगर कुछ लोग उसे परेशानी मानते भी हैं तो उसे पता नहीं क्यों असामाजिक घोषित कर दिया जाता है। वो परेशानी है दहेज की परेशानी। लोग कहते हैं कि दहेज सदियों से चलता आ रहा है। पता है आपको, दहेज को बंद करने के लिए, दहेज को रोकने के लिए सबसे ज़रूरी है लड़कियों का कमाना। जब वो पुरुष के बराबरी का कमाएंगी तो फिर किस बेसिस पे, किस आधार पे कोई पुरुष महिला से शादी करने के लिए दहेज की डिमांड करेगा। लैंगिक समानता अगर चाहिए तो महिलाओं को आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा, और जब आप आत्मनिर्भर होती हैं, आप अपने लिए फैसले लेती हैं, तो फिर आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनती हैं। आपके आसपास की महिलाएं, आपकी बेटी आपसे प्रेरित होंगी और जानेंगी कि अगर वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी तो मानसिक भावनात्मक रूप से भी वो सशक्त होंगी। और COVID-19 का जो समय था उसने हमें सिखा दिया है कि अगर कोई एक इंसान कमा रहा है और पूरा घर उस पर निर्भर है तो कभी भी ऐसी नौबत आ सकती है कि उस इंसान की नौकरी जा सकती है, और एक इंसान की नौकरी काफ़ी नहीं होती है। कोविड ने ये हमें बहुत ही अच्छे से सिखाया है। इसलिए घर के कठिन हालात में घर के लोगों के मदद के लिए ज़रूरी होता है कि महिलाएँ भी कमाएँ। पुरुष पर इससे दबाव भी कम पड़ता है और महिलाएँ समान रूप से घर को चला पाने में कामयाब होती हैं, तो उन्हें बराबरी का भी माना जाता है। इससे परिवार को तो मजबूती मिलती ही है बल्कि एक बेहतर समाज भी बनता है। जब एक महिला पढ़ी लिखी होती है, वो आत्मविश्वासी होती है और स्वतंत्र होती है, तो अपनी बेटियों को भी वो उसी तरीके से बनाती है और अपने बेटों को भी अच्छी शिक्षा देती है। और जब एक लड़का देखता है कि माँ कामकाजी है, तो फिर आगे आने वाले समय में वो अपनी पत्नी से ये नहीं कहेगा कि नौकरी तो है मेरे पास, तुम नौकरी करके क्या करोगी। और शायद आप अगर एक कामकाजी माँ हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे प्रेरित होगी। दोस्तों, जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती हैं, तब तक वो पूरी सशक्त नहीं हो सकती हैं। अच्छा, बचपन में आपने देखा होगा कि मम्मी पैसे जमा किया करती थी, और मम्मी जो पैसे जमा करती थी वो अपनी इच्छा को मारकर जमा करती थी, अपनी ख्वाहिशों को मारकर पैसे जमा करती थी। लेकिन जो कामकाजी महिलाएं होती है, कमाने वाली महिलाएं होती है, उन्हें अपनी इच्छाओं को बार बार मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब एक आप परिवार में होते हैं तो कई बार ऐसी नौबत आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि अपनी कुछ इच्छाओं को दबाना पड़ता है, लेकिन इस वजह से कि आप नहीं कमा रही हैं और आपको अपने पति से पैसे मांगने होंगे, फिर उन्हें जवाब देना होगा कि पैसों का क्या करोगी तुम, तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। और जो महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होती हैं, उनके पास अगर कुछ पैसे होते भी हैं तो उसे किस तरीके से कहाँ लगाना है, कहाँ है, ये पुरुष ही उस चीज़ को देखते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके बैंक में अकाउंट है, लेकिन बैंक में अकाउंट होना और उसे कौन हैंडल कर रहा है, उसे कौन देख रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जो महिलाएं कमा नहीं रही होती हैं और उनके पति का जो पैसा होता है वो भले ही अपनी पत्नी के अकाउंट में डाले, लेकिन उसकी देख रेख, उस पैसे की देख रेख और सारी चीज़ें उसका पति ही करता है। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज भी महिलाओं के घर के काम को उस लायक नहीं समझा जाता है कि उसे बदले में पैसे मिलने चाहिए। सोचिए, आप वही काम किसी और से करवाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे। और इसके साथ ही ये भी ज़रूरी होता है कि महिला अपने लिए डिसीजन ले। अगर उसे नौकरी करना है तो उसे कोई ये कहने वाला नहीं होना चाहिए कि तुम नौकरी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम एक महिला हो। और इसके अलावा अगर महिला चाहती है कि वो नौकरी ना करे, वो हाउसवाइफ बने, तो भी उसके पास ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमारी अब तक की जितनी बातें हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती हैं, जो पैसे नहीं कमा रही हैं, उन्हें सम्मान नहीं मिलना चाहिए। सम्मान उन्हें भी मिलना चाहिए क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कामकाजी महिलाओं से कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास होती है। 2400 घंटे सातों दिन उन्हें तत्पर रहना पड़ता है। और ये बात सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए भी ये होनी चाहिए। जब हम लैंगिक समानता की बात करते हैं तो पुरुषों को भी ये आज़ादी होनी चाहिए कि वो नौकरी करना चाहते हैं या नौकरी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारी जगहों पर आज ऐसी चीज़ें देखी जाती है जहां महिलाएं कमा रही हैं और पुरुष हाउस हस्बैंड हैं, और ये किसी शर्म की बात नहीं होती है, बल्कि ये बहुत ही गर्व की बात होती है कि अब हम उन सारी धारणाओं को पीछे छोड़ चुके हैं कि कमाने का काम पुरुषों का है, घर संभालने का काम स्त्रियों का है। जब हम इस चीज को अपना लेंगे कि हाउस हस्बैंड जैसी बातें भी हो सकती है, तो वहीं पर हम ये समझ चुके होंगे कि महिलाओं को भी आर्थिक समानता का अधिकार है, महिलाओं को भी कमाने का उतना ही अधिकार है जितना पुरुषों को, और पुरुषों को भी किचन में जाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की महिलाओं को। लैंगिक समानता के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है कि महिलाओं को आर्थिक निर्भर बनाना और उन्हें ये आज़ादी देना कि वो नौकरी करना चाहती हैं या नौकरी नहीं करना चाहती है। तो चलिए आज इन्हीं कुछ बातों के साथ अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। और जाने से पहले खास बात कि अपना रखें एकदम खास वाला ख्याल और खुद से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू देख कितने दोस्त हैं।
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि, आप सभी का स्वागत है उन्नत कृषि में। और आज मैं हूँ आप सभी के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ, और वो विषय है बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उससे बचाव। तो मुझे पता है कि हमारे जो पशुपालक भाई हैं और किसान भाई हैं, उन्हें इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर रोगों का पहचान हो, उपचार हो, तो हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे और आर्थिक स्तर पर भी आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो यहाँ पर इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जो पशु हैं उनमें बहुत सारे बारिश के मौसम में, खासकर बारिश के मौसम में हम बात कर रहे हैं, तो कई बीमारियां आती हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, लेकिन पशु या फिर यूँ कहें कि स्वच्छता का खास ख्याल नहीं रख सकते हैं। इस समय ज़रूरत होता है पशुपालक भाइयों का कि वो स्वच्छता का खास ख्याल रखें और उनमें, यानी कि उनके जो पशु हैं उनमें रोगों का पहचान हो, उन्हें वो रोग पहचान सके और उनके उपचार को जान सके। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में पशुओं में कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं।
9: जैसा कि आप, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में बारिश होने से हमारे किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी रहती है, चारों ओर हरियाली नज़र आती है, लेकिन बारिश का मौसम पशुओं के लिए खासकर उतना अच्छा नहीं होता है। क्योंकि इस ऋतु में एक तो जहां बारिश से चारों ओर जल जमाव रहता है,
7: संक्रमण होने
9: की संभावना रहती है, और अभी जो बात देखा जा रहा है कि बारिश के मौसम में तापक्रम में भी काफ़ी अधिकता है, तो तापमान में अधिकता, नमी और तापक्रम, ये दोनों, नमी में भी अधिकता होती है और तापक्रम भी काफ़ी होता है, जिसके चलते पशुओं में स्ट्रेस हो जाता है। और इस मौसम में वैसे भी पहले से, पुराने समय से भी ये देखा जा रहा है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो बैक्टीरियल, जो जीवाणुओं के द्वारा फैलती हैं, उन बीमारियों का संक्रमण इस मौसम में प्रायः होता है, जिसमें प्रमुख हैं, हम लोग उसको HS हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसे हिंदी में गलघोंटू या अखड़िया रोग के नाम से जानते हैं। दूसरी बीमारी है लंगड़ी, इसके ब्लैक क्वार्टर, जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में पशुओं में लंगड़ापन नज़र आता है, और ख़ास करके कम उम्र के पशुओं में, 2-3 साल से कम उम्र के पशुओं में लंगड़ापन आता है, और अगर प्रारंभिक अवस्था में इसकी चिकित्सा नहीं की गई तो प्रायः पशुओं के बछड़ों में, पशुओं में मृत्यु हो जाती है।
7: तो सर, आपने जिन रोगों के नाम बताए, लंगड़ी और गलघोटू, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रायः ये बीमारियां किन पशुओं में देखा गया है?
9: ये मुख्य रूप से गाय वंश के पशुओं में और भैंस वंश के पशुओं में ज्यादा होती हैं, और खास करके नए पशुओं में, अर्थात जिनकी जो पशु तंदुरुस्त रहते हैं और बछड़ों में, 3 साल से कम उम्र तक के पशुओं में इन दोनों रोग की संभावना काफी अधिक रहती है, और खास करके वैसे पशु जो ज्यादा तंदुरुस्त रहते हैं उन बछड़ों में और गाय भैंसों में ये इस रोग के होने की संभावना उतनी ही प्रबल रहती है।
7: यानी कि कम उम्र वाले पशुओं में ये ज्यादातर देखा जाता है,
9: ज्यादातर पाया ही जाता
7: और
9: है।
7: सर, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि हमारे पशुपालक भाई पहचान सके कि उनके जानवर को, उनके पशु को ये बीमारी लग चुकी है?
9: हाँ, गलघोंटू रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इस रोग में, इसका नाम है अखड़िया, अर्थात अषाढ़ के मौसम में मुख्यतः यह होता था, और गलघोंटू इसका नाम भी है, अर्थात इस रोग में पशुओं में तीव्र ज्वर होता है, 105-106 डिग्री फारेनहाइट तक तापक्रम शरीर का बढ़ जाता है, पशुओं के मुंह से लार चलता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घरघराहट भरी आवाज सुनाई देती है सांस लेने के क्रम में,
7: और गला
9: में सूजन भी आ जाता है, गलघोंटू नाम है, और जिसके चलते कि पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, और प्रारंभिक अवस्था से अगर चिकित्सा नहीं की गई तो सांस लेने में बीमारी के चलते पशुओं में प्रायः मृत्यु हो जाती है।
7: और सर, एक बात और, अभी आपने लंगड़ी के बारे में कहा, तो ये भी गौ वंश में या फिर
9: गौ या भैंस वंश में ज्यादा होती है,
7: तो इसके लक्षण क्या है?
9: ये नाम से ही स्पष्ट है, लंगड़ी अर्थात इसमें पशुओं के पैर में या मांसल पोर्शन, जो भी मांस आगे का पैर का भाग या पीछे का पैर का भाग या जांघ वाला पोर्शन, इसमें सूजन होता है, और ये सूजन एक खास प्रकार का सूजन होता है जिसको दबाने पर कसकसाहट भरी आवाज लगती है कि इसमें बालू भरा हुआ है या कोई चीज फ्लूइड भरा हुआ है, उस तरह का आवाज, कसकसाहट भरा आवाज दबाने पर रहता है। पशुओं में बहुत तेज दर्द होता है पैरों में या जहाँ पर सूजन हुआ वहाँ पर, और चलने में तकलीफ होती है, प्रारंभिक अवस्था में काफ़ी तेज ज्वर होता है, लेकिन दूसरे दिन टेम्परेचर जो है शरीर का तापक्रम वो गिर जाता है, और अगर वहाँ पर जहाँ पर सूजन वाले पोर्शन पर चीरा लगाया जाए तो काला और मरा हुआ खून टाइप का उससे निकलता है, जो कि वहाँ पर गैंग्रीन हो जाता है। एक्चुअली ये जो बीमारी होती है ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, अपने टॉक्सिन के चलते उस पूरे पोर्शन जितना दूर सूजन होता है वहाँ पर वो उसको गैंग्रीन कर देता है, अर्थात गला देता है, और जिसके चलते कि इस बीमारी में अगर पशु चिकित्सा के बाद बचता भी है तो जितना दूर सूजन हुआ उतना दूर घाव हो जाता है, उसमें मैगोट हो जाता है और काफ़ी कष्टदायक होता है। इसलिए सलाह दी जाती है कि इस प्रकार के लक्षण जैसे दिखाई दें प्रारंभिक अवस्था से ही अगर इसकी चिकित्सा की जाती है तो इसमें बचने की संभावना रहती है, और साथ ही साथ इसके साथ इनसे बचाव के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो टीकाकरण किया जाता है, उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है।
7: टीकाकरण पर विशेष बल देना है, और प्रारंभिक अवस्था में ही इसका उपचार, यानी कि आप जो डॉक्टर्स होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, उनके पास अपने पशुओं को ले जाएं। और डॉक्टर साहब, और मुख्य रोग के बारे में भी हमने सुना है जो पशुओं में देखा जाता है, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
9: देखिए, बरसात के मौसम में अन्य भी कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, खुर और मुंह में होने वाले रोग भी होते हैं।
7: खुर और मुंह,
9: हाँ, तो खुर और मुंह में जो रोग होते हैं वो मुख्यतः बरसात के मौसम में तो नहीं, लेकिन अभी जो वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर में जिस तरह से वेरिएशंस हो रहे हैं और तापमान अधिक और कम हो रहा है, तो इस मौसम में भी खुर और मुंह पका रोग हो रहा है। लेकिन खुर पका और मुंह पका रोग नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें खुर में और मुंह में,
7: यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी,
9: खुर में और मुंह में दोनों में घाव होता है।
7: अच्छा।
9: और ये एक विषाणु FMD वायरस के द्वारा फैलने वाला यह बीमारी है, और इसके साथ सबसे बड़ी जो विडंबना है कि प्रत्येक वर्ष टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा भी, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन फिर भी इस रोग के जो वायरस हैं उनकी इतनी प्रकार की, उनकी इतनी प्रजातियां हैं कि उस वायरस का हम लोग जो टीकाकरण करवा रहे हैं उसके बावजूद भी खुरपका और मुंहपका रोग पर नियंत्रण करने में काफी कठिनाई हो रही है। उपाय किया जा रहा है लेकिन फिर भी नया स्ट्रेन वायरस का पैदा हो जा रहा है और उसके चलते जो बीमारी है वो टीकाकृत स्ट्रेन के अलावे जो स्ट्रेन हो जाता है उसके चलते ये बीमारी पर नियंत्रण काफी कठिनाई हो रही है। और इस रोग का आर्थिक पहलू है, इस रोग में खुरपका मुंहपका रोग में पशुओं में मृत्यु तो बहुत नहीं होती है लेकिन आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पशु जो मुख्य रूप से हम लोग पशुपालन करते हैं दूध के लिए या बैल पालते हैं काम के लिए तो हम लोग जो
7: उनको नुकसान होता है
9: दूध में काफ़ी कमी आ जाती है और चलने में पैर के पशुओं के पैर में जो घाव होता है उसके चलते चल फिर नहीं सकते हैं, मुंह में जो छाला हो जाता है जिसके चलते खा नहीं सकते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, तो जो सीधा आर्थिक नुकसान होता है दूध उत्पादन कम जाता है, कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इस रोग के चलते जो आफ्टर इफेक्ट होता है जो पशु गाभिन पशु है उसमें एबॉर्शन का भी चांसेस रहता है, गर्भपात भी हो सकता है और परमानेंट स्टरिलिटी भी होता है कि फिर उसके बाद जो हार्मोनल चेंज होता है शरीर के अंदर एंडोक्राइन डिस्टर्बेंसेज होते हैं उसके चलते पशुओं के बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं, उसमें हीट शरीर में जो गर्मी से लड़ने की क्षमता होती है वो समाप्त हो जाती है, थोड़ा भी गर्मी होने के बाद पशु हाँफने लगते हैं और फिर जो हमने बताया कि उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम जाती है और वो इनफर्टाइल भी हो जाते हैं अर्थात आगे फिर वो गर्भधारण नहीं करने की भी क्षमता उनकी करने की क्षमता भी समाप्त हो जाती है। इस प्रकार इस रोग में होने से जो पशुपालक का कमर टूटता है उसकी आर्थिक नुकसान काफी ज्यादा होती है।
7: तो कहीं ना कहीं देखा भी जाता है कि जो पशुपालक भाई हैं हमारे वो पशुओं को इसलिए पालते हैं क्योंकि उन्हें एक कमाने का अच्छा जरिया मिल जाए और कहीं ना कहीं दुग्ध उत्पादन में भी बहुत ज्यादा ये मायने रखता है पशुपालन। और यहाँ पर डॉक्टर साहब आपने इसके इफेक्ट के बारे में बताया कि असर क्या पड़ता है जानवरों पर पशुओं पर और डॉक्टर साहब ने बताया अब किसान भाइयों की जो है वो इनके दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है साथ इनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाता है और इनफर्टाइल हो जाते हैं यानी कि गर्भ ठहरने में उन्हें समय लग सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। तो ये असर पड़ता है पशुओं पर। और डॉक्टर साहब अब जानना चाहेंगे मैं आपसे कि बारिश के मौसम में ये जो बीमारियां हैं पशुओं में प्रायः देखा जाता है तो कैसे फैलती है ये?
9: जैसा कि हमने बताया कि बारिश के मौसम में जो एक तो जल जमाव गंदगी का चारों तरफ प्रभाव और फिर वातावरण में नमी की अधिकता और तापक्रम की अधिकता जिसके चलते जानवर में स्ट्रेस होता है
7: और नमी में ही बैक्टीरियाज जो हैं वो उत्पन्न होते हैं।
9: नमी के चलते जो भी जितने भी जीवाणु हैं उसका फैलाव बहुत ज्यादा होता है और गंदगी रहने से इसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है तो इसके चलते ये बीमारियां काफी तेजी से फैलती है। तो साफ सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है लेकिन और सबसे बड़ी बात है कि जहां भी अपने पशुओं को रखें वहां जल जमाव नहीं हो। जल जमाव से एक और तो ये बैक्टीरिया तो फैलता ही है इसके चलते चारों ओर बरसात के मौसम में आप देखेंगे कि मच्छर मक्खी और चमोकन जो किलनी जू इसकी भी संख्या बढ़ती है जिसके चलते पशुओं में कई प्रकार के परजीवी रोग की भी संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं पशुपालकों को सलाह देते हैं कि आप बरसात के समय ऐसे जगहों पर अपने पशुओं को रखें जहाँ जल जमाव न हो और ऊँचे स्थान पर रखें, वहाँ शाम के समय अवश्य जो भी गंदगी है उसको झाड़ू लगा के उसको जला के धुआं कर दें जिससे कि मक्खी मच्छर का प्रकोप भी कम हो और राख जो बचे उसको अपने पशुशाला में छींटें, उसके क्षारीयता के चलते भी कुछ जीवाणु रोग से बचते हैं साथ साथ वहाँ नमी की कमी रहती है।
7: तो डॉक्टर साहब आपने जिन रोगों के नाम बताए तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं वो एक पशु से क्या अन्य पशुओं में भी जा सकती है?
9: जी ये सभी बीमारियां संक्रामक नेचर की हैं और एक पशु से दूसरे पशु में छुआछूत के माध्यम से उनके जो छींकने के माध्यम से चारे के माध्यम से या जो FMD वायरस है वो हवा के माध्यम से भी उसका प्रकोप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो अगल बगल पशु रहते हैं छींकते हैं खांसते हैं उसके चलते भी तो ये संक्रामक रोग हैं और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है।
7: तो अगर ऐसा सिचुएशन हो यानी कि ऐसी अवस्था हो हमारे पशुपालक भाइयों के साथ कि अगर उनका एक पशु बीमार हो गया है तो उन्हें क्या करना चाहिए उस समय?
9: सबसे पहला तो है कि जब भी कोई पशु बीमार हो तो उसे स्वस्थ पशु से अलग कर दें।
7: अच्छा।
9: और उसके रखने की जगह जो है वो थोड़ी दूरी पर रखें। उसके बाद जो बरसात शुरू होने के पहले प्रायः अपने पशुशाला की सफाई करवा लें और साथ ही साथ उसको ऊंचा कर लें ताकि वहाँ जल जमाव ना हो। और इन बीमारियों से बचने के लिए टीका उपलब्ध है। बरसात शुरू होने के पहले पशुपालकों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं में HS और BQ अर्थात गलघोंटू और लंगड़ी का कंबाइंड टीका आता है, या फिर गलघोंटू लंगड़ी और FMD तीनों का भी कंबाइंड टीका आता है।
7: अच्छा।
9: तो उस टीका का प्रयोग मई महीने में ही अपने पशुओं को कर दें, जिसके चलते कि आपके पशु बरसात के समय स्वस्थ रहेंगे। और ये जो तीन प्रमुख बीमारी है HS, BQ
7: FMD.
9: और FMD, इस तीनों रोग से आपके पशु स्वस्थ रहेंगे।
7: यानी कि रोग का इंतजार नहीं करना है किसान भाइयों, उससे पहले ही टीकाकरण करवा दें मई के महीने में अपने पशुओं का, ज़्यादा अच्छा होगा। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और आपको आर्थिक स्तर पर भी अच्छी मजबूती मिलेगी इनसे। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब आपने बताया कि मतलब पशुओं को, जो बीमार पशु हैं उसको अलग कर देना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूँ पशुपालक भाइयों की, अगर आप ये भी देख रहे हैं कि आपके बगल वाले जो पशुपालक हैं अगर उनके पशु को बीमारी फैल चुकी है तो आप अपने पशु को उस जगह पर ना ले जाएं जहां वो अपने पशु को चरा रहे हैं।
9: खास करके कॉमन चारागाह जो है, तो हम लोग ऐसे भी बरसात के मौसम में ये सलाह देते हैं कि उन जगहों पर जहां पर कि कॉमन चारागाह है,
7: जहां पर सभी पशु,
9: जहां बीमारी फैली हुई है, उस अवस्था में अपने पशुओं को उन चारागाह पर ना ले जाएं, या जहां जल जमाव है, जो जैसे बरसात के बाद भी जहां पानी जमा होता है, जहां घोंगे की अधिकता होती है, वहां पर अपने पशुओं को न ले जाएं, क्योंकि उन मौसम, इस मौसम में एक छेरा नामक बीमारी भी फैलती है जो कि पशुओं में परजीवी के चलते फैलता है। तो हम लोग प्रयास करें कि बरसात के मौसम में अपने पशुओं को या तो अपने घर पर बांध के रखें, या खोलने के पहले स्वच्छ जल पूरी तरह से उसको पिलाकर ही बाहर ले जाएं, ताकि उस चारागाह पर जल, जो जल जमाव है, वहाँ का पानी नहीं पिएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर उन चारागाह के चारा को अगर पशु चरते हैं तो उसमें छेरा नामक बीमारी जो फैसियोला हिपैटिका के चलती है, जिसे हम लोग, जिससे कि आपके पशु छेरा नामक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं, उससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं।
7: अच्छा सर, ये छेरा नामक बीमारी आपने कहा, तो इसके लक्षण क्या होते हैं?
9: ये छेरा स्पष्ट है कि पशुओं में पतला दस्त होता है।
7: अच्छा।
9: फोर्सफुल डायरिया, और इसका कारण जो है एक परजीवी है जो पशुओं में पाया जाता है, जिसे फैसियोला हिपैटिका के नाम से जानते हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग सलाह देते हैं कि एक तो उन जगहों पर न जाने दें, अगर जाते भी हैं तो वहाँ घोंघे अगर नजर आते हैं तो घोंघों को जमा करके कॉपर सल्फेट या नमक के साथ उसका ट्रीटमेंट करके उसको खत्म कर दें।
7: अच्छा।
9: और उसके बाद बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशुओं को कृमिनाशक दवा अवश्य दें।
7: कृमिनाशक दवा
9: बरसात शुरू होने के पहले और बरसात समाप्त होने के बाद, ये प्रत्येक पशु औषधालय में सरकार के द्वारा भी मिलता है, और अपने व्यक्तिगत रूप से भी खरीद के इसका इसका इसका सेवन कर सकते हैं, दिला सकते हैं अपने पशुओं को। और इसके लिए ये, इससे क्या होगा कि आपके पशु बरसात के मौसम में स्वस्थ रहेंगे, आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता ले सकेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी।
7: तो हमारे किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आप सभी को डॉक्टर साहब ने सुझाव दिया कि कृमि नाशक दवा बरसात स्टार्ट होने से, यानी कि शुरू होने से पहले और बरसात खत्म होने के बाद आप छिड़काव करें, ताकि आपके पशु जो हैं वो बीमार ना पड़े। और अगर आपका ये कमाई का जरिया है तो आपको अच्छी कमाई मिले। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब यहाँ पर उपचार की बात कर लेते हैं। आपने अभी छोटे मोटे उपचार के बारे में बताया, जैसे कि कृमि नाशक दवा के बारे में बताया, इसके अलावा भी कुछ और जो उपचार के अगर साधन मिल जाए हमारे किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को, तो और अच्छा होगा उनके लिए।
9: यहाँ तक है, जैसे ही आपके पशु को कोई भी लक्षण इस प्रकार का दिखाई दे जो एबनॉर्मल है, तो आप तुरंत निकट के चिकित्सालय से संपर्क करें, और अगर आपने टीका नहीं लगवाया तो टीका लगवा लें। और उसके बाद कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिसको, जिसका कि जैसे HSBQ बीमारी के, हाँ, HS बीमारी में हम लोग सल्फाडिमाडिन का प्रयोग करते हैं। सल्फाडिमाडिन की जो इंजेक्टेबल इंजेक्शन आती है उसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा, चूँकि HS हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया या गलघोंटू में निमोनिया का लक्षण भी पाया जाता है। तो निमोनिया का लक्षण पाया जाता है तो इसमें हम लोग, इसका नाम पास्चुरलोसिस भी है, तो इस केस में हम लोग लेटेस्ट जो भी आजकल थर्ड या फोर्थ जनरेशन की सिफेलोस्पोरिन दवाइयाँ आती हैं उसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। तो और सूजन चूँकि गला में रहता है तो सूजन के लिए NSAID का प्रयोग करते हैं। तो इन दवाओं का प्रयोग करने से और इनिशियल स्टेज से अगर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं और पूरी तरह ठीक हो जाती हैं। लेकिन जब अवस्था भींग के दूसरी तीसरी अवस्था में आ जाती है और उस समय प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिलने से प्रायः देखा जाता है कि पशुओं की मृत्यु हो जाती है। तो इनिशियल सबको सबसे पहली बात यही है कि जैसे ही आप अपने पशुओं में देखें बरसात के समय कि कोई लक्षण जो सामान्य से अलग दिखाई दे रहा है तो तत्काल निकट के पशु चिकित्सक से संपर्क करें। उसी प्रकार जो हमारा लंगड़ी बीमारी है, लंगड़ी बीमारी के लिए हम लोग बेंजाथिन पेंसिलिन, प्रोकेन पेंसिलिन या स्ट्रेप्टो पेंसिलिन का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही साथ चूँकि सूजन रहता है तो सूजन के लिए भी हम लोग NSAID का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो सूजन वाला पोर्शन को हम लोग जब देखते हैं कि उसमें काफ़ी क्रिप्टेटिंग साउंड है या कसकसाहट भरा आवाज़ है वहाँ चीरा लगा के उसका ड्रेसिंग करवाना पड़ता है, क्योंकि जो भी टॉक्सिन के चलते जो वहाँ पर गैंग्रीन हुआ है उसकी सफाई ज़रूरी है। जब तक वो सफाई नहीं होगा घाव का तब तक वो घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस प्रकार से कुछ दवाओं का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी है कि चिकित्सा से ज़रूरी है जो इससे बचाव, तो बरसात के समय आप अपने पशुओं का टीकाकरण करवाएं और टीकाकरण करा के आप अपने पशुओं को सुरक्षित कर लें। अन्यथा चिकित्सा के बावजूद भी कभी कभी पाया जाता है कि लेट होने से पशुओं की मृत्यु होती है और उसमें आपके खर्च होने के बावजूद भी आपके पशु बच नहीं पाते,
7: तो आर्थिक स्तर पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और इसके बारे में बताया, यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं में होने वाली बीमारियाँ और उसके बचाव के बारे में बताया। और आप सभी को बता दूं किसान भाइयों और हमारे पशुपालक भाइयों की, जैसा आप चाहते हैं कि आप अच्छे से ज़िंदगी बिताएं तो आपके पशु भी चाहते हैं, और आप जितना स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपके पशु भी चाहते हैं। तो उनका रखरखाव करें, देखभाल करें, ताकि आपका अगर आर्थिक स्रोत है पशुपालन तो आपको एक अच्छा आर्थिक स्तर पर मुनाफा मिल पाए। और आपको कहीं ना कहीं अगर शौक है पशुओं को पालने का तो आपको हमेशा अपने पशुओं को स्वस्थ रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों आप सभी से आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी अलग विषय के साथ, अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
10: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
11: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
10: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
11: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
10: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें।

खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खान पान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ से यानी FM ग्रीन और ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जहां पर आपके लिए बातें होती हैं उन्नत कृषि कार्यक्रम में खेती बाड़ी की। तो आज बहुत ही खास विषय लेकर आए हैं और आज जो विषय है जी हाँ, मिल्की मशरूम की खेत। प्रजातियों की बात करें तो इसमें भी जो अलग अलग प्रजातियाँ हैं तो उनके बारे में भी आज हम जानेंगे। और मशरूम की जहाँ तक बात है तो आज महिलाएँ और व्यवसायी जो हैं व्यावसायिक तौर पर मशरूम की खेती कर रहे हैं और आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं इसकी खेती करके। तो आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे मिल्की मशरूम के बारे में। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद अनु।
0: मैम, बिहार में वैसे कौन कौन सी प्रजातियां हैं मशरूम के जिसका हमारे किसान भाई खेती कर सकते हैं?
2: हमारे बिहार की जो जलवायु है उसके अनुकूलता के अनुसार चार तरह की मशरूम जो है उसकी खेती हम लोग प्राकृतिक रूप से कर सकते हैं। ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, मिल्की मशरूम और पेडिस्ट्रा मशरूम, ये चारों प्रजाति हम लोग करके सालों भर मशरूम की खेती हम लोग बिहार में कर सकते हैं।
0: अच्छा, तो मिल्की मशरूम की आज हम बात कर रहे हैं और मिल्की मशरूम की खेती कब करें, कैसे करें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं।
2: मिल्की मशरूम को हम लोग श्वेत दुधिया मशरूम भी कहते हैं, इसको दूध छाता भी कहते हैं और ऐसे इसका नाम कैलोशाइबा इंडिका है और यह दूध के जैसा सफ़ेद दिखता है इसलिए इसको हम लोग दूध छाता भी कहते हैं। और इसकी खेती जो है प्राकृतिक रूप से हम लोग मार्च अप्रैल से लेके सितंबर अक्टूबर यहाँ तक कि कभी कभी नवंबर तक भी इसकी खेती हम लोग कर सकते हैं और ऐसे अक्टूबर तक, जनरली सितंबर अक्टूबर तक हम लोग इसकी खेती करते हैं क्योंकि उसके बाद हमारा ऑयस्टर और बटन का समय आ जाता है। तो जो हमारा पहले जो मशरूम ऑयस्टर और बटन मशरूम की खेती जनरली होती थी तो जो हमारा पीरियड था कि जिसमें मशरूम का कोई खेती ही नहीं होता था, जिसमें हम लोग कहते थे कि बस मार्च आ गया मशरूम की खेती ख़त्म हो गया, फिर सितंबर अक्टूबर आएगा तो फिर मशरूम लगाएंगे, तो ये जो पीरियड था इस पीरियड का में हम लोग बड़े ही अच्छे से आराम से मिल्की मशरूम की, श्वेत दुधिया मशरूम की खेती करेंगे और यह विश्व समुदाय को श्वेत दुधिया मशरूम जो है वो हमारे देश का देन है। हमारे NRC सोलन में ही इसका इजाद किया गया था, इसकी खेती का जो तकनीकी है उसका ये किया गया था। और ये जो मिल्की मशरूम है यह ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम दोनों के बीच का है। इसका कुछ करेक्टर या इसका जो तकनीकी है उत्पादन विधि, कुछ स्टेप आपका ऑयस्टर के समान होता है और कुछ स्टेप जो है वो हमारा बटन के समान होता है।
0: तो ये केसिंग के बारे में, इसमें एक शब्द जो है मैम केसिंग आता है।

0: तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहें।
1: अब इसकी जो तकनीकी है मिल्की मशरूम की खेती में, उसमें एक स्टेप आता है केसिंग। हम अच्छा। लोग इसकी तकनीकी की चर्चा पहले कर लें, फिर उसके हम लोग केसिंग पर आते हैं। तो जैसे कि हम जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम की खेती करते होंगे, तो बस ऑयस्टर मशरूम के लिए जो जो स्टेप आप करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप पोषाधार का चयन करते हैं। तो मिल्की मशरूम के लिए भी आप पोषाधार का चयन करेंगे। इसका पोषाधार आपका गेहूं का भूसा हो सकता है, पुआल की कुट्टी हो सकता है, या और भी कोई कृषि अवशेष हो सकता है। तो जो भी पोषाधार का हम चयन करें, वो उसका चयन कर लें। उसके बाद उसका हम लोग निर्जीवीकरण करते हैं। तो इसके निर्जीवीकरण के लिए सबसे बेहतर है आप भाप उपचार करें, भूसे को पहले फुला दें, रात भर भूसा फुला दें, सुबह उसको निकाल करके एक बर्तन में उसको छान करके, पानी से छान कर उसको डालते हैं, फिर उसको जूट के बोरे से उसके मुँह को बंद कर देते हैं, ऊपर से पानी उसमें डाल देते हैं और उसको आग पर चढ़ा देते हैं। जब पूरे से बहुत अच्छे से भाप निकलने लगे तो उसके बाद करीब 15-20 मिनट तक और रहने देते हैं। फिर उसको हम लोग किसी बर्तन में डलिया वगैरह हो या कोई सतह हो, साफ निर्जीव की सतह हो, उस सतह पर उसको हम लोग पलट देते हैं। उसका अतिरिक्त नमी जब निकल जाता है उसको छांव में फैला देते हैं। अतिरिक्त नमी निकलने के बाद फिर उसमें हम लोग भूसा के अनुसार स्पॉन डालते हैं। यदि भीगा भूसा का बात करें तो 4-5% उसमें हम लोग स्पॉन डालेंगे। स्पॉन डाल करके फिर पीपी बैग लेते हैं। पीपी बैग में हम लोग इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई करने के लिए हम लोग या तो भूसा और स्पॉन को पूरा एक दूसरे मिला देंगे, एक विधि है, उसको मिलाकर फिर उसको पीपी बैग में पैक करते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग परत में करते हैं। जैसे पहले भूसा देंगे 4 इंच के बाद फिर उसमें पूरे सतह पे बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं, फिर 4 इंच भूसा देते हैं, फिर बीज देते हैं। इस तरह से बैग का 12 इंच हम लोग ऊंचाई रखते हैं। उसके बाद फिर उसको भूसा से ढक करके फिर बैग को पैक कर देते हैं। एक ही उसके बाद ये दो तरीके में से, या तो हम लोग पूरे भूसा और बीज को मिला करके पैक कर देते हैं, या फिर परत विधि से करके पैक करके हम लोग तैयार करते हैं। और जैसे ऑयस्टर मशरूम के बैग में हम लोग छेद करते हैं, तो इसमें पूरे बैग में छेद, ये चूंकि ऊपरी सतह से निकलता है, जैसे बटन जो है ऊपरी सतह से निकलता है, वैसे ये निकलता है, तो इसमें अलग से साइड में छेद करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ नीचे पैंदा में 2 छेद हम लोग कर देते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा नमी वगैरह है वो हमारा निकलता है। और लगभग 12-15 दिन इसको हम लोग छोड़ देते हैं कमरे में, जो स्टरलाइज निर्जीवीकृत किया हुआ कमरा हो, जहाँ जिस कमरे में इसको हम लोग बैग को रखते हैं उसको 24 घंटा पहले हम लोग निर्जीवीकृत कर देते हैं और फिर उसको कमरे को बंद कर देते हैं। उस कमरे में फिर इस बैग को हम लोग रखते हैं। उस कमरे में लगभग 12-15 दिन तक बैग को छोड़ देते हैं, तो हम देखते हैं कि पूरा बैग सफ़ेद हो गया, मतलब उसमें पूरा माइसेलियम बहुत अच्छे से रन कर गया। और जब माइसेलियम अच्छे से रन कर जाता है तब हमारा केसिंग का जो अब केसिंग का आता है कि अब हम केसिंग करेंगे। तो ये तब अब हम ये केसिंग के लिए हम लोग जिस दिन से बिजाई किए हैं उस दिन से हम लोग केसिंग की तैयारी करते हैं। तो केसिंग एक तरह का मृदा आवरण है जो कि मशरूम का जो उत्पादन तकनीक है, जो विधि है, उसका एक चरण है कि ये चरण करने के बाद ही हमारा मशरूम प्राप्त होगा मिल्की में और बटन में। ये ऑयस्टर मशरूम में हम लोग केसिंग नहीं करते हैं, लेकिन मिल्की और बटन मशरूम में केसिंग करते हैं। तो वह इसका एक चरण है। और इसके लिए हम लोग केसिंग के लिए 2 साल पुराना सरा हुआ गोबर लेते हैं, या पुराना वर्मी कंपोस्ट लिए, या फिर आजकल मार्केट में कोकोपीट आता है, कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए आप 2 साल पुराना गोबर का खाद मिल जाए तो बेहतर है। और इसमें हम लोग इसके अलावा जो भी गोबर का खाद है इसके अलावा इसमें हम लोग मिलाते हैं क्या, तो पुराने बाग की मिट्टी मिलाते हैं, जो रेत वाली बालू नदी की पेटी का जो बालू होता है, वो रेत जो होता है उसको मिलाते हैं, और जो धान जैसे चावल बनाने के बाद जो भूसा प्राप्त होता है उस भूसा का राख भी हम लोग मिलाते हैं। तो यदि हम लोग बाग की मिट्टी और रेत का बात करें तो 3 भाग बाग की मिट्टी लेते हैं, 1 भाग रेत लेते हैं। यदि हम लोग बाग की मिट्टी और 2 साल सरा हुआ गोबर लेते हैं, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लेते हैं। और यदि हम लोग सारी चीज़ को थोड़ा थोड़ा मान लीजिए लेते हैं, तो हम लोग इसको एक टोकरी बाग की मिट्टी ले लिए, एक टोकरी हम लोग कंपोस्ट ले लिए, एक टोकरी रेत ले लिए, एक टोकरी आपका भूसा का राख ले ली, ये सारा को मिला करके भी हम लोग इसका कर सकते हैं। यदि बेहतर होगा आपको, यदि दो साल सरा हुआ पुराना गोबर का खाद मिल जाता है तो वो आपका बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो फिर इसमें से जो भी आप पास उपलब्ध हो उसको हम लोग लेते हैं। फिर इसको हम लोग निर्जीवीकृत करते हैं, ये जब पहले हम लोग ये इकट्ठा कर लिए, अब इसमें मान लीजिए कोई

0: पत्थर हो या घास फूस हो तो उसको हम लोग अच्छे से हटा लेते हैं, लेकिन इसको महीन करने की या चालने की आवश्यकता नहीं है। यदि मिट्टी का छोटा छोटा ढेला भी है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उसको बिल्कुल महीन से चालना नहीं है। लेकिन यदि उसमें पत्थर है, कंकर है, कुछ शीशा का टुकड़ा है, प्लास्टिक का टुकड़ा है या कुछ पत्ता है, ये सब है, तो वो सबको हम लोग को उसको हटा लेना है, ठीक है। इसके बाद अब इसको हम लोग निर्जीवीकृत करेंगे। निर्जीवीकृत करके इसमें हमारा लगभग नमी सही रहना चाहिए, लगभग 70% नमी रहना चाहिए। और नमी सही है हमारे केसिंग का ये जानने के लिए करते हैं। केसिंग का हम लोग हाथ में गोला बनाते हैं और उसको नीचे छोड़ते हैं, यदि वो टूट गया तो इसका मतलब हमारा केसिंग में नमी सही है। और नमी को केसिंग को निर्जीवीकृत करने के लिए हम लोग नुवान लेते हैं 2 ml, फॉर्मलिन लेते हैं 5 ml, कार्बनडाजिम 1 gram और 1 liter पानी, इसमें इसका घोल बना करके फिर पूरे केसिंग का जो मटेरियल हम तैयार किए हैं, मिट्टी तैयार किए हैं, उसमें इसको स्प्रे करके उसको निर्जीवीकृत करते हैं। फिर उसको प्लास्टिक की सीट से ढक देते हैं, लगभग 7 से 7 दिन उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ऐसे यदि आप केसिंग जिस दिन बिजाई किए हैं उस दिन से केसिंग तैयारी करते हैं तो आप कल ऐसे ही 12 से 15 दिन के बाद केसिंग करते हैं, इतने दिन तक वो बड़े ही अच्छे से आपका केसिंग निर्जीवकृत हो जाता है। फिर हम लोग जब माइसेलियम पूरा रन कर जाता है बैग में तब उसका केसिंग करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसका ऊपरी सतह को पूरा खरोच देते हैं, जैसे कैसे लहसुन का को हम लोग थोड़ा चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें एरेशन, उस तरह से ऊपर का परत उसका हम लोग उसको खरोच देते हैं। और खरोच करके उसको बराबर करके हल्का सा उसमें हम लोग नमी दे देते हैं। नमी के देने के बाद उस पर हम लोग केसिंग की लगभग 3 से 4 cm मोटी परत डाल देते हैं। और ये हमारा जो बिजाई किए थे उससे 10 से 12 दिन के अंदर हम लोग केसिंग कर देते हैं। और केसिंग करने के बाद उसमें प्रतिदिन हम लोग को नमी देना होता है, और गर्मी के अनुसार कैसा इन्वायरमेंट उसके अनुसार हो सकता है कभी आपको 2 बार भी नमी देना पड़े या फिर कम से कम 1 बार तो प्रतिदिन देना होगा। लेकिन ध्यान क्या रखना चाहिए, हम लोग इसमें पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, बिल्कुल फुहारे से देना है। और जो केसिंग मृदा है उससे नीचे जो कंपोस्ट हमारा वहाँ पानी नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जो केसिंग का जो हम 3 से 4 cm मोटा परत दिए हैं सिर्फ वो उसमें ही पानी का मात्रा जाना चाहिए, इतनी सावधानी से हमें पानी देना है। इसके बाद केसिंग के लगभग 15 से 20 दिन के बाद हमारा फसल तैयार हो जाता है। और 5 से 7 दिन में फसल निकलने के 5 से 7 दिन के बाद यह तुराई योग्य हो जाता है और इन्हें हम लोग घुमा करके तोड़ लेते हैं।
1: मैम केसिंग के रूप में क्या क्या उपयोग कर सकते हैं?
0: केसिंग के रूप में जैसे मैंने बताया अनु, केसिंग के रूप में हम लोग 2 साल सड़ा हुआ गोबर यूज कर सकते हैं, या फिर उसके साथ हम लोग पुराने बाग की मिट्टी, बाग की मिट्टी नहीं, पुराने बाग की मिट्टी, किसान भाइयों बहनों इसको ध्यान दीजिए, पुराने बाग की मिट्टी को हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद रेत वाली जो बालू होती है नदी के पेटी में जो बालू पाया जाता है वो रेतीला रहता है, उस बालू का उपयोग कर सकते हैं। प्लस जो धान का भूसा है उसको हम जलाकर उसका राख को यूज कर सकते हैं, प्लस कोकोपीट मार्केट में उपलब्ध है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सब सामग्रियों को जैसे सिर्फ हम आपको रेशियो भी मैंने बताया कि यदि हमारे पास सिर्फ न पुराने ये पुराने बाग की मिट्टी है और हम लोग रेत का यूज कर रहे हैं तो 3:1 हम लोग यूज करेंगे, 3 भागिए लेंगे, 1 भागिए लेंगे। और यदि हमारे पास 2 साल से पुराना गोबर है और बगीचे की मिट्टी है तो बराबर बराबर ले सकते हैं। और यदि और सारे चीज़ लेंगे तो हम लोग वॉल्यूम से मिलाते हैं, मतलब केजी से नहीं लेते हैं, हम टोकरी से, 1 टोकरी है तो फिर 1 टोकरी है, इस तरह से बराबर बराबर ले करके हम लोग उसको मिलाते हैं। और फिर केसिंग हमारा उसका अगला प्रक्रिया निर्जीवीकृत करना, ये हम लोग करते हैं फिर उसका यूज करते हैं।
1: और अंत में मैम मिल्की मशरूम की खेती में क्या कुछ और आवश्यक है, कुछ सुझाव जो आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, ये आपको बता दें मिल्की मशरूम की जो खेती होती है गर्मी में, ये ताप सहिष्णु है, इसके लिए जो आवश्यक टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 35 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक में भी यह इसकी खेती हो जाती है आराम से। तो हम आपका हमारा आपका ये नेचुरल एक्सपीरियंस भी अनुभव भी है कि गर्मी के दिनों में जो माइक्रोब्स का थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, जो जीवाणु होते हैं कीटाणु होते हैं, तो आप ठंडे में आप देखते होंगे एक दिन नहीं भी नहाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन गर्मी में नहीं नहाते हैं तो स्किन में जलन खुजली होने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अभी माइक्रोब्स के जो जीवाणु है कीटाणु है उनके लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है। तो यह हमारा मशरूम भी एक तरह का फंगस है, तो उसके लिए जो हम लोग माहौल दे रहे हैं तो और दूसरा फंगस भी उसको ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है कि बहुत ज़्यादा साफ सफाई ये सब चीज़ का, या फिर जो हम लोग चयन करते हैं इनपुट, वो सब पे बहुत सावधानी रखना पड़ता है। जो हम लोग भूसा या पुआल का चयन करें वह ताज़ा होना चाहिए, शुष्क होना चाहिए, कभी भी वह पानी खाया नहीं होना चाहिए, बाढ़ में डूबा नहीं होना चाहिए, भींगा नहीं होना चाहिए, सरा गला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग वीकली जो क्रॉप हाउस है, जो हमारा फसल कक्ष है, उसमें 2% फॉर्मलिन और 0.1% कार्बन डाइजीम का घोल का वीकली हम लोग छिड़काव करें, ताकि हमारा किसी तरह का कोई इन्फेक्शन, किसी तरह का कोई संक्रमण होने की संभावना नहीं रहे। फिर जो कमरा है उसमें प्रकाश आने का और हवा का आवागमन का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। आवश्यकता होने पर हम खिड़की दरवाजा खोल दें तो धूप भी आए और हवा का भी आवागमन भी हो। और जब भी हम स्पॉन का प्रयोग करें, स्पॉन का चयन करें, वह भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, वो उसमें किसी तरह का संक्रमण नहीं होना चाहिए। फिर जो चूहा छुछुंदर गिलहरी है, ये सबसे हमको जब तक हमारा माइसिलियम पूरा रन नहीं कर जाता है, जो हमारा कोई भी मशरूम का स्पॉन रहता है वह किसी न किसी जो खाद्यान्न को आधार देके बनाया जाता है, चाहे वो मक्का हो सकता है, वो धान हो सकता है, वो गेहूं हो सकता है, और भी कोई खाद्यान्न हो सकता है, तो उसको खाने के लिए ये चूहा वगैरह आते हैं। तो जब माइसिलियम पूरा रन हो जाता है तब फिर चूहा डैमेज नहीं करता है, तो इस पीरियड में चूहा से, गिलहरी से, ये सबसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए हमारे किसान भाई बहन को प्रयास करना चाहिए, उसके लिए अलग अलग तरीका है कि उसको अपना करके हम चूहे से बचाएं। प्लस एक चीज़ और है कि को प्राइमस निकलता है उसमें, आप देखेंगे काला ऐसा बिल्कुल धागा ऐसा पतला सा नीचे कि गेहूं को जब हम लोग बोते हैं गेहूं का डिब्बी निकलता है, वो उसी टाइप का पतला काला ऐसा निकलेगा और वो तेजी से लंबा होता है, फिर वो गल जाता है। तो जैसे ही वो निकले उसको नोच करके, जहाँ पर निकला है वहाँ का पुआल सहित उसको नोच करके जमीन के अंदर डाल देना है और उसको थोड़ा फॉर्मलिन से, वेबेस्टिन के घोल से वहाँ पर ट्रीट भी कर देना है। और यदि ये नहीं करते हैं तो वो इतना फास्ट उसका स्पोर निकलेगा, पूरा क्रॉप आपको बर्बाद कर देगा। तो को प्राइमस से बहुत सावधान रहिए। यदि यह आपके फसल में आ गया है, निकल रहा है, तो उसको हाथों से चुन चुन के उसको हटाइए और उसको जहाँ तहाँ नहीं फेंकिए, बल्कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वह किसी भी तरह से और वो नुकसान नहीं कर पाए और वो फसल में आपको नहीं फैले। ये एक तरह का फसल का वीड है, खरपतवार है, जिससे कि लोगों को मशरूम की खेती में बचाना आवश्यक है। इस तरह से इन सुझावों को, इन सावधानियों को जब हम अपनाएंगे तो अब हमारा फसल हमेशा अच्छा होगा।
1: जी, तो किसान भाइयों और हमारे श्रोताओं, मिल्की मशरूम की खेती आपने समझ ली होगी और क्या कुछ करना है आपको, इसमें क्या कुछ बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें यहाँ पर मैडम ने आपको बताई हैं। तो आशा करते हैं आपको ज़रूर लाभ मिलेगा आज के इस वार्ता से। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी पर। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: खांसी, एक खांसी, दो खांसी, तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी, बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी, टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू देख कितने दोस्त हैं।
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
6: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: लेडीज फर्स्ट, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है आपके विशेष कार्यक्रम लेडीज फर्स्ट में। लेडीज फर्स्ट में आज हम बातें करने वाले हैं बहुत सारी हमेशा की तरह। और अभी गर्मी की जो बात करें तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि क्या ही कहने, अभी चिलचिलाती धूप में बाहर जाने की इच्छा ही नहीं होती है, पर क्या करें, काम है तो जाना ही पड़ता है। और ऐसे में हमारी सेहत के ऊपर जो असर होता है वो तो होता ही है, साथ ही हमारे स्किन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा असर होता है और बुरा असर होता है। ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का अंदर से भी ध्यान रखें और बाहर से भी हम अपनी स्किन का, यानी कि अपनी जो हमारी ये प्यारी सी चमड़ी होती है ना, इसका भी थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। और अगर हम बात करें तो आप, बहुत ज़रूरी है कि इस मौसम में आप बहुत सारा पानी पिए, और साथ ही जो भी अभी मौसमी फल हैं उसका सेवन ज़रूर करें। तरबूज है, उसमें भी बहुत प्रचुर मात्रा में पानी होता है, तो उसका भी सेवन करें। इस तरीके के मौसमी फलों का सेवन करना, खूब सारा पानी पीना और जो एक बैलेंस डाइट होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही ऊपर से भी हम अगर अपने स्किन के देखभाल की

करें तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, किस तरीके से आप कुछ फेस पैक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। अगर किसी के पेट में गड़बड़ी होगी तो आप कुछ भी कर लो, उसके चेहरे पर कुछ ना कुछ परेशानी होगी ही, और भी ऐसी बहुत सारी परेशानी होती है जो आपके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन फिर भी आप अंदर से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वो जो सूरज की किरणें हैं वो आपको परेशान किए जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि उन सूरज की किरणों को थोड़ा मात देने के लिए हम थोड़ी सी तैयारी तो कर ही लें। जी हाँ, यानी कि थोड़ी सी स्किन केयर कर ही लें। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे फेस पैक के बारे में जो बहुत ही आसान है, लेकिन आपके स्किन को वो प्राकृतिक रूप से ठंडा रख सकते हैं, और इसके लिए घर पर कुछ जो रखी चीजें हैं उन्हीं चीजों से आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप फेस पैक बना सकते हैं। इस भीषण गर्मी में भी, बढ़ते तापमान के बाद भी आप अपने स्किन को बिल्कुल फ्रेश और ठंडा रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम तरबूज और बेसन के फेस पैक के बारे में बात करें। तरबूज में ना पानी की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, उसे तो खाना है ही ढेर सारा, लेकिन खाने के बाद जो एक दो टुकड़े बच जाए ना, उससे आप अपने त्वचा को बिल्कुल हाइड्रेटेड रख सकते हैं। कैसे तो आपको मैं बताती हूँ। इसके साथ आपको चाहिए होगा बेसन भी। जी हाँ, बेसन ना हमारे जो त्वचा होती है उसकी गंदगी को साफ करने में, और जो भी हमारे चेहरे में एक्स्ट्रा तेल होता है, अतिरिक्त तेल होता है, उसे हटाने में ये मदद करता है, और साथ ही ये हमारी त्वचा को लंबे समय तक हाइड्रेटेड रखने के साथ ही हमारी त्वचा की जो चमक है उसे भी बढ़ाता है, और गर्मी में होने वाली जो ड्राइनेस होती है और गर्मी में कई बार चिपचिपाहट की भी परेशानी होती है, उसे भी कम करने में ये मदद करता है। तो आपको चाहिए होगा दो चम्मच तरबूज का रस, एक चम्मच बेसन और एक चम्मच शहद। शहद हमारे स्किन के लिए बहुत ही कमाल का होता है। आइए अब हम जानते हैं कि अब इन तीनों का इस्तेमाल कैसे करना है। एक कटोरी में आप तरबूज का रस निकाल लें, इसे अच्छी तरीके से बेसन और शहद मिलाकर गाढ़ा एक पेस्ट तैयार कर ले, और जैसे ही आपका ये जो फेस पैक तैयार होता है, इसे पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, चाहे तो आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं, और इसे 15 मिनट के लिए खुला छोड़ दें, और इसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें 15 मिनट के लिए, कोई हमारा बहुत ही विशेष प्रोग्राम सुने, और उसके बाद आप हल्के हाथों से इसे मसाज करते हुए आप धो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला फेस पैक। और दूसरा जो फेस पैक है वो है खीरा और दही का फेस पैक। खीरा और दही दोनों ही कह सकते हैं कि गर्मियों का एक बहुत ही अच्छा साथी है। खीरा है, उसमें इतने सारे पानी होते हैं और उसका जो स्वाद होता है वो भी कमाल का होता है, और दही से आप छाछ बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, और ख़ास तौर से दही इस वक्त हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और खीरा हमारे स्किन को भी बहुत ठंडक पहुंचाता है। जबकि दही की अगर हम बात करें तो दही एक बहुत ही नेचुरल मॉइस्चराइज़र के रूप में बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो फेस पैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये फेस पैक गर्मी में स्किन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन माना जाता है, और साथ ही हमारे स्किन को तुरंत ठंडक पहुंचाने के लिए ये फेस पैक आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सन टैन को भी ये कम करने में काफ़ी मददगार साबित होता है, और हमारे स्किन को भी मुलायम और फ्रेश बनाने में काफ़ी मदद करता है। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए होगा एक छोटू सा खीरा, दो चम्मच दही और एक चम्मच गुलाब जल। गुलाब जल तो मतलब मौसम चाहे कोई भी हो, हमारे त्वचा का सबसे अच्छा साथी होता है गुलाब जल। तो आप खीरा लीजिए, और खीरे को आप कद्दूकस करके उसका, खीरे को पहले छील लेना है, ठीक है? तो खीरे को आप छीलने के बाद कद्दूकस करके उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसमें दही और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। और अब इस फेस पैक को चेहरे पर, गर्दन पर अच्छी तरीके से लगा लेना है, और 15-20 मिनट तक छोड़ देना है, और फिर से मैं वही कहूंगी, तब तक 15-20 मिनट के लिए आप हमारे प्रोग्राम को सुनिए 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़िए, जहां पर बहुत सारी जानकारियां आपको मिलती है। तो फिलहाल आगे 15-20 मिनट के बाद आपको करना क्या है, तो 15-20 मिनट के बाद आप इसे ठंडे पानी से अपना चेहरा साफ कर ले। और तीसरे अगर फेस पैक की हम बात करें तो वो है एलोवेरा और चंदन का फेस पैक। गर्मी के मौसम में ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं, और ख़ास तौर से चंदन और एलोवेरा तो कुछ लोगों को हो सकता है कि सूट ना करता हो, और कुछ लोगों को सूट करता है। अगर आपको जो हमारा फ्रेश एलोवेरा होता है ना, जो आप पौधे से बिल्कुल तोड़कर निकालते हैं, कुछ लोगों को वो फ्रेश एलोवेरा सूट नहीं करता है, तो बाहर जो डिब्बे में एलोवेरा जेल आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गर्मी के मौसम में ना आप क्या करेंगे कि एलोवेरा और चंदन का फेस पैक बना सकते हैं। किस तरीके से बनाना है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि एलोवेरा किस तरीके से हमारे स्किन को मदद करता है। तो एलोवेरा ना हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखने में मदद

0: करता है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चंदन तो सभी को पता है, चंदन चेहरे को बिल्कुल ठंडक पहुँचाता है। इस बात से कौन नहीं वाकिफ होगा कि चंदन हमारे चेहरे के लिए क्या करता है। और गर्मियों में ये फेस पैक ना हमारे चेहरे की गर्मी को, और कई बार जो गर्मी की वजह से जलन होती है ना, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि शाम ढलते ढलते उनके चेहरे पर गर्मी की वजह से ना जलन होने लगती है, तो उनके लिए फेस पैक रामबाण साबित हो सकता है। और तो अगर हम बात करें तो आप इस फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे की गर्मी और जलन को कम करने के लिए। साथ ही ये आपके स्किन को ठंडक भी पहुंचाता है और नमी भी प्रदान करता है, और साथ ही सोने पे सुहागा ये नेचुरल ग्लो भी लाता है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच चंदन पाउडर और 1 चम्मच गुलाब जल। तो गुलाब जल हर जगह फिट हो जाता है ना हमारे स्किन केयर में। और अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी कटोरी में एलोवेरा जेल ले, अगर आपके पास फ्रेश है और आपको फ्रेश एलोवेरा जो पल्प है वो सूट करता है तो अच्छी बात है, वरना आप जो बाहर बाजार में मिलते हैं एलोवेरा जेल उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक कटोरी में आपको एलोवेरा जेल लेना है, फिर इसमें चंदन पाउडर और गुलाब जल डालकर अच्छी तरीके से मिक्स करके एक स्मूद सा, एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इससे आपको ना चेहरे को पहले साफ करना है, और फिर आप किसी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी चीज के इस्तेमाल से आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से साफ कर ले। उसके बाद इस फेस पैक को लगा ले और फिर से 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे और हमारे साथ जुड़ जाए। इसके बाद आप नॉर्मल जो टेम्परेचर का पानी होता है उससे अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो ले। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई, और ये जो भी मैंने आपको फेस पैक अभी बताया ना, इसे आप हफ्ते में 2 बार आराम से लगा सकते हैं। लेकिन ये नहीं करना है कि हर एक फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे, जो फेस पैक आपके चेहरे को सूट कर रहा है और जो फेस पैक से आप देख रहे हैं कि आपको उससे अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है उसके साथ आप स्टिक रहे। और जो भी फेस पैक आप लगाएं उससे पहले आप अपने चेहरे को ना अच्छी तरीके से साफ कर ले और उसके बाद ही आप फेस पैक को लगाएं। और अगर किसी भी सामग्री से आपको एलर्जी होती है तो उसका इस्तेमाल ना करें। हो सकता है कि आपको एलोवेरा सूट ना करता हो या फिर कोई और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सूट ना करता हो। तो जैसे ही आप कोई नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, मैंने जो आपको 3 बताए उसके अलावा भी कभी भी आप कोई भी नया फेस पैक ट्राई करते हैं ना, तो उसे पहले आप अपने कोहनी पर लगा कर देखें। कोहनी पर आप लगाएंगे ना तो अगर आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं हो रही है, या फिर आप अपने हाथों के ऊपर लगा कर देखें आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेहरे पर लगाने के बाद खुजली महसूस हो या जलन हो तो तुरंत ही उस फेस पैक को हटा देना है चेहरे से। तो इन बातों का ध्यान रखकर आप आराम से इन फेस पैक का इस्तेमाल कीजिए, और उम्मीद है कि इस गर्मी में भी आप अंदर से बाहर से ग्लो करेंगे और बहुत ही कमाल के और बहुत ही खुश लगेंगे। और अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बिल्कुल आपकी खुशी में 4 चांद हम लगा देंगे। और अगर हम बात करें तो इस फेस पैक को, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखें कि फेस पैक को लगाने से पहले स्किन पर आप एक बार इसको ना एक बार अच्छे तरीके से टेस्ट ज़रूर कर लें, कोहनी पर लगाकर या फिर हाथ के स्किन पर लगाकर। तो इन बातों का ध्यान रखिए और गर्मी का आनंद उठाइए। ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है कि गर्मी का आनंद उठाइए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि क्या कहें। तो अपना और अपनी सेहत का बहुत बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेडीज फर्स्ट।
1: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन और उन्नत कृषि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे किसान भाइयों के लिए एक बार फिर एक खास विषय, खरीफ मक्का में कीट प्रबंधन। आज इसके बारे में बहुत सारी बातें हम जानेंगे और इस खास विषय को लेकर आज हमारे बीच हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तारकनाथ जी, एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। और तो सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमारा विषय है तो उस हिसाब से हम सबसे पहले खरीफ मक्का में जो दो महत्वपूर्ण कीट हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो बिहार भारत का प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है और इसकी खेती हमारे यहाँ खरीफ, रबी एवं गर्मा मौसम में की जाती है। मक्का में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण बिहार में खरीफ मक्का की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। कीड़ों के अधिक आक्रमण की स्थिति में 50-60% फसल बर्बाद हो जाते हैं। अतएव आज खरीफ मक्का के दो प्रमुख कीड़ों के जीवन चक्र, क्षति, लक्षण, पहचान एवं नियंत्रण के बारे में चर्चा करना आवश्यक है। सबसे पहले आते हैं मक्का के तनाभेदक कीट के बारे में। यह कीट मक्का को अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह कीट मक्का के अलावे ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि को भी नुकसान करता है। इस कीट के वयस्क हल्का पीलापन के साथ भूरे रंग का होता है। इस कीट के नर के पिछले पंखों का रंग धुएंधार एवं मादा का सफेद रंग होता है। मादा कीट गोल, चपटे एवं पीले रंग के गुद्दों में अंडा देती है। इन अंडों से शिशु बाहर निकलकर पत्ती से होकर तने में प्रवेश करती है। शिशु तने में प्रवेश कर तनों को खाते रहते हैं। ऐसी दशा में सूखी हुई फलगी को मृत कला यानी डेड हार्ट बनना कहते हैं। इससे खींचने पर आसानी से खींचा जा सकता है। इस कीट के आक्रमण होने पर कभी कभी 70-80% फसल बर्बाद हो जाता है। इस कीट का आक्रमण वर्षा ऋतु में अधिक होता है। तो आते हैं इस कीट का नियंत्रण कैसे करें। इस कीट से बचाव हेतु खेतों से पुराने पौधों के डंठल आदि अवशेष को जला देना चाहिए। फसल कटने के बाद खेतों को गहरी जुताई कर देना चाहिए। शुरू की अवस्था में जब प्रकोप हो तो मृत कला को हटा देना चाहिए तथा पिल्लू को मार देना चाहिए। यदि पौधा 2-3 पत्ती का हो तथा कीट का प्रकोप कम हो तो उस समय तरल दवा, जिसको हम लोग डेल्टा मेथ्रिन कहते हैं, इसका 250-300 ml प्रति हेक्टर की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। यदि दानादार दवा का प्रयोग करना हो तो कार्बोफ्यूरन 3G का 23 किलो प्रति हेक्टर की दर से पौधों के गभ्भा में देना चाहिए। अब आते हैं फॉल आर्मीवर्म के बारे में। फॉल आर्मीवर्म का आक्रमण लगभग 80-90% फसलों पर होता है, जिसमें मक्का इसका सबसे पसंदीदा फसल है। इस कीट का प्रकोप सन 2016 में अफ्रीका में पाया गया एवं अभी तक 44 अफ्रीकी देशों में इस कीट का आक्रमण हो चुका है। हमारे देश में इस कीट का आक्रमण सबसे पहले कर...

0: कर्नाटक राज्य में देखा गया। बिहार में कुछ जिलों में भी इस कीट का प्रकोप पाया गया है। इस कीट का मादा एक रात में 100 किलोमीटर तक उड़ सकती है, परंतु अंडे देने के लिए 500 किलोमीटर तक भी उड़ सकती है। फॉल आर्मीवर्म का पंचम इंस्टर लार्वा के पीठ पर 3 हल्के पीले रंग की धारियां होती है, शीर पर उल्टे वाई आकार का निशान होते हैं एवं उदर के अंतिम भाग में 4 भूरे धब्बे वर्गाकार में होते हैं। शुरू में इस कीट का पिल्लू समूह में पत्तियों के निचली सतह पर रहते हैं एवं पत्तियों को खुरच खुरच कर खाती है। फिर ये पिल्लू तने में प्रवेश कर खाते हैं, जिससे पत्तियों निकलने में उसमें समानांतर बड़े छेद दिखाई पड़ते हैं। ये पिल्लू दिन में गड्ढा के अंदर घुसकर रहते हैं एवं रात में गड्ढा के ऊपर काट कर खाते हैं, जिससे पत्तियां कटी फटी पत्तियों पर बड़े लंबे छेद तथा गड्ढा एवं पत्तियों पर इस कीट का माल दिखाई देते हैं। तो इस कीट का प्रबंधन कैसे करें? गर्मियों के दिनों में खेत की गहरी जुताई करने में इस कीट के प्यूपा धूप से मर जाते हैं या पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं। खेतों एवं आसपास के खरपतवार को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि शुरू के अवस्था में पिल्लू लगभग 100 के समूह में पत्तियों पर रहते हैं, इसलिए इन्हें पकड़कर किरासन तेल में डालकर मार देना चाहिए। बुआई के 15 से 20 दिनों के बाद फेरोमोन ट्रैप, जो स्पोरोप्टेरा फ्यूजिपाडा के लिए आता है, उसका 10 से 12 प्रति हेक्टर लगाना चाहिए। पिल्लू की शुरू की अवस्था में 5% नीम बीज चूर्ण या नीम आधारित दवा 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। 10% क्षति दिखाई देने पर इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 0.4 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए।
1: तो श्रोताओं, आपने जाना मक्का, खरीफ मक्का में जो कीट होते हैं वो कैसे हानि पहुंचाते हैं मक्का को, और साथ ही उसका प्रबंधन आपको कैसे करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से इन कीट को पहचानेंगे और उसका प्रबंधन करेंगे तो आप खरीफ मक्का की अच्छी खेती कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन एक अलग विषय, एक नए विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz पर। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार।
2: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
3: खुद भी बचे देश भी बचाए।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
6: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
5: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
6: 11 दोस्त?
5: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
6: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
5: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
6: लेकिन ऐसा क्यों?
5: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
6: टीकी, तो इसका हल क्या है?
5: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर

0: दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूविन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
1: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धेशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना, पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
1: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वह झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं जो समुद्र के रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बता देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओं, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलर और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को उड़ीसा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम। तो आपको बता दूं

0: प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओं, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं।

आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। ना, जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो। यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
0: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दो दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
2: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ।
2: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है। तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ।
2: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
2: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया? तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
2: मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यही रह।
2: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
1: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
0: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
1: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
0: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
1: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ, मुझे देर हो रही है।
1: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे। जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।
2: माँ
0: ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
2: क्या है बच्ची? उफ, क्या हुआ बेटा? बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं,
2: चुप,
0: बस सुबकती रही।
2: चुप, चुप, चुप, चुप, चुप।
0: बड़े देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग। पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
4: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
4: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर ही स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र संकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़ कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशु पालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आपकी होस्ट हैं दोस्त आरजे अनु को। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं उन्नत कृषि कार्यक्रम में। जी हाँ, वैसे आज हम खासतौर पर पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी एक जो विषय है वो लेकर आए हैं। पशुपालक भाइयों के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने पशुओं को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है कि स्वस्थ चारा उन्हें देते रहें। तो आज आपके लिए चारे यानी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए हम जो वो अपने पशुओं को चारा खिला रहे हैं उनके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चारा उत्पादन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपको अच्छी अगर चारा मिले तो आप अच्छी तरीके से अपने पशुपालन कर सकते हैं। तो अब एक तरीका यहाँ पर, जी हाँ, चारा उत्पादन में एक तरीका विकसित हुआ है और वो है हाइड्रोपोनिक, एक नई तकनीक है। और इससे क्या लाभ मिलेगा आपको, आप कैसे लाभान्वित होंगे, किस प्रकार से आप इस तकनीक से चारा उत्पादन कर सकते हैं, इन सारी बातों पर आप सभी के सामने, आप सभी के बीच आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, डॉक्टर SK गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि हम अपने किसान भाइयों, हमारे श्रोताओं को क्यों ना पहले सबसे पहले ये बता दें कि ये हाइड्रोपोनिक तकनीकी क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी।
2: देखिए, ये बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न है। हमारे राज्य के नहीं बल्कि पूरे देश की अगर हम बात करें तो अगर हम देखते हैं तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक दूसरा बड़ा व्यवसाय है। पशुपालन में हरे चारे की उपलब्धता एवं ये एक महत्वपूर्ण अवयव का कारक के रूप में होता है। पशुओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में लगभग 60-70% कुल लागत का अकेले चारा उत्पादन पर ही, या जैसे दाना वगैरह हम खिलाते हैं उस पर आती है। अधिकांश पशुपालक अपने जानवरों को या मवेशियों को भूसा, पुआल, कड़वी या सूखा चारा देते हैं
0: जी।
2: जो पशु पोषण के लिए उपयुक्त एवं संतुलित आहार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार पशुपालकों के लिए आवश्यक है कि उनके पास उपलब्ध जो सीमित संसाधन हैं उनसे वो साल भर हरा चारा का प्रबंधन किस प्रकार करें। चूंकि कृषि प्रधान देश में कृषकों का मुख्य व्यवसाय कृषि के साथ साथ पशुपालन भी है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। वर्तमान पशुपालन की जो संख्या है उसको अगर हम देखते हैं तो हरा चारा उत्पादन देश में आज भी संतोषप्रद उसकी स्थिति नहीं है।
0: अच्छा।
2: एनिमल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में पूरे देश में लगभग 536 मिलियन पशुपालन होता है, जबकि कुल कृषिगत क्षेत्रफल का ये अगर हम चारे के लिए बात करें तो लगभग 5% भूभाग पर ही इस हरे चारे का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रकार अगर हम पशुपालन के आंकड़े के अनुसार अगर हम क्षेत्रफल पे जो उत्पादन हरा चारा की प्रति इकाई किया जाता है तो उस प्रकार देखते हैं तो यह है बहुत कम है। आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि देश में हरे चारे की उपलब्धता बहुत आवश्यकता से भी कम है
0: जी।
2: देश में हरे चारे के फसलों को बहुत कम क्षेत्रफल पर बोया जाता है। किसी भी किसान से अगर हम बात करते हैं, हरे चारे के लिए सलाह देते हैं, तो वो अपना जल्दी से तैयार नहीं होते हैं, ना ही वो हरा चारा उत्पादन करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता मुख्य रूप से दलहनी, तिलहनी और अन्य जो अनाज की फसलें हैं,
0: डायरेक्ट बाजार में,
2: हाँ, बाजार में बिकती है और उसको कैश मिलता है और जिससे अपने परिवार का वो भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार वो चारे के लिए उतना जल्दी आकर्षित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अकेले चारा उत्पादन के लिए अगर हम कहते हैं तो वो जगह किसान निकालना असंभव है। अगर हम अकेले बिहार राज्य की बात करते हैं तो हमारे यहाँ आज भी वर्तमान समय में लगभग 272 या उससे अधिक लाख पशुपालन होता है और इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और कुल फसल आच्छादित क्षेत्रफल हमारे यहाँ लगभग 80 लाख हेक्टेयर है, तथा शुद्ध बुआई क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल 56 लाख हेक्टेयर के आसपास है। लेकिन कुल कृषिगत योग्य जो भूमि है हमारा, उसका 1% से भी कम क्षेत्रफल पर हरे चारे का उत्पादन किया जा सकता है, या किसान लोग करते हैं। अगर हम इसकी ज़रूरत की बात करते हैं तो एक स्वस्थ पशु को, स्वस्थ मवेशी को, बॉडी वेट के हिसाब से जो व्यस्क हमारा मवेशी होता है, उसके लिए 24 घंटे में उसको स्वस्थ रहने के लिए लगभग 10 से 12 किलो हरा चारा चाहिए। लेकिन चारे की उपलब्धता को देखते हुए आज के समय में केवल 3 से 4 किलो ही हम हरा चारा उत्पादन ले पा रहे हैं, जो पशु के स्वास्थ्य के लिए एक चिंता की बात है। तो इसलिए ये अब हमारे पास किसानों के पास इसके सिंचाई के साधन या चारा उगाने के लिए जो संसाधन है वो बहुत सीमित हैं। जनसंख्या और पशुपालन की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आमतौर पर अगर देखा जाए तो दूध का उत्पादन मई महीने से और जुलाई महीने में बहुत कम हो जाता है, जिसका अगर हम प्रमुख कारण देखते हैं तो वो चारे की कम मात्रा में उपलब्ध होना है, या फिर इसके अलावा हम पूरे वर्ष काल में अगर देखते हैं तो दिसंबर से फरवरी तक भी पशुओं को हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता। इस प्रकार हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए कृषिगत जो भूमि है उससे तो उसकी भरपाई करना संभव नहीं है, क्योंकि राज्य सहित पूरे देश में बढ़ती आबादी के लिए खाद्यान्नों, दालों और सब्जियों की खेती करना भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जलवायु के बदलते परिवेश में, और या कहें कि पशुपालकों की आवश्यकता को देखते हुए, तो ये एक बहुत कारगर तकनीकी है, जिसका नाम हमने या वैज्ञानिकों ने एक हाइड्रोपोनिक तकनीकी के रूप में इसको इजाद किया है और विकसित किया है।
0: जी।
2: ऐसी परिस्थिति में जहाँ जमीन बहुत कम है या जो भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों के लिए ये मृदा विहीन फसलोत्पादन, जिसको हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी कहते हैं, उस विधि से पशुओं के लिए पौष्टिक चारा एवं सब इसके साथ साथ ही जो विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमुख चारे हैं जो इस तकनीकी द्वारा सुगमता पूर्वक उगाए जा सकते हैं, उनको हम उगा करके और बिना मिट्टी के उसको नियंत्रण कक्ष में इसको उगा करके, इस तकनीकी का हम प्रयोग करके हरा चारा आसानी से उगा सकते हैं।
0: जी।
2: दूसरा जो अभी पूछा कि ये हाइड्रोपोनिक तकनीकी है क्या, इसके बारे में देखिए हम बता दें, वैसे तो ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की यहाँ 1936 में लगभग भारत में इसको लाया गया था, और हमारे देश के प्रमुख ऐसे राज्य हैं जैसे गोवा है, केरला है, तमिलनाडु है, और झारखंड के कुछ हिस्सों में इस विधि से, इस तकनीकी का प्रयोग करके हरे चारे का उत्पादन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक बिहार में यह तकनीकी विकसित नहीं हो सकी है। उसके लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रयास से तो हम लोगों ने यहाँ इस पे कभी काम शुरू किया है। तो मुख्य रूप से जो मृदा विहीन फसलोत्पादन है या हाइड्रोपोनिक है, इससे तात्पर्य पौधों को बिना मिट्टी के अर्थात जल संवर्धन विधि द्वारा पौधों को उगाए जाना है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से पौधों के लिए सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या पोषक घोल जिसको कहते हैं, वो पौधों की जड़ों में दिया जाता है। मृदा द्वारा खेती करने में जितना पानी लगता है उसका केवल 15 से 20% पानी का ही हम प्रयोग करके इस तकनीकी द्वारा और बहुत बढ़िया पौष्टिक हरा चारा प्राय उगा सकते हैं।
0: जी, तो यहाँ पर किसान भाइयों और साथ ही पशुपालक भाइयों, आपने जाना कि हाइड्रोपोनिक तकनीक की आवश्यकता क्यों पड़ी, और साथ ही इस ये तकनीक क्या है, और इसके साथ ही सर अब ज़रूरी होता है कि हम जानें कि हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा हरा चारा कैसे इसका उत्पादन
2: जी,
0: किया जाए।
2: देखिए ये भी बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारे किसान भाई इसके प्रति आकर्षित होंगे तो उससे पहले उनके मन में प्रश्न जरूर आएगा कि हम ये जो तकनीकी है इसका प्रयोग हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो यह जो मृदा विहीन फसलोत्पादन है या हाइड्रोपोनिक तकनीकी द्वारा हरे चारे का उत्पादन है, इस तकनीकी में मुख्य रूप से जिसमें फसलों को बिना खेत में लगाए हुए केवल पानी और पोषक तत्वों के घोल के रूप में ही देकर उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीकी द्वारा मुख्य रूप से हम मक्का, मकई, जौ, जई तथा गेहूं को हरे चारे के रूप में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। हरे चारे के लिए जो चयनित फसल के बीज हैं वो केवल स्वस्थ होने चाहिए, इसमें किसी विशेष प्रभेद की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी प्रकार का प्रभेद है, चाहे उसकी प्रकृति लंबे पौधे की हो या छोटे ड्वार्फ नेचर का हो, किसी भी प्रकार का पौधा है जो हमने अभी नाम बताए हैं, जैसे मकई है, जौ है, जई है तथा गेहूं का, किसी भी प्रकार का प्रभेद, बस बीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसको हम उन बीजों को हम अंकुरित करके और उनको नियंत्रण कक्ष में आगे जो अभी हम आपको बता रहे हैं उस प्रकार हरे चारे के लिए जो चयनित फसल हैं उनके बीजों को हम जो नॉर्मल पानी होता है, शुद्ध पानी है, उसमें हम जितने पानी में वो बीज आसानी से डूब जाएं उतना नॉर्मल पानी ले करके 6 से 8 घंटों तक उसको डुबो करके रखा जा सकता है। और रखने के पश्चात बीजों को निकालने के बाद जो जूट या गनी बैग होता है उसको हम उसमें डाल देते हैं, और डालने के बाद उसका मुंह को थोड़ा ढीला करके छोड़ देते हैं और उनको लगभग 24 घंटे के लिए और अंधकार में जहां प्रकाश नहीं हो इस तरह उसको छोड़ देते हैं। ध्यान रहे कि उसमें पर्याप्त नमी हमेशा बनाए रखे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं जो गनी बैग में हमने बीज को ओवरनाइट रखते हुए उसमें डाला है, 24 घंटे के पश्चात ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रभेद हमने आपको फसलों के बताए हैं उन बीज वो अंकुरित हो जाते हैं। वो अंकुरित बीज को एक ट्रे होती है, क्योंकि हर एक ट्रे का एक अलग अलग एक मानक के आधार पर उसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है, आमतौर पर 3 फीट लंबी और 1 से 1.25 फीट चौड़ाई की एक प्लास्टिक ट्रे होती है, और जिसका लगभग 1 से 1.5 इंची गहराई उस ट्रे की होती है, और उसमें अंकुरित बीजों को समान रूप से फैला करके और उनमें जई ले लेते हैं, मकई लेते हैं। अगर मकई का हम पैदा करना चाहते हैं हाइड्रोपोनिक तकनीकी से, तो उस आकार की एक ट्रे में लगभग 1 से 1.25 किलो बीज, अगर हम जौ या जई या गेहूं का अगर हम बीज इस विधि से उगाना चाह रहे हैं तो लगभग 800 ग्राम बीज अंकुरित होने की अवस्था में उसको समान रूप से फैला दिया जाता है। नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष से तात्पर्य ये होता है कि जो उसमें वातावरण जो जितना पौधे की बढ़वार के लिए चाहिए वो उसमें एक आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से उसमें नियंत्रित किया जाता है, और एक विशेष प्रकार का ढांचा होता है जिसमें हम स्प्रिंकलर या ड्रिप फर्टिगेशन ऑटोमेटिक उसमें फिक्स होता है, और वह उसको एक कंट्रोल यूनिट से नियंत्रण कक्ष के और उसमें लगाया जाता है। उसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, अगर हमारे पास लाइट है, बिजली प्रकृति में है, सूर्य का प्रकाश उसमें है, तो वो शीशे की जो खिड़कियां होती हैं उनके माध्यम से पौधों को मिलता रहता है, और अगर क्लाउडी वेदर है, मौसम बादल छाए हुए हैं, तो वो सेंसर्स उसमें लगे हुए होते हैं। यह तकनीकी या वह प्रणाली पूर्ण रूप से एक नियंत्रण कक्ष में ही होती है, और अनुकूल वातावरण के चलते हुए जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस होते हैं, पोषक घोल होते हैं, वो स्प्रिंकलर द्वारा उतनी ही मात्रा में जितने उस आवश्यकता अनुसार पौधे को दिए जाएं, वो प्रतिदिन के हिसाब से शेड्यूलिंग करके इरिगेशन का 2 से 3 बार 24 घंटे में उसमें दिया जाता है। इस प्रकार अंकुरित बीजों की बताए गए विधि के अनुसार अगर हम तैयार करते हैं तो इस प्रकार नियंत्रण कक्ष में लगभग 8 से 9 दिन में हरा चारा तैयार हो जाता है। नियंत्रण कक्ष में वो जो अंकुरित बीज हमने ट्रे में समान रूप से फैलाए थे, और इस प्रकार 24 घंटे में 2 से 3 बार शेड्यूल करके इरिगेशन जो पोषक तत्वों का घोल के अनुसार हम देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो 8 से 10 दिन में नियंत्रण कक्ष में वो करीब 30 से 40 सेंटीमीटर ऊँचे उसमें पौधे वो तैयार हो जाते हैं हरी अवस्था में। तो इस प्रकार हम 8 से 10 दिन बाद नियंत्रण कक्ष में इसको आसानी से हरा चारा तैयार करके और सीधा उसको हार्वेस्ट करके ट्रे को बाहर निकाल करके और उसको सीधा रूप में हम उसको मवेशी को, जानवर को, इसको हम गाय, भैंस, बैल या जिससे भी हम पशुओं से हैं, इवन पिग हैं, पिग फार्मिंग करते हैं, गोट फार्मिंग हम लोग किसान भाई करते हैं, सभी को पौष्टिक गुणवत्ता युक्त हरा चारा 8 दिन में नियंत्रण कक्ष की सहायता से उपयुक्त बताई गई विधि के अनुसार पौष्टिक हरा चारा लगातार जी हम आसानी से प्राप्त कर सकते
0: जी
2: हैं।
0: जी, तो पशुपालक भाइयों और किसान भाइयों, आपने यहाँ पर पूरी विधि जानी कि कैसे हाइड्रोपोनिक तकनीक से चारा उत्पादन किया जाता है, और इसके साथ ही अंत में वैसे तो हमने जाना कि डॉक्टर साहब की जो है जल की जो खपत है वो कम होती है, इसके बाद मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती, जो भूमिहीन किसान है वो भी इस तकनीक से चारा उत्पादन कर सकते हैं। क्या इसके अलावा भी कुछ लाभ मिल सकता है किसान भाइयों और साथ ही पशुपालक भाइयों को इस तकनीक को अपना कर, तो कृपया उसे भी बताएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किसान कोई भी तकनीकी अपनाने से पहले वो उसमें हर तरह का फायदे का वो जानना चाहता है। इस तकनीकी के बहुत अच्छे ऐसे फायदे हैं, अगर हम जो पारंपरिक खेती किसान करता है उसकी तुलना में अगर हम हाइड्रोपोनिक या मृदा विहीन फसलोत्पादन के माध्यम से या इस तकनीकी के माध्यम से हरा चारा उगाने की बात करते हैं, तो यहाँ हम एक तुलनात्मक एक अध्ययन कर लेते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम मृदा पे आते हैं, मिट्टी। अगर हम पारंपरिक खेती की बात करते हैं तो इस पद्धति में मिट्टी के बिना पौधे को उगाना असंभव है।
0: बिल्कुल,
2: ये आप भी जानते हैं कि किसी सभी किसान भाई सब पशुपालक जानते हैं, कोई भी बीज बिना मिट्टी में डाले हुए उसका उगना असंभव है, जबकि हाइड्रोपोनिक तकनीकी द्वारा मिट्टी की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। इसमें हाइड्रोपोनिक तकनीकी से हरा चारा उगाने के लिए मिट्टी के स्थान पर हम जो मीडिया में जैसे कोकोपीट है जी, कोकोपीट है या और दूसरा अन्य विधियों में, या डायरेक्ट भी हम उसको पोषक घोल के माध्यम से अंकुरित बीजों को चूंकि सीधा ट्रे में डाल रहे हैं तो उसमें और नियंत्रण कक्ष में वो 8 से 10 दिन में तैयार पौष्टिक चारा हो रहा है और सीधा हम उसकी फीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें मिट्टी की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अतः ऐसे किसान जिनके पास जमीन बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए एक बिल्कुल ये रामबाण है, और भूमिहीन किसान इससे बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं। दूसरा है मजदूरी व्यय। हम सभी जानते हैं कि अभी देखिए बाढ़ का प्रकोप है, पिछले एक महीने से पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है। ऐसी स्थिति में जो मवेशी रखते हैं, जो किसान रखते हैं, उनकी स्थिति देखिए बहुत दयनीय है, उनके पास सूखा हरा चारा किसी भी प्रकार का उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में पशुओं को पालना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसके चलते हुए ये जो हाइड्रोपोनिक तकनीकी है, जब बाढ़ भाई जमीन पर है तो हम इसको नियंत्रण कक्ष में जमीन से करीब करीब 3 से 4 फीट ऊंचाई पर इसकी जो मल्टी स्टोरी नियंत्रण कक्ष होता है वो बनाया जाता है, और अगर बाढ़ भी आ जाती है तो जमीन से चूंकि ये सतह से 3 से 4 फीट ऊंचाई पर है तो इसमें कोई बाढ़ से इसका बाढ़ से सूखा से या और कोई प्राकृतिक आपदा है उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मजदूरी व्यय की जहां तक बात है, अगर हम खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया करते हैं तो उसमें बहुत मजदूरी व्यय होता है। इस तकनीकी द्वारा अगर हम देखते हैं जो शुरुआत की कॉस्ट है, इनिशियल जो कॉस्ट होती है वो तो थोड़ी अधिक होती है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे साल तीसरे साल होते हैं तो इसमें केवल 2 से 3 मजदूरों के माध्यम से ही हम 8 से 10 मवेशियों के लिए प्रतिदिन जितना उसको एक स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त संतुलित आहार के लिए हरा चारा चाहिए वो 2 से 3 मजदूरों द्वारा ही हार्वेस्ट करके उनको आसानी से खिलाया जा सकता है। तीसरी बात आती है पेस्टिसाइड उपयोग की। सभी जानते हैं कितना एक क्लाइमेट चेंज के चलते हुए बहुत सारे कीट व्याधि रोग बहुत सारे हर फसलों में लगते हैं। अगर हम जमीन में बोएंगे तो कुछ ऐसी फसलें हैं हरे चारे की उनमें भी लगेंगे, उसके लिए देखिए प्रदूषित होती है जमीन भी होती है वातावरण भी होता है, हम खाते हैं तो एक उसके जो उसका अवशेष है वो अंदर बॉडी के जाता है, पशुओं में जाता है, दूध के माध्यम से फिर उसके अवशेष उसमें आते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी से नियंत्रण कक्ष द्वारा करते हैं तो पेस्टिसाइड का इसमें किसी भी प्रकार से इसमें प्रतिबंधित होता है उसका उपयोग करना। तो जो पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड का उपयोग हम पारंपरिक तकनीकी में करते हैं, हाइड्रोपोनिक तकनीकी में बिल्कुल नहीं किया जाता है। अब बात आती है इसकी पौष्टिकता की। जो पौष्टिकता है, प्रोटीन की मात्रा को मुख्य रूप से हरे चारे में वो देखते हैं हम। साधारण मात्रा में जो यही फसलें जैसे मकई है, मकई में लगभग 8 से 10, 10.5% तक क्रूड प्रोटीन पाया जाता है। अगर हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी से मकई को उगाते हैं तो उसमें लगभग 14 से लेकर 17% तक प्रोटीन होता है। अब आप देख सकते हैं जस्ट डबल मात्रा में हमको और केवल 10 दिन में प्रोटीन युक्त तो हरा चारा मिल रहा है, तो यह भी इस तकनीकी का एक बहुत अच्छा एक तकनीकी साबित है। दूसरा एक जलमांग की बात है, 1 किलो बीज की बुवाई करने के लिए लगभग 50 से 60 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है अगर हम पारंपरिक तकनीकी से खेती करते हैं, जबकि अगर हम हाइड्रोपोनिक तकनीकी से हरा चारा उगाते हैं तो केवल 1 किलो बीज के लिए हमको मात्र 2 से 3 लीटर ही पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा 90% तक पानी की बचत हम पारंपरिक विधि की तुलना में इससे हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्रफल की बात है, जैसा कि हम अभी बता रहे थे, भूमिहीन किसानों के लिए ये बहुत अच्छी उपयोगी विधि है, और किसान के पास अगर 4-5 मवेशी भी हैं, अगर हम पारंपरिक तकनीकी से करते हैं तो हमको या तो चरागाह में या किसी दूसरे के खेत में मवेशी को छोड़ना पड़ता है, या फिर हमको कम से कम 1 गट्ठा 2 गट्ठा या 1 बीघा 2 बीघा हमको जमीन जरूर चाहिए ही चाहिए उनको हरा चारा उगाने के लिए। जबकि अगर हम 4-5 की जगह 8-10 मवेशी भी अगर हमारे पास हैं, तो हम इस तकनीकी को स्थापित करने के लिए मात्र हमको 50 से 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ही सफिशियंट होता है। उतने क्षेत्रफल पर ही हम आसानी से उन पशुओं की भरपाई के लिए हरा चारा उपयोग कर सकते हैं। और जहां तक लागत की बात है, जैसा कि हम अभी बता रहे थे, केवल हाइड्रोपोनिक तकनीकी द्वारा जो इसकी शुरुआत के लागत है, जो इनिशियल कॉस्ट है, वो ही थोड़ी होती है। अदरवाइज जो दूसरे और तीसरे साल में अगर इसका मेंटेनेंस हम अच्छी तरह रखते हैं, तो केवल मजदूरी व्यय और बीज पे जो खर्चा आता है वो ही खर्चा होता है जी, बाकी इसके अलावा कोई खर्चा विशेष नहीं होता। और बाढ़ और सुखाड़ और किसी भी परिस्थिति में जो विषम परिस्थिति है प्राकृतिक आपदा के चलते, लगातार हरा चारा प्राप्त गुणवत्ता युक्त किसान भाई कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं दूसरा ये कि साल भर चाहे मौसम उसका है या नहीं है, बेमौसम में भी उसी हरे चारे को हम किसी भी मौसम में उसका उत्पादन करके दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहार राज्य में डेयरी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह तकनीकी बहुत ही अत्यंत लाभकारी है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे लगता है कि हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन एक तरीके से अगर हमारे बिहार में भी अपनाया जाए, खासतौर पर जब बाढ़ आ जाते हैं, जब सुखाड़ रहता है, तो उस समय इस तकनीक को अपनाकर बहुत फ़ायदा पा सकते हैं हमारे पशुपालक भाई, और अपने पशुओं को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि इसके हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन जो तरीका यहाँ पर बताया गया, उसके सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। तो अगले दिन एक अलग विषय के साथ फिर से हाजिर होंगे, हमें इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बज गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू देख कितने दोस्त हैं।
7: तीनू मीनू राजू पिन्नी और
6: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त
6: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर A&M दीदी से लेज की जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: जरूरी काम करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM

आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, जब हम फिल्मों की बात करते हैं, रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं और ऐसी रोमांटिक फिल्मों की बात करते हैं जिसका अंत बेहद दुखद रहा हो, तो उन फिल्मों में एक नाम सबसे ऊपर आता है। वो नाम है देवदास। देवदास का अंत हर किसी के दिल को छू गया था, हर किसी को रुला गया था और हर किसी को ये सोचने पर उस अंत ने मजबूर कर दिया था कि क्या कोई ऐसा प्रेमी हो सकता है देवदास। इस फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा और शायद आपको ये भी पता होगा कि फिल्म की कहानी एक नॉवल से इंस्पायर्ड थी और इस नॉवल को लिखा था शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बहुत ही कमाल के लेखक और ऐसे लेखक जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं, आज भी उनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अंग उमंग कार्यक्रम में हम शरद चंद्र के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाता अंग प्रदेश से रहा है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि देवदास का नाता अंग प्रदेश से रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों कुछ लोगों का ये मानना है और जो कुछ प्रचलित कहानियां हैं कि देवदास यही भागलपुर के कुछ जीवित किरदारों के ऊपर लिखा गया था। देवदास, पारो, चुन्नीलाल सभी मौजूद थे, अलग अलग नामों के साथ और थोड़े अलग किरदारों के साथ, थोड़ी अलग कहानी के साथ। दोस्तों, अगर हम शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 सितंबर 1876 में हुआ था। ये एक बंगाली नॉवेलिस्ट थे, छोटी कहानियां लिखा करते थे और ये ज़्यादातर बंगाली परिवारों के बारे में लिखा करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखा करते थे और गांवों के बारे में लिखा करते थे। इनकी जब आप कहानियां पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप जान पाते हैं कि ये चीज़ों को कितनी गहरी तरीके से ऑब्जर्व किया करते थे। जो इनके आसपास लोग होते थे उनके लिए इनके मन में सिंपैथी थी और बहुत ही गहरी समझ ह्यूमन साइकोलॉजी की, किस तरीके से लोग सोचते हैं, किस तरीके से औरतें सोचती हैं, बच्चे सोचते हैं, पुरुष सोचते हैं, उनके सोचने में क्या अंतर है, उनके रवैये में क्या अंतर होता है, ये चीज़ें उनके लिखने के स्टाइल को बहुत ही नेचुरल, प्राकृतिक बना देती थी। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो भी लिखा वो पॉलिटिकल बायसनेस से बिल्कुल दूर रहा और कोई भी सामाजिक भ्रांतियाँ भी उनके लेखनी में आपको नहीं मिलती है। उन्होंने हर तरह के रुकावटों को तोड़ा, ऐसी रचनाएँ लिखी कि कभी कभी कुछ शालीन घरों के लोगों ने उसे पढ़ने से परहेज भी किया। हाँ, देवदास ये उपन्यास जब प्रकाशित हुई थी तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस उपन्यास को पढ़ने से परहेज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे देवदास एक ऐसा नाम बन गया है कि अगर कोई प्रेम में डूब गया है, प्रेमी नजर आता है, तो हम बहुत ही आसानी से कह देते हैं, अरे क्यों देवदास बने फिरते हो। सोचिए कि इन्होंने कितनी गहराई के साथ एक ऐसा उपन्यास लिखा जिस पर न जाने कितनी सारी फिल्में बन गई है, पर आज भी देवदास ये कहानी लोगों को उतनी ही जानदार लगती है। 15 सितंबर 1876 में एक बंगाली ब्राह्मण के घर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म देवानंदपुर में हुआ था, एक छोटा सा गांव हुगली में। उनके पिता का नाम था मातीलाल और माता का नाम था भुवन मोहिनी। शरद चंद्र उनकी दूसरी औलाद थे और पहले बेटे। देवानंदपुर में आज भी उनका वो घर है जहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन इनके जो बचपन के दिन है वो हमारे अंग प्रदेश में बीता था। जी हाँ, इनका बचपन हमारे अंग प्रदेश में बीता। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखना बहुत ही कम उम्र से शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके पिता के पास कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं था जिससे घर बहुत आसानी से चल सके, जिसकी वजह से शरद चंद्र की पढ़ाई वो भी बहुत प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं हुई, क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर हम शरद चंद्र जी के बचपन के बारे में बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को तभी भागलपुर ले आया गया था जब वो बस 2 या 3 साल के थे। यहीं पर इन्होंने पढ़ाई की 5th या 6th क्लास तक और उसके बाद वो देवानंदपुर वापस चले गए। वहाँ पर उन्होंने पाठशाला में 2 साल पढ़ाई की और वहीं पर उन्होंने फिशिंग सीखा, राफ्टिंग सीखा और अलग अलग जगह पर वो घूमे। और 1886 में वापस उनके पिताजी के द्वारा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नामांकन यहीं भागलपुर के स्कूल में करा दिया गया। स्कूल का नाम था दुर्गा चरण मिडिल इंग्लिश स्कूल। यहाँ पर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल गया और इसके बाद यहीं पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने 1889 तक पढ़ाई की और 5वीं कक्षा में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। और 1889 में हुआ ये कि मातीलाल की नौकरी भी चली गई, चट्टोपाध्याय और उनकी फैमिली फिर से देवानंदपुर चले गए। वहां पर उनका दाखिला हुआ हुगली डिस्ट्रिक्ट स्कूल में। उनके पापा ने किसी तरीके से शरद चंद्र के लिए एक रूम अरेंज किया, हालांकि यहाँ पर भी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के लिए पढ़ना

0: बहुत आसान नहीं था क्योंकि उनके पिताजी सक्षम नहीं थे शरद चंद्र के पढ़ाई के खर्चे को उठाने के लिए। तो वापस वो 1893 में भागलपुर आ गए, जहां पर चट्टोपाध्याय जी का एडमिशन तेज नारायण जुबली कॉलेजिएट स्कूल में हो गया। और जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने पढ़ाई का खर्चा उठाना शुरू कर दिया। जब वो कॉलेज में थे तब चट्टोपाध्याय ने किताबें लिखनी शुरू कर दी थी। और इनके जो पहले इंस्पिरेशन थे, इनके पहले प्रेरणा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उपन्यास बनी। 1895 में चट्टोपाध्याय जी की माता का भी निधन हो गया। मातीलाल ने अपना जो भी पैतृक घर था 9 नवंबर 1896 में कहते हैं कि बेच दिया। और उसके बाद 1896 में मातीलाल ने एक घर किराए का लिया जो कि चंद्रशेखर सरकार का था। ये भागलपुर की एक बस्ती में था जिसे कि खंजरपाली नाम से जाना जाता था। इसके बावजूद शरद चंद्र ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इतने पैसे नहीं थे कि वो नई किताबें लेते और पढ़ाई करते, लेकिन जो किताबें सेकेंड हैंड होती थी, किसी से मांग लेते थे, उन्हीं किताबों में से वो पढ़ाई करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फाइनल एग्जाम के लिए कॉलेज के फी जमा कर पाए, लेकिन फिर भी इनकी पढ़ाई जैसे तैसे पूरी हो गई। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि शरद चंद्र के जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा, बचपन की, जवानी की जो उम्र थी, वो भागलपुर में बीती। 1894 में जब शरद चंद्र ने तेज नारायण जुबली कॉलेज में एडमिशन लिया था, तब उन्हें इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट आने लग गया था। जब उन्होंने पढ़ी अ टेल ऑफ टू सिटीज और डेविड कॉपरफील्ड, चार्ल्स डिकेंस की लिखी हुई ये किताबें थी, और इन किताबों को पढ़कर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को अंग्रेजी साहित्य में भी रुचि आने लगी। इसके बाद उन्होंने कई सारे पश्चिमी लेखकों को पढ़ा। जब इन्हें साहित्य में मजा आने लग गया था तो इन्होंने भागलपुर में एक चिल्ड्रंस लिटरेरी सोसाइटी बनाया। और ये सोसाइटी क्या करती थी कि जो भी हाथों से लिखे हुए मैगजीन होते थे उसे पब्लिश कराया जाता था। लेकिन 2 सालों के बाद ही शरद चंद्र की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ये 20 रुपए नहीं पे कर पाए थे जो कि इनका एग्जामिनेशन फी था, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई खत्म कर दी, बंद कर दी। और जब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और इनकी माता का भी निधन हो गया था 1895 में ही, तो इसके बाद शरद चंद्र अपने दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने लग गए थे, प्लेज में एक्ट करने लग गए थे, गेम खेलने लग गए थे, स्पोर्ट्स खेलने लग गए थे और बहुत ही गंभीरता के साथ साहित्य को अपना समय देने लग गए थे। कहते हैं कि उसी वक्त इनके अंदर बहुत सारी किताबों की बीज पड़ चुकी थी, बोर दीदी, चंद्रनाथ और देवदास। और फिर अचानक इन्होंने लिखना बंद कर दिया क्योंकि उन्हें ये आदत यूजलेस लगी, बेकार की लगी। और इसके बाद इन्होंने जो बोर दीदी लिखा था वो सन 1900 में पहली बार नोवेला के रूप में पब्लिश होकर आई। नोवेला आपको बता दूं कि उपन्यास से ये छोटी होती है पर कहानियों से बड़ी होती है, तो इसे नोवेला कहते हैं। और एक वक्त तो ऐसा भी था जब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चाहते थे कि वो कोई सन्यासी बन जाए। हालांकि वो सन्यासी बने या नहीं बने और इस दौरान उन्होंने क्या किया, इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जब इनके पिता की मृत्यु हुई तब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय वापस आए और इन्होंने अपने पिता का श्राद्ध किया। इनकी बड़ी बहन की पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन इनके जो भी छोटे भाई बहन थे उन्हें अपने एक दोस्त के पास या फिर कुछ रिश्तेदारों के पास छोड़ा और वापस ये कलकत्ता चले गए अपना लक आजमाने के लिए। कलकत्ता में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने 6 महीने काम किया। हिंदी के पेपर बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया करते थे एक वकील के लिए। जनवरी 1903 में शरद चंद्र वर्मा चले गए, जैसे कि आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। लेकिन बर्मा जाने से पहले अपने अंकल के जिद करने पर इन्होंने अपनी लिखी एक कहानी मंदिर एक कहानी प्रतियोगिता में भेज दी। और हुआ ये कि इनकी कहानी मंदिर पहला इनाम जीत गई। 150 कहानियों में से पहला स्थान प्राप्त करना बहुत छोटी बात नहीं थी। हालांकि मंदिर इनके अंकल के नाम पर पब्लिश हुई। तो इस तरीके से एक 27 साल के लड़के शरद चंद्र की पहली छपी हुई कोई कहानी बाहर आई। हालांकि बाद में इनकी बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियां आई जो कि इन्होंने बोर दीदी भी इन्होंने पब्लिश कराया था। सन 1900 में इन्होंने बोर दीदी पब्लिश कराया था, लेकिन उससे पहले ही मंदिर पब्लिश होकर आ गई थी। हालांकि ये इनके अंकल के नाम पर आई थी। शरद चंद्र ने बर्मा में 13 साल व्यतीत किए। वहां पर उन्होंने अलग अलग तरह के काम किया, लेकिन वहां पर भी इन्होंने पढ़ना नहीं छोड़ा। अलग अलग जगह से अलग अलग तरह की किताबें वो उधार लाते और पढ़ते, कभी साइकोलॉजी, कभी सोशियोलॉजी, कभी फिलॉसफी, इतिहास, न जाने कितनी सारी किताबें, कितनी तरह की किताबें उन्होंने पढ़ डाली थी। और इन्होंने तो थोड़ा बहुत पेंट करना भी शुरू कर दिया था। 1912 में इनके साथ एक दुर्घटना हुई, जिस घर में ये रह रहे थे वहाँ आग लग गई। इनकी जो भी पेंटिंग्स थी और इन्होंने एक उपन्यास लिखी थी चरित्रहीन, वो भी जल गई। हालांकि बाद में इन्होंने चरित्रहीन दोबारा लिखी और इन्होंने लिखना तो छोड़ दिया था, लेकिन 18 साल के बाद इन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया जब इनके एक जान पहचान वाले ने एक छोटा सा मैगजीन शुरू किया। लेकिन कोई भी उस छोटे स्तर पर शुरू किए गए मैगजीन में लिखने के लिए तैयार नहीं था, तो उनके जान पहचान वाले ने सरत चंद्र को ढूंढा, क्योंकि उन्हें पता था कि सरत चंद्र भी लिखा करते हैं या लिखा करते थे। तो सरत चंद्र के पास आए और थोड़ा मनाने के बाद सरत चंद्र मान गए और उनके मैगजीन के लिए बर्मा से ही सरत चंद्र ने अपनी एक छोटी कहानी भेजी, जमुना, और ये कहानी बहुत पॉपुलर हो गई। और एक ही दिन में सरत चंद्र चट्टोपाध्याय अपनी कहानी जमुना से फेमस हो गए। उसके बाद उन्होंने लगातार लिखना शुरू कर दिया और सरत चंद्र अपने बारे में मानते थे कि बंगाल में वो शायद इकलौते ऐसे लेखक थे जिन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। 1916 में उन्होंने अपने काम से रिज़ाइन किया और वापस कलकत्ता आ गए वर्मा से। 1916 में 40 साल के हो चुके थे सरत चंद्र चट्टोपाध्याय, हावड़ा आए और एक फुल टाइम राइटर बन गए। उनकी कहानियां पब्लिश हो रही थी, उनके उपन्यास के अंश सीरियल वाइज में पब्लिश होते थे मैगजीन में। कुछ कहानियों की बात करें तो जमुना के साथ ये सिलसिला शुरू हुआ था, बाद में नारायण, भारतवर्ष और उसके बाद में उनकी कुछ उपन्यास भी पब्लिश होने शुरू हो गए थे मैगजीन में। और जब इन्होंने अपने पहले उपन्यास को पब्लिश कराया था तो उसके लिए उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, या कहें कि पब्लिशर ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया था। और उन्होंने अपने दूसरे नॉवेल के लिए यानी कि विराज बाऊ के लिए 200 रुपये लिए थे और जो भी राइट्स थे पब्लिशर को बेच दिया था। और इनके जो भी लेखनी लोगों तक पहुँच रही थी वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे। और इसके बाद उनके किताबों से, उनकी कहानियों से, उनके नॉवेला से जो भी रॉयल्टीज मिल रहे थे वो सरत चंद्र चट्टोपाध्याय को गरीबी से निकाल पाने का काम कर रहे थे। 1918 में नॉवल ब्रिज बाऊ को स्टेज पर परफॉर्म किया गया था स्टार थिएटर में। उसी साल जेम्स एंडरसन ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, अ न्यू बंगाली राइटर। यहीं से सरत चंद्र चट्टोपाध्याय को अलग पहचान मिल गई थी। इस आर्टिकल ने सरत चंद्र चट्टोपाध्याय को वेस्टर्न रीडरशिप तक पहुंचाया। इसके बाद सरत चंद्र चट्टोपाध्याय की बहुत सारी किताबों को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। हालांकि मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से देवदास कहते हैं कि भागलपुर के कुछ किरदारों से प्रेरित था, कुछ अलग अलग किरदारों से बुनकर बनाई गई एक कहानी। भागलपुर बिहार के मंसूरगंज इलाके में नर्तकी का कोठी था और ये नर्तकी थी कालीदासी। इनका एक बड़ा कोठा था जिसे लगभग 45 साल पहले गिरा दिया गया, लेकिन आज भी इस कोठे से जुड़े, इस इलाके से जुड़े किस्से आपको स्थानीय लोगों से सुनने मिल जाएंगे। देवदास उपन्यास, जो कि 1901 में लिखा गया था और 1917 में प्रकाशित हुआ था, भागलपुर के पुराने लोग आज भी मानते हैं कि देवदास, पारो, चंद्रमुखी जैसे पात्र असल जिंदगी के असल इंसानों पर आधारित थे। मंसूरगंज की कालीदासी जो कि थी चंद्रमुखी, लोगों का कहना है कि वो बहुत सुंदर थी और शायद सरत उनसे प्रेम भी करते थे। कालीदासी के कोठे पे सरत और उनके दोस्त महादेव, जो कि शायद चुन्नी लाल हो गए उनकी कहानी में, अक्सर आते थे। और एक कहानी छिड़ती है कि महादेव का एक पर्स था, एक वॉलेट था, जो कि कालीदासी के पास रह गया था और कालीदासी ने उसे सरत को वापस दे दिया और कहा कि महादेव से कह दीजिएगा कि वो यहाँ इतने पैसे लेकर ना आया करे। और पारो की बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि पारो धीरू नाम की एक लड़की थी जो सरत चंद्र की बचपन की दोस्त थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि बंगाली टोला में राजबाला नाम की उनकी एक दोस्त थी, बाद में जिसकी शादी मुजफ्फरपुर में कर दी गई थी और राजबाला से ही इंस्पायर्ड थी, प्रेरित थी पारो की जिंदगी, पारो का किरदार। राजबाला सरत चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त थी और एक मान्यता तो ये भी है कि पारो असल में निरुपमा थी, ये एक सब जज की बेटी थी और सरत चंद्र की बहुत अच्छी दोस्त। कहा जाता है कि सरत चंद्र सारी शाम फतेह जंग के मकबरे में बिताते थे, जहां सरत बांसुरी बजाते थे अपनी दोस्त के साथ बैठकर। यानी कि शरद सच में अपनी असल जिंदगी में बहुत रोमांटिक थे, तभी शायद देवदास को इतनी गहराई से लिखा था उन्होंने। तो अगली बार आप देवदास फिल्म देखें या कहानी पढ़ें तो एक बार सोचिएगा जरूर कि ये कहानी जो लिखी गई थी किसी असल किरदार से प्रेरित थी, और शायद उनमें से किरदार खुद शरद चंद्र थे। 1901 में देवदास लिखा जा चुका था, 1917 में पब्लिश कर दिया जा चुका था, लेकिन उस वक्त जो बहुत नामी घराने के लोग हुआ करते थे वो देवदास पढ़ने से और अपने घर के बच्चों को पढ़ने देने से बचते थे, क्योंकि उसमें देवदास का किरदार ही कुछ ऐसा था, शराबी, नशे में मग्न रहने वाला हीरो और खुद की जिंदगी को खत्म कर लेने वाला हीरो। ऐसी कहानी को नहीं चाहते थे कुछ लोग कि बच्चे पढ़ें, लेकिन बाद में ये कहानी घर घर तक पहुंची, न जाने कितनी फिल्में बन चुकी है। कहते हैं कि कुल मिलाकर भारत में देवदास पर करीब 18 फिल्म बन चुकी है, और राष्ट्रीय फिल्म आर्काइव को यानी कि NFAI को 1935 की पहली टॉकी देवदास फिल्म बांग्लादेश से मिली थी। पाकिस्तान में बनी ये फिल्म, बंगाली में बनी, हिंदी में बनी, आसामी में बनी, उर्दू में, मलयालम में, तेलुगु में, न जाने कितनी ही भाषाओं में देवदास के ऊपर फिल्म बनाई गई, और सारी फिल्में सुपरहिट रही, लोगों को पसंद आई। वो कहानी जिसे कि एक वक्त पे अपने लाइब्रेरी में रखने से लोग परहेज करते थे, आज लोगों के दिलों में है। वो कहानी जिसने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो कहानी जो कि बताती है कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का नाता कितना गहरा है अंग प्रदेश के साथ। कहते हैं कि कहानी लिखने की जो बात है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय में शायद उनकी नानी से भी आई थी। कुछ बंगला साहित्य प्रेमी मानते हैं कि जब शरद चंद्र छोटे थे, एक छात्र थे, तभी से वो अपने अध्ययन कक्ष को बहुत सजा कर रखते थे। अलमारी पर जिल्द लगी उनकी किताबें करीने से सजी रहती थी। इनके सबसे छोटे परदादा अघोरनाथ गांगुली के बेटे मनिंद्रनाथ भी शरद चंद्र के सहपाठी थे, और उनकी माँ कुसुम कामिनी बहुत ही पढ़ी लिखी और साहित्य प्रेमी महिला थी, और वो हर सप्ताह महिला मंडली में बंकिम चंद्र, माइकल मधुसूदन जैसे बंगला लेखकों के उपन्यास पढ़ती, काव्य पढ़कर सुनाती थी। छोटे से शरद चंद्र भी उन्हें सुनते थे। एक बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनकर शरद चंद्र रो पड़े थे। आंसू पोंछते पोंछते वो गोष्ठी से बाहर निकल गए थे। साहित्य प्रेमियों का मानना है कि शरद चंद्र को साहित्य के प्रति रुचि जगाने में कुसुम कामिनी की इस गोष्ठी का अहम योगदान था। इसलिए नानी कुसुम कामिनी ही उनकी शायद पहली साहित्यिक गुरु थी, और उन्हीं के गोष्ठी में उन्होंने पहली बार रविंद्रनाथ की एक रचना सुनी, जिसे सुनकर वो रो पड़े, और बाद में उन्होंने उनकी बहुत सारी किताबें पढ़ी, और कहते हैं कि उनसे उन्होंने प्रेरणा भी ली। हमारे अंग प्रदेश की धरती पर केवल शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ही नहीं बल्कि कई साहित्यकार आए, और उन्होंने अपनी रचनाओं की प्रेरणा ली यहाँ से, और वो रचनाएं अमर हो गई, और इस तरह से हमारा अंग प्रदेश उनकी रचनाओं के हर शब्द में, हर अक्षर में अमर हो गया, और अंग प्रदेश की मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समा लिया। दोस्तों, आज अंग प्रदेश में इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। कहीं कोई चूक हो गई, कुछ छूट गया, इसके लिए माफी चाहूंगी। अभी के लिए मुझे यानी कि आपकी होस्ट और दोस्त उबा को दीजिए इजाजत। आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ बने रहिए।
1: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
2: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
2: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, डिमांड ड्रिवन मूवमेंट है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
2: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करे और ध्यान रखे कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाले। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर ले और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर ले, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोग ग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करे जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गला घोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात यह है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आप सभी के साथ इसी फ्रिक्वेंसी, जी हाँ 90.8 मेगाहर्ट्ज, जहां पर बातें होती हैं हरियाली से खुशहाली तक की। और ये है आपका अपना FM ग्रीन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। दोस्तों, उन्नत कृषि कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपकी समस्याओं का हल लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई। तो आज फिर एक जो सब्जेक्ट है, एक विषय है, हम लेकर आए हैं हमारे सभी किसान भाइयों के लिए। और किसान भाइयों, आज देखे जाते हैं कि तरह तरह के खाद उर्वरक आप इस्तेमाल करते हैं, और आज जिसकी बात हम करेंगे ये बहुत ही अच्छा है आपकी मिट्टी के लिए, आपकी मिट्टी को स्वस्थ बनाकर रखता है। यानी कि ढैचा को हरी खाद के रूप में हम कैसे अपनी मिट्टी को स्वस्थ बनाने के लिए इस्तेमाल करें, तो इसकी पूरी जानकारी आज आपको मिलेगी हमारे इस वार्ता को सुनकर। जी हाँ, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर शंभू प्रसाद, और ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, अभी तो बात हम कर रहे थे कि ढैचा को हरी खाद के रूप में हम कैसे अपनाएं, क्या फायदे हैं इसके, लेकिन सबसे पहले जो बात आती है वो ये है कि हरी खाद ये क्या होती है। हमारे किसान भाई तो बहुत जानते होंगे, लेकिन हमारे जो श्रोतागण हैं जो किसानी नहीं करते हैं वो भी इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, तो हरी खाद के बारे में थोड़ी जानकारी हमारे श्रोताओं को दें।
2: जी हाँ मैडम, हरी खाद एक तरह का सहायक फसल है, और खास करके हरी खाद उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्य रूप से भूमि में केवल पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए ही नहीं की जाती है, बल्कि उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है
0: जी।
2: और इसके प्रयोग से भूमि की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी होती है और भूमि की रक्षा भी होती है। प्रायः इस तरह की फसल को हरी अवस्था में ही हल या ट्रैक्टर के माध्यम से खेत में मिला दिया जाता है, और ये खेत के लिए, मिट्टी के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है।
0: अच्छा, मतलब जो चीज़ जिससे खाद बनाया जाता है वो हरी ही रहती है, वो उसे सुखाई नहीं जाती है।
2: जी हाँ, जी हाँ
0: जी। तो हरी खाद के प्रयोग के फायदे हमें क्या क्या मिलेंगे डॉक्टर साहब?
2: मैडम, हरी खाद के उपयोग से अनेक तरह के फायदे होते हैं। ना सिर्फ यह नेत्रजन की मात्रा को भूमि में उपलब्ध कराता है, बल्कि मिट्टी या खेत की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में भी सुधार करता है
0: जी।
2: इसके माध्यम से वायुमंडल तथा भूमि के प्रदूषण की जो समस्या आज हमारे सामने है वो भी या तो कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। और इसके साथ ही साथ इसके प्रयोग से भूमि में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसको सूक्ष्म तत्व भी बोलते हैं,
0: सूक्ष्म पोषक
2: की भी आपूर्ति होती है, साथ ही साथ मृदा की उर्वरा शक्ति भी बेहतर हो जाती है। हरी खाद के प्रयोग से मृदा तो भुरभुरी हो ही जाती है और उसमें वायु का संचार भी ठीक से होने लगता है, मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, मृदा की अगर उसमें एसिडिटी है, अम्लीयता है या क्षारीयता है, तो उसमें भी सुधार होता है, और सॉइल इरोजन की जो समस्या है वो भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हरी खाद के प्रयोग के अनेक फायदे हैं जिसे निश्चित रूप से अपनाने की जरूरत है
0: जी। सौ बात की बात कहें तो ये मिट्टी के लिए बहुत ही गुणकारी है, ये मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखता है, इसी के लिए हरी खाद बहुत ज़रूरी है हमारे फसलों के लिए। अगर फसलों की बात यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो हरी खाद के लिए हमें किस प्रकार के फसलों का चयन करना चाहिए?
2: देखिए मैडम, हरी खाद के लिए मुख्य रूप से दलहनी फसलों जिनमें वायुमंडल से नेत्रजन को अवशोषित करने की क्षमता होती है
0: जी,
2: उसका प्रयोग किया जाता है। और इन फसलों में सनई, ढैंचा, लोबिया, उड़द, मूंग, ज्वार, ग्वार प्रमुख हैं। इनका प्रयोग हरी खाद के लिए किया जाता है। और अगर ये उपलब्ध नहीं है तो विशेष परिस्थिति में कभी कभी सरसों का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हरी खाद के द्वारा मैक्सिमम बायोमास या कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में मिलाया जाता है। तो दूसरे फसल जैसे मैंने बताया कि सरसों के फसल को भी हरी खाद के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो अपवाद है। प्रयास ये होना चाहिए कि जो दलहनी फसल है जिसमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधे के जड़ों में उस ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया बैक्टीरिया के माध्यम से जो होती है, तो जिन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की शक्ति है उन्हीं फसलों को हम चयनित करते हैं, और ये खास करके दलहनी फसलों में होता है। इसलिए दलहनी फसल को हरी खाद के रूप में
0: दलहनी फसल को हरी खाद के रूप में हम चयन कर सकते हैं। और ढैचा की बात हम करें तो अभी आप डॉक्टर साहब आपने बताया कि हमें ढैचा फसल को हरी खाद के रूप में अपनाना चाहिए, तो इस बात पर डॉक्टर साहब आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये भी समझाइए हमारे किसान भाइयों को।
2: देखिए मैडम, इसके पीछे भी कई राज हैं, कई कारण हैं, और इसके पीछे भी हम लोगों का भी वैज्ञानिक के रूप में बहुत सारे अनुभव हैं
0: जी,
2: जो मैं अपने किसानों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसके आधार पर मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध और निवेदन भी करना चाहता हूं कि ढैंचा को हरी खाद के रूप में अपनाने के कई एक फायदे हैं, और उसको अगर मैं गिनाना चाहूँगा तो पहला ये फायदा है कि ये जो ढैंचा है इसमें सुखार की समस्या अगर आती है खेत में तो सुखार को ही बर्दाश्त करने की क्षमता है। अगर अतिवृष्टि हो गई तो उस कंडीशन में भी, उस स्थिति में भी ये मरता नहीं है, इसके पौधे जिंदा रहते हैं, और फिर जब परिस्थिति समान होती है तो फिर उसकी बढ़वार अपने आप बहुत तीव्र गति से होती है
0: जी।
2: समस्या ग्रसित भूमि अगर है जैसे क्षारीय है तो उसमें इसकी खेती या इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करना काफ़ी श्रेयस्कर होता है। और इसका जो सबसे बड़ा कैरेक्टर है वो है इसमें बहुत तीव्र गति से ग्रोथ होता है, और हरी खाद का जो मूल मकसद है, उद्देश्य है, वो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बायोमास मिट्टी को दिया जाए। तो ढैंचा से हरी खाद जो है काफ़ी मात्रा में मिट्टी को मिल जाती है, क्योंकि इसकी बढ़वार क्षमता ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज लीव्स और इसकी जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करना श्रेयस्कर होता है। इतना ही नहीं, इसके प्रयोग से खरपतवार की भी समस्या कम हो जाती है, क्योंकि खरपतवार की तुलना में इसका ग्रोथ काफ़ी फास्ट होता है, तो खरपतवार भी ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाता है खेतों में, तो खरपतवार की समस्या भी कम हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा और किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि अगर ढैंचा को हरी खाद के रूप में आप प्रयोग करते हैं तो एक एकड़ में लगभग 30 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो नेत्रजन अर्थात लगभग 65 किलो ग्राम डीएपी के आसपास, उससे जो नेत्रजन हमको मिलेगा उतना नेत्रजन प्रति एकड़ के हिसाब से मिल जाता है। तो इस तरह से फसलों के लिए जो नेत्रजन की डिमांड है, मांग है, उसमें हम कमी ला सकते हैं ढैंचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करके
0: जी। तो अगर हम इसे बोना चाहते हैं, यानी ढैंचा को बोना चाहते हैं हरी खाद के लिए, तो समय क्या होना चाहिए, कब बो सकते हैं, और उसके लिए बीज और खाद की कितनी आवश्यकता होगी, और क्या सिंचाई की भी आवश्यकता होगी डॉक्टर साहब?
2: देखिए मैडम, ये ढैंचा एक बहुत ही सामान्य फसल है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा प्रक्रिया और ज़्यादा उर्वरक की मात्रा या सिंचाई के प्रबंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक खरीफ फसल है जो लगभग 45 से 60 दिनों में हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, और इसकी बुआई सामान्य रूप से जो करने की अनुशंसा है वो है प्री मानसून डेन, मतलब मानसून के पहले एक बारिश होती है, और उस बारिश के माध्यम से जो खेत में नमी मिल जाती है उस नमी का प्रयोग करके ढैंचा की बुआई की जा सकती है। और अगर अपने पास सिंचाई की व्यवस्था है तो सिंचाई के बाद भी खेत में इसकी बुआई कर सकते हैं, और ख़ास करके जो गेहूं की कटाई होती है तो उसके बाद अक्सर किसान खेत की जुताई करते हैं। तो यहाँ मैं किसान भाइयों से सुझाव देना चाहूँगा कि ढांचा के लिए आपको अतिरिक्त रूप से खेत की जुताई करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंचाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गेहूं की कटाई के उपरांत आप खेत की जुताई करते हैं तो उसी समय आप ढांचा को एक जुताई एक बार 9-10 कल्टीवेटर से नौफारा से जोत करके बीज ढांचा के बीज को आप खेतों में छीट दें, फिर दूसरी बार उसकी जुताई करके पाटा दे दें। खेत में नमी रहे या नहीं रहे, जैसे ही प्री मानसून रेन होगा, जैसे ही खेत में नमी आएगी, अपने आप इसका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र 16 से 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और ये स्थानीय तौर पर जो ढांचा का बीज उपलब्ध है उसको आप खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हैं खेतों में। इसमें किसी भी तरह के पोषक तत्व की भी अलग से डालने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसका बेहतर ग्रोथ हो तो उसके लिए आप दलहनी फसलों की तरह 40 किलोग्राम DAP प्रति एकड़ के हिसाब से आप ढांचा की बुआई के समय खेत में समान रूप से छींट करके मिला सकते हैं और ढांचा की बुआई कर देंगे। जहाँ तक सिंचाई का प्रश्न है तो मैंने पहले ही कहा आपको कि इसके लिए सिंचाई प्रबंधन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खाद, हरी खाद जो है, बहुत सस्ती हरी खाद है और किसानों का कम से कम खर्च हो ये व्यवस्था को भी शामिल करने की ज़रूरत पड़ती है आज के समय में, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। तो ढांचा को सिंचाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप प्रकृति के द्वारा जो नमी उपलब्ध होता है उसका प्रयोग करते हुए आप ढांचा की बुआई करें। अगर आपको सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, उस पर लागत खर्च कम हो रही है
0: जी,
2: तो आप 2-3 सिंचाई कर सकते हैं 10-15 दिनों के अंतराल पर। उस कंडीशन में जब सुखार की समस्या आ जाती है, मतलब बारिश बिल्कुल नहीं होती है, तो अन्यथा आपको सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही कम और सामान्य खर्च में आप ढांचा की बुआई हरी खाद के रूप में कर सकते हैं।
0: तो ये तो बात हो कि इस समय की कब बुआई कर सकते हैं आप हरी खाद के रूप में ढांचा की। और डॉक्टर साहब, अगर हम इसे खेतों में डाल रहे हैं तो किस प्रकार, क्या कुछ यहाँ पर विधि है इसे खेतों में डालने के हरी खाद के रूप में?
2: जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और किसान भाइयों को इसकी जानकारी भी होनी चाहिए कि ढांचा को हम कब अपने खेतों में हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि नियमता जो हम लोग सैद्धांतिक रूप से जानते हैं कि हरी खाद को दो तरह से इस्तेमाल करते हैं
0: जी।
2: एक को बोलते हैं इन सीटू, मतलब जिस खेत में आप उसको व्यवहार करेंगे उसी खेत में उसकी बुआई करना। दूसरा एक्सीटू, मतलब दूसरे खेत में ढांचा लगा हुआ है, वहाँ से आप वहाँ से काट करके उसको टुकड़े टुकड़े में काट करके अपने खेतों में जिसमें आप हरी खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसमें दूसरे खेत में लगे हुए ढांचे को काट करके आप ला सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी सुझाव देना चाहूँगा कि बेहतर ये होगा कि आप जिस खेत में हरी खाद के रूप में ढांचा को प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उसी खेत में उसकी बुआई करें, ताकि आपको ट्रांसपोर्टेशन या ढोने या काट कर लाने की समस्या और मजदूरी जो उस पर होगा उसमें भी बचत हो जाएगी। तो मेरा सुझाव ये होगा कि आप जिस खेत में ढांचा को हरी खाद के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं उसी खेत में ढांचा की बुआई करें, और ये जब 50-55 दिनों का हो जाए, अर्थात जब उसकी जो बढ़वार की अवस्था है वो कंप्लीट हो जाए और वो पुष्पन की अवस्था में आ जाए, और लगभग उस अवस्था में इसकी हाइट ऊंचाई लगभग 5.5-6 फीट की हो जाती है, और जितना बायोमास डेवलप होना होता है तब तक हो जाता है, तो उसी अवस्था में, मतलब जब पुष्पन प्रारंभ हो जाए, फूल आना प्रारंभ हो जाए, तो ठीक उसी समय आप इसको अपने खेतों में पलट दें। और पलटने के लिए भी कुछ प्रक्रिया करनी होती है, उसके लिए पाटा चलाकर मिट्टी पलटने वाले हल से फसल को मिट्टी में मिला दें, अथवा ट्रैक्टर में कैच व्हील लगाकर दो फारा से फसल को पलटकर खेत में मिला दें। और ख़ास करके धान गेहूं फसल पद्धति में अगर धान की जल्दी रोपाई करनी है तो तो ढैंचा को हरी खाद के रूप में 50 से 55 दिनों के जगह पर आप 30 से 35 दिनों में भी आवश्यकता अनुसार खेतों में पलट सकते हैं। और पलटने के लिए आप रोटावेटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करता है कि ये फसल को सीधा छोटे छोटे टुकड़े में काट देता है और एक बार में ही मिट्टी को मिला देता है। तो इस प्रकार से आप ढैंचा को जब वो 50 से 55 दिनों का हो जाए तब उसको ट्रैक्टर के माध्यम से, हल के माध्यम से या रोटावेटर के माध्यम से आप उसको खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें
0: जी। और अंत में डॉक्टर साहब, आप जाते जाते कुछ सुझाव इससे जुड़े हमारे किसान भाइयों को ज़रूर दें।
2: जी हाँ, किसान भाइयों से मैं खास करके विशेष अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी, हम सभी जानते हैं, किसान भाई भी अब जान गए हैं कि हमारी खेती में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है और उसका प्रयोग काफ़ी असंतुलित मात्रा में हो रहा है, इससे हमारी मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और साथ ही साथ हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है और जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। तो इस परिस्थिति में हमें अपनी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति को लंबे समय तक बनाए रखने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अपने खेतों में गोबर की खाद अथवा उसके सबसे उत्तम विकल्प के रूप में हरी खाद का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मवेशी की संख्या कम हो गई है, गोबर की खाद सब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, सारे किसान गोबर की खाद को खरीद के डाल भी नहीं सकते हैं, तो उसके विकल्प के रूप में हरी खाद का इस्तेमाल करना ही श्रेयस्कर है और उसके लिए ढैंचा का प्रयोग ही उत्तम विकल्प हो सकता है। तो मैं किसान भाइयों से ये निवेदन और अनुरोध करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप अपनी फसल पद्धति में ढैंचा हरी खाद को निश्चित रूप से समावेशित कर अपनी खेत की उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखें और खेत से स्वस्थ और अच्छा उत्पाद प्राप्त करके आप अपने आप को भी स्वस्थ रखें और पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और सभी सुनने वालों को भी ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। अगर आप ढैंचा को हरी खाद के रूप में अपनाते हैं तो आपकी मिट्टी ज़रूर स्वस्थ बनेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन आप सभी से और भी बातें होंगी एक अलग विषय के साथ। नमस्कार। उन्नत कृषि
3: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
4: खुद भी बचे देश भी बचाए।
5: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
6: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
7: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
6: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
7: 11 दोस्त?
6: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
7: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
6: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
7: लेकिन ऐसा क्यों?
6: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
7: टीकी तो इसका हल क्या है?
6: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्वस्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
7: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन सुनहरा।

0: अभी कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
7: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
0: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
7: आपकी सेहत की बातें,
0: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
7: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
0: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
7: वो कहाँ पर?
0: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
7: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
0: उन्नत कृषि। हेलो, नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और ये है आपका अपना पसंदीदा फ्रिक्वेंसी 90.8 MHz और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह उन्नत कृषि कार्यक्रम में होंगी उन्नत बातें, और अपने वादे को पूरा करते हुए हम एक रोज़ अलग अलग विषय आपको सुनाते हैं, और आज का भी ये खास विषय है। मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप सिंचाई विधि के बारे में। सिंचाई क्यों ज़रूरी है और साथ ही ड्रिप सिंचाई के बारे में विस्तार से आज हमारे जो एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर सनोज कुमार, कृषि अभियंत्रण विभाग बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको इसकी सारी जानकारी देंगे। तो सुनते रहिए और शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना ना भूलें। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
8: धन्यवाद।
0: सिंचाई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं कि सिंचाई का इस्तेमाल जो प्रमुखतः है वो किन किन कामों में किया जाता है।
8: किसान भाइयों, सिंचाई जल चक्रीय चक्र का एक महत्वपूर्ण अंग है, और सिंचाई का इस्तेमाल जैसे कि आप लोग समझते हैं कि खेतों में जरूरी पानी को डालने के लिए किया जाता है, वो तो है ही। इसको और भी अच्छे तरीके से कहें तो छोटी अवधि के अगर सूखा पड़ा या ऐसे ही दूसरे समय में जरूरी जल को प्रदान करने में होता है, या मिट्टी में अगर लवण आ गया है, नमक आ गया है, तो उसको घोलने के लिए भी हमको सिंचाई के पानी को डालना पड़ता है। अगर हम कृषि रसायन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे केस में भी हमको सिंचाई के पानी का इस्तेमाल करना है, पौधों को बढ़त के लिए तो करना ही है। साथ ही साथ पौधों को बढ़त के लिए, जो सिर्फ पौधे नहीं, उनके अगल बगल के जो वातावरण है उसको सुधारने के लिए भी सिंचाई जल का प्रयोग होता है, और कुछ रासायनिक एजेंट्स होते हैं उनको भी एक्टिवेट करने में इनका इस्तेमाल होता है। तो ये सब जो है, आप मुख्यतः आप कह सकते हैं कि ये सिंचाई के कार्य हैं।
0: तो सिर्फ खेती बाड़ी में ही नहीं और भी अन्य काम किए जाते हैं सिंचाई से, आपने जाना जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया। सर ड्रिप सिंचाई के बारे में आज हम जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस प्रणाली के बारे में, ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
8: ड्रिप प्रणाली सिंचाई की एक उन्नत विधि है जिसके प्रयोग से सिंचाई जल की पर्याप्त बचत की जा सकती है। यह विधि मिट्टी के प्रकार, खेत के ढलान, जल के स्रोत और किसान की दक्षता के अनुसार अधिकतर फसलों में अपनाई जा सकती है। ड्रिप विधि की सिंचाई दक्षता लगभग 80 से लेकर 90% होती है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ इस विधि से उपज की जो होती है गुणवत्ता बहुत ही उच्च क्वालिटी की होती है। रसायन और उर्वरकों का हम दक्ष इस्तेमाल कर पाते हैं। जल के विचालन एवं अप्रवाह में कमी आती है, खरपतवारों में कमी आती है और साथ ही साथ चूंकि हमारी दक्षता बहुत ज़्यादा है 80 से 90% है, तो जल की बचत की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई में इमीटरों और ड्रिपरों की सहायता से पानी जो है पौधे के जड़ों के पास डाला जाता है, यह मिट्टी के सतह अथवा उसके नीचे ये पानी पहुंच जाता है और इसकी दर है जो कि 2 से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे, अर्थात बहुत ही कम होती है। और जल्दी जल्दी सिंचाई करके मिट्टी में नमी का स्तर हम अनुकूल रख सकते हैं। ड्रिप सिंचाई के परिणाम स्वरूप जल अनुप्रयोग की दक्षता चूंकि बहुत उच्च है। विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में हम आपको कुछ देर में बताएंगे। जैसे कि अंत में ये कह सकते हैं कि ड्रिप सिंचाई आज की जरूरत है क्योंकि प्रकृति की ओर से मानव जाति को उपहार के रूप में मिली जल जो है असीमित और मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जल का उचित उपयोग करें। विश्व जल संसाधनों में तेजी से कमी हो रही है, सभी लोग जानते हैं।
0: जी बिल्कुल, ड्रिप सिंचाई के बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि जिस तरीके से ये जल की जो कमी हो रही है उस सिचुएशन में, उस समय में हमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली ही अपनाना चाहिए। इससे बहुत जल्दी सिंचाई होगी और साथ ही साथ पानी की भी बचत होगी। डॉक्टर साहब और भी अगर विशेषताओं की बात करें तो थोड़ी विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे।
8: ड्रिप सिंचाई पद्धति के इस्तेमाल से समय में और मजदूरी में जो खर्च होती है वो बहुत ही कम हो जाएगी। लंबे समय में आप देखेंगे तो जड़ क्षेत्र यानी कि जहाँ पर मिट्टी का पौधे का जड़ है में पानी सदैव जितना जरूरी है पौधे को उतना बना रहता है। जमीन में हवा या जल की मात्रा उचित क्षमता स्थिति पर बनी रहने से फसल की वृद्धि बहुत ही तेजी से और एक समान रूप से होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक पौधा बहुत आगे बढ़ गया, ऊंचा चला गया और एक नीचे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी पौधे आपको देख के ही लग जाएगा एक समान और उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होगी। फसल को हर दिन या एक दिन छोड़कर आप पानी दे सकते हैं और इसका सबसे बड़ा रूल है कि पानी को बहुत ही कम स्पीड, कम गति से दिया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2 लीटर से लेकर 20 लीटर प्रति घंटे की स्पीड पर पानी को इसमें छोड़ते हैं।
0: अच्छा, तो ये कुछ विशेषताएं हैं ड्रिप सिंचाई प्रणाली की और लाभ के बारे में बताएं डॉक्टर साहब।
8: ड्रिप सिंचाई के बहुत सारे लाभ हैं, उसमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कि उत्पादकता और गुणवत्ता। यानी कि टपक सिंचाई में पेड़ पौधों को प्रतिदिन हमको जरूरी मात्रा में पानी देना है, उससे उन पर तनाव नहीं रहता है, ठीक है। फलस्वरूप फसलों की बढ़ोतरी और उत्पादन दोनों में वृद्धि होती है। टपक सिंचाई से फल है, सब्जी है और कुछ अन्य फसलों के उत्पादन में देखा गया है कि 20 से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है। दूसरा पानी, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसकी दक्षता जो है पानी को लगाने की वो 80 से 90% है और इससे हम प्रैक्टिकली पाया गया है कि 30 से लेकर 60% तक पानी जो है ना, जो हम लोग जनरल इरिगेशन करते हैं, जनरल सिंचाई करते हैं, उसकी तुलना में बचा सकते हैं। अच्छा। तो आज के डेट में ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि पानी बचाना क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है। फिर जमीन, आपका अगर उबड़ खाबड़ जमीन है या लवण वाला है, क्षारयुक्त है, बंजर जमीन है, शुष्क जमीन है, पानी का कम रिसाव हो रहा आपकी जमीन से, यानी कि नीचे पत्थर वगैरह है, या बहुत कम वर्षा वाला एरिया है, समुद्र तटीय जमीन हो, कैसा भी जमीन हो, आप वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई बड़े आराम से कर सकते हैं। जो कि हम लोग जो जनरल इरिगेशन करते हैं, सरफेस इरिगेशन जिसको बोला जाता है, सतही सिंचाई विधि, वो नहीं कर सकते हैं। फिर है रासायनिक खाद। हम जो सतही विधि से सिंचाई करते हैं उसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

0: क्या है, हम चूंकि पौधे के जड़ के पास पानी देते हैं, इसकी वजह से खरपतवार उगेगा कहाँ, जहाँ पे पानी है, तो बहुत ही सीमित मात्रा में खरपतवार बनता है ड्रिप सिंचाई में, तो खरपतवार को हम बहुत हद तक इससे कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ फसल में कीट व रोग का प्रभाव है, तो टपक यानी कि ड्रिप इरिगेशन को हिंदी में टपक विधि भी कहा जाता है। इस विधि से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिनमें कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता जो है ना वो ज्यादा होती है, क्योंकि वो अच्छे से डेवलप किए गए हैं। कीटनाशकों पर होने वाले खर्च में ऑब्वियस है कि तब थोड़ी सी कमी आ जाएगी। फिर टपक सिंचाई में होने वाला खर्च जो है और कार्य क्षमता इसकी जो है, तो ड्रिप सिंचाई पद्धति उपयोग के लिए आपको शुरुआत में भले ही थोड़ा सा खर्च लगे, लेकिन आप एक बार जब लगा देते हैं तो सालों साल चलता रहता है, ठीक है। और कार्य क्षमता ऐसी है कि आप एक जगह बैठे बैठे आप पूरे खेत की सिंचाई को प्रबंध कर सकते हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। तो ये सब है जो मुख्य लाभ हैं।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसके बहुत सारे लाभ हैं जिस तरह आपने बताया, जैसे कि फर्टिगेशन के साथ साथ आप इस सिंचाई को कर सकते हैं, और अगर खरपतवार को आपको ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं देना है तो आप, क्योंकि ये जो सिंचाई है वो पौधों के जड़ में ही पानी देती हैं, तो इस तरीके से कुछ बहुत सारे लाभ हैं इसके। और डॉक्टर साहब, अगर घटक की बात करते हैं तो ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कौन कौन से घटक हैं?
0: ड्रिप सिंचाई प्रणाली के मुख्य घटक हैं जैसे कि नंबर वन है हेडर असेंबली, फिर है फिल्टर्स होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन बेस्ड हो सकते हैं, सैंड फिल्टर हो सकते हैं, स्क्रीन फिल्टर हो सकते हैं, यानी किसान अपनी जरूरत के अनुसार इसमें से फिल्टर का चुनाव कर सकते हैं। रसायन और खाद देने का साधन होता है वेंचुरी कहते हैं, फर्टिलाइजर टैंक होता है, ये जो फर्टिगेशन सिस्टम में यूज होता है, यही एक वेंचुरी होता है और एक फर्टिलाइजर टैंक होता है। इसके अलावा पानी को लाने के लिए स्रोत से आपके खेत तक, वहाँ मेन लाइन का प्रयोग होता है, फिर मेन लाइन को हम फिर एक अलग दूसरे पाइप से जोड़ते हैं जो कि सब मेन पाइप कहा जाता है, ठीक है। सब मेन पाइप के बाद आपका वाल्व होते हैं, लैटरल लाइन लगते हैं सब मेन पाइप में, फिर बहुत सारे इमीटर्स होते हैं, और इमीटर्स भी बहुत तरीके के आजकल मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन है, इनलाइन है, मिनी स्प्रिंकलर्स कहते हैं, कुछ जेट्स कहे जाते हैं। तो सबसे पहले था हेडर असेंबली। हेडर असेंबली मतलब बाईपास या नॉन रिटर्न वाल्व, यानी कि पानी एक बार उधर आ गया तो फिर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। एयर रिलीज वाल्व, ये सब यूजुअली इस्तेमाल होते हैं। टपक सिंचाई का दबाव और गति नियंत्रित करने के लिए बाईपास असेंबली का भी उपयोग किया जाता है, तो ये सभी चीज जो है वो हेडर असेंबली में आते हैं। फिर आता है फिल्टर। चूंकि हम इसमें नोजल्स को यूज करते हैं, नोजल्स यूज करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि पानी जो है पूरी तरीके से स्वच्छ होना चाहिए, उसमें कोई भी केमिकल, बालू वगैरह, कण, कोई भी दूसरा नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारा जो नोजल है वो खराब हो जाएगा, उसमें जाके फंस जाएगा, जैसे कि पानी हमारा निकलेगा नहीं। इसके लिए जरूरी है कि हम साफ पानी को यूज करें। साफ पानी को यूज करने के लिए क्या करना होगा, जब हम कुएं से या किसी स्रोत से पानी लेंगे तो उस पानी को हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद ही हम अपने मेन लाइन में छोड़ेंगे। तो फिल्टर जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोसाइक्लोन टाइप फिल्टर हो सकता है, सैंड एंड स्क्रीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो पानी में मौजूद मिट्टी के कणों, कचरा, काई आदि से ड्रिपर्स के छिद्र को जो है ना बंद होने की संभावना रहती है, और इस प्रक्रिया में स्क्रीन फिल्टर को यूज कर सकते हैं, सैंड फिल्टर या सैंड सेपरेटर, सेटलिंग टैंक का भी उपयोग किया जा सकता है। पानी में रेत अथवा मिट्टी होने पर हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर या फिल्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये सब फिल्टर हैं हमारे। अब सैंड फिल्टर के बारे में बोले तो सैंड फिल्टर होता है, ऐसा होता है कि एक बक्सा टाइप का है, समझिए उसके ऊपर एक ढक्कन है, तो ढक्कन को खोलकर बैकवॉश चालू करने के बाद फिल्टर के अंदर ना हाथ से उसमें बहुत सारा रेत जमा हो जाता है जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। फिल्टर से आने वाला पानी जो है ढक्कन से ऊपर ना निकलने दें, ये भी ध्यान रखना है। हाथ से रेत साफ करते समय अंदर के काले रंग के फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, उसको ऐसा नहीं हो कि बार बार टच करके उसको डिस्टर्ब करें, अदरवाइज वो टूट जाएगा। इससे रेत के स्क्रीन फिल्टर में जाने की आशंका बढ़ जाएगी और आपका फिल्टर काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा एक स्क्रीन फिल्टर होता है। सैंड फिल्टर अगर नहीं छान पाए आपके पानी की गंदगी को, वैसे केस में आपको स्क्रीन फिल्टर की तरफ जाना है, ठीक है। तो सैंड फिल्टर द्वारा नहीं छनने वाला जो बारीक कचरा होता है उसको हम स्क्रीन फिल्टर लगा के साफ करते हैं। इसके बाद रसायन और खाद देने का साधन जो कि फर्टिगेशन

0: के लिए कहा जाता है। तो टपक सिंचाई द्वारा रासायनिक खादों का प्रयोग वेंचुरी फर्टिलाइजर टैंक या फर्टिलाइजर पंप के माध्यम से किया जा सकता है। वेंचुरी क्या है? तो ये एक दबाव के अंतर पर चलने वाला यंत्र है और रासायनिक प्रक्रिया के समय खाद और रसायन जो है ना दोनों इसके द्वारा उचित ढंग से प्रदान किए जा सकते हैं पौधों के पास। और इस पद्धति से तरल पदार्थ पानी में उचित गति से डाले जा सकते हैं और इसके द्वारा 60 से 70 लीटर प्रति घंटे की गति से खाद को हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। एक घंटे में 60 से 70 लीटर फर्टिलाइजर का घोल को हम अपने खेत में डाल सकते हैं। और डालेंगे कहाँ? हमारे पास एक टैंक होना चाहिए। जो टैंक होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजर टैंक, यानी कि उसी टैंक से निकालेंगे ना खाद को और पाइप के थ्रू भेजेंगे नोजल के पास, ठीक है, या ड्रिपर्स के पास। तो इस टैंक में तरल खाद भरकर दाब नियंत्रण से रासायनिक द्रव्य और खाद तुरंत संयंत्र के अंदर छोड़े जा सकते हैं। यानी कि एक टैंक है जिसमें हमारा खाद का घोल बना रहता है, उस घोल से हम वेंचुरी के माध्यम से हम उस खाद को भेजते हैं मेन लाइन में। मेन लाइन से हो जाता है सब मेन में, सब मेन से जाएगा वो लेटरल में और लेटरल से जाएगा आपके ड्रिपर्स या नोजल, जो समझ किसान, ठीक है। तो ड्रिपर्स में जाएगा और वहाँ से पानी के साथ साथ आपका रसायन भी निकलता रहेगा। इसके बाद हमने बार बार टर्म यूज किया मेन लाइन। तो मेन लाइन है यह पंप से सब मेन तक, यानी कि पानी के स्रोत से सब मेन पाइप तक जोड़ने का एक साधन है, पानी पहुंचाने के लिए उपयोगी है। अब सब मेन क्या है? तो ये मेन को लैटरल पाइप से जोड़ता है। लैटरल पाइप सबसे पतले होते हैं, इनसे थोड़ा मोटा होगा आपका सब मेन, यानी कि इनका डायमीटर या व्यास ज़्यादा होगा और सब मेन से ज़्यादा व्यास होता है मेन लाइन का, ठीक है। और वो जाएगा लैटरल के पास। फाइनली लैटरल क्या होता है? लैटरल प्लास्टिक के पतले ट्यूब्स होते हैं, उनको पॉलीट्यूब भी कहते हैं। सबमेन का पानी पॉलीट्यूब द्वारा पूरे खेत में हम पहुंचा सकते हैं पौधों के पास। हर एक पौधे के पास आवश्यकता अनुसार पॉलीट्यूब के ऊपर हम ड्रिपर लगा देंगे। और लैटरल जो होते हैं ना वो LDPE लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन से बने होते हैं। अब जब लैटरल आ गया तो लैटरल के ऊपर अब हमको इमीटर्स या ड्रिपर्स लगाने पड़ेंगे। तो इमीटर्स और ड्रिपर्स क्या हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है ड्रिप सिंचाई का। ऑनलाइन हो इनलाइन ड्रिपर्स का प्रति घंटा प्रवाह और संख्या फसल की पानी की अधिकतम जरूरत के अनुसार निर्धारित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसान ऐसे ही कुछ भी लगा लिया, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा पौधा लगाया है, उस पौधे की डेली की जरूरत क्या है, उस जरूरत के हिसाब से ही उसके खेत का जो ड्रिप सिंचाई की विधि है उसको डिजाइन किया जा सकता है। इसके अलावा जगह जगह हम वाल्व्स का यूज करते हैं, तो पानी के प्रवाह और दबाव को हमको नियंत्रित करना होता है और ये बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि पानी मेन लाइन से सबमेन में आएगा, सबमेन से लेटरल में जा ही नहीं रहा। जब वो दबाव से नहीं जाएगा तो ड्रिपर से पास ही नहीं होगा पानी, ठीक है। तो हमको बहुत सारे वाल्व्स का प्रयोग करते हैं। सबमेन के शुरू में एयर रिलीज वाल्व यूज करते हैं या वैक्यूम रिलीज वाल्व, बहुत ही जरूरी है लगाना। अन्यथा क्या होगा, पंप को हम जैसे ही बंद करेंगे हवा के साथ साथ मिट्टी के कण भी अंदर खींच जाएंगे और वो सीधे चले जाएंगे आपके ड्रिपर्स के पास और उसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको बंद कर देंगे। और जैसे ही बंद होगा तो आपके ड्रिप सिंचाई विधि प्रणाली से एक भी पानी आपके पौधों तक नहीं पहुंचेगा। ना आप इरिगेशन कर सकते हैं, ना ही आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इमीटर्स और ड्रिपर्स का रेगुलर, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग ये है कि आप रेगुलर इसका देखभाल करते रहें, इसको चेक करना होता है
1: जी। तो ये बातें हो गई हैं ड्रिप सिंचाई के घटकों की। और डॉक्टर साहब, जो ड्रिप सिंचाई प्रणाली में जो हम संयंत्र यूज़ करते हैं, इसका यंत्र जो होता है, तो उसकी देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे कर सकते हैं उनकी अच्छी देखभाल?
0: सबसे पहले हर एक दिन पंप को शुरू करने के बाद क्या करना है कि संयंत्र के दबाव स्थिर होने पर, मतलब प्रेशर को कांस्टेंट होने पर, सैंड फिल्टर जो होता है उसमें लगा हुआ, उसको बैक वॉशिंग करना चाहिए डेली, ये काम होना चाहिए। और हाइड्रोसाइक्लोन जो है उसको हर एक दिन सफाई करने के बाद हर 5-6 घंटे, या पानी की गुणवत्ता, अगर पानी आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको सफाई करना पड़े। तो आपका पहला काम हो गया कि आप जो सैंड फिल्टर यूज कर रहे हैं और साथ ही साथ हाइड्रोसाइक्लोन सेपरेटर यूज कर रहे हैं, इसकी डेली सफाई कर रहे हैं। अगर आप सैंड फिल्टर के साथ साथ अगर आप दूसरे फिल्टर्स को यूज कर रहे हैं तो उसकी भी सफाई करें, सुनिश्चित करें। फिर फिल्टर की सफाई होने के बाद हमको क्या करना है, हेडर असेंबली। हेडर असेंबली में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जैसे कि नॉन रिटर्न वाल्व होगा, एयर रिलीज वाल्व होगा, बाईपास सिस्टम होगा। तो उन सबों को आप देख लें कि उचित दबाव पे वो काम कर रहे हैं या नहीं, या कहीं प्रॉब्लम है, कहीं जाम तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर खेत में निरीक्षण कर आपको ये भी देख लेना चाहिए कहीं किसी पाइप में टूट फूट तो नहीं हुआ है, या कहीं लीकेज तो नहीं हो गया है। अगर वो लीकेज हो गया है तो आप उसे ठीक कर लें, टूट फूट हुआ तो उसे ठीक कर लें। पाइप अगर कहीं मुड़ा हुआ है या दबा हुआ है तो उसको तुरंत सीधा करें,
1: अच्छा।
0: ठीक है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई में आप सभी ड्रिपर्स को आपको चेक करते रहना पड़ेगा रेगुलर, कि पानी हर एक से बराबर मात्रा में निकल रहा है, मतलब ठीक से निकल रहा है कि नहीं। अगर नहीं निकल रहा है तो उस ड्रिपर को आपको देखना पड़ेगा, कुछ फंस गया है या जो भी हुआ तो उसको आपको रिपेयर करना है।
1: अच्छा।
0: फिर है टपक सिंचाई प्रणाली जो है, पूरा जब एक बार जब हम चला देते हैं तो आप देख लीजिए कि आपका जमीन जो है पूरे का पूरा एक तरीके से भीगा है कि नहीं। कहीं पे हो सकता है पानी गया हो, कहीं पे नहीं, यानी जहाँ पे नहीं गया है वहाँ पे ऑब्वियस है कि वहाँ पे पानी का जो ड्रिपर लगाए हैं हमने वो खराब है, वो काम नहीं कर रहा, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखें कि आपका जो ड्रिपर्स है वो सही जगह पर लगे हैं कि नहीं, यानी कि पौधा है यहाँ पे और आपने कहीं 2 मीटर दूर कहीं पे लगा दिया तो उससे तो पौधे को पानी नहीं मिलेगा। पौधे को पानी चाहिए तो उसके जड़ के पास वो लगा रहना चाहिए। साथ ही साथ लैटरल और इनलाइन का अंतिम छोर जो है ना उसको खोल कर पानी को 1 से 2 मिनट के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें, ताकि पाइप में जितनी भी गंदगी हो, ठीक है ना, लैटरल पाइप को बोलते हैं, जितनी भी गंदगियां हो सारी के सारे निकल जाए बाहर, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बातें हुई यंत्र की, और फर्टिगेशन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये क्या होता है और साथ ही साथ इससे क्या फायदा हो सकता है।
0: फर्टिगेशन दो शब्दों, फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक, जिसको हिंदी में उर्वरक कहते हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन, जिसको हिंदी में हम सिंचाई कहते हैं, यानी कि उर्वरक भी डालना है और सिंचाई का पानी भी डालना है। जब दोनों काम एक साथ होता है तो उसको हम लोग उर्वरकीकरण या फर्टिगेशन कहते हैं। ड्रिप सिंचाई में जल के साथ साथ उर्वरकों को भी पौधों तक पहुँचाना यही इसका काम है। ड्रिप सिंचाई में जिस प्रकार ड्रिपर के द्वारा बूंद बूंद करके जल दिया जाता है, उसी प्रकार रासायनिक उर्वरकों को सिंचाई जल में मिश्रित करके उर्वरक को हम पौधे के जड़ के पास ड्रिपर के माध्यम से गिराते हैं। फर्टिगेशन उर्वरक जो है देने की एक सर्वोत्तम और अति आधुनिक विधि है, और फर्टिगेशन को फसल एवं मिट्टी की आवश्यकताओं के अनुसार उर्वरक और जल का समुचित स्तर बनाए रखने के लिए अच्छी तकनीक के रूप में भी माना जाता है। इससे हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। फर्टिगेशन जल और पोषक तत्वों के नियमित प्रवाह को सुनिश्चित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि दर और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फर्टिगेशन द्वारा ही पोषक तत्वों को फसल की मांग के अनुसार उचित समय पर जब भी जरूरत हो हम दे सकते हैं। फर्टिगेशन पोषक तत्वों की उपलब्धता और पौधों की जड़ों के द्वारा उनका उपयोग बढ़ा देता है, यानी कि हम उर्वरक को हम पौधे के पास दे रहे हैं, ना कि पूरे फील्ड में फेंक रहे हैं। आप खुद सोचिए कि अगर हम पौधे को जड़ के पास पानी दे रहे हैं तो पौधे पूरा का पूरा इस्तेमाल करेगा ज़्यादातर, वहीं हम हर जगह पानी डाल देंगे तो पौधा तो उसको इस्तेमाल नहीं करने जा रहा। उसी तरीके से फर्टिलाइजर अगर हम पूरे खेत में फेंक दें तो पौधे को तो जरूरत ही नहीं है, वो जहाँ पे फेंक दिया है उर्वरक वहाँ पे वो खरपतवार उगाएगा, है ना। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि पौधे के जड़ के पास देते हैं, ये सबसे बड़ी बेनिफिट है। फर्टिगेशन उर्वरक देने की एक विश्वसनीय और सुरक्षित विधि है, इससे पौधों की जड़ों को हानि पहुंचने का भय नहीं रहता है। साथ ही साथ फर्टिगेशन से जल और उर्वरक जो है पौधों के मध्य न पहुंचकर सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचते हैं, इसलिए पौधों के मध्य खरपतवार कम से कम संख्या में लगते हैं।
1: तो ये कुछ लाभ हैं फर्टिगेशन के, और आपने जाना कि फर्टिगेशन क्या है। और अब बात करते हैं सतही सिंचाई की, साथ ही अगर ड्रिप सिंचाई की बात करें तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि सतही सिंचाई विधि जो है इससे कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि।
0: सबसे पहला है जल की बचत। ड्रिप सिंचाई में हम पहले भी बोल चुके हैं कि 60% से लेके 70% तक की पानी की बचत की संभावना है सतही सिंचाई की तुलना में। सिंचाई का जल जो है सतह पर बहकर और जमीन में नीचे नहीं जाता है, जो कि सतही सिंचाई में होता है। जबकि सतही सिंचाई में होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी सूरज की गर्मी में वो ऊपर चला जाता है, वो हमारा बर्बाद हो गया, कुछ पौधे जो है अपने जड़ों में ले पाते हैं, और मैक्सिमम पानी तो ऐसे ही रहता है, जो पौधे से कोई लेन देन नहीं है, और जो ज़्यादा पानी डाल दिया वो पौधे के जड़ के नीचे चला गया, ठीक है, तो वो पानी तो पौधे का किसी काम का ही नहीं है। तो इस तरीके से बहुत कम दक्षता के साथ हम लोग सतही सिंचाई करते हैं, जिससे कि जल की बचत जो है ड्रिप सिंचाई में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसी तरीके से जल के उपयोग की दक्षता है, तो ड्रिप सिंचाई में ये पाया गया है कि हम 80-90% तक हम अगर सोर्स से पानी दे रहे हैं तो उपयोगी होगा पौधे के बढ़ोतरी में, जबकि सतही सिंचाई में ये सिर्फ 30-50% अगर बहुत अच्छा सेटअप बनाया हो तब। फिर साथ ही साथ श्रम की बचत है, ड्रिप संयंत्र जो है उसको लगभग प्रतिदिन शुरू और बंद करने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। आपको क्या करना है, आपके पास एक बटन होता है उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और अपने मोबाइल से भी ऑन ऑफ किया जा सकता है, बस उसका जो फिल्टर है उसको आपको देख लेना है, एक बार पूरे सिस्टम को चला के देख लेना है, उससे आपको पता चल जाएगा कहीं खराबी है अथवा नहीं। हाँ, अगर खराबी है तब आपको लेबर की जरूरत पड़ सकती है, अथवा लेबर की बहुत ही नगण्य जरूरत है, जबकि सतही सिंचाई में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है श्रम की। साथ ही साथ खरपतवार की समस्या, हम पहले भी बोल चुके हैं कि ड्रिप सिंचाई में चूंकि पानी पूरे खेत को नहीं भीगाता है, इसलिए खरपतवार की संभावना बहुत ही कम होती है, जबकि सतही सिंचाई में पूरे खेत को हम भीगाते हैं, जिसकी वजह से खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और उस पर खर्च भी हमारा ऑब्वियस है बढ़ेगा। फिर खारे जल का उपयोग, अगर हम ड्रिप सिंचाई यूज करते हैं तो हम बहुत सारे फिल्टर्स वगैरह लगाते हैं, जिससे कि हम उसको यूजेबल बना के, मतलब उपयोगी बना करके हम खेतों में भेज सकते हैं, लेकिन सतही सिंचाई जब हम करेंगे और खारे जल के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा पूरा का पूरा खेत ही लवण, मतलब साल्टी, ये सब हो गया और खेत बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। अगला है कि बीमारियों और कीड़े मकोड़ों की समस्या। देखिए, पौधों के आसपास वायुमंडल में नमी और सांद्रता जो होती है ना, वो कम होती है ड्रिप इरिगेशन में, इसलिए पौधों में बीमारियों और कीड़े मकोड़े लगने की संभावना कम रहती है, जबकि सतही सिंचाई में बीमारियों और कीड़े मकोड़ों के होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगला फायदा यह है कि अगर मेरे पास कोई सी भी मिट्टी हो, किसी भी तरीके की मिट्टी हो, हम सिंचाई वहाँ पर कर सकते हैं, हम पौधा मतलब वहाँ पर उगा सकते हैं, लेकिन सतही विधि में ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा रह सकता है, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे होगा, बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा तो वहाँ पे पानी जाएगा नहीं, जो बहुत ज़्यादा नीचे होगा वहाँ बाढ़ आ जाएगी, मतलब पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, पौधा हमारा ना नीचे जगह पे उगेगा ना ऊपर जगह। लेकिन ड्रिप में ऐसा नहीं है, चूँकि पाइपों से पानी जाते हैं और पौधे के पास ही जाके गिरने हैं उनको, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हमारे में नहीं आता है। हम अगला देखेंगे जल का नियंत्रण। जल का नियंत्रण मतलब हम एक वाल्व से या बैठे बैठे एक स्विच से हम पूरे का पूरे सिस्टम का इरिगेशन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, सतही सिंचाई में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उर्वरक उपयोग की दक्षता, जो कि फर्टिलाइजर होता है वो बहुत ही महंगे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो भी यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो हमारे लिए, ना कि वो हमारी वजह से वो खरपतवार बना दे, हमारे लिए एक अलग खर्चा बने, ठीक है। हम ड्रिप इरिगेशन करेंगे तो उर्वरक उपयोग की दक्षता बहुत ज़्यादा होती है सतही उपयोग की तुलना में। अगला प्रॉब्लम जो धीरे धीरे आ रहा है अब हमारे यहाँ भी, भूक्षरण, यानी कि धीरे धीरे जो मिट्टी जो है कटता जाता है। अब आप अपने खेत पे ही बहुत सारा पानी डाल दीजिए और थोड़ा भी अगर खेत में स्लोप होगा तो पता चलेगा मिट्टी का एक लेयर बह के दूसरे के खेत में चला गया या फाइनली नदी वगैरह में चला गया, नाला में। लेकिन हम ड्रिप इरिगेशन से करेंगे तो ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, पैदावार में बढ़ोतरी। जल्दी जल्दी सिंचाई से मिट्टी में जल का जो है टेंशन एक होता है टर्म, वो नहीं रहता और पौधों की वृद्धि बहुत तेजी से और अच्छे से होती है, ठीक है। और पैदावार हमारा 100% तक बढ़ सकता है ड्रिप इरिगेशन में, जबकि हमारा ये जो सतही विधि है उसमें जल का वितरण हम समान रूप से कर ही नहीं पाते हैं पूरे खेत में, उबड़ खाबड़ आने की वजह से, ठीक है। तो असमान वितरण होता है और उसकी वजह से, और साथ ही साथ सिंचाई में अधिक अंतराल में हम लेते हैं, है ना, तो उसकी वजह से मिट्टी का जो है, मिट्टी में जो एक जलीय तनाव होता है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से वो पानी जो है पौधे की जड़ तक नहीं पहुंच पाता है जितने उसकी ज़रूरत होती है, इस वजह से हमारा पैदावार में कमी हो जाती है।
1: जी, तो इस तरह श्रोताओं आपने जाना कि सतही सिंचाई विधि से कैसे बेहतर है ड्रिप सिंचाई विधि, और पूरी जानकारी आपको मिली है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारा जो फ़ायदा है वो ड्रिप सिंचाई प्रणाली को अपनाने में ही है। और आशा करते हैं कि इस वार्ता को सुनकर आपको बहुत जानकारी मिली होगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के बारे में। तो अगले दिन एक अगले विषय के साथ हम हाजिर होंगे इसी फ्रिक्वेंसी 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, सुनना ना भूलें FM ग्रीन और साथ ही उन्नत कृषि कार्यक्रम। नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक में हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80% और दोपहर में 25 से 30% रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए, जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगाई 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

में थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम राइफलमैन संजय कुमार। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।

0: बेटा संजय अब सो जाओ, बहुत रात बीत चुकी है।
1: लेकिन चाचा जी आपकी वो वाली कहानी तो अभी पूरी भी नहीं हुई है।
0: वो वाली कहानी? कौन सी कहानी बेटा?
1: वही जो कल आप सुना रहे थे चाचा जी।
0: अच्छा अच्छा, वो सेना वाली कहानी?
1: जी चाचा जी, वही सेना वाली कहानी जिसमें आपने बताया था कि जब दुश्मन टैंक लेकर आ रहा था तो आप लोगों ने कैसे उस टैंक को तोप से उड़ा दिया था।
0: अच्छा, तो मेरे संजय बेटे को सब याद है।
1: हाँ चाचा जी, मुझे सब याद है, लेकिन आपने नहीं बताया था कि बाद में क्या हुआ।
0: क्यों भाई, क्यों नहीं बताया था? जरा ये तो हमें बताओ।
1: क्योंकि आपको नींद आ गई थी ना। तो अब आगे बताओ ना चाचा जी, क्या हुआ?
0: हाँ तो संजय बेटा, उन दिनों मैं सेना में नया नया भर्ती हुआ था।
1: अच्छा।
0: अचानक पाकिस्तान ने हमारे देश पर हमला कर दिया। हाँ बेटा, लेकिन दुश्मन को क्या पता था कि हम किस मिट्टी के बने हैं। हमने उनके छक्के छुड़ा दिए। छक्के?
2: साथियों, ये वार्तालाप था बालक संजय और उसके चाचा के बीच। किसे पता था उन दिनों कि यही बालक अपने युवा होने पर अपने अप्रतिम शौर्य और असाधारण वीरता से इतिहास रच देगा और भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा जाएगा। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। भारत के रमणीक और सुरम्य पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक छोटा सा गांव है, कलोल बकैण। कलकल करती नदियां, ऊंचे पर्वत और यहां की प्राकृतिक छटा सबका मन मोह लेती है।
3: इसी गांव में 3 मार्च 1976 को संजय का जन्म हुआ था। 3 बहनों और 2 भाइयों वाले इस परिवार में वो सबसे छोटे थे। उन्होंने 10वीं की परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलोल से ही पास की। उनका सपना बचपन से ही सेना में जाने का था।
2: मन में सेना में शामिल होने की इच्छा लिए वो दिल्ली आ गए और अपने व्यावसायिक करियर की शुरुआत एक टैक्सी ड्राइवर के रूप में की। उनके सेना में भर्ती होने के 2 प्रयास विफल रहे, लेकिन तीसरी बार 1996 में उन्हें सफलता हाथ लगी। उन्हें जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 13वीं बटालियन में प्रतिनियुक्ति मिली।

0: बात कारगिल युद्ध से पहले की है। उनके दस्ते को कश्मीर के सोपोर क्षेत्र में तैनात किया गया था। यह इलाका कश्मीरी उग्रवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था। संजय कुमार के दस्ते को आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का काम सौंपा गया था। आतंकवाद निवारण अभियान में राइफलमैन संजय कुमार की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अपनी यूनिट में वो एक समर्पित और जांबाज सैनिक के रूप में पहचाने जाने लगे।
1: फिर आया 1999 का साल, जिसमें जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों की घुसपैठ का पता चला। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर सियाचिन, कारगिल, बटालिक, मुश्को, द्रास और काक्सर जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्रों में घुसपैठ करके वहां अपनी चौकियां बना ली थी।
0: ये भारत की संप्रभुता पर सीधा हस्तक्षेप था। इस विकट स्थिति का एक ही समाधान था और वो था सैन्य अभियान यानी युद्ध। उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थी, जबकि भारतीय सेना ढलानों पर रहने के कारण असुरक्षित थी।
1: 4 जुलाई 1999 को राइफलमैन संजय कुमार को उनकी टुकड़ी के अन्य सदस्यों के साथ मुश्कोह घाटी के पॉइंट 4875 के एरिया फ्लैट टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
0: संजय ने समझ लिया था कि ये युद्ध आसान नहीं था। पाकिस्तानी सेना की उस इलाके में मजबूत पकड़ होने की वजह से ये एक गंभीर हमला साबित होने वाला था।
1: संजय की टुकड़ी ने रात को आक्रमण करने की योजना बनाई। एक प्रकार से ये एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यही समय है भारत की माटी का ऋण चुकाने का, देश की बलिवेदी पर प्राणों के गरिमामय उत्सर्ग का। फिर क्या था, संजय कुमार ने अपनी टुकड़ी का नेतृत्व संभाल लिया।
2: कैसे हो लोग ऊंचाई पर लोग
3: साथियों? बिल्कुल ठीक है। आप सबको भली भांति पता है कि ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। हमें इतना भी नहीं पता है कि हम कल का सूरज देख भी पाएंगे या नहीं।
2: आपने ठीक कहा संजय भाई, दुश्मनों की स्थिति बेहद मजबूत है। वो ऊंचाइयों पर जमे हुए हैं और बड़ी आसानी से हम पर हमला कर सकते हैं।
3: तुमने ठीक कहा रामलाल, इसलिए हम रात में आक्रमण करेंगे ताकि दुश्मन को हमारे आने का पता ना चले। हम रात के अंधेरे का फायदा उठाएंगे और धीरे धीरे छुपते छुपाते रेंगते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक हमला करें।
2: बिल्कुल ठीक रहेगा संजय भाई।
3: तो ठीक है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब तक आराम कर लो।
2: ठीक है,
3: फिर हमें मिशन शुरू करना है।
2: राइट, ठीक है संजय भाई, बिल्कुल ठीक। तो शुरू करें?
3: हाँ भाई, लेकिन पहले गले तो मिल रहे पता नहीं फिर जिंदगी हो या ना हो, आगे मुलाकात हो

0: साथियों, 11 सदस्यीय रणबांकुरों की टोली सर पर कफन बांधे अपने सैन्य अभियान में निकल पड़ी। बला की ठंड, साए साए करती ठंडी हवा, निरंतर गिरता तापमान और विरल होती प्राणवायु,
1: सब कुछ विपरीत था। लेकिन बस एक ही बात थी जो विपरीत नहीं थी, और वो था इन महावीरों का अटूट मन पर। लक्ष्य पर पहुंचे ही थे कि अचानक दुश्मन की ओर से भयंकर फायरिंग होने लगी।
0: शत्रु ऑटोमेटिक मशीन गन से गोलियों की बौछार कर रहा था। संजय कुमार की टीम के दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए। और 8 लोग घायल हो गए। फिर भी घायल सैनिकों ने युद्ध करना जारी रखा। राइफलमैन संजय कुमार को ये भान हो गया था कि अब उन्हें देश को अपना सर्वोत्तम देना है।
2: या तो हम मरेंगे या मारेंगे।
3: बिल्कुल ठीक।
2: आंख में आंख डाल के फायर करो। फायर!
1: शत्रु लगातार मशीन गन से गोलियां बरसा रहा था। वो भी डटकर दुश्मन का मुकाबला करने लगे और अपनी राइफल से दुश्मन के कई सैनिकों को मार गिराया। इसी बीच उनकी राइफल की गोलियां भी समाप्त हो गई।
4: कार्बाइन खाली हो गई है।
5: क्या करूंगा? अब क्या होगा? इसे ठहरो ठहरो।
4: राइफल का बट ही काफी है इनके लिए। अटैक करेंगे।
1: वो तनिक भी नहीं घबराए और शेर की भांति निहत्थे शत्रु के बंकर में घुस गए और उन पर टूट पड़े।
0: सामने की लड़ाई में उन्होंने राइफल की संगीन और बट से 3 शत्रु सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस तरह एक बंकर का सफाया हो गया। उन्होंने दुश्मन के बंकर से ही एक भरी हुई मशीन गन उठा ली। इसी बीच उनके पैर में 3 गोलियां लगी जिसके कारण उनका चलना फिरना कठिन हो गया। लेकिन उन पर मानो जुनून सवार था। वो चोट की चिंता ना करते हुए उसी जोश से फायरिंग करते हुए दूसरे बंकर की ओर बढ़े।
2: दुर्गा माता जय।
0: और वहां भी दुश्मनों का सफाया कर दिया।
1: उनके रौद्र रूप और जुनून को देखकर दुश्मन के सैनिक भी बौखला गए और भागने लगे।

0: सफल मैन संजय कुमार के इस अपूर्व शौर्य को देखकर उनके साथी भी चौगुने उत्साह से भर गए और उन्होंने बचे खुचे पाकिस्तानी सैनिकों का भी सफाया कर दिया। संजय कुमार अभी भी मशीन गन लेकर मोर्चा संभाले हुए थे। दुश्मन या तो मारे गए थे या भाग चुके थे।
1: भाई जी, आप बहुत घायल हो गए। आपको तुरंत उपचार की जरूरत है।
2: वो सामने वाला बंकर बिल्कुल खाली।
3: आपको वहाँ ले चलते हैं। वहाँ चलते हैं। पट्टी करवा लीजिए। कम से कम उनका बहना रुक जाएगा।
2: आओ भाई जी।
4: नहीं मान सिंह, नहीं मान सिंह,
2: आओ तो सही।
4: चिंता मत करो, मैं यही ठीक हूँ। मैं तब तक ये जगह नहीं छोड़ूंगा जब तक पॉइंट फ्लैग टॉप पर हमारा पूरा पूरा कब्जा नहीं हो जाता।
3: लेकिन जी, लेकिन
4: मैं मशीन गन साधे यहीं डटा हूँ।
3: अरे
4: आप तुम साथियों के साथ एक एक बंकर को चेक करो।
2: आप सुनो,
4: चुप हुआ ना,
2: आप
4: कोई बचने ना पाए, जाओ आप चेक करो।
2: लेकिन
4: चेक करो, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ नहीं होगा मुझे।
2: अरे
4: जाओ
2: आप।
0: ऐसा था असाधारण शौर्य राइफल मैन संजय कुमार का। वो तब तक युद्ध के मैदान में अडिग रहे जब तक मुश्को घाटी के पॉइंट फ्लैट टॉप पर भारतीय सेना का कब्जा नहीं हो गया। इसके बाद भारतीय सेना की चिकित्सा प्लाटून वहां पहुंची और घायल संजय कुमार को सैनिक अस्पताल ले जाया गया।
1: संजय भाई,
5: दुश्मन के आगे अपनी दृढ़ता और निर्भीक प्रयासों के लिए राइफलमैन संजय कुमार को युद्धोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जुलाई 2014 को उन्हें सेना में पदोन्नति देकर जूनियर कमीशन ऑफिसर बना दिया गया।
0: देश ऐसे महावीर पराक्रमी शूरवीर योद्धा को कृतज्ञ भाव से नमन करता है।
6: राइफलमैन संजय कुमार, अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, कीमती आनंद और सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, आलेख अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे IVRS यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस सिस्टम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और हाँ, आप हमसे हमारे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
7: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाएं,
8: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
11: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
10: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त?
10: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
10: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
10: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी तो इसका हल क्या है?
10: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
7: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
8: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
9: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
8: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
9: आपकी सेहत की बातें,
8: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
9: युवाओं के रोजगार करियर की बातें,
8: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
9: वो कहाँ पर?
8: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
9: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
10: नमस्कार किसान भाइयों, आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं और बीजों के बारे में हम जानकारी पिछले भाग में लिए थे। धान के बीजों का चयन आप किस आधार पर करें, चाहे अवधि हो, लंबी अवधि, मध्यम अवधि या कम अवधि, इसी क्रम में आज हम बात कर रहे हैं फिर से एक बार डॉक्टर सतेंद्र तोमर जी से, जो कि प्लांट ब्रीडिंग से हैं ये और एक कहते हैं कि एक ब्रीडर हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने पिछले बार बात किया था कि 110 दिन की अवधि में या फिर एक आइडियल कंडीशन में किस तरह के बीजों का वो चयन करें, किस्मों का चयन करें। तो आज हम बात करेंगे कि अगर हम कॉमर्शियल वैल्यू की बात करें, जो किसान जो है वो उनके साथ चैलेंज होता है कि उनके धान में यील्ड अच्छा हो और परेशानी कम हो, तो ऐसे में मार्केट पे वो सबसे ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि वो मार्केट से ही उनको बीजों को उपलब्धता करनी है। जो उनको किसी ब्रांड ने बता दिया कि इसकी इतनी ज़्यादा यील्ड है, वो उसी को खरीद लेते हैं। तो ऐसे में हम ये भी चीज़ आप बाद में आप ज़रूर उसमें इंक्लूड करें कि अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तो आप कैसे लें। साथ ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि श्रोताओं को बता दें, चूँकि ये कार्यक्रम हमें FM ग्रीन से भी हम प्रसारित कर रहे हैं, तो जो FM ग्रीन सुनना चाह रहे हैं किसान भाई और उनके पास ये नहीं है उपलब्ध, तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका एप्लीकेशन, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, बीजों की उपलब्धता पे आज आ जाते हैं कि ये बीज कैसे उपलब्ध होगा। आपने कई सारे बीजों को बारे में बताया और आगे भी आप आज बताएंगे, तो ये बीज उन तक कैसे पहुंच पाएगा किसान भाइयों तक?
11: किसान भाइयों, जहाँ तक बीज की उपलब्धता का सवाल है, तो इसमें जितनी भी किस्में बिहार के लिए संस्तुत हैं उसमें से ज़्यादातर किस्मों का बीज बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पैदा किया जाता है और यहाँ बीज विक्रय केंद्र पे वो उपलब्ध रहता है। इसके अलावा जो भी हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के केंद्र हैं उन पे भी ये बीज उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जितनी भी जो किस्में हैं, संकर किस्मों को छोड़ के किसान भाई अपना खुद का बीज भी बना सकते हैं। तो किसान और खुद का बीज भी वो अगर अच्छी तरह से भंडारण करते हैं, उचित नमी उसमें करके रखते हैं, तो अगले साल के लिए वो बीज अपना खुद का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर बीज किसान भाइयों को लेना है, ज़रूरत है, तो उसके लिए 25 मई के बाद से बिहार कृषि विश्वविद्यालय की जो मेन सेंटर है, हेडक्वार्टर है सबौर में, वहाँ उपलब्ध रहेगा। और जितने भी केवी के हैं, हर जिले में एक केवी के है, जितने केवी के हैं सारे केवी के पर भी ये बीज उपलब्ध रहेंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो किसी भी केंद्र पे संपर्क करके उस बीज की उपलब्धता की जानकारी ले सकते हैं।
10: किसान भाइयों, ये बीज उपलब्ध हो जाएगा 25 मई से, और हमेशा ये 25 मई के आसपास ये बीज सालाना उपलब्ध शुरू हो जाता है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय के जो विक्रय पटल है, बीज विक्रय केंद्र, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। साथ ही सभी जिले, यानी कि जो हमारे जो 20 जिले हैं बिहार में, उन सभी जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों से ये बीज आप खरीद सकते हैं। अधिकांश बीज उपलब्ध हैं। और हम कुछ और बीजों के बारे में बात करते हैं डॉक्टर साहब, जो कि सबसे पॉपुलर है, जो अधिक संख्या किसान जो है उसको लगाते हैं, जिसमें श्वेता है, जिसमें मंसूरी है, कुछ सुगंधित धान है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि श्वेता के बारे में, कि बिहार में लगभग आधे से ज़्यादा किसान एक समय में श्वेता लगा रहे थे, और एक बार श्वेता में थोड़ी सी समस्या

0: 140 दिन में ये पक्कड़ तैयार होती है और इसकी उपज 40 से 45 कुंटल आराम से मिल जाती है। दाना जैसे कि मैंने बताया, सबसे अपेक्षित या सबसे जो पॉपुलर चावल है वो मध्यम पतला चावल होता है और मध्यम पतला चावल ही राजेंद्र श्वेता का है। इसके अलावा जैसे किसान भाई सोनम एक वैरायटी लगाते हैं तो सोनम के जैसा ही चावल राजेंद्र श्वेता का है। तो इस ये तो वजह रही इसके पॉपुलर होने की, क्योंकि इसका मार्केट में प्राइस ज़्यादा मिलता है, दाम ज़्यादा मिलता है और किसानों के खेत पर से ही ये बिक जाती है, तो इसलिए ये किसानों में ज़्यादा पॉपुलर हुई है। जहाँ तक इसकी समस्या की बात है तो एक बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक बीमारी होती है, वो इसमें एक वर्ष देखी गई थी, लेकिन उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हर बार उसमें ये चीज़ देखा नहीं गया है, पहली बात। और दूसरी बात, उसका क्योर कर सकते हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है। किसान भाई दवाई उपलब्ध है उसके लिए, तो फूल आने के से 10-20 दिन पहले किसान भाई अगर एक सुरक्षात्मक एक स्प्रे दवाई का कर देंगे, उसमें फफूंदी जनक और जीवाणु नाशक, फफूंदी नाशक और जीवाणु नाशक दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, अगर उसको किसान भाई इस्तेमाल करते हैं तो ये बीमारी को उसमें आने से रोका जा सकता है। और किसान भाई इसको आराम से इस्तेमाल करें, इसमें कोई और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है
1: जी। तो इसके बाद हम श्वेता जो है सबसे पॉपुलर वैरायटी है बिहार के कंडीशन में, सबोर श्री के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दें कि सबोर श्री अगर वो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा वक्त है सही और ये इसकी क्या खासियत है।
0: सबोर श्री की जहाँ तक बात है, सबोर श्री का मैं बताऊँ, ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई किस्म है, मध्यम अवधि की किस्म है और इसकी बिजाई भी मध्यम अवधि के हिसाब से ही हम लोग 10 जून से लगा के और 25 जून के बीच में इसकी बिजाई करते हैं। और इसका दाना जो है वो मध्यम पतला ही होता है। इसकी उपज राजेंद्र श्वेता से भी ज़्यादा है, उपज के मामले में ये 55 कुंटल तक आसानी से ये प्रति हेक्टेयर उपज दे देती है, तो इसीलिए ये अभी पॉपुलर हो रही है, किसानों के बीच में ज़्यादा फैल रही है, तो किसान भाई इसको आराम से लगा सकते हैं सबोर श्री को और निश्चित रूप से अधिक उपज मिलेगी
1: जी। तो ये सबोर श्री भी जो है अधिक उपज देने वाली है। तो अगले जो हम इसमें बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, की बीज की जो दर है कि प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़, वही मानक किसान भाई को आप सजेस्ट करें कि उसमें उनको कितना रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बीज दर है ये बहुत ज़्यादा किसान भाइयों में ये इच्छा रहती है कि हम कितना बीज हम डालें, अगर हमें 2 एकड़ में खेती करनी है, बीघा भी बोलते हैं, तो उसको हम कितनी बीज की ज़रूरत होती है और उसमें जो बीज डालने जाएँ तो उसके पहले बीजोपचार ज़रूर करें, इसके बारे में भी ज़रूर बताएँ।
0: बीज दर की जहाँ तक बात है, किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि बीज दर का जो है ये आप किस विधि से धान को लगा रहे हैं ये उस पे ज़्यादा निर्भर करता है। तो जैसे जो परंपरागत हमारी विधि है धान लगाने की, रोपाई विधि, उसमें हम कादव करते हैं, उसके बाद पहले नर्सरी तैयार करते हैं, फिर खेत में कादव करते हैं, उसके बाद वो नर्सरी को फिर ट्रांसप्लांट करते हैं 21 से 25 दिन के बीच की जो जब नर्सरी हो जाती है। तो इस विधि से अगर हम जाएंगे तो जब हम अगेती जो अगात किस्में हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा बीज हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो लगभग 20 से 25 किलो के बीच में हम लोग बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ पे हम इस अगात किस्मों के लिए हम लोग किसान भाई इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो पौधे से पौधे की दूरी है वो भी कम रखनी है, 15x15 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएं और

0: पौधा एक से दो से तीन पौधा एक ही एक हिल में दो से तीन पौधा लगाना चाहिए। इसके बाद जो मध्यम अवधि की किस्में हैं उनका भी लगभग 20 केजी बीज 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की नर्सरी का तैयार करने में इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो सीधी बुआई है, अगर किसान भाई सीधी बुआई कर रहे हैं जो कि आजकल प्रचलन में है, उसमें लेबर की बचत होती है, इसके अलावा पानी की भी बचत होती है, तो उसमें अगर हम जाएंगे तो 25 से 30 किलो के बीच में बीज हमारा उसमें लगता है। और इसके अलावा अगर श्री विधि से जाते हैं, श्री विधि में 10-12 दिन का की जो नर्सरी है उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो श्री विधि में जो दूरी है वो 25x25 सेंटीमीटर की किसान भाई रखें, इस चीज़ का ध्यान रखें।
1: जी, तो ये बीज दर की बात हुई कि आप बीजों का जो चयन करते हैं तो उसमें कितना बीज आप इसमें डालें, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि जो सुगंधित प्रजाति है, जो किसान भाई शौकीन हैं, जो थोड़ा शौकिया तौर पे अपने लिए अच्छे वैरायटी लगाना चाहते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी किस्में हैं जो कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से भी निकली हैं, जिसमें कि सबौर सुरभित है, तो ऐसे में आप उनको बताना चाहेंगे जो कतरनी लगाने की इच्छुक हैं। एक किसान भाई और भी ये उनके रहती है इच्छा कि जो कतरनी है वो भागलपुर के बाहर के क्षेत्र में भी ये पॉसिबल है कि नहीं है, उसमें उनको क्या चुनौतियाँ आती हैं, तो उनको सुगंधित धान के बारे में ज़रूर बताएं कि सुगंधित धान का अगर वो चयन कर रहे हैं अपने लिए तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी उनके लिए उपयुक्त हो सकती है।
0: सुगंधित धान की जहाँ तक बात है तो सुगंधित प्रजातियों में बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित प्रजाति है सबौर सुरभित। सबौर सुरभित एक अत्यंत पतला महीन इसका चावल होता है और पुलाव के लिए बहुत ही अच्छा ये सुगंधित चावल है, इसको किसान भाई यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये मध्यम अवधि की किस्म 120-125 दिन में ये पक जाती है। इसके अलावा जैसे कतरनी की जो बात की तो बिहार में मैं बता दूं कि जो हमारे परंपरागत धान है उसमें एक कतरनी उसमें से एक है। इसके अलावा और भी परंपरागत धान है, जैसे हम अगर उत्तर बिहार की अगर हम बात करें तो सोनाचूर एक प्रजाति है वो वहाँ पे चलती है, इसी तरह से चंपारण बासमती है। तो भागलपुर रीजन की अगर हम बात करें तो कतरनी यहाँ का एक परंपरागत धान है और ये सुगंधित है। सुगंधित होने के साथ साथ में ये फोटो पीरियड सेंसिटिव है। फोटो पीरियड सेंसिटिव का मैं मतलब मैं बता रहा हूँ, फोटो पीरियड सेंसिटिव मीन्स जो प्रकाश अवधि है, दिन की जो अवधि है, सूरज की जो अवधि है, उससे इसका पुष्पन प्रभावित होता है। तो तापमान और प्रकाश अवधि ये दोनों मिलके इसके पुष्पन को प्रभावित करते हैं। ये इस को कतरनी को किसान भाई जुलाई के प्रथम पखवाड़े में इसको लगाएं तो ज़्यादा अच्छी उपज प्राप्त होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा खाद रासायनिक खाद इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी बढ़वार ज़्यादा होती है और इसके गिरने का खतरा रहता है।
1: तो किसान भाइयों ये थी मुख्य जानकारी जो कि धान का बिजाई का समय चूँकि आ गया है, तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय का सबौर का ये प्रयास रहता है कि आपको हर हाल में जानकारी आप तक पहुंचे। तो ऐसे में जब पैंडेमिक का दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर है, तो आपको बहुत ज़्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, आपको जानकारी आपके घर बैठे मिले और आप अपने नज़दीकी बाज़ार या फिर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के विभिन्न केंद्रों से आप बीज की खरीदारी करें, क्योंकि बीज विक्रय जो है वो सरकार द्वारा खोली रखी गई है, इसमें किसी तरह की कोई पाबंदियाँ नहीं हैं। और आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि धान के बिजाई से लेकर धान की पूरी खरीफ सीजन शुरू हो रही है, तो ऐसे में जो कोविड प्रोटोकॉल है, जो उसके जो नियम जो बनाए गए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं कि कोविड के अनुरूप आप व्यवहार उसमें ज़रूर अपनाएं, क्योंकि गांव में भी कोरोना का प्रकोप देखा जा रहा है, तो ऐसे में आप इन बातों का ज़रूर पालन करें। जो ही मजदूर भाई हैं, जो ही किसान भाई हैं, उनमें एक दूसरे से दूरी, साथ ही जो कृषि यंत्र है या फिर किसी तरह का जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें सैनिटाइज़र का भी साथ में आप रखें अपने पास में, नए हैं तो आप पानी भी आसपास रखें और उसके जरिए उन बातों का पालन करके ही खेती में अपने आगे बढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम अगले भाग में कुछ और भी कार्यक्रम लेकर आएंगे। नमस्कार।
2: कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। नमस्कार, आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो 90.8 FM ग्रीन, और ये है आपका पसंदीदा चैनल, जी हाँ 90.8। और मैं आपको बता दूं कि आज आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास उन्नत कृषि कार्यक्रम में, और आज हम बात करेंगे जी हाँ ड्रम सीडर से धान की बुआई के बारे में। और इस बारे में इस बहुत ही खास चर्चा को लेकर हमारे बीच हैं इंजीनियर पंकज कुमार जी, और मैं आपको बता दूं ये हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से कृषि अभियंत्रण विभाग से, और आज पूरी जानकारी मिलेगी आपको ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पंकज सर से हम कि धान की कौन सी प्रजाति, अगर हम ड्रम सीडर विधि से इसकी बुआई करना चाहते हैं तो धान की कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी रहेगी?
6: कि धान की खेती दो तरह से होता है, जैसे असिंचित एवं सिंचित, दोनों परिस्थितियों में की जाती है। असिंचित दशा में धान की खेती मुख्यतः सीधी बुआई द्वारा एवं सिंचित दशा में रोपाई द्वारा की जाती है। धान की रोपाई मुख्य जुलाई तक हो जानी चाहिए, परंतु श्रमिकों व पानी की कमी के कारण वर्तमान में धान की रोपाई अगस्त के अंत तक होती रहती है। विलंब से रोपाई के कारण धान की उपज में भारी कमी आती है। धान की रोपाई में मजदूरी अधिक लगती है व खेत में पानी भरने में व्यय यानी कि खर्च अधिक आता है
5: जी।
6: इन कारणों को ध्यान में रखते हुए रोपाई के स्थान पर सिंचित क्षेत्र के लिए एवं असिंचित दोनों दशाओं में सीधी बुआई की तकनीक विकसित की गई है। सीधी बुआई करने पर खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः खरपतवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान की सीधी बुआई दो विधियों से की जाती है। एक विधि में खेत तैयार कर बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा बोया जाता है और दूसरी विधि में खेत में कदवा करके अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बोया जाता है। अब है क्या कि बहुफसलीय बिजाई यंत्र खेत को कल्टीवेटर या डिस्क हैरो के द्वारा अच्छी जुताई करने के बाद लेजर लैंड लेवलर यंत्र द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उपर्युक्त जमाव के लिए खेत का समतल होना आवश्यक है तथा खेत के समतल होने से सिंचाई के समय में बचत के साथ ही पैदावार भी बढ़ती है। बुआई के समय खेत अच्छी तरह जुताई किया हुआ होना चाहिए और भूमि में पर्याप्त नमी होना चाहिए। खेत तैयार करने के बाद बहुफसलीय बिजाई मशीन द्वारा 18 से 22 सेंटीमीटर दूरी पर कतारों में बुआई करें। अब बुआई का समय, धान की सीधी बुआई का उपयुक्त समय 20 मई से 30 जून तक होता है। मानसून आने से 10 से 15 दिन पहले है या मई के आखिरी सप्ताह से लेकर मध्य जून तक है। बीज की गहराई 1 से 2 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इससे अधिक गहराई होने पर जमाव कम हो जाता है। अब आप का क्वेश्चन है कि प्रजातियां इसमें कौन सी लेना चाहिए और बुआई का समय क्या होना चाहिए। तो लंबी अवधि की अगर धान आप अगर लेते हैं तो 145 से 60 दिन की अगर धान यहां पर ले सकते हैं, जो 20 मई से 10 जून तक आप इसमें बुआई कर सकते हैं। मध्य अवधि वाली अगर आप बुआई करते हैं जो 135 दिन की अवधि होती है वाली बीज, जिसको आप 25 मई से 30 जून तक आप बुआई कर सकते हैं। और छोटी अवधि वाली अगर आप बुआई करना चाहते हैं बीज को तो 115 से 120 दिन का वो फसल होगा, जो 1 जून से 30 जून तक आप इसको बुआई कर सकते हैं। यदि 30 जून के बाद बुआई करनी है तो कम अवधि वाली प्रजाति का चयन करना चाहिए, जैसे पढ़वात है, तुरंता है, ये सब वैरायटी आपको प्रजाति आपको ले लेना चाहिए।
5: जी, तो ये कुछ प्रजातियों के नाम है जो सर ने आपको बताया कि कौन कौन से आप प्रजाति लगा सकते हैं ड्रम सीडर विधि से अगर आप लगाना चाहते हैं। तो सर, इसके बाद अगर हम बात करें कि क्यों ज़रूरी होता है धान की सीधी बिजाई, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें।
6: पहले तो हम बताना चाहेंगे कि ड्रम सीडर है क्या। ड्रम सीडर अंकुरित बीजों को ड्रम सीडर द्वारा बुआई किया जाता है। अच्छी फसल के लिए खेत का समतल होना आवश्यक होता है, ये तो हम पहले बता दिए हैं। खेत में पानी भरकर कदवा कर लें। यदि खेत में पानी भरा हो तो उसे निकाल दें। कादो करने के 48 घंटे पूर्व बीज को पानी में 24 घंटे के लिए भिंगो दें। जूट की बोरी को भिंगोकर बीज को उपचारित करके लगभग 15 से 20 घंटे तक अंकुरण होने के लिए छोड़ दें। बीज की मात्रा 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दें और इसे ड्रम सीडर में आधी आधी मात्रा भरकर आप कदवा किए हुए खेत में चला दें। बीज बोते समय खेत में पानी नहीं रहना चाहिए। बीज को चिड़िया से शाम के वक्त बचाना चाहिए।
5: तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर मैं बात करूं ड्रम सीडर की जो आप बता रहे हैं, तो इस मशीन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसकी बनावट क्या होती है, कार्य क्षमता इसकी कितनी होती है।
6: देखिए, इस मशीन का बनावट एवं कार्य क्षमता, जैसे कि इसमें दो चक्का होता है, 4 से 6 तक वाली ड्रम इसमें हो सकता है। जैसे 4 ड्रम का अगर होगा तो ये 8 लाइन में बुआई करेगा, और 6 ड्रम का अगर आप लेते हैं तो आप उसमें जो है 6 ड्रम का में 12 लाइन में आपको उसमें बुआई होगा। लेकिन इसको एक हैंडी बनाने के लिए, जैसे कि आप इजी से अगर यूज कर सकने के लिए 4 ड्रम ठीक होता है। हाथ से खींचने के लिए हैंडल होता है। यंत्र का कार्य क्षमता 1 घंटे में 1 एकड़ की बुआई कर सकते हैं। आप जैसे पहले आप क्वेश्चन किए कि धान की सीधी बुआई क्यों, वर्षा एवं सिंचाई जल की कमी होता है, वर्षा का असमान वितरण और भूमि जल में निरंतर गिरावट हो रहा है, मृदा के स्वास्थ्य में निरंतर ह्रास हो रहा है, मृदा में दरारें फटना, सिंचाई नमी का तीव्र ह्रास हो रहा है।
5: तो श्रोताओं, आपने जाना कि कार्य क्षमता और बनावट ड्रम सीटर मशीन की, और इसके साथ ही सीधी बिजाई के बहुत सारे लाभ हैं। तो सर, आपकी ओर से हम जानना चाहेंगे कि अगर हम धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इससे क्या क्या लाभ मिल सकता है हमारे किसान भाइयों को?
6: धान की सीधी बुआई से लाभ निम्न प्रकार के हैं, जैसे कि कम जल की आवश्यकता होती है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, ऊर्जा व ईंधन की बचत होती है। आप जानते हैं कि एक लीटर अगर आप डीजल जलाते हैं तो दो यानी कि 2.5 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है जो वातावरण को गर्म कर रहा है, और आप उत्पादन के कुछ खर्चे में बचत होता है, किसान के शुद्ध लाभ में बढ़ोतरी, मृदा की भौतिक गुणवत्ता में सुधार होता है, अगली फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल की परिपक्वता अवधि में कमी होती है। वो कमी इस कारण से होता है कि आप जब कदवा करके जब बिचड़ा को आप जब खेत में लगाते हैं तो लगभग 6 दिन तक बिचड़ा जो है एक स्टैंडिंग मोड में आ जाता है, यानी कि वो उसमें कोई तरह का बढ़वार नहीं होता है, तो ये इसमें वो समय को काउंट किया जाता है। और मृदा जैव कार्बन में वृद्धि एवं मृदा के भौतिक रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार होता है, और मीथेन उत्सर्जन जो कदवा आप करते हैं मीथेन उत्सर्जन में उसमें आप कमी आता है, कदवा की अपेक्षा ग्लोबल वार्मिंग में कमी आती है। और हमें एक कहना चाहेंगे कि इसमें कि पोषक तत्व भी कुछ प्रबंधन करना चाहिए। बुआई के समय में 50 किलोग्राम DAP बुआई के साथ तथा 25 किलोग्राम MOP और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ खेत में तैयार करते समय देना चाहिए। यूरिया का छिड़काव 3 बार में देना चाहिए, एक तो 15 किलोग्राम बुआई के 15 दिन बाद उसमें छिड़काव करना चाहिए, 30 किलोग्राम कल्ले निकलते समय, 45 किलोग्राम बाली निकलने के पूर्व प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। सूक्ष्म तत्व की अगर कमी दिखाई दे तो आप आयरन और जिंक 1% यूरिया और 0.5% जिंक और 0.5% फोरस सल्फेट के घोल में 2 से 3 बार 1 सप्ताह के अंदर पर छिड़काव करें
5: जी।
6: और इसमें जो ध्यान देने वाली एक विशेष बात है, रिक्त स्थानों को भरना। तो बुआई के लगभग 3 सप्ताह बाद देखें कि यदि कहीं कहीं जमा ना हुआ हो और जगह खाली हो तो सिंचाई या वर्षा के समय उसी खेत में से जहां अतिरिक्त पौधे हों उखाड़कर खाली स्थानों पर रोपाई कर दें, इससे आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
5: तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। और तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हो गई हैं, ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई आप कैसे कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, तो आशा करते हैं आपको ज़रूर इससे कुछ लाभ प्राप्त होगा। और अगले दिन अगले विषय के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच। सुनना ना भूलें उन्नत कृषि कार्यक्रम। उन्नत कृषि
7: खांसी एक खांसी दो खांसी तीन बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी टीबी मुक्त भारत बनाए,
8: खुद भी बचे देश भी बचाए।
9: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
10: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
11: तीनों, मीनू, राजू, पिन्नी और
10: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
11: 11 दोस्त
10: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
11: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
10: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
11: लेकिन ऐसा क्यों?
10: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
11: टीकी, तो इसका हल क्या है?
10: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
11: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा।

0: कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।

सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 एफएम ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 एफएम ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और बीपीटी 5204 यानी कि बीपीटी 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं स्वान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

हर समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद, संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें, 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
0: उन्नत कृषि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है उन्नत कृषि कार्यक्रम में। उन्नत कृषि कार्यक्रम में आज की जो बातचीत होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, खास तौर से उन किसानों के लिए जो खेती गृहस्थी से आय नहीं कमा पा रहे हैं, अपने घर के लिए खेती कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा मुनाफा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर किसान परंपरागत खेती करते हैं और अब बात करें अपने बिहार के तो बिहार में 82% लोग खेती करते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुनाफा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है और किस तरीके से परंपरागत खेती से हम व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ सकते हैं और आय मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में आज हमारे साथ विस्तार से बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कुमार। सर आप हैं सहायक प्राध्यापक कृषि अर्थशास्त्र से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: जी धन्यवाद मैम और आप सभी को नमस्कार किसान भाई बंधुओं। जैसे मैडम ने बताया जो किसान आज सब जगह आप सुन रहे हैं जो ये व्यवसाय करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज भी हम अगर देखें तो किसान का मतलब लोग किसान नाम सुनते ऐसा लगता है जो किसान फटे पुराने कपड़े में गरीब एक पर्यायवाची है आज भी। उसका मूल कारण क्या है? आज भी बहुत सारे किसान अगर बिहार की बात करें तो परंपरागत खेती पर आश्रित हैं। जैसे हम लोग आज भी धान गेहूँ मुख्यतः जो खरीफ की बात करें तो ज़्यादातर जमीन में हम धान लगाते हैं और कुछ जमीन में दाल वगैरह लगा लेते हैं, नहीं तो आज भी हम लोग धान पे आधारित ही खेती करते हैं और रबी में जो है गेहूं पर आश्रित हैं। और यहाँ वर्षों से ये बात चल रही है जो आमदनी किसानों की कैसे बढ़ाई जाए, उसमें अगर आप देखें किसान भाई बंधु तो आप धान गेहूँ अगर उतने एरिया में जितने एरिया में आप लगाते हैं उतने एरिया से अगर धान गेहूं का उत्पादन किया जाए और उसको बेचा जाए तो बहुत ज्यादा आमदनी आप नहीं निकाल सकते। तो आज के जो मार्केट जिस तरह से मार्केट में डिमांड बढ़ा है, आप एक बात और मैं बता दूं, पहले एक विचारधारा ये थी जो खेती व्यवसायिक खेती उन्हीं के लिए या उन्हीं किसानों के लिए है जो जमींदार है जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, लेकिन भाइयों आज के टाइम में सारी विचारधारा ये बदल गई है। अब वही आप लोगों को समझने की आवश्यकता है, थोड़ा ध्यान से समझिए। अगर आपके पास अच्छी खासी जमीन है, 20 बीघा जमीन है, 30 बीघा जमीन है, तो आप कुछ जमीन में आप धान गेहूं लगा सकते हैं, उसी में कुछ में दाल लगा लिए, कुछ में आपने सब्जी लगा लिए, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बिहार जैसे प्रांत में राज्य में लगभग किसान छोटे और सीमांत हैं, उस कंडीशन में अगर जिनके पास जमीन कम है तो आमदनी निकालने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा आमदनी नहीं हो पाएगी। तो वो क्या कर सकते हैं? पहले लगभग हर किसान के घर में गाय भैंस हुआ करती थी, आज नहीं होता है, लेकिन आज हमें फिर से उस तरफ मुड़ने की आवश्यकता है। आप कम जमीन है, आप थोड़े से दुग्ध उत्पादन की तरफ आप जा सकते हैं, उससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं और इन सब के लिए सरकार आज बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। आप उसके बारे में जानकारी अपने नज़दीकी किसान कृषि विज्ञान केंद्र आप बैंक से भी पता कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी खासी लोन सब्सिडी के मिल जाती है, लोन अच्छे खासे लोन मिल जाता है। फिर अगर आपके मान लीजिए उतना भी जमीन नहीं है, आपके पास लेबर कम है, तो आप पोल्ट्री कर सकते हैं अगर आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हैं। तो उतनी भी जमीन नहीं है तो मशरूम आप लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया मशरूम लगा तो अच्छी खासी आमदनी आप पा सकते हैं। आप सुने होंगे मशरूम दीदी के नाम से, अनीता, श्रीमती अनीता देवी, उनको आज भारत सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के सारे राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सारे पुरस्कार उनको मिला है। और एक छोटे से घर से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके 10 लाख की आमदनी है। तो आज ये जो एक धारणा थी, जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वही व्यावसायिक कृषि कर सकते हैं, अब वो विचारधारा बदल गई है। हम लोग जो वैज्ञानिक लोग हैं, कृषि वैज्ञानिक लोग हैं, अब इस पर हम लोगों ने इस पर अध्ययन करके और जो अलग अलग विभाग के वैज्ञानिक हैं इस पर काम करके, जो कैसे कम ज़मीन से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया, कम ज़मीन है तो आप दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं, और भी कम जमीन है तो बकरी पाल सकते हैं, और भी कम जमीन है तो आप पोल्ट्री लगा सकते हैं, जमीन नहीं है तो आप पोल्ट्री आप मशरूम लगा सकते हैं। तो इसीलिए जो आज जो जिस तरह से मार्केट डिमांड, जैसे बाजार के जो डिमांड बढ़ी है बाजार में, उसके कारण से आज व्यावसायिक खेती की तरफ किसान अगर मुड़ेंगे तो अच्छी खासी आमदनी बना पाएंगे।
0: सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप ये बताएं कि पारंपरिक खेती क्या है।
2: जी देखिए मैम, पारंपरिक खेती जो है, हम जो मौसम आधारित खेती कर रहे हैं या जो पुराने समय से जो चलते आ रहे हैं, पर वो उसी वैसे ही हम खेती करते आ रहे हैं। जैसे बिहार में अगर देखा जाए तो लगभग, उत्तर भारत का हाल देखिए तो लगभग जो है बाढ़ पीड़ित है, दक्षिण बिहार तरफ जो है सूखा रहता है, फिर भी हम लोग खरीफ में धान आधारित फसल लगाते हैं, धान लगाते हैं और मेन जो ज़्यादा एरिया में क्षेत्रफल में धान लगाते हैं, और कुछ एरिया में थोड़ा दाल लगा लिए कम वहाँ पर पानी उपलब्ध है, तो कुछ में सब्जी लगा लिए। और रबी में भी ऐसे ही है, रबी में भी हम मूलतः गेहूं लगाते थे, आजकल थोड़ा थोड़ा जैसे हमने व्यावसायिक खेती की बात करना शुरू की है, तो आज थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे, जो आप गंगा के उत्तर तरफ चले जाइए तो जिस एरिया में पहले लोगों को अनाज मिलता नहीं था, आप बोल सकते हैं आज वहां पर मक्का आज पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो यही अभी हमें सोचने की जरूरत है, जो कैसे जो आप परंपरागत खेती कर रहे हैं, अब वही धान गेहूं पर आश्रित है, तो कैसे उसको व्यावसायिक बना सकते हैं। जैसे अगर बहुत ज्यादा पानी उपलब्ध नहीं तो दलहन ज्यादा लगा सकते हैं। अगर आपका गांव, आपका घर शहरी क्षेत्र से नजदीक है, शहर के आसपास है, भागलपुर के नजदीक है या किसी शहर के आसपास नजदीक है, आप फूल लगा सकते हैं। फूल आप होटल्स में, हॉस्पिटल में, ऑफिस में आजकल बहुत, और आज तो हर घर में, हर गांव में बर्थडे पार्टी, आज शादी विवाह में फूलों की मांग बढ़ गई है, तो आप फूल लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा व्यवसाय है और बहुत ज्यादा इसमें मांग और बढ़ने वाली है। तो यही हुआ जो परंपरागत से व्यावसायिक खेती।
0: तो सर, अभी आपने बताया व्यावसायिक खेती, तो इसके बारे में भी विस्तार से बताइए कि व्यावसायिक खेती क्या है।
2: हाँ, व्यावसायिक खेती का मतलब ये होता है, मूलतः जो कोई भी काम आप व्यवसाय के तौर पे करें, व्यवसाय मतलब उससे आमदनी ज्यादा ज्यादा बढ़ा पाए, आपका मूल जो आपका जो आपका लक्ष्य है वो है आमदनी बढ़ाना, उसको बोलते कोई भी काम उसको बोलते व्यवसायिक कार्य। खेती की बात करें तो ऐसा खेती, ऐसा फल, ऐसा सब्जी, ऐसा अनाज उगाएं जो मांग, मतलब बाजार का मांग है, बाजार आज उसको चाह रही, जैसे आजकल बहुत बात चल रही है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फसल, तो आप बाजार के मांग के आधार पे जो आप खेती करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी बढ़ेगी, वही व्यावसायिक खेती।
0: और सर, अभी जो बदलाव हो रहा है पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर, ये क्यों है और कारण क्या है?
2: जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका कारण ये है, एक तो बाजार का मांग जैसे बढ़ा, लोगों की आमदनी बढ़ी, तो आमदनी बढ़ी तो सब लोग अच्छा खाना खा सकते हैं। अच्छा, अब पहले सब लोग दूध नहीं खा पाते थे, सब दिन फल नहीं खा पाते थे, अब आमदनी बढ़ने के कारण जैसे मांग बढ़ा है, उसके कारण से सरकार ने, बिहार राज्य सरकार हो कि केंद्र सरकार हो, सभी ने अब योजनाएं बढ़ा, ऐसे से योजनाएं बनाए गए हैं, सरकारी योजनाएं बनाए गए, जिससे ऐसे फसलों को, व्यावसायिक फसलों के मांग को पूरा करने के लिए किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए आपको जैसे मैंने बताया लोन दिया जाता है, उसके जैसे आप अगर डेयरी के लिए, आप गाय के लिए भी आपको लोन मिलता है, बकरी पालने के लिए लोन मिलता है, पॉली हाउस में टमाटर उगाना चाहते हैं, खीरा उगाना, उसके लिए लोन मिलता है, तो इसलिए सरकारी योजनाएं उसमें योजना और जो है समर्थन मूल्य बढ़ा है, बाजार में बहुत ज्यादा इन सब चीजों, नई फसलों के लिए, फल फूल के लिए मांग बढ़ी है, फिर आय बढ़ाने की आवश्यकता है, आज सबकी खर्चा बढ़ा है तो आय भी बढ़ाना आवश्यकता है। तो ये भी एक कारण है जो हमें अब जो परंपरागत खेती से हमें व्यावसायिक खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। फिर नई तकनीकी और उसकी जानकारी, आज किसान बंधुओं के पास लगभग सभी लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं, उसमें सबको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं नई नई तकनीकें आ गई है, उस तकनीकी से कैसे खेती को और अच्छा बनाया जा सकता है, उसे आमदनी कैसे बनाई जा सकती है। फिर आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग, आप देखिए पहले परंपरागत खेती की बात करें तो हल बैल लोग रखते थे, हल बैल से ही खेती बाड़ी करते थे। आज देखिए गांव में आप बैल नहीं मिलेगा आपको, लकड़ी के हल नहीं मिलेगा, और आप अभी आप देखिए ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ मशीन है, थ्रेसर है, अब तो खेत में ही कटाई हो जाती है, वहीं पैक हो जाती है और सीधे मार्केट चला जाता है। तो इससे जो आधुनिक कृषि या व्यावसायिक कृषि के लिए आसान भी हुआ और उसके लिए किसान बंधु के लिए मतलब उससे आमदनी बढ़ाने में मदद भी हो रही है।
0: यानी कि जिस तरीके से परिस्थितियां बदल रही है, बदलते परिस्थिति के साथ जरूरी है कि पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ जाएं।
2: जी जी हाँ।
0: तो सर बिहार में क्या ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है?
2: जी देखिए हम लोगों को ऐसे जैसे सुनते हैं जो बिहार केवल बिहार के लोग गरीब होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को मैं बताऊं, बिहार देश में अग्रणी राज्य है सब्जी उत्पादन में, उसमें से जैसे बैंगन हो गया, फूलगोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, भिंडी हो गया, और इस तरह के फसलों में बिहार अग्रणी राज्यों में से फर्स्ट प्रथम या द्वितीय स्थान में आता है। तो हमारे यहाँ सब्जी उत्पादन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है, मौसम अनुकूल है, तो सब्जी ऊपर आप उधर की तरफ आप जा सकते हैं, सब्जी उत्पादन की तरफ जा सकते हैं। फल उत्पादन में सब जानता है, लीची आम केला में बिहार नंबर वन है पूरे देश में। फिर पपीता आजकल बहुत लोग लगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट लगने लगा है, गांव-गांव में लोग लगाने लगे हैं। तो ये जो बदलाव के उदाहरण है, इससे दूसरे किसान बंधु भी इसके बारे में जानकारी आप हमारे यहाँ विश्वविद्यालय से जानकारी ले सकते हैं, नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से, कृषि विभाग से, और बाकी तो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, सारी जानकारी उपलब्ध है।
0: तो सर जैसे कि बदलाव हो रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चुनौतियां तो आ रही होगी, तो कौन कौन से चुनौतियां हैं इसमें?
2: देखिए एक कंसेप्ट है चकबंदी, किसान भाई लोग शायद जानते होंगे। चकबंदी का मतलब ये होता है जो आपके पास चाहे 2 बीघा ही जमीन हो, 2 बीघा के 2 बीघा एक ही जगह हो, तो उससे क्या फायदा होगा, सारे जमीन को एक बार आप अपने अनुसार उसको घेराबंदी कर सकते हैं, पशुओं से बचा सकते हैं, या थोड़ा मोड़ा जो लोग परेशान करते हैं चोरी हो जाती है उसे भी बचा सकते हैं, और उसी में अगर 2 बीघा है वहीं पर आप पंप गाड़ सकते हैं, आप बोर्डिंग लगा सकते हैं, इसी सिंचाई में आपको सुविधा होगी, उसमें आपको सारा काम करने में आसान होगा एक जगह। तो जो सबसे बड़ी बिहार में चुनौतियाँ हैं वो है छोटे और बिखरे हुए खेत। अगर है भी एक तो कम जमीन है भी तो एक इस टोला में है, एक मतलब उस बाद में बोलते हैं, बाद बोलते हैं, खेत बोलते हैं, एक पूर्वी टोला पूर्वी पुबारी बाद में है, पश्चिम बाद में है, एक बर्मोत्तर में है, तो बहुत दूर दूर खेत बता है। तो किसानों को जो उसमें जो अलग अलग जो मतलब गतिविधियों में दिक्कत होती है, और छोटे खेत में आप एक एक खेत के लिए अब ट्रैक्टर लगाना वो भी महंगा पड़ेगा, तो एक बड़ी समस्या है पूंजी की कमी। आज भी जो बिहार में जो छोटे सीमांत किसान हैं उनके पास पूंजी की कमी है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप मान लीजिए आप फूल के तरफ जाते हैं या दुग्ध उत्पादन के लिए जाते हैं, या तो लागत शुरू में जो लागत होती है थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो ये चुनौतियाँ। फिर अब तो परिवहन आसान हो गया है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़कें बन गई है, फिर भी भंडारण जो आज भी है थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, और हमारे यहाँ बाजार तक सीधी पहुंच आज भी हमारे यहाँ जो है रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, तो जिससे सीधे बाजार तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, और बहुत सारे किसान आज भी उनको जागरूकता की कमी है।
0: सर हमने चुनौतियों के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन जो बदल रहे हैं, जो पारंपरिक खेती से व्यावसायिक खेती की ओर जा रहे हैं, उनमें किस तरीके के रुझान देखे जाते हैं?
2: जी ये जैसे जैविक खेती के बारे में मैंने बताया, ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल सभी किसान बंधु सुने होंगे या जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मांग बढ़ रहा है जैविक खेती। क्योंकि जो जैविक खेती का मतलब ये हो जो रासायनिक जो हम खाद या दवाई डालते हैं वो कम से कम डालें, क्योंकि उससे स्वास्थ्य पे जो बहुत ज़्यादा उसका बुरा असर हो रहा है। अब लोगों को धीरे धीरे इन सब बातों की जानकारी हो रही है, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं जो अब कैसे जैविक खेती से स्वास्थ्य लाभ होता है, और इसीलिए जैविक खेती की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा है। और एक होता है जो क्लस्टर में खेती करना, मान लीजिए आप छोटे किसान हैं तो एक 10 लोग मिलके एक टाइप का फसल उगाई है और वो 10 लोग मिलके एक जगह मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा बिकेगा। फिर हॉर्टिकल्चर, जैसे मैंने हॉर्टिकल्चर मतलब बागवानी, बागवानी में आपका फल फूल आपका जो औषधीय पौधे, औषधीय पौधे भी आज के समय में या आने वाले समय में बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत हो सकता है किसान भाई बंधुओं के लिए। तो इसके बारे में भी आप जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। किसान समूह FPO का नाम सुने होंगे, किसान उत्पादक संघ के आप बना के बहुत अच्छा आमदनी आप बढ़ा सकते हैं। जी
0: तो सर, जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई, व्यावसायिक खेती के बारे में भी बताया और पारंपरिक खेती के बारे में भी बताया, लेकिन अगर दोनों की तुलना करें तो किस पैमाने पे कौन बेहतर है?
2: जी देखिए, बेहतर तो बिल्कुल व्यावसायिक खेती की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर की बात करें तो जैसे देखिए, पारंपरिक खेती में क्या था, हम जीविका आश्रित थे, जो अपने परिवार का भरण पोषण हो जाए, खाना हो जाए, सालों भर के लिए हम उसे उतना उगा लें, वो हो गया। लेकिन जो व्यावसायिक खेती, वो मूलतः लाभ आधारित है। हमारा मेन लक्ष्य क्या होता है, हमारा लाभ कमाना, आमदनी बढ़ाना। फिर उसमें जो क्या है, पारंपरिक खेती क्या है, उसके लिए छोटे जमीन था तो पारंपरिक खेती लोग करते थे। लेकिन जो व्यावसायिक खेती, वो थोड़ा सा या तो आपके पास ज़्यादा जमीन हो या नहीं तो छोटे जमीन हो, तो आप उसको समूह में FPO बनाइए। फिर पारंपरिक खेती में मतलब पुराने तकनीक से हो जाता था, अब जो है व्यावसायिक खेती में आधुनिक तकनीक चाहिए। तो यही सब अंतर है। पारंपरिक खेती कम लागत में हो जाती थी, व्यावसायिक खेती में थोड़ी सी लागत ज़्यादा है। जी
0: तो सर, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है?
2: देखिए, बिहार जैसे राज्य, हम लोग ये जानते हैं, अगर आप भाई बंधु, अगर आप लोगों को पता होगा, जैसे राजस्थान

0: बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जैसे मैंने बताया वही एक बीघा में आप धान लगाए, वही एक बीघा में अगर सब्जी और फूल लगा लीजिए तो आप 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उससे भी ज्यादा हम 2 गुना की बात करें, 2 गुना से बहुत ज्यादा आप आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर कुछ चुनौतियां, जैसे हमने बात किया तो उस चुनौतियां सब जगह चुनौतियां हैं, जीवन में चुनौतियां हैं, खेती में आप किसी भी चीज में देखेंगे आपके व्यवसाय चुनौतियां हैं, लेकिन उस चुनौतियों से आगे आप निकलेंगे तो आप बहुत ज्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। फिर जो जो आखिरी जो है निष्कर्ष ये है, सही नीति और तकनीक से भविष्य बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, उससे आपकी कृषि आमदनी भी बढ़ेगी, आपकी मिट्टी भी संरक्षित रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जी,
1: यानी कि किसान भाई बहन जो वर्षों से पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं वो जब व्यावसायिक खेती की ओर बढ़ेंगे तब थोड़ी सी चुनौतियां तो आएंगी ही, उसे आगे बढ़ते हुए आप उन सारी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया, हर चुनौती का कोई ना कोई समाधान मिल जाता है, लेकिन व्यावसायिक खेती की ओर जैसे आप बढ़ेंगे, चुनौतियों को पार कर बढ़ेंगे, तो फिर आप पाएंगे कि आपकी आय बढ़ गई है, आप बहुत बेहतर आप खेती गृहस्थी से कमा पा रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सर, आपने बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है हमारी आज की ये चर्चा आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। हमें अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। उन्नत कृषि
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खो खो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खो खो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
6: खुद भी बचे देश भी बचाए।
7: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
8: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
9: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
8: तुम्हारी वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
9: 11 दोस्त?
8: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
9: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
8: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें 0 डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
9: लेकिन ऐसा क्यों?
8: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी

0: कई बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
0: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
2: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। ये कहावत हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। इसका मतलब होता है कि अकेले रहकर हम कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम संगठित हो जाएं तो नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे किसान अगर संगठित हो जाए, यानी कि अगर हम किसानों का संगठन बना ले जिसे कि हम FPO कहते हैं, तो फिर किसानों की कमाई बढ़ सकती है और बहुत तरह के उन्हें लाभ भी मिल सकते हैं। तो आज हम FPO के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि किसान संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नेहा पांडे जी। आप हैं कृषि प्रसार शिक्षा विभाग से, आप हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, आप हैं सहायक प्राध्यापक। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
3: नमस्कार मैडम।
2: मैम सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि किसान संगठन या फिर जिसे हम FPO भी कहते हैं वो क्या है और हमारे किसान भाई बहन अभी भी इससे अनजान कैसे हैं?
3: जी ये आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है। देखिए बिहार में अधिकतर किसान छोटे या सीमांत हैं, उनके पास ज़मीन कम है। अब जब वे अकेले खाद बीज ये सब खरीदने जाते हैं तो उन्हें महंगा मिलता है, और जब फसल बेचने जाते हैं तो बिचौलिए उनके बहुत ही कम दाम देते हैं। किसान उत्पादक संगठन इन्हीं छोटे किसानों का एक समूह है। यह एक कंपनी की तरह काम करता है, लेकिन इसके मालिक खुद किसान ही होते हैं। जब 100 से 200 किसान एक साथ मिलते हैं तो उनकी सौदेबाजी, जिसे हम बार्गेनिंग पावर कहते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाती है।
2: तो मैम FPO में सस्ते बीज भी मिलते हैं, सस्ते बीज के साथ क्या संगठन से जुड़ने के बाद कोई और भी फायदा होता है? खेती के तरीकों में भी क्या बदलाव आता है या आया है?
3: जी इन संगठनों से जुड़ने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे फायदे मिलते हैं, जैसे कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोला जाता है जिसके तहत किसानों को हम बड़ी जो उपकरणे होती हैं कृषि से संबंधित, जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ड्रोन, इन जैसी महंगी मशीनें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। संगठन से बहुत कम किराए पर ये ले सकते हैं। इससे मजदूरी का खर्च भी कम हो जाता है और समय की भी बचत होती है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार FPO की नई मशीनें खरीदने के लिए भारी सब्सिडी भी देती है। इसके अलावा संगठन के माध्यम से कृषि वैज्ञानिकों से सीधे जानकारी मिलना आसान हो जाता है।
2: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है बाज़ार की। जैसे कि हम जानते हैं किसान भाई बहन भी इस बात से रूबरू होंगे कि खेत में जो टमाटर 2 रुपये किलो मिलता है वो बाज़ार पहुंचते ही 40 रुपये किलो हो जाता है। इसमें किसान भाई बहनों को बहुत फ़ायदा तो नहीं होता है, लेकिन अगर वो किसान संगठन से जुड़ जाएँ तो किसान संगठन उनकी कैसे मदद कर सकता है?
3: जी यही तो पूरा खेल है, फ़ायदा तो होता ही नहीं है, बल्कि उनका जो कॉस्ट है, जो पैदावार कर रही कॉस्ट है, कभी कई बार ऐसा होता है कि वो भी नहीं निकल पाता है। तो अकेले किसान के पास अपनी फसल को भंडारण करने की जगह नहीं होती है, इसीलिए वह उसे औने पौने दाम में बेच देता है। लेकिन संगठन के पास अपना गोदाम या कोल्ड स्टोरेज, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जिससे कि वो उसे जब बाज़ार में इसका मूल्य ज़्यादा हो तब बेच करके अधिक मुनाफा कमा सकें। दूसरी बात ये है इसका प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग। अगर आप केवल मखाना बेचेंगे तो कम पैसे मिलेगा, लेकिन अगर संगठित होकर मिलकर मखाना की ग्रेडिंग करें, उसे पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो मुनाफा 2 गुना 3 गुना तक हो सकता है।
2: जी मैम, तो मुनाफा हो सकता है अगर हमारे किसान भाई बहन संगठन से जुड़े, लेकिन अब सवाल यह है कि वो संगठन से कैसे जुड़े, या फिर अगर वो आपस में संगठन बनाना चाहें तो उसकी प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से वो सरकार से मदद ले सकते हैं?
3: जी, तो सबसे पहले तो जो किसान भाई बहन है उन्हें अपने क्षेत्र में कम से कम 10 से 20 जागरूक किसान जो है उनके साथ एक बैठक करने की ज़रूरत है। अपने ज़िले के कृषि विभाग या कि नाबार्ड उनके कार्यालय में संपर्क करने की ज़रूरत है। सरकार भी FPO बनाने के लिए 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देता है और विशेषज्ञों की मदद भी देती है। बिहार में जीविका के माध्यम से भी कई महिला किसान संगठन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
2: मैम, अब मैं चाहूँगी कि आप विस्तार से बताएं कि इसकी प्रक्रिया क्या है और चरण दर चरण अगर कोई किसान भाई बहन चाहें FPO बनाना तो किस तरीके से बना सकते हैं।
3: जी ज़रूर, तो इसका जो तैयार होने का प्रक्रिया है ये मुख्यतः 3 चरणों में होता है। किसान संगठन मुख्य रूप से एक कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। तो पहले प्रक्रिया में क्षेत्र और फसल का चयन किया जाता है। सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चुनाव किया जाता है जहां किसान एक जैसी फसलें उगाते हों। जैसे आम उगा रहे हैं तो सारे किसान आम उगाएंगे, मखाना की खेती हो रही है तो सारे किसान मखाना की खेती करेंगे, या सब्जी की वो FPO होने वाला तो सारे किसान सिर्फ सब्जी ही लगाएंगे अपने खेत में। फिर कम से कम 10 या उससे अधिक प्राथमिक जो किसान हैं, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी आवश्यकता होती है। हालांकि एक सफल FPO के लिए कम से कम 300 से 500 किसानों का लक्ष्य रखा जाता है। उसके बाद बारी आती है पंजीकरण कराने की। तो इसके लिए कम से कम 5 निदेशक जो कि बनाए जाते हैं किसानों के बीच से ही, उनका डिजिटल हस्ताक्षर जिसे DSC कहते हैं और DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वो बनवाना होता है। उसके बाद उस संगठन की नाम की स्वीकृति ली जाती है। अपने जो कंपनी बनाई है इसके लिए एक बहुत ही यूनिक सा नाम चुना जाता है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC के से वो स्वीकृत कराया जाता है। उसके बाद बारी आती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करने की, जिसमें कंपनी के नियम लिखे जाते हैं। उसके बाद आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र ROC के द्वारा जांच के बाद प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके बाद आप इसके प्रबंधन और संचालन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि किसानों के बीच से ही चुना जाता हो वो चुनने की आवश्यकता है। उसके बाद उसमें CEO व्यावसायिक कार्यों के लिए एक CEO और एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाती है।
2: मैम, अगर FPO बनाने के लिए ऋण की ज़रूरत हो, वित्तीय सहायता की ज़रूरत हो तो वो किसान भाई बहनों को कैसे मिलते हैं और क्या क्या सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ?
3: जी, पूंजी के लिए भारत सरकार और नाबार्ड विशेष मदद देते हैं। जैसे कि पहला है इक्विटी ग्रांट स्कीम। इसके तहत यदि किसानों ने मिलकर 5 लाख रुपए जमा किए हैं तो सरकार भी संस्था को 5 लाख रुपए का अनुदान देगी। उसके बाद इसका अधिकतम 15 लाख रुपए तक इसकी सीमा हो सकती है। दूसरा तरीका है क्रेडिट गारंटी फंड, जिसमें अक्सर बैंकों को बिना गारंटी के लोन देने में डर लगता है। इसके समाधान के लिए SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम और नाबार्ड क्रेडिट गारंटी देते हैं। इससे इसके तहत FPO जो है उसको बिना किसी जमीन या संपत्ति को गिरवी रखते हुए 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। और इसकी सुरक्षा, यदि FPO लोन नहीं चुका पाते हैं तो सरकार उस लोन को एक बड़े हिस्से की भरपाई बैंक को करनी पड़ती है। तीसरा है प्रबंधन लागत सहायता, जिसमें कि CEO का वेतन, ऑफिस का किराया, बिजली बिल और अन्य खर्चों के लिए 18 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है।
2: तो मैम, इसके अलावा किसानों को, किसान भाई बहनों को और कौन कौन से लाभ मिलते हैं?
3: जी, इसके अलावा जैसे कि FPO में संगठित होने से इनको सबसे पहले कि सस्ता इनपुट मिल जाता है। थोक में खरीदने के कारण बीज, खाद, कीटनाशी बाजार से करीबन 10 से 15% सस्ते दामों में मिल सकते हैं। इसके अलावा मशीनरी बैंक्स जैसे FPO अपना कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकते हैं, जिससे किसानों को सस्ते दामों में ट्रैक्टर या ड्रोन किराए पर मिल सकता है। और साथ ही मूल्य संवर्धन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर किसान अपने फसल को ब्रांड बनाकर ऊंचे दामों पर शहरों में बेच सकते हैं। और एक आपको चौथा मुख्य लाभ है, सीधा बाजार मिल जाएगा। बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को आप अपना माल बेच सकते हैं।
2: मैम, अब किसान भाई बहन उनके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि FPO बनाने के लिए किसान भाई बहन कहाँ से सहायता लें।
3: जी, FPO बनाने के लिए सरकार ने CBBO क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नियुक्त किए हैं। ये विशेषज्ञ संस्थाएं 5 साल तक किसानों को पंजीकरण से लेकर बाजार दिलाने तक में मदद करती हैं। आप अपने जिले के कृषि विभाग, नाबार्ड कार्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। बिहार में जीविका भी महिला किसानों को FPO बनाने में बहुत सक्रिय भूमिका निभा रही है।
2: बहुत ही अच्छी ये चर्चा रही। मैम, मैं चाहती हूँ कि आप किसान भाई बहनों को अंत में कोई संदेश दें।
3: जी, किसान भाई बहन, बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि संगठन में ही शक्ति है। अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाइए और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। और याद रखिए, उन्नत बीज, उचित बाजार, किसान संगठन है खुशहाली का आधार। धन्यवाद।
2: मैम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई बहनों, अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले खास बात की, अपना और अपनी फसलों का रखें खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करें ढेर सारा प्यार। नमस्कार।
0: उन्नत कृषि।
4: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
5: खुद भी बचे देश भी बचाए।
6: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
7: टीकू, तेरे कितने दोस्त हैं?
8: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और।
7: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
8: 11 दोस्त?
7: टीकू, वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
8: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
7: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
8: लेकिन ऐसा क्यों?
7: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
8: टीकी, तो इसका हल क्या है?
7: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर ANM दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। UN पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
8: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन, और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके खास कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों, जब हम खेती की बात करते हैं तो उसमें सब्जियों की खेती आय बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया होता है, लेकिन मौसम की मार, खरपतवार, रोग और कीट अक्सर मुनाफे में बड़ी बाधा बन जाते हैं। ऐसे में मल्चिंग विधि किसानों के लिए एक आधुनिक और कारगर तकनीक बनकर उभरी है। मल्चिंग क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाए, किस तरीके के मल्चिंग का चुनाव किया जाए, ऐसी बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे डॉक्टर शिरीन अख्तर से। जी हाँ, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिरीन अख्तर। मैम, आप है उद्यान सब्जी विज्ञान विभाग से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
9: धन्यवाद।
7: मैम, आपसे सबसे पहला सवाल कि मल्चिंग क्या है?
9: धन्यवाद उमा। आज की जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सब्जियों की खेती जो है किसानों की आय बढ़ाने की बहुत अच्छा जरिया है, और इसमें लेकिन बहुत सारा खरपतवार लगते हैं, रोग लगते हैं, जो कि अक्सर मुनाफे को बहुत हद तक घटा देते हैं। तो मल्चिंग एक ऐसी विधि है जिससे हम लोग मुनाफा बढ़ा सकते हैं। मल्चिंग वो तकनीक है जिसमें खेत में मिट्टी की सतह को किसी आवरण से ढक दिया जाता है। ये आवरण जैविक भी हो सकता है, जैसे कि सूखी घास हो सकता है, पुआल हो सकता है, फसल की अवशेष हो सकता है, या अजैविक भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारा प्लास्टिक मल्च लगाते हैं, काली शीट या सिल्वर शीट, ये सब लगाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है मिट्टी में नमी बनाए रखना, खरपतवार को रोकना और फसल को अनुकूल वातावरण देना। तो सब्जी की खेती में आय बढ़ाना हर किसान का लक्ष्य होता है, लेकिन मौसम, रोग, कीट और खरपतवार जो है अक्सर मुनाफे को बाधा डालते हैं, और मल्चिंग विधि एक आधुनिक खेती की कारगर तकनीक बनकर उभरी हुई है, और ये जो है खरपतवार कीटों से सब्जी फसल को बचाती है, और फसल की पैदावार भी जो है 20-40% तक बढ़ा सकती है, और टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज या खरबूजा जैसे सब्जियों में मल्चिंग अपनाकर किसान कम लागत और कम सिंचाई में अधिक मुनाफा बहुत कमा सकते हैं।
7: तो मैम जैसे कि आप बता रहे थे पैदावार बढ़ाई जा सकती है और मुनाफा कमा सकते हैं, इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदा होता है मल्चिंग का?
9: मल्च के जो फ़ायदे हैं वो सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है वो मिट्टी में नमी बनाए रखता है। तो जैसे गर्मी होती है तो उस समय पे जो है तापमात्रा भी ज़्यादा होता है और पानी की भी कमी होती है, तो उस समय क्या देखते हैं हम लोग फसल जो है सूखने लगता है, मिट्टी सूख जाती है, तो उस समय पे सिंचाई भी ज़्यादा नहीं मिलता है, पानी का थोड़ा सा कमी भी हो जाता है। तो उस समय पे अगर हम लोग मल्च दे के रखते हैं तो मिट्टी की नमी सतह बनी रहती है और साथ साथ में जो है सब्जी फसल में खरपतवार की बहुत ज़्यादा प्रकोप दिखता है और वो फसल को बहुत सारा हानि भी पहुंचाती है। खरपतवार की वजह से रोग भी काफ़ी होता रहता है, तो खरपतवार को हम लोग अगर घटाना चाहते हैं तो उसमें जो काफ़ी सारा लागत लग जाता है, बहुत सारा लेबर इंटेंसिव हो जाता है सब्जी की खेती, उसमें रेगुलरली लेबर निराई गुड़ाई करते रहते हैं, तो उससे जो है हमारा जो है फसल उगाने का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो हम लोग अगर मल्चिंग की उपयोग करते हैं तो खरपतवार की वृद्धि जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। तो अगर हम लोग काले रंग की पॉलीथीन मल्च लगाते हैं खास करके, तो उसमें जो है खरपतवार काफ़ी घटते हैं। और तीसरा चीज़ जो है मिट्टी का जो तापमान है वो भी मल्च से नियंत्रित रहता है, खास करके अगर हम लोग इसमें पुआल वगैरह की मल्चिंग करते हैं गर्मियों के समय पे, तो उसमें जो है मिट्टी थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है कम रहता है, तापमान कम रहता है। यहीं पर अगर हम लोग ठंडे में पॉलीथीन मल्च लगाते हैं, प्लास्टिक के मल्चेस लगाते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। और साथ साथ में जो है जैविक मल्च अगर हम लोग लगाते हैं, घास हो सकता है, पुआल हो सकता है या कंपोस्ट भी हो सकता है, तो वो आखिर में लास्ट में जो है मिट्टी में मिलके मिट्टी का उपजाऊ जो क्षमता है उसका भी सुधार करता है। तो टमाटर, मिर्च, बैंगन, खीरा, तरबूज, खरबूजा, ये सब्जियों में ज़्यादातर मल्च हम लोग लगाते हैं और उससे बेहतरीन परिणाम मिलते हैं और तापमान वगैरह जो है इसका जो है संतुलित रहता है। इसके अलावा जो है नमी क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो सिंचाई का भी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, तो पानी जो है उसकी ज़रूरत हमको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, उसमें कम हो जाती है। और साथ साथ में जो है मिट्टी से जो पत्तियों पे कीचड़ उछल के आते हैं तो वो समस्या भी कम रहती है, और मिट्टी कहीं ना कहीं पौधे में उछल के आती है तभी जो है पौधे में फफूंद और जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उसका खतरा आ जाता है। तो मल्चिंग अगर हम लोग करते हैं तो ये खतरा भी टलता है, तो रोग की प्रकोप भी कम होती है। साथ साथ में जो है फल की क्वालिटी भी अच्छा होता है क्योंकि फल डायरेक्ट ज़मीन के या मिट्टी के संपर्क में नहीं रहता है, मिट्टी के संपर्क में रहता है तो बहुत सारा फफूंद उसमें लग सकता है, उसका क्वालिटी भी खराब हो सकता है, उसमें सड़न आ सकती है। लेकिन मिट्टी से डायरेक्ट अगर वो संपर्क में नहीं रहता है, मल्च के ऊपर रहता है, तो वो जो फल रहता है कद्दू वगैरह खास करके हम लोग देखते हैं या टमाटर भी देखते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। साथ साथ में जो है कुछ प्लास्टिक मल्च जैसे सिल्वर कलर के मल्च होते हैं, तो उन मल्च से जो है अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें कीड़ा भी कम होता है, सफ़ेद मक्खी वगैरह जो है या फिर माहू होता है इनका प्रकोप भी घटता है।
7: मैम अभी आप अलग अलग प्रकार के मल्च के बारे में बता रहे थे, तो कितने प्रकार के मल्च होते हैं?
9: मुख्यतः मल्च जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक है जो प्राकृतिक रूप से सड़कर मिट्टी में पोषक तत्व देते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियां हो गया, भूसा हो गया या कंपोस्ट हो गया, और दूसरा है अजैविक या इनऑर्गेनिक जो टिकाऊ होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक मल्च हुआ या फिर ग्रेवल या पत्थर जो होते हैं इनका भी मल्चिंग हम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक या जैविक मल्च में जो है पत्तियां घास आती है जो कि आसानी से उपलब्ध है और कार्बनिक पदार्थ भी बढ़ाते हैं मिट्टी का, लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या कोई पेड़ की छाल हो सकते हैं जो ज़्यादातर बड़े पेड़ों और झाड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं। भूसा भी हो सकते हैं, हम लोग खास करके सब्जियों की बगीचे में जो है भूसा को बहुत अच्छे से डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है और मिट्टी को नमी वगैरह भी अच्छे से मेंटेन करके रख सकता है। इसके अलावा हम लोग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, तो कंपोस्ट से जो है मिट्टी का उर्वरता जो है वो अच्छे से सुधार हो सकता है। अजैविक मल्च में जो है प्लास्टिक शीट आते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, और सब्जियों में खास करके टमाटर और मिर्च की खेती में बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो प्लास्टिक मल्च लगाने से जो है ठंडे में जो फसल होता है उसमें मिट्टी का जो तापमान है वो थोड़ा बढ़ा देता है, साथ साथ में नमी को भी बरकरार रखता है, तो उसमें सिंचाई का ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ता है। साथ साथ में टमाटर और मिर्च में हम लोग देखते हैं कुकड़ी का प्रकोप होता है सफ़ेद मक्खी से, थ्रिप्स से, एफिड से, तो जो प्लास्टिक या सिल्वर मल्चिंग अगर हम लोग इसमें लगाते हैं, खास करके मिर्च में हम लोग बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं सिल्वर मल्चिंग का, तो वो जो है इसको ये जो सकिंग पेस्ट जिसको बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी हो गया या एफिड हो गया, माहू हो गया, इनको ये दूर रखते हैं, और जो कुकड़ी जातीय रोग होते हैं उनको वो दूर रखते हैं। इसके अलावा ग्रेवल या स्टोन जो है ये भी देखते हैं, ये सजावटी जो बगीचे होते हैं उनके लिए उपयोग ज़्यादा होता है। और एक मल्च है जो लैंडस्केप फेब्रिक, तो ये फैब्रिक क्या है, ये जैसे हम लोग शेड नेट वगैरह रख देखते हैं वैसे टाइप का ही होता है, तो इसमें जो है पानी गुजरने देता है ये मल्च, लेकिन उसमें खरपतवार नहीं उग सकता।
10: जी मैम, तो इतने प्रकार के मल्च में एक सही मल्च का कैसे चुनाव करें?
9: तो हम लोग जो है सही मल्च के लिए सब्जी वाले बगीचे में अगर हम चयन करते हैं मल्च का, तो उसमें हम लोग जैविक मल्च उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो है प्लास्टिक मल्च में जो है सिल्वर मल्च का उपयोग बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं। अगर हमको मूल हमारा लक्ष्य है खरपतवार को नियंत्रण करना, तो काले रंग की मल्च, पॉलीथीन मल्च जो है वो बहुत अच्छे से खरपतवार को नियंत्रण भी करती है। और अगर हमारा सजावटी कोई क्यारिया हो, तो उसमें हम लोग लकड़ी के टुकड़े या फिर जो है पत्थर या बजरी जो है उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक खेती के लिए अगर हम देखते हैं तो टिकाऊ होता है प्लास्टिक मल्च, तो ये अधिकतर उपयोग होता है सब्जी की खेती में।
10: तो मैम, मल्चिंग कैसे अपना सकते हैं?
9: खेत को हम लोग पहले अच्छे तरह से बेड बना लेंगे, उसको पहले निराई गुड़ाई करेंगे, उसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर जो है निराई गुड़ाई करके अच्छे से उसका बेड तैयार कर लेंगे, फिर जो है मल्च हम जब करते हैं तो उसके ऊपर ड्रिप लाइन बिछाना ज़रूरी होता है, खास करके प्लास्टिक मल्च के लिए। तो प्लास्टिक मल्च शीट जो है ड्रिप लाइन बिछाने के बाद में प्लास्टिक मल्च के शीट उसमें लगाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ पौधा लगेगा उसका जो विधि अनुसार जो दूरी होता है जिसको हम लोग स्पेसिंग बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग उस प्लास्टिक मल्च के ऊपर छेद बना लेंगे। छेद बनाने के बाद में जो है हम लोग बाद में पौध को रोपण करेंगे, पहले मल्च डल जाएगा, उसके बाद में जो है पौधा रोपण होगा जो छेद बनाने के बाद में। और अगर हम लोग जैविक मल्च लगाते हैं तो पहले हम लोग जो है पौधा लगा सकते हैं, उसके बाद में पौधा थोड़ा एस्टेब्लिश हो जाने के बाद में हम लोग जो पुआल हो या फिर सूखे घास हो उसको मिट्टी के ऊपर बिछा के उसको उपयोग कर सकते हैं।
10: और मैम, इससे उत्पादन कैसे बढ़ता है और मुनाफा कैसे इससे ज़्यादा होता है?
9: मल्चिंग अगर हम अपनाते हैं तो सब्जी की पैदावार में हम लोग देखते हैं कि 20-40% की बढ़त हो सकती है, तो ये काफ़ी हद तक बढ़त है। और साथ साथ में जो है फसल जल्दी तैयार हो जाता है, तो जल्दी तैयार होने के लिए अर्ली फसल होता है तो किसान को जो है मुनाफा ज़्यादा मिलता है, बाज़ार में जो भाव मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। साथ साथ में क्योंकि मिट्टी से डायरेक्ट जो है संपर्क में नहीं रहता है, तो उसका जो फल होता है, फसल होता है, उसका गुणवत्ता भी ज़्यादा होता है, तो गुणवत्ता ज़्यादा अच्छा होने के कारण से जो है बाज़ार में कीमत भी अच्छा मिलता है। और शुरुआती लागत हो सकता है थोड़ा सा लगे, क्योंकि पॉलीथीन मल्च या प्लास्टिक मल्च अगर खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा लागत लगता है, लेकिन अल्टीमेटली सिंचाई भी कम पड़ता है, तो और जैसे आपको निराई गुड़ाई करने का लेबर भी कम पड़ता है, और रोग प्रकोप जो है वो भी कम होता है, इसलिए उसका दवाई भी कम पड़ता है, तो अल्टीमेटली जो है आपका जो खर्चा होता है खेती का वो कम ही होता है, और क्योंकि फसल का गुणवत्ता ज़्यादा होता है तो मुनाफा भी ज़्यादा होता है।
10: यानी कि थोड़ा सा खर्च और उसके बाद मुनाफा काफ़ी होता है, पैदावार क्योंकि अच्छी हो जाती है, खरपतवार के नियंत्रण में कोई एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो बहुत फ़ायदे हो सकते हैं मल्चिंग के। मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आई।
9: धन्यवाद उमा।
10: दोस्तों आप हमारे साथ यानी कि 90.8 एफएम ग्रीन के साथ बने रहें, क्योंकि हम हैं हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि।
11: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान, घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
12: खुद भी बचे देश भी बचाए।
13: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
14: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
15: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और।
14: और तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
15: 11 दोस्त?
14: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
15: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
14: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
15: लेकिन ऐसा क्यों?
14: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
15: टीकी तो इसका हल क्या है?
14: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
15: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन। आइए जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी आने और साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 80 प्रतिशत और दोपहर में 25 से 30 प्रतिशत रहने की संभावना है। अनुमान है कि 17 से 21 जून के दौरान 14 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दक्षिण पूर्वी हवा चलेगी। आगे की सूचना विशेष तौर पर किसान भाई बहनों के लिए। जो किसान भाई बहन धान की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, लंबी अवधि वाले धान की किस्में जैसे सबौर श्री, स्वर्णा सबेक, राजेंद्र मसूरी, राजेंद्र स्वेता स्वर्णा और BPT 5204 यानी कि BPT 5204 की नर्सरी आसमान साफ रहने पर स्थापित करें और ध्यान रखें कि स्वस्थ पौध के लिए नर्सरी में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। नर्सरी में क्यारी की चौड़ाई 1.25 से 1.5 मीटर और लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए 800 से 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की नर्सरी जरूर तैयार कर लें और बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें। ध्यान दें कि बीज गिराने से पहले बीजोपचार जरूर कर लें, इससे पौधे स्वस्थ और फसल अच्छी होती है। जितने क्षेत्र में धान का रोप करना हो उसके दशांश हिस्सों में बीज गिराएं और बीज गिराने के पहले 1.5 ग्राम बाबिस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित जरूर करें। जो खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ मक्का की बुआई तभी करें जब आसमान साफ हो। खेत की जुताई में 10 से 15 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर की दर से जरूर डालें और बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना चाहिए। किसान भाई बहनों, अनुशंसित मक्का की किस्में हैं सुवान देवकी, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, राजेंद्र शंकर मक्का 3 और गंगा 11। जिनके खेत में मूंग लगे हैं उन्हें बता दें, मूंग की तैयार फलियों की तुड़ाई कर ले और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी पलटने वाले हल से जमीन में गाड़ देना चाहिए। जो सब्जियों की खेती करते हैं उन्हें बता दें, वर्तमान मौसम परिस्थितियां ऐसी हैं कि मिर्च में विषाणु जनित रोग यानी क्योंकि वायरल रोगों के प्रसार के लिए ये समय अनुकूल हो जाता है। इसलिए अगर कोई रोगग्रस्त पौधा दिखे तो उसे उखाड़कर तुरंत मिट्टी में दबाकर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वाहक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रीड की 0.3 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में घोल लें और अच्छी तरीके से छिड़काव करें। ध्यान दें कि छिड़काव तभी करें जब आसमान साफ हो। जो खरीफ प्याज की खेती करना चाहते हैं उन्हें बता दें, खरीफ प्याज की खेती के लिए नर्सरी यानी कि बीज स्थली की तैयारी तभी करें जब आसमान साफ हो। स्वस्थ पौधों के लिए नर्सरी में गोबर की खाद जरूर डालें और खरीफ प्याज के लिए NO53 एग्रीफाउंड डार्क रेड अर्का कल्याण भीमा सुपर ये किस्में अनुशंसित है। प्याज के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से ही करें और बीज गिराने के पहले किसान भाई बहनों बीजोपचार करना बिल्कुल न भूलें। बीज की दर 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें और जो बागवानी करते हैं उन्हें बता दें, लीची तोड़ने के बाद खासकर बरसात शुरू होने से पहले बगीचे की जुताई कर ले और खाद उर्वरकों का प्रयोग तभी करें जब आसमान साफ हो। प्रति प्रौढ़ पेड़ 60 से 80 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, 1 किलो 300 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा मिलाकर वृक्ष के चारों ओर समान रूप से मिट्टी में मिला दें। जो पशुपालन करते हैं उन्हें बता दें, गलाघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाव के लिए टीकाकरण कराने की बहुत जरूरत होती है। सभी दुधारू पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं और पशुपालक भाई बहन ध्यान दें कि नए गेहूं के भूसा को खिलाने के पहले उस भूसे को करीब 2 घंटा पानी में फुला ले और 50 ग्राम खनिज मिश्रण और 50 ग्राम नमक चारा दाना मिला कर दे। सूचना समाप्त हुई। ऐसी ही ढेरों जानकारियों के लिए आप हमारे साथ यानी कि 90.8 FM ग्रीन के साथ जुड़े रहें।

समय थकान महसूस करते हैं। छोटे छोटे काम करने पर भी आपकी सांस फूलती है, चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है। ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर आप सबका स्वागत करता है स्वाद संस्कृति और समृद्धि के संगम राष्ट्रीय आम समागम सह कार्यशाला में। तारीख याद रखें 27 से 28 जून 2026।

0: क्या आप अपना ब्लड प्रेशर नियमित जांचते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर माना जाता है। सही खानपान, कम नमक और रोज व्यायाम रख सकता है आपको स्वस्थ। तनाव कम करें, अच्छी नींद लें और नियमित बीपी जांच कराएं। स्वस्थ दिल, स्वस्थ जीवन, सेहत सही, लाभ कई।
1: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM ग्रीन।
2: अरे भाई वाह, आज तो हमारे गांव में कुछ अलग ही माहौल है। सुबह सुबह इतनी भीड़ और ये लाउड स्पीकर से आवाज।
3: सभी लोग ध्यान दें, आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगेगा।
2: अरे ये HPV क्या होता है भाई, और इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे सेहतिया सिंह जी, इधर आइए, आप तो हमेशा सही जानकारी देते हैं, जरा बताइए ये क्या चल रहा है?
4: अरे प्रिया, आज बड़ा अच्छा दिन है गांव के लिए भी और हमारी बेटियों के लिए भी। आज जो कैंप लगा है ना, ये कोई साधारण टीकाकरण नहीं है, ये आगे चलकर एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने वाला टीका है। पर HPV के बारे में विस्तार से बताने से पहले कहानी बताना चाहता हूँ। गांव का नाम था बड़की टोला। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन सावित्री देवी का दिन कब का शुरू हो चुका था। पहले चूल्हा जलाना, फिर पानी भरना, बच्चों को तैयार करना और उसके बाद खेत का काम। सावित्री देवी एक 12 साल की बेटी थी, गुड़िया। पढ़ने में तेज लेकिन थोड़ी शर्मीली। सावित्री चाहती थी कि उसकी बेटी कुछ बन जाए, उसकी जिंदगी उससे बेहतर हो। एक दिन गांव में आशा दीदी आई और उन्होंने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में HPV टीकाकरण शिविर लगने वाला है। उन्होंने समझाया कि ये टीका लड़कियों को आगे चलकर एक खतरनाक बीमारी सर्वाइकल कैंसर से बचाता है। सावित्री देवी पहले थोड़ा हिचकिचाई। उन्होंने अपने पति रामलाल से बात की। रामलाल पहले तो बोले, अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, उसे क्या जरूरत है टीके की। लेकिन आशा दीदी ने धैर्य से समझाया, भैया यही सही समय है, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं पहले काम करता है, अगर अभी लगवा दिया तो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचाव हो जाएगा। रामलाल कुछ सोच में पड़ गए। उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा लेकिन किसी के पास पूरी जानकारी नहीं थी, बस अफवाहें थी। तभी एक दिन उन्होंने रेडियो पर एक कार्यक्रम सुना जिसमें मेरे जैसे ही एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझा रहे थे कि ये टीका सुरक्षित है और क्यों जरूरी है। उस दिन के बाद रामलाल का नजरिया बदल गया। उन्होंने कहा, अगर एक छोटा सा टीका मेरी बेटी को जिंदगी भर की बीमारी से बचा सकता है तो हम क्यों पीछे रहें। अगले ही दिन सावित्री और रामलाल अपनी बेटी गुड़िया को लेकर कैंप पहुंचे। वहां कई और लड़कियां भी आई थी। शुरुआत में गुड़िया थोड़ी डरी हुई थी लेकिन जब उसने देखा कि बाकी लड़कियां भी हिम्मत से टीका लगवा रही हैं तो उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा मैं भी लगवाऊंगी। टीका लगने के बाद बस थोड़ा सा दर्द हुआ लेकिन 2 दिन में सब ठीक हो गया। धीरे धीरे गांव में और लोग भी प्रेरित हुए। सावित्री देवी अब खुद दूसरी महिलाओं को समझाने लगी। रामलाल भी पंचायत में इस विषय पर बात करने लगे। कुछ महीनों बाद बड़की टोला में एक बदलाव साफ दिखने लगा। ज्यादा लड़कियां टीका लगवा रही थी, लोग अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करने लगे थे और सबसे बड़ी बात, अब बेटियों की सेहत को लेकर गंभीरता बढ़ गई थी। सावित्री देवी अक्सर कहती थी, पहले हम सोचते थे कि ये सब शहरों की बात है लेकिन अब समझ में आया कि हमारी बेटियों का भविष्य हमारे ही हाथ में है। ये कहानी सिर्फ सावित्री और गुड़िया की नहीं है, ये हर उस परिवार की कहानी हो सकती है जो सही समय पर सही फैसला ले।
2: अच्छा, लेकिन ये HPV नाम तो बड़ा भारी लग रहा है, जरा खुलकर विस्तार से बताइए।
4: देखिए, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। नाम बड़ा लग रहा है पर बात आसान है। ये एक ऐसा वायरस है जो अगर शरीर में आ जाए और समय रहते रोका ना जाए तो महिलाओं में आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर यानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर पैदा कर सकता है।
2: मतलब ये सीधी सीधी जानलेवा बीमारी तक ले जा सकता है।
4: हाँ, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानती हो प्रिया?
2: क्या सेहतिया जी, अब तो आप थोड़ा डरा ही रहे हैं।
4: डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कह रहा हूँ। इस बीमारी की सबसे बड़ी चालाकी ये है कि शुरू शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता, ना कोई दर्द, ना बुखार, ना कोई परेशानी जिससे लगे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है।
2: मतलब इंसान को पता नहीं चलता।
4: बिल्कुल, और यही वजह है कि जब तक लोगों को इसका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, बीमारी काफी आगे बढ़ चुकी होती है।
2: अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इससे बचने का कोई तरीका है या नहीं?
4: यही तो अच्छी खबर है प्रिया। जहाँ एक तरफ इसका इलाज मुश्किल हो सकता है, वहीं दूसरी तरफ इसका बचाव बहुत आसान है।
2: सच में? कैसे?
4: HPV वैक्सीन से, एक छोटा सा टीका जो आगे चलकर बड़ी बीमारी से बचा जा सकता है।
2: जरा इसे और आसान करके समझाइए ना, ताकि हमारे गांव के लोग को भी अच्छे से समझ सके।
4: ठीक है, एक उदाहरण से समझिए। जब हम खेत में फसल लगाते हैं तो क्या करते हैं?
2: चारों तरफ बाड़ लगाते हैं ताकि जानवर अंदर ना घुसे।
4: बिल्कुल, ताकि फसल सुरक्षित रहे। ठीक वैसे ही ये वैक्सीन हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा की बाड़ की तरह काम करता है। ये वायरस को अंदर आकर नुकसान करने से रोकता है।
2: ओह, मतलब ये बीमारी को शुरू होने से पहले ही रोक देता है।
4: हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई इलाज नहीं है कि बीमारी हो जाने के बाद काम आए, ये तो पहले से ही सुरक्षा देता है ताकि बीमारी हो ही ना पाए।
2: तो फिर ये टीका किसे लगवाना चाहिए? कोई खास उम्र होती है क्या?
4: हाँ, इसका सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब इसे सही उम्र में लगवाया जाए। आमतौर पर 9 से 14 साल की लड़कियों को ये टीका लगवाना सबसे अच्छा माना जाता है।
2: और अगर कोई इससे बड़ी उम्र की हो?
4: तो भी चिंता की बात नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर बाद में भी ये टीका लगवाया जा सकता है, लेकिन जितना जल्दी लग जाए उतना बेहतर।
2: सेहतिया जी, एक बात मेरे मन में आ रही है, ये तो लड़कियों का टीका है, तो इसमें पुरुषों का क्या भूमिका है?
4: यही तो सबसे अहम बात है प्रिया। महिलाओं की सेहत सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होती, इसमें पूरे परिवार की, खासकर पुरुषों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है।
2: जरा विस्तार से बताइए।
4: देखिए, एक पिता की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी को समय पर सही जानकारी दे और उसका टीकाकरण करवाए। एक भाई का कर्तव्य है कि वो अपनी बहन को समझाए, उससे डर या अफवाहों से दूर रखे। और एक पति का फर्ज है कि वो अपनी पत्नी की सेहत का ख्याल रखे, उसे हर जरूरी सुविधा और सहयोग दे।
2: सही कहा आपने।
4: अगर घर का पुरुष ही पीछे हट जाएगा या ध्यान नहीं देगा तो आधी लड़ाई तो वहीं हार जाएंगे, इसलिए पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: मतलब ये सिर्फ महिला स्वास्थ्य का मामला नहीं है?
4: बिल्कुल नहीं, ये पूरे परिवार का मामला है। जब एक महिला स्वस्थ रहती है तो पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, और जब परिवार स्वस्थ होता है तभी गाँव मजबूत बनता है।
2: लेकिन सेहतिया जी, एक बात है, गाँव में तो तरह तरह की बातें चलती है। कोई कहता है कि यह टीका लगवाने से लड़कियां कमजोर हो जाती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होती है।
4: देखो प्रिया, यही सबसे बड़ी समस्या है, अधूरी और गलत जानकारी। ये सब जो बातें आपने सुनी है ना, ये सच नहीं है बल्कि अफवाहें हैं।
2: मतलब इनमें से किसी बात में सच्चाई नहीं है?
4: बिल्कुल नहीं, मैं आपको एक एक करके साफ कर देता हूँ। पहली बात, लोग कहते हैं कि टीका लगने से कमजोरी आ जाती है, जबकि सच्चाई ये है कि टीका लगने के बाद बस हल्का सा बुखार या हाथ में दर्द हो सकता है, जो एक दो दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती।
2: अच्छा, और जो लोग कहते हैं कि इससे आगे चलकर बच्चा पैदा करने में दिक्कत होती है?
4: वो भी पूरी तरह गलत है। इस वैक्सीन का मां बनने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक वायरस से बचाने के लिए होता है और कुछ नहीं।
2: और एक बात जो अक्सर लोग कहते हैं, अगर लड़की बिल्कुल ठीक है तो टीका लगवाने की क्या जरूरत है?
4: यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। देखिए, ये टीका बीमारी होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले काम करता है। अगर लड़की अभी स्वस्थ है तो वही सबसे सही समय है टीका लगवाने का। जैसे हम बारिश आने से पहले छाता रखते हैं, वैसे ही यह पहले से ही सुरक्षा देता है। जरा सोचो प्रिया, अगर एक छोटा सा टीका आपकी बेटी को एक बड़ी और जानलेवा बीमारी से बचा सकता है, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जब बचाव इतना आसान है तो देर क्यों करें? सेहतिया जी, एक बात बताइए, क्या हमारे गांव में भी लोग इसे लगवा रहे हैं?
4: हाँ, धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और आगे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कई लोग डर और अफवाहों के कारण पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आज जैसे कैंप बहुत जरूरी है।

0: में कौन सा टीका लगता था और हम तो ठीक हैं। कमला देवी भी डर गई। गांव में कुछ लोगों ने और बातें फैलाई, इससे लड़की कमजोर हो जाएगी, आगे चलकर बच्चा नहीं होगा। इन अफवाहों के बीच सच की आवाज दब गई। रानी ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, अम्मा मेरी सहेली गुड़िया टीका लगवाने गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती। कमला देवी के पास जवाब नहीं था, उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तुम्हारे बाबूजी मना कर रहे हैं। समय बीतता गया, बात वहीं रह गई। सालों बाद जब रानी बड़ी हुई, शादी हुई और एक दिन उसे बार बार कमजोरी और असहजता महसूस होने लगी। शुरू में सबने इसे सामान्य समझा, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो उसे शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया उसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह सर्वाइकल कैंसर का मामला है और अब यह काफी आगे बढ़ चुका है। कमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें वही दिन याद आया जब आशा दीदी ने समझाया था, जब रानी ने खुद पूछा था। महेंद्र भी चुप हो गए, उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उन्होंने धीमे से कहा, अगर उस दिन हमने टीका लगवा दिया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। इलाज शुरू हुआ लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। बार बार अस्पताल के चक्कर, बढ़ता खर्च, परिवार की चिंता और दर्द। रानी की बीमारी ने सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं पूरे परिवार को झकझोर दिया। आज कमला देवी हर घर जाकर एक ही बात कहती, अफवाहों पर मत जाओ, हमने अपनी गलती से बहुत बड़ा नुकसान देखा है, तुम ऐसा मत करना। उनकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन आवाज में एक विनती, अपनी बेटियों को बचा लो समय रहते।
1: तो जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए?
0: उन्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, आज ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं, आशा दीदी से बात करें और अपनी बेटियों का नाम टीकाकरण के लिए दर्ज करवाएं। और सबसे जरूरी बात, जो सही जानकारी आपने आज सुनी है उसे दूसरों तक पहुंचाइए, अफवाहों को नहीं सच्चाई को फैलाइए।
1: तो दोस्तों आज हमने जाना कि HPV क्या है, ये कैसे एक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है और एक छोटा सा टीका कैसे हमें बड़ी परेशानी से बचा सकता है।
0: और याद रखिए, महिलाओं की सेहत सिर्फ उनकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। और सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला जिंदगी भर का बड़ा बदलाव ला सकता है। छोटी सी तैयारी, बड़ी बीमारी से बचाओ, बेटी का टीका, परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाओ। तो चलिए जाने से पहले लेंगे सेहत की शपथ, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
1: तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए विषय और कुछ अलग जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM।

0: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। टीबी मुक्त भारत बनाए,
1: खुद भी बचे देश भी बचाए।
2: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
4: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
3: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
4: 11 दोस्त?
3: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा

0: गारंटी देते हैं।
1: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
2: मगर टीकू, कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ बुरे परिणाम भी हो सकते हैं।
1: लेकिन ऐसा क्यों?
2: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं, या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
1: टीकी, तो इसका हल क्या है?
2: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा, सुनो हमारी बात। अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है, तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनम दीदी से लें इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
1: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा भविष्य।

0: सभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM ग्रीन,
8: यानी किसान समुदाय की खेती की बातें,
7: महिलाओं की रोजमर्रा की बातें,
8: आपकी सेहत की बातें,
7: बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें,
8: युवाओं के रोजगार कैरियर की बातें,
7: वो सब कुछ एक ही जगह पर।
8: वो कहाँ पर?
7: बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के 90.8 FM ग्रीन पर।
8: FM ग्रीन, यानी हरियाली से खुशहाली तक।
7: उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। आज उन्नत कृषि में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल के बारे में जिसका गर्मियों में सभी को इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं लीची के बारे में। और लीची अपने स्वाद और अपने रूप के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और ख़ास तौर से किसान भाई बहन जो लीची उत्पादन करते हैं उन्हें काफ़ी अच्छी आय मिलती है लीची उत्पादन से। लेकिन अगर उनकी लीची पर कीटों का प्रकोप हो तो उनके आय पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में किसान भाई बहनों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीची के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। इन सारी बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तारकनाथ गोस्वामी। सर, आप हैं एसोसिएट प्रोफेसर कीट विज्ञान विभाग से, आप हैं कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद।
7: सर, लीची के सबसे प्रमुख कीट कौन कौन से हैं?
9: अच्छा, तो ये बहुत ही एक ससमय कार्यक्रम है और लीची के प्रमुख जो कीट बिहार में हम लोग फेस करते हैं, किसान भाइयों फेस करते हैं, उनमें 3 कीट बहुत महत्वपूर्ण है। एक है लीची का फल छेदक, जो जिसका सुंडी विकसित हो रहे फलों में छेद करके अंदर प्रवेश करती है। दूसरा है लीची का पत्ती मोड़क, इसका सुंडी कोमल पत्तियों को मोड़कर भीतर से खाती है। और तीसरा है रस चूसने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं लीची माइट। ये बहुत सूक्ष्म एक कीट है जो पत्तियों पर आक्रमण करता है और रस चूस के नुकसान पहुंचाता है। और ये तीनों कीड़ों को अगर ससमय हम लोग प्रबंधन ना करें तो ये सारे कीट गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचा सकते हैं।
7: तो सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर इनका सही समय पर प्रबंधन ना किया जाए तो काफी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये लीची के कीट किस प्रकार से लीची के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं?
9: जी, तो ये प्रत्येक जो अलग अलग कीट है जिसका जिक्र हमने किया, ये इसका नुकसान करने का तरीका अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे फल छेदक, ये फल छेदक जो है फल के अंदर प्रवेश करते हैं और उसके गुदे को खाते, और इसके वजह से फल बाजार योग्य नहीं होते और समय से पहले वो फल गिर जाते हैं। पत्ती मोड़क जो कीट के बारे में हमने बात किया, वो कोमल पत्तियों को मोड़कर अंदर से खाता है और इसके प्रकोप से प्रकाश संश्लेषण का क्षेत्र कम हो जाता है और नई वृद्धि बहुत भारी रूप से प्रभावित होते हैं। और जो लास्ट वाला कीट के बारे में जिक्र किया जिसका नाम है लीची माइट, ये कोमल पत्तियों पर आक्रमण करता है और पत्तियों के निचली सतह पर भूरे रंग की मखमली परत बन जाती है जिसके वजह से पत्तियों विकृत होकर मुड़ जाती है और पौधे की बढ़वार कम हो जाती है।
7: सर, जैसे कि आपने अलग अलग कीटों के बारे में बताया, तो वो अलग अलग कीट अलग अलग अवस्था में दिखते होंगे, तो कौन से कीट कौन से अवस्था में देखे जा सकते हैं?
9: जी, तो ये जो पत्ती मोड़क कीट है उसका अगर एग्जाम्पल ले और माइट का भी एग्जाम्पल ले, तो ये दोनों कीट नई शाकीय वृद्धि के समय दिखाई देते हैं। फल छेदक मुख्यतः पुष्पन और फल विकास की अवस्था में दिखाई देता है। इसके लिए किसानों को फूल आने, फल बनने और नई पत्ते के समय बाग की नियमित निगरानी बहुत अच्छे से करना चाहिए।
7: सर, जैसे कि अभी आपने कहा कि नए बाग की निगरानी करनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी जरूरी होता है कि जो निगरानी लगातार करते हैं वो शुरुआती अवस्था में ही कीट के प्रकोप को पहचान लेते हैं। तो अगर किन्हीं को नहीं पता है, किसान भाई बहन इस बात से अनजान है कि शुरुआती अवस्था में कैसे कीट के प्रकोप की पहचान करें, तो कैसे कर सकते?
9: तो जैसे हर एक कीट का जो प्रारंभिक पहचान है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये किसान भाइयों को भी अच्छे से मालूम है। तो कुछ संकेत हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मुड़ी हुई अगर कमूल पत्तियों को किसान भाइयों को दिखाई देता है तो वो बिल्कुल पत्ती मोड़क कीट का संकेत होता है। पत्तियों पर भूरे मखमली धब्बे जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र किया और सिकुड़ना, ये माइट का प्रकोप का लक्षण होता है। और फल पर बहुत ही छोटा छेद या कीट का अगर मल भी दिखाई देता है तो फल के ऊपर, तो ये फल छेदक का संकेत होता है। तो इसके लिए बाग का नियमित रूप से निरीक्षण करना जरूरी होता है ताकि सारे कीट के प्रकोप शुरू हुआ है कि नहीं इसके बारे में किसान भाइयों को अच्छे से मालूम पड़े।
7: सर, पहचान के बाद जरूरी होता है कि उनका प्रबंधन किया जाए।
9: जी,
7: तो इन कीटों का प्रबंधन कैसे किया जाए?
9: तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि प्रबंधन समेकित कीट के आधार पर ही करना चाहिए। तो बहुत सारे व्यावहारिक और प्रभावी उपाय हैं लीची के बगीचे में लीची का जो क्षति करने वाला जो कीट है उसको नियंत्रण करने के लिए। जैसे बाग की स्वच्छता, ये किसान भाइयों को मालूम है कि ये हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या होता है, संक्रमित पत्तियों, नई टहनियों तथा गिरे हुए जो फल होता है उस फल को हटाना चाहिए और इससे कीट का प्रभाव बहुत हद तक कम होता है। छटाई बहुत महत्वपूर्ण होता है लीची में। फल तुड़ाई के बाद अधिक घनी और संक्रमित शाखाओं को छटाई करना जरूरी है। उचित धूप और वायु संचार से कीट का वृद्धि इसके वजह से कम होती है। संतुलित पोषण का जो प्रयोग वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अधिक नाइट्रोजन का अगर उपयोग करेंगे किसान भाई तो इसका लीची का जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जिसको हम लोग बोलते हैं कोमल वृद्धि उसका बढ़ती है और कीट का प्रकोप बढ़ सकता है। नियमित निगरानी, लीची का बगीचा का नियमित निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। और जैविक और वनस्पतिक कुछ उपाय है, जैसे नीम तेल उसका 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से नियमित रूप से छिड़काव करना चाहिए। ये एक पर्यावरण के अनुकूल एक उपाय है और इससे रस चूसने वाले कीट तथा छोटी सुंडिया ये सब जो है इनके अगेंस्ट में ये बहुत कारगर होता है। कुछ प्राकृतिक शत्रु होते हैं जो आपका क्षति पहुंचाने वाला कीट है उसको खा जाते हैं, जैसे मकड़ियाँ, लेडीबर्ड बीटल, लेस विंग, तो इसको बचा के रखना चाहिए। हम कहें कि संरक्षण करना जरूरी है।
7: सर, अगर प्रकोप अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बहन क्या करें?
9: जी, तो यदि कीटों का संख्या आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर पहुंच जाए तो स्थानीय जो कृषि विशेषज्ञ है उसका सलाह लेना चाहिए। फिर भी मैं 2-3 केमिकल का नाम यहाँ पर जिक्र करूँगा। जैसे फल छेदक और फली पत्ती मोड़क के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट बोल के एक दवा आता है जिसका 5 SG मतलब सोल्यूबल ग्रैन्यूल उसका 0.4 g प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। और माइट के लिए फेनाजाक्विन 10% EC आता है, मतलब इमल्सिफायबल कॉन्सेंट्रेट, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करना जरूरी है। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि छिड़काव उचित अवस्था में हो रहा है और पूरे वृक्ष का जो पत्तियां हैं और फल है उसके ऊपर बढ़िया से स्प्रे हो रहा है।
7: तो उम्मीद है कि सर ने जो भी बातें बताई उन बातों का ध्यान रख के आप लीची के उत्पादन से अच्छी आय कमा पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आकर किसान भाई बहनों को इतनी उपयोगी बातें बताई।
9: धन्यवाद आपको भी।
7: आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले कुछ खास बात की, अपना और अपने फसलों का रखे खूब ख्याल और अपनी मिट्टी से करे ढेर सारा प्यार। नमस्कार। उन्नत कृषि
10: खांसी एक, खांसी दो, खांसी तीन, बच गई भैया देश की बीन। टीबी के कारण को जानो, खांसी हो तो मुंह ढक कर खांसो। टीबी रोग हवा में फैले, रखो अपना औरों का ध्यान। घर में धूप रोशनी हवा मिले तो कीटाणु सब मर जाएंगे, रोग मुक्त हम हो जाएंगे। खांसी खोखो खांसी। बलगम में है भरे कीटाणु, रख कागज में इसे जला दो या डाल राख में इसे दबा दो, रहे न टीबी नाम मिटा दो। खांसी खोखो खांसी। टीबी मुक्त भारत बनाए,
11: खुद भी बचे देश भी बचाएं।
12: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
13: टीकू तेरे कितने दोस्त हैं?
14: तीनू, मीनू, राजू, पिन्नी और
13: तुम्हारे वो 11 दोस्त जिनका बच्चों की जिंदगी में होना बहुत जरूरी है, ऐसे दोस्त जो कभी ना छोड़े साथ।
14: 11 दोस्त?
13: टीकू वो 11 दोस्त हैं जीवन रक्षक टीके, जो बच्चों के पैदा होने से लेकर उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
14: अच्छा, इन दोस्तों की बात कर रही थी टीकी।
13: मगर टीकू कुछ बच्चों को जन्म से ही एक भी टीका नहीं लग पाता है, जिन्हें जीरो डोज बच्चे कहते हैं, और इसके कुछ परिणाम भी हो सकते हैं।
14: लेकिन ऐसा क्यों?
13: क्योंकि ऐसे बच्चों के परिवार अक्सर शहर की कच्ची एवं अस्थायी बस्तियों और ग्रामीण के दूर दराज इलाकों की आबादी में रहते हैं, जहां वो टीकाकरण की सुविधा तक नहीं पहुंच पाते हैं या झिझक के कारण भी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने से चूक जाते हैं।
14: टीकी तो इसका हल क्या है?
13: चलो बताती हूँ। बच्चों के मम्मी पापा सुनो हमारी बात, अगर आपके बच्चों को कोई टीका नहीं लगा है तो आशा दीदी या स्वास्थ्य केंद्र पर एनएम दीदी से ले इसकी जानकारी पूरी, क्योंकि 11 टीकों से दूर रहेगी कई जानलेवा बीमारी। यूएन पर रजिस्टर कराओ, कहीं भी रहकर सरकार द्वारा मुफ्त और विश्व स्तरीय टीकाकरण की सुविधा पाओ।
14: याद रखो, आपके बच्चों की टीकों से दोस्ती मतलब स्वस्थ बचपन, सुनहरा।

0: अभी करो एक जरूरी काम, करो कुछ समय बच्चों के टीकाकरण के नाम। टीका सुरक्षित है, टीका जानलेवा बीमारियों से बचाता है।
1: टीकाकरण की अधिक जानकारी के लिए आशा, ANM दीदी या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
2: पहले कोई विदेश से आता था तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का गुणगान करता रहता था, पर अब हमारे अपने देश के अटल सेतु देखिए, सुदर्शन सेतु, चिनाब रेल ब्रिज, बोगीबील पुल, अटल टनल देखिए, पंबन समुद्री पुल देखिए, ऐसा लगेगा मंजिल भी पास है और सफर भी है सुहाना।
3: 21वीं सदी का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जिस नए युग में प्रवेश कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है, नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
3: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सुन रहे हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.8 FM ग्रीन, हरियाली से खुशहाली तक। उन्नत कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से आप सुन रहे हैं 90.8 FM ग्रीन और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त उमा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे किसान भाई बहनों को संबोधित विशेष कार्यक्रम उन्नत कृषि में। दोस्तों अभी गर्मा सब्जियों का मौसम चल रहा है और अगर गर्मा सब्जियों में या फिर किसी भी तरह के सब्जी में कीट लग जाते हैं तो फिर किसानों की आय बहुत घट जाती है। ऐसे में जरूरी होता है कि उन कीटों की पहचान करें और उनका प्रबंधन करें। आइए इस बारे में हम विस्तार से जानते हैं डॉक्टर श्याम बाबू साह से, जो हैं एसोसिएट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट, आप हैं कीट विज्ञान विभाग से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
6: धन्यवाद।
5: सर आप गर्मा सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई बहनों को विस्तार से बताइए कि कौन कौन से कीट होते हैं जो गर्मा सब्जियों में लगते हैं और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए।
6: नमस्ते किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा जो कद्दू वर्गीय जो सब्जी है जो इस मौसम में लगते हैं, अब इस कद्दू वर्गीय में कौन कौन है तो इसमें जो नेनुआ है, उसके बाद करेला है, उसके बाद आपको जो है विभिन्न प्रकार के खीरा है और कद्दू है, ये सारी चीज़ें जो है, परवल है, ये सब जो है कद्दू वर्गीय में आती हैं। उसके बाद किसान भाइयों की भिंडी भी इस सीजन में लगता है, तो ये मुख्यतः जो है इस मौसम में लगने वाले जो है ये विभिन्न प्रकार के फसल है। अब हम इसमें बात करते हैं कि किन किन फसलों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कद्दू वर्गीय में। कद्दू वर्गीय में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो हम लोग बात करें तो जैसे करेला की बात करते हैं, तो करेला में क्या होता है कि शुरुआती कंडीशन में इसमें जो शक करने वाले होते हैं, जो पौधे के पत्तियों से रस चूसने वाले कीट होते हैं, तो वो आपको दिखाई देंगे। और इसके चलते क्या होता है कि आप देखेंगे कि करेला के जो पत्तियां हैं, पौधे में जो पत्तियां पाई जाती हैं, तो वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो है ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट्स आएंगे और बाद में क्या होता है कि ये सूखने लगते हैं, उनकी जो पत्तियां हैं सो सूखने लगती हैं, और ये जो है एक सकिंग टाइप का जो पेस्ट है उसके चलते होता है, जैसे जो थ्रिप्ट है या व्हाइट फ्लाई है इसके चलते होता है। तो इनसे हम लोग, दूसरी बात क्या है कि, और जो दूसरा है इसमें फ्रूट फ्लाई का प्रकोप होता है, तो फ्रूट फ्लाई इसके चलते क्या होगा, जो करेला का जो फल होता है तो इसके जो शिशु होते हैं वो वहाँ पे जा करके पहले से छोटा सा होल क्रिएट करते हैं, छिद्र क्रिएट करते हैं, और बाद में जो है ये करेले के अंदर उसको खा करके और करेला को नष्ट कर देते हैं। तो इनसे हमको बचाव के लिए अगर हम जैसे कि इनके फ्रूट फ्लाई के लिए अगर बात करें तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के आजकल जो है कि प्रपंच या ट्रैप बोलते हैं अंग्रेजी में, वो आ गया है। और इसके ट्रैप में जो एक क्यूलियो ट्रैप है, उस क्यूलियो ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसा लकड़ी का चीज जो है कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर ऐसा सेंट निकलता है कि उसमें लगता है कि इसमें मादा का सेंट निकल रहा है, जिसके चलते जो कीट का जो फ्रूट फ्लाई का जो कीट का नर होता है उसमें ट्रैप में जाके फंस जाता है। और फंसने के बाद क्या होता है कि जो नर की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, और जिसके चलते पुनः जो है इस कीटों का जो जनसंख्या है उतना नहीं बढ़ पाता है और हमारा जो करेला का जो फल है वो बच जाता है। दूसरा जो है जो रस चूसने वाले जो कीट है उसको, उसके बचाव करने के लिए हम जो एलो स्टिकी ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक कार्ड का, जैसे कि हम लोग जो एक जो पढ़ने वाला जो पेपर होता है वो या लिखते जो हम लोग हैं उसी साइज का एक कार्ड होता है, और वो कार्ड जो होता है पीला रंग के होता है, और इस पीले रंग के कार्ड पे इस पे गोंद लगा होता है, और इस जो गोंद लगे हुए जो कार्ड है, जो पीले कार्ड है, इसको हम लोग किसी लकड़ी के माध्यम से करेले के फील्ड में लगभग 1.5 फीट ऊंचाई पे इसको हम लोग लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जितने भी रस चूसने वाले जो कीट है उनको लगता है कि ये उसका करेला का फूल है, और उस करेले के फूल को समझ करके वो उस पर जाते हैं, और जाने के बाद क्या होता है वो उसी में चिपक जाते हैं, जिसके चलते क्या है कि पुनः जो है कि ये जो कीट है उसकी संख्या कम हो जाती है, और जो हमारे जो करेला के फसल में जो विभिन्न प्रकार के जो ये रोग का भी ये फैलाव करते हैं उससे बचाव हो जाता है। तो ये आपके करेला पे हो गया। और पुनः जब हम लोग बात करें तो जैसे कि खीरा है, तो खीरे में भी लगभग ये फ्रूट फ्लाई का ही प्रकोप जो है सबसे ज़्यादा होता है, और खीरे में भी हम इस प्रकार के ट्रैप को प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जिसको जो नेनुआ बोलते हैं किसान भाइयों, तो नेनुआ में भी सेम टाइप की बात आती है। इसके बाद क्या है कि ठीक है आपको अगर ट्रैप नहीं मिलता है तब क्या करें, तो उस कंडीशन में चूंकि ये सब्जियां हैं जिसको हम लोग बहुत जल्दी मतलब पेस्टिसाइड छिड़कने के बाद इसको लंबे टाइम तक नहीं रखते, तुरंत उसको हम लोग सब्जी खा लेते हैं, तो इसमें क्या है कि बहुत जो विषाक्त जो कीटनाशी है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके इस्तेमाल करने से क्या है कि वो हमारे जो शरीर है उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न प्रकार के असाध्य रोगों का हम लोगों का ये कारण बनता है। तो उसे इसे में है कि नीम का तेल जो होता है, नीम ऑयल जिसको बोलते हैं, उसको 1500 ppm जो है उसकी 4 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में हम लोग इसको शाम के समय